मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 6 जून सन 2026। प्रातः के 5:56 और 45 सेकेंड हुए हैं। आरंभ होती है आज की हमारी प्रातःकालीन सभा। इस सभा में आपके साथ है आपकी दोस्त तुलिका शर्मा। आप सभी को हमारा नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं समाचार। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे
1: समाचार के साथ में मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की

0: बात करने के बाद कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी, सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के तहत सामान्य मार्ग से निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह के निवेश सीमाओं का पालन नहीं करना होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2026 में अब तक कुल 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2025 में अमेरिका से 3,567 भारतीय नागरिकों को वापस भेजा गया था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगिट बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगिट बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जून 2026 तक देश भर में 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगहारा में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए सुनते हैं ये देशगान।

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में रामधारी सिंह दिनकर की ये रचना वंदना में। आइए अब आपको सुनवाते हैं विदुषी शुभा मुद्गल की गाई ये भक्ति रचना।

वंदना के अंत में आइए सुनते हैं विपिन सचदेवा और साथियों का गाया ये भक्ति गीत।

0: इस भक्ति गीत के साथ ही आज की वंदना संपन्न हुई। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर पद्मेश का आलेख, वाचक हैं अंजू पांगती।
1: इस जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि यदि कोई हो सकती है तो वो है शांति मिलना, सुकून मिलना। अगर ये न मिल सके तो सारे धन, वैभव और विकास व्यर्थ हो जाते हैं। हमें शांति को सर्वाधिक महत्व देना होगा और इसे पाने के लिए भरपूर प्रयास करने होंगे। बल्कि हम कितनी ही उन्नति कर लें, धन संपदा एकत्र कर लें, यश प्रसिद्धि प्राप्त कर लें, पर शांति प्राप्त न कर सकें तो हमारा वर्तमान जीवन ही नहीं बल्कि शेष जीवन भी दुखी हो जाएगा। हम बाहर से तो संपन्न दिखाई देते हैं पर अपने अंतःकरण से विपन्न होते जाएंगे। बाहर से खुश दिखाई देंगे पर हमारे अंदर हाहाकार मचा रहेगा। बाहर से भरे पूरे और धनवान दिखाई देंगे पर अंदर से खाली और दरिद्र। अशांति पैदा करने वाले कामों से बचना होगा और शांति उपलब्ध कराने वाले गुणों को धारण करके संकोच छोड़ना होगा। गलती हो जाने पर उसे स्वीकार कर लेना शर्म की बात नहीं होती। इसी तरह किसी को क्षमा कर देना कायरता की बात नहीं होती। सहनशील होने का मतलब मजबूर होना नहीं होता और धैर्य धारण करना अकर्मण्यता की बात नहीं होती, बल्कि ये सभी गुण हमारे व्यक्तित्व के विकास और आत्म उन्नति में सहायक होते हैं। अपनी गलती मान लेने से अपना सुधार ही होता है। क्षमा मांग लेने और क्षमा कर देने से अहंकार तथा बैर नष्ट होता है। सहनशीलता से मनोबल में वृद्धि होती है और धैर्य रखने से अंततः सफलता ही मिलती है। इन सभी गुणों से शांति की उपलब्धि होने में सहायता मिलती है। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि आज का वातावरण बहुत अशांत है और यही हमारी अशांति का कारण है तो हम गलत फहमी में हैं, क्योंकि शांति एवं अशांति बाहर से नहीं आती, हमारे अंदर से ही आती है। हमारी मनोवृत्ति से आती है, हमारे संस्कार और बचपन से ही निर्मित हुए हमारे स्वभाव से आती है। इसलिए ये तयशुदा बात है कि शांति और अशांति का होना बाहर का नहीं अंदर का मामला है। यदि हम अशांत हैं तो इसका मतलब है कि हमने स्वयं ही किसी तरह अशांति को जन्म दिया है। संसार में हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम दोनों में से किस पहलू को चुनते हैं और किस पहलू से जुड़ते हैं और किस पहलू पर चलते हैं। अशांति और शांति में से किसको चुनते हैं ये हम पर ही निर्भर है। जीवन में सबसे ज़्यादा शांतिदायक आनंददायक बात यदि कोई है तो वो है मन की शांति और उसी के अनुरूप किए गए हमारे कार्य। संसार के सभी पदार्थ भी तभी हमें शांति प्रदान करने वाले हो सकेंगे जब हम इनका उपयोग शांति के लिए करेंगे। बबूल के बीज बोकर हम आम पैदा नहीं कर सकते। हम जिस पदार्थ का उपयोग जिस धारणा और सोच से करेंगे वो पदार्थ वैसे ही परिणाम देने वाला।

0: वाला हो जाएगा। इसलिए परिणाम की जिम्मेदारी संसार और इसके पदार्थों की नहीं, बल्कि किए गए कर्म के प्रतिफल के रूप में हमारी ही होती है। आज ही यदि हम संकल्प कर लें कि हम अपनी चित्त वृत्तियों को शांत, स्वस्थ और स्थिर बनाएंगे, उचित अनुचित साधनों से धन इकट्ठा करने के पीछे नहीं भागेंगे और सभी व्यसनों से दूर रहेंगे, तो ये निश्चित है कि हम स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए तथा इस समाज के लिए अपने को एक अच्छा और सही अर्थों में सफल कहा जाने वाला व्यक्ति सिद्ध कर सकेंगे।
1: कार्यक्रम चिंतन में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पद्मेश का आलेख, वाचक थी अंजू पांगती। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

श्री रामचरित मानस की रचना के क्रम में तुलसीदास ने अपने सभी गुण दोषों का वर्णन करके जो भी पूज्य तथा वंदनीय हैं उनके सामने बार बार सिर नवाया है। ऐसा करने के बाद ही श्री राम के निर्मल चरित्र का वर्णन आरंभ किया है। भक्त कवि को विश्वास है कि जिन उदार प्रभु ने पत्थरों को जहाज की भांति तिरने वाला तथा बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया वो तुलसी जैसे अज्ञानी सेवक का मान अवश्य रखेंगे। आराध्य के प्रति उनकी आस्था की पराकाष्ठा के दर्शन उन चौपाइयों में होते हैं जहां वे कहते हैं कि प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की भूल चूक याद नहीं रहती, जबकि उनकी थोड़ी सी अच्छाई को प्रभु सौ सौ बार याद रखते हैं। बाली, सुग्रीव, विभीषण इन सब के साथ ऐसा ही तो हुआ। कहां राम के रूप में परम ब्रह्म और कहां पेड़ों की शाखाओं पर उछल कूद करने वाले बंदर, परंतु उन बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। आज की जानकारी का विषय है गर्मी के मौसम में मुर्गियों की देखभाल। जानकारी दे रहे हैं सोहन सिंह।
1: किसान भाइयों, गर्मियों के मौसम में मुर्गियों की ठीक प्रकार देखभाल करें, जिससे उन्हें स्वस्थ बनाए रखें और उनकी बढ़वार अच्छी हो। गर्मियों का मौसम मुर्गी पालकों के लिए परीक्षा का समय होता है और जो मुर्गी पालक गर्मियों के मौसम में पक्षियों की सही देखभाल कर उन्हें स्वस्थ बनाए रखते हैं, वही सफल मुर्गी पालक होते हैं। गर्मी के मौसम में गर्म हवाओं और लू के कारण पक्षी तनाव में रहते हैं, जिससे मुर्गियों के शरीर की कोशिकाएँ पानी छोड़ती हैं और इस अवस्था में शरीर की कोशिकाएँ शुष्क और शिथिल होने के कारण मुर्गियों का शरीर सामान्य रूप से कार्य करने में असमर्थता हो जाता है। मुर्गी पालकों को इस अवस्था में सावधान रहना चाहिए। गर्मी से पीड़ित होने पर मुर्गियों का चेहरा लाल हो जाता है और ऐसा लगता है कि मुर्गी की कलगी से रक्त पसीने के रूप में बाहर आने वाला है। मुर्गियां चारों तरफ देखती हैं, चक्कर लगाती हैं, सिर इधर उधर घुमाती हैं, गर्दन या सिर में पक्षाघात जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। मुर्गियाँ तेजी से हाँफती हैं और उनके शरीर में भारीपन तथा धड़कन और नाड़ी स्पंदन का अनुभव होने लगता है। मुर्गियां जल्दी जल्दी सांस लेती और बाद में सुस्त होकर बैठ जाती, जिससे मुर्गियों की बढ़वार और उत्पादन क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। मुर्गियों में ऐसे लक्षण दिखाई देने पर पक्षियों को पकड़कर उनकी कलगी और मुँह में पानी लगाकर ठंडा करें और पक्षियों को पानी में डुबोकर या उनके ऊपर पानी का छिड़काव करके पंखे की हवा में छोड़ दें। स्प्रेयर से पानी का छिड़काव करके पक्षियों को बार बार गीला करते रहें। किन्हीं कारणों से गीला न कर सकने की स्थिति में मुर्गियों की कलगी को ही गीला करते रहें। यह कार्य दिन में दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक नियमित रूप से करना चाहिए। गर्मी के कारण पोल्ट्री फार्म की छत और दीवारें गर्म हो जाती हैं। गर्म हवाओं से बचाव के लिए शेड के चारों तरफ जो पर्दे लगाए जाएं, वह इतनी ऊंचाई पर लगाए जाएं कि मुर्गियों को गर्म हवा और लू सीधे न लगने पाए। अगर किसान भाइयों के पास साधन है तो छत पर स्प्रिंकलर लगाकर छत को ठंडा करना चाहिए। जिनके पास कूलर और पंखे की व्यवस्था है, वो शेड के अंदर कूलर और पंखे अवश्य लगाएं। गर्मियों के दिनों में मुर्गियों के सामने हमेशा ठंडा पानी रखें और पानी में इलेक्ट्रॉल या शक्कर और नमक का घोल बनाकर पिलाएं। बिना पानी के मुर्गियों को 5 मिनट भी न रखें। इस समय मुर्गियों को साधारण और संतुलित आहार देना। गर्मियों के मौसम में दाना देने का सही समय देर रात और जल्दी सुबह अच्छा रहता है, क्योंकि दाना खाकर पचाने की प्रक्रिया में गर्मी पैदा होती है और देर रात और जल्दी सुबह खाना खिलाते समय तापमान कुछ कम रहता है। इस समय मुर्गियों को विटामिन सी, जो श्वास की प्रक्रिया को शक्ति प्रदान करता है, अवश्य खिलाएं और बीच बीच में टेरामासन एग फार्मूला देते रहें। गर्मी के मौसम में मुर्गियां तनाव में रहती हैं। तनाव भी बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। शेड में कहीं भी कमजोर मुर्गी दिखाई दें, उन्हें तुरंत निकालकर अलग कर दें, क्योंकि मुर्गियों में अधिकतर छूतदार बीमारियां फैलती हैं, जिससे दूसरी मुर्गियां भी प्रभावित होती। मुर्गियों का धूल और तनाव से बचाव करना चाहिए, क्योंकि मुर्गियों में तनाव भी बहुत सी बीमारियों को फैलाने में सहायक होता। गर्मियों के मौसम में मुर्गियों की अगर सही तरह देखभाल की जाए तो उन्हें जीवित रख सकते हैं, बीमारियों से बचाव कर सकते हैं।
0: गर्मी के मौसम में

0: मुर्गियों की देखभाल कार्यक्रम कृषि चर्चा में अभी इसी विषय पर जानकारी दे रहे थे सोहन सिंह। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है सूचना पर कार्यक्रम दर्पण।
1: ए भाई,
0: सड़क पर चलते समय अपने वाहन की गति नियंत्रित रखें। किसी भी प्रकार का स्टंट करने की कतई कोशिश न करें। हो सकता है आप कुशल चालक हों, लेकिन दुर्घटना सिर्फ हमारी गलती से नहीं होती, दूसरों की लापरवाही भी हादसों का कारण होती है। दाहिने या बाएं मुड़ते समय इंडिकेटर का प्रयोग अवश्य करें। खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें।
1: ए भाई, दर्द

0: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
1: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
0: छीन सकती है खुशियाँ हमारी। इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ,
1: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास,
0: पानी को रखें हम हमेशा ढककर
1: और उसको पिएं छानकर उबालकर,
0: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
1: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें।
2: पानी रे पानी,
3: पानी पानी रे पानी,
0: आओ मिलकर करें प्रयास,
1: शुद्ध पानी हो सबके पास।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
0: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।

0: याद रखो हमारी बात,
1: पेड़ पौधे धरती की सौगात,
0: जंगल है धरती का गहना,
1: सदा इसकी रक्षा करना,
0: होगी जो धरती पर हरियाली,
1: चहुं ओर फैलेगी खुशहाली।
2: दर्पण कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे। उसके बाद 7:07 हिंदी में समाचार होंगे।
3: संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुजरात राज्यस्य सूरत नगरे 18,000 करोड़ रुपयाधिक मूल्यानां मार्ग विद्युतः अथ च औद्योगिक विकास परियोजनानां शुभारंभं विहितवान्। सः आदौ हजीरा क्षेत्रं गत्वा औद्योगिकाधारभूत संरचना कार्याणां समीक्षां विहितवान्, सहैव जनसभामपि संबोधितवान्। अनन्तरं प्रधानमंत्री दमन नगरं समागच्छत्, यत्र प्रायः 2,970 करोड़ रुपयापरिमितानां विविध विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विहितवान्। अवधेयास्पदं वर्तते यत् एताभिः परियोजनाभिः क्षेत्रस्य विकासः, आजीविकानिर्माणानि तथा जनसुविधानां वृद्धयः च भविष्यन्ति। सीबीएसई इति केन्द्र

0: केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा अंक सत्यापनार्थं सहैव पुनर्मूल्यांकनार्थं आवेदन प्रस्तुतेः अंतिमा तिथिः जून मासस्य सप्त दिनांक पर्यन्तं वर्धिता। सामाजिक अंतर्जालीय पटले एकेन संदेशेन परिषदा प्रख्यापितं यत् छात्राः इदानीं रविवासरस्य मध्य रात्रिं यावत् स्व आवेदनानि प्रस्तोतुं शक्नुवन्ति। CBSE परिषदा प्रोदीरितं यत् छात्रहितं मनसि निधाय आवेदन प्रक्रियां पूरयितुं छात्रेभ्यः अतिरिक्त समय प्रदानाय एषः निर्णयः स्वीकृतः। एतस्मात् पूर्वम् आवेदनस्य अन्तिमा तिथिः अस्य मासस्य षड् दिनाङ्कं यावदासीत्। परिषदा सर्वेभ्यः योग्य छात्रेभ्यः परामृष्टं यत् ते निर्धारित समये एव स्व आवेदन प्रक्रियां सम्पादयन्तु। केन्द्रीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी अघोषयत् यत् अंडमान द्वीप समूहस्य पूर्व समुद्रीय तटात् प्रायः 15 किलोमीटर दूरे श्री विजयपुरम त्रिक्षेत्रे प्राकृतिक गैस भंडारः अन्विष्टः। एकस्मिन् सामाजिक अंतर्जालीय पटले एकेन संदेशेन श्री पुरी प्रख्यापितवान् यत् एतत् अन्वेषणम् अंडमान समुद्रस्य विशाल ऊर्जा क्षमतां पुनः प्रमाणीकरोति, सहैव अस्मिन् क्षेत्रे प्रचल्यमानस्य गवेषणाभियानस्य एकाम् अपरां सफलतां च सूचयति। सः अकथयत् यत् ऑयल इंडिया इति संस्था सम्प्रति गैस द्रव्यस्य संरचनां तथा च तस्य ऊष्मीयमानं मूल्यांकितुं गैस सैंपलिंग इति प्रतिचयनस्य कार्यं करोति। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवसावसरे श्री पुरी महोदयेन नवदिल्ल्यां फ्लेक्स इंधन वाहनेभ्यः E85 इंधनस्य शुभारंभो विहितः। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ह्यः अब्रवीत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः आर्थिक परिष्काराणां लक्ष्यस्य अन्तर्गतं भारतस्य विकास यात्रा देशस्य आर्थिक समृद्धिम् अविरतं वर्धयति। अस्मिन् आर्थिक वर्षे पंजीकृतं 7.7% GDP विकासं निर्दिश्य श्री शाह प्रावोचत् यत् एषा उपलब्धिः गत द्वादश वर्षेषु भारतस्य अर्थव्यवस्थया सुदृढतां प्रकटयति। अथ च क्रिकेट क्रीडायां भारत अफगानिस्तान दलयोर्मध्ये स्पर्धा अद्य न्यू चंडीगढ़स्य मुलानपुर स्थिते महाराजा यादवेन्द्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट क्रीडांगणे आरप्स्यते। अस्यां स्पर्धायां शुभमन गिलः भारतीय दलस्य नेतृत्वं विधास्यति। क्रीडेयं भारतीय समयानुसारं प्रातः 9:30 आरप्स्यते। पुरुषाणाम् अंडर 18 इति अष्टादश एशिया कप हॉकी प्रतियोगितायाः उपांत्य स्पर्धायां भारतेन पाकिस्तान दलं 5-3 अंक अंतरालेन पराजितम्। अपरतः महिलानां अष्टादश एशिया कप प्रतियोगितायाः उपांत्य स्पर्धायां चीन देशेन भारतीय दलं पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की दर से बढ़ी है। दमण में कल 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर आगे बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल

0: सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 50 गीगावाट अकेले गुजरात की है। वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमरीका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3,567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना का कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगाहारा में कल सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत की अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हमारे भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। 7:20 पर डॉक्टर राजरानी शर्मा से उनकी वार्ता सुनिए, संस्मरणों का अनूठा संसार रचती महादेवी। 7:30 फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा। 8:00 समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़। ये दोनों ही समाचार बुलेटिन हमारे दिल्ली केंद्र से

हम अनुप्रसारित करेंगे 8:30 बजे आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने के क्रम में सुनिए पॉडकास्ट। विषय होगा पर्यावरण में बदलाव और सुझाव। इस विषय पर निदेशक अनुसंधान सेवा राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर डॉक्टर आर ए कौशिक से बात करेंगी डॉक्टर विभूति सिंह। 9 बजे सूचनाओं और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम होगा गुड मॉर्निंग ग्वालियर। इसमें सुनिए पॉडकास्ट सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ की 4th कड़ी। इसमें मनोरमा नदी की सफाई का कार्य कर रहे जिला बस्ती के निवासी आकाश गुप्ता से बातचीत का प्रसारण किया जाएगा। 9:30 बजे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा जिसमें अब्दुल हमीद खान का सारंगी पर बजाया राग मियाँ की तोड़ी सुना जा सकता है। 10 बजे जिले की चिट्ठी और 10:05 पर साप्ताहिक कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ। आज इस कार्यक्रम में पेट के विकार और होम्योपैथी उपचार विषय पर डॉक्टर राजेश उपाध्याय से आभा गुप्ता की बातचीत सुनवाई जाएगी। इसके ठीक बाद 10:50 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत और फिल्म संगीत के ठीक बाद 11 बजे से सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।

0: सायंकालीन सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे से। सभा के आरंभ से ही सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। पांच बजे युववाणी कार्यक्रम होगा जो रीवा की प्रस्तुति होगा। हमारे केंद्र से 7:20 पर चौपाल कार्यक्रम सुना जा सकता है, जिसमें चर्चा होगी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना विषय पर। इसके अलावा उपभोक्ता अपने अधिकारों को जाने विषय पर भी चर्चा होगी। ग्रामीण बच्चे चौपाल कार्यक्रम के ही अंतर्गत अपना कार्यक्रम सुनते हैं फुलबगिया प्रत्येक शनिवार को। बच्चों से चर्चा का विषय होगा सत्य की सदैव जीत होती है। इसके अलावा डॉक्टर एम एस सागर की वार्ता बच्चे सुनेंगे, गर्मियों में कैसे करें आंखों की सुरक्षा। रात 8 बजे से लेकर सभा की समाप्ति तक शेष कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। ये थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे।
1: कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार होंगे।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात के सूरत और केंद्र शासित प्रदेश दमन के दौरे पर 22,000 करोड़ से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इंदौर में आज भारत लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन व्यापार तथा निवेश फोरम की बैठक, 15 देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। प्रदेश में गृह विभाग ने 74 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए और मौसम विभाग ने राज्य के 52 जिलों में

0: राष्ट्र को समर्पित किए गए और 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का उद्घाटन भी हुआ। शाम को प्रधानमंत्री ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन करने के साथ साथ नमो अस्पताल राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा,
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: इंदौर में आज भारत लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन व्यापार तथा निवेश फोरम की बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इस फोरम में 15 देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, आईटी और पर्यटन सहित कई क्षेत्रों में निवेश और व्यापार के अवसरों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल भोपाल में कहा कि दूध उत्पादन से लेकर इंडस्ट्री और माइनिंग तक हर क्षेत्र में सहकारिता का दायरा बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान लोन डिफॉल्टर ना हो इसके लिए सहकारी सोसाइटियों की निर्धारित अवधि 31 मार्च से बढ़ाकर 31 मई करने का प्रयास किया गया।
2: हम अपने किसानों का जो एक साल का ऋण की अवधि बढ़ा करके उसको आगे बढ़ाएं ताकि वो अपने सभी प्रकार की दोनों फसलों के साथ 31 मार्च जरूरी नहीं रहेगा उसको संशोधित करने का प्रयास करेंगे। उसी प्रकार से जो सोसाइटियों में कोई कारण से अधिकारी कर्मचारियों की गड़बड़ियों के कारण से वो सोसाइटी डिफॉल्टर हो जाती है ऐसे में व्यक्ति पे कार्रवाई करेंगे सोसाइटी पे नहीं।
0: प्रदेश में गृह विभाग ने कल 8 आईपीएस और 66 राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों सहित कुल 74 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं। आईपीएस अधिकारी आयुष जाखड़ और उनकी पत्नी अनु बेनीवाल दोनों को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर जबलपुर भेजा गया है। वहीं नरसिंहगढ़ की एसडीओपी मिनी शुक्ला ने शुक्ला को पदोन्नत कर भोपाल नगरीय पुलिस में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त बनाया गया है। धार के पुलिस अधीक्षक सुजावल जग्गा को ग्वालियर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल दिल्ली की शकूर बस्ती डिपो में हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना की प्रगति की समीक्षा की और आधुनिक रखरखाव सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने हाइड्रोजन ट्रेन को भारतीय रेलवे को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। इसके बाद उन्होंने गुरुग्राम रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया जहाँ 300 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय पुनर्विकास कार्य चल रहा है। बुंदेलखंड की दशकों पुरानी मांग पूरी हो गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रीवा सागर नागपुर हैदराबाद के बीच नई स्थायी ट्रेन सेवा को मंजूरी दे दी है। इस सीधी ट्रेन से सागर और बुंदेलखंड के लोगों को इलाज, व्यापार और शिक्षा के लिए दक्षिण भारत जाने में बड़ी सुविधा मिलेगी। सागर सांसद डॉ. लता वानखेड़े ने प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि ट्रेन सेवा सागर के विकास को नई गति देगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। भाजपा के दोनों प्रत्याशी तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल आज राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून है। कांग्रेस ने मंदसौर की पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को अपना प्रत्याशी बनाया है। जरूरत पड़ी तो 18 जून को मतदान होगा और उसी दिन परिणाम भी आने की संभावना है। केंद्र सरकार के खेत बचाओ अभियान से अब तक देश भर में 9,42,000 से अधिक किसान जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम और 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। इनका उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। CBSE ने 12वीं के अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। पहली तारीख 6 जून निर्धारित थी। छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक आवेदन जमा कर सकेंगे। भोपाल के ग्लोबल स्किल पार्क में

तीन दिवसीय साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 400 से अधिक विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। कौशल विकास मंत्री गौतम टिटवाल ने कहा कि जिस तरह सैनिक देश की भौतिक सीमाओं की रक्षा करते हैं, उसी तरह साइबर विशेषज्ञ डिजिटल सीमाओं के प्रहरी हैं। उन्होंने युवाओं से रोजगार खोजने के बजाय रोजगार सृजक बनने की अपील की है। प्रदेश में शिक्षण संवर्धन कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 11 विद्यार्थियों और 11 शालाओं को राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया गया। श्योपुर के कुनू नेशनल पार्क में दशकों बाद दुर्लभ जंगली बिल्ली कैराकल की मौजूदगी कैमरे में ट्रैप हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस पर प्रसन्नता जताते हुए कहा है कि ये कुनू में समृद्ध हो रही जैव विविधता और वन्य जीव संरक्षण के प्रयासों का प्रमाण है। प्रदेश में मानसून से पहले ही प्री मानसून जमकर बरस रहा है। बीते 24 घंटों में 20 से अधिक जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई और आज भी मौसम इसी तरह बना रहेगा। मौसम विभाग ने प्रदेश के 52 जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स अकादमी के 7 खिलाड़ियों का कजाकिस्तान में आयोजित एशियाई कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप के लिए भारतीय दल में चयन हुआ है। इनमें संतोष सिंह, प्रिंस गोस्वामी और निहारिका सिंह सहित 5 कैनो स्प्रिंट और 2 पैरा कैनो खिलाड़ी शामिल हैं। खेल मंत्री विश्वास सारंग ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए पदक जीतकर लौटने की शुभकामनाएं दी हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा कल अल्प प्रवास पर बैतूल पहुंचे। सर्किट हाउस में कलेक्टर ने उनका स्वागत किया। खंडवा में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। पन्ना जिले में एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान की शुरूआत पूर्व मंत्री और पन्ना विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह ने की। डिंडौरी में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत व्यापक वृक्षारोपण किया गया। झाबुआ कलेक्टर ने माही मुख्य बांध का निरीक्षण कर जल आवक और डैम संचालन व्यवस्था देखी। आगर मालवा जिले के नलखेड़ा में कल रोजगार मेले में 53 युवाओं का प्रारंभिक चयन किया गया, साथ ही 23.85 लाख रुपए के स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए। मंडला जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके ने उदय चौक के पास निर्माणाधीन मल्टी स्टोरी पार्किंग का निरीक्षण किया। गुना में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सिंहवासा तालाब परिसर में जिला प्रशासन और नगर पालिका परिषद द्वारा पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आइए सुनते हैं वार्ता। संस्मरणों का अनूठा संसार रचती महादेवी। वार्ताकार हैं डॉक्टर राजरानी शर्मा।
1: स्मरण साई संस्मरण साहित्य की अधिष्ठात्री महादेवी वर्मा जी ने साहित्य की ऐसी विधा को समृद्ध किया जिसमें व्यक्तित्व को, घटना को, जीवन अनुभवों को और आसपास बिखरी मानवीय गरिमा को कविता की तरह सरस बनाकर प्रस्तुत किया जाए। आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली महादेवी जी को उनकी विशाल साहित्यिक उपलब्धियों के लिए पद्मभूषण, पद्म विभूषण के साथ भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से तो सुशोभित किया ही गया, लेकिन गद्य और पद्य पर चमत्कारिक लेखनी से जो सुगंध उन्होंने बिखेरी वो अद्भुत थी। उनका संस्मरण साहित्य भारतीयता की सुगंध से ओतप्रोत रहा। उनके संस्मरणों में उपनिषदों जैसी प्रार्थना, स्तोत्र जैसी मंत्र शक्ति और करुणा, विश्व बंधुत्व का भाव भरा पड़ा है। अपने आसपास के परिवेश को वे अपनी दुनिया का इष्ट और अभीष्ट दोनों समझती थीं। गहरी सहानुभूति, मानवीय सुख दुख की पहचान और वेदना भरी चिंता की गहरी रेखाएं उनके संस्मरणों की समृद्धि हैं। महादेवी जी ने निराला संस्मरण लोक रचा। 1941 में अतीत के चलचित्र, 1943 में स्मृति की रेखाएं, 1972 में मेरा परिवार, पथ के साथ ही 1956 में ही आ गया था। इस प्रकार उनका रचना संसार प्रकाशित हुआ। कविवर निराला महादेवी जी को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहते थे। महादेवी जी ऐसी विभूति थीं जिन्होंने स्वतंत्रता के पहले का समय भी देखा और बाद का भी। उनकी पावन दृष्टि में जितना बड़ा स्थान रामा, भक्तिन, लक्ष्मा और घीसा का रहा, वैसा ही स्थान दिया उन्होंने जो उन्होंने निराला, टैगोर, दद्दा और सियाराम शरण गुप्त जी को दिया। अद्भुत थी महादेवी की जी ये प्रतिभा। आसपास के जीवन को सूक्ष्म अनुभवी आँखों से, संवेदनशील हृदय से देखने वाली महादेवी जी ने अपने संस्मरण संसार में जब प्रवेश कराया तो ऐसा लगा मानो शब्द बोल उठे। संस्मरणात्मक रेखाचित्र रचते समय उनकी लेखनी तूलिका बन जाती थी और वे पात्र की अंतर बाहे दोनों दुनियाओं का सचित्र और सजीव वर्णन करके पाठक को अपने हृदय की विशालता और मानवीय प्रेम और करुणा से उत्प्रोत कर देती थी। महादेवी जी के चरित्र ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे अपने पड़ोस में ही हमने उसे देखा है। भक्तिन ऐसा ही अद्भुत संस्मरण है जिसमें अपने पास परिचारिका के रूप में आई नारी को भक्तिन का नाम दिया और हमारे सामने सेवा धर्म के मर्म को जानने वाली भारतीय नारी की सुदृढ़ मूर्ति गढ़कर प्रस्तुत की। भक्तिन की पूरी जीवन गाथा एक संस्मरण में पिरोकर महादेवी जी संवेदना के कपाटों को भड़भड़ाकर खोलते हुए कहती हैं, जब उसने गेहूं रंग और बटिया मुख वाली पहली कन्या के दो संस्करण और कर डाले तब सास और जिठानियों ने ऊँट बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। मानो इस प्रसंग से भारतीय नारी के जीवन की अमर पीड़ा जो तीन बेटियों के जन्म के बाद झेलना अनिवार्य है प्रस्तुत की। महादेवी जी भक्तिन के माध्यम से पारिवारिक के साथ सामाजिक वेदना का मर्मस्पर्शी चित्रण किया। चित्रात्मकता तो देखते ही बनती है। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थिन और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने ऊपर के ओठ को सिकोड़ कर और नीचे के ओठ को बड़ा करके कहा कि तुम कुछ आश्वासन की मुद्रा में साथ कहा, ई कौन बड़ी बात है, रोटी बनाए जाने थे, दाल रांध लेई थे, साग भाजी छौंक सके थे और बाकी का रहा। सादगी में भी जब सब कह देने की कला ही संस्मरणों के संसार को मानवीय रंग देने का भाव जगाता रहा। अतीत के चलचित्र में महादेवी जी हमारा परिचय रामा, भाभी, बिंदा, सजिया, बिट्टू, बालिका, माँ, घीसा, अभागी स्त्री, अलोपी, बबलू और अलोपा, इन 11 चरित्रों से करवाती रहीं जो हमारी ही दुनिया के आसपास हर घर में मिल जाते हैं। स्पष्ट करते हुए महादेवी जी कहती हैं उद्देश्य को कि समय समय पर जिन व्यक्तियों से संपर्क ने मेरे चिंतन को दिशा और संवेदन को गति दी उनके संस्मरणों की कहानी करुणा से भीगी है और ये संस्मरण कहीं मैले कहीं धुंधले ना हो जाएं इसलिए मैं बार बार इनको उकेरती रहती हूँ। अपनी तूलिका फेर कर इन अतीत चित्रों की चमक मिटा न दे तब उन संस्मरणों के धुंधले आलोक में मैं उन्हें फिर पहचान सकूं। महादेवी जी का अपने संस्मरणों की भूमिका में ये कहा गया वाक्य उस उद्देश्य की झांकी दिखाता है जो अतीत के चलचित्रों के सजीव संवेदनशील और भारतीयता की सादगी से ओतप्रोत साधारण पात्रों को असाधारण चरित्र में बुनते हुए संस्मरणों का अद्भुत करुणा और मानवीयता से भरा संसार रचती रही हैं। महादेवी जी के संस्मरण तीन प्रकार के हैं। पहले वे सरल मानवीय पात्र जो उनके बाल्यकाल से लेकर उनकी सेवा शुश्रूषा में उनके संपर्क में आए, जैसा रामा बिंदा भक्तिन लक्ष्मा आदि का छत विक्षत जीवन जिस जीविषा के साथ आगे बढ़े हैं, उन संघर्षों को सबके सामने लाना ही उनका असली उद्देश्य रहा। महादेवी जी इन पात्रों के माध्यम से बताना चाहती हैं कि सेवा का अद्भुत संसार संस्कार होते हुए उन दुखों के पहाड़ को ढूंढते हुए समाज के उपेक्षित पात्रों ने दया करुणा सादगी सच्चाई को भूला नहीं है। इस आत्मिक नारी जीवन की शोषण पर आधारित यातनामयी स्थिति, आर्थिक विपन्नता, आर्थिक शोषण और समाज के ठेकेदारों की निर्ममता का सच्चा चित्र महादेवी जी ने पग पग पर उकेरा है। बाल विवाह और बेमेल विवाह के कारण उपजे नारी जीवन के वैधव्य क्लेश का अपार दुख महादेवी जी ने अपने संस्मरणों में जगह जगह पर हमारी दृष्टि में लाया है। संवेदना और सामाजिक चेतना के साथ सहानुभूति को पैदा करने का प्रयास किया है। रामा की रचना 3 जुलाई 1920 को हुई। सोचिए आज से 100 वर्ष अधिक हो गए, ये रचना आज भी उतनी ही नई, आज भी उसी पीड़ा को जीता जागता चरित्र घर घर में नजर आता है। ये है उनके संस्मरणों की असाधारण सार्वभौमिकता। दूसरे प्रकार के कुशल शब्द चित्र महादेवी जी ने मेरा परिवार के अपने संस्मरणों में दिए। मेरा परिवार में मानवेतर प्राणी यानी पालतू पशु पक्षियों की स्मृतियों को उभारा। नीलकंठ मोर, गिल्लू गिलहरी, सोना हिरणी, दुर्मुख खरगोश, गौरा गाय, सोना हिरणी, दुर्मुख खरगोश, गौरा गाय, नीलू कुत्ते और निक्की नेवले की कहानियाँ उकेरी हैं। सबसे पहले महादेवी जी संस्मरणों को शब्द चित्र और रेखा चित्र दोनों में गूंथ कर प्रस्तुत किया करती थी जो आगे जाकर एक अटूट साहित्यिक परंपरा बन गई। कवि हृदय महादेवी जी का गद्य लेखन मानो कलेजे की कोर को चुराने का अभ्यासी बन गया क्योंकि रेखा चित्र और संस्मरणों में सच्चाई की सुगंध के भारतीय उपनिषदों वाली करुणा और सभी प्राणियों में साक्षात प्रभु का दर्शन करने का ममत्व, बंधुत्व और हृदय की विशालता भरी हुई थी। पथ के साथी महान विभूतियों का साहित्यिक सांस्कृतिक और राष्ट्रहित में किया योगदान है तो अतीत के चलचित्र साधारण से दिखने वाले असाधारण संवेदना के धनी दुखी परंतु निश्चल सेवाभावी जनों का विस्तृत परिचय है जो ध्यान से पढ़ने पर मन की सभी खिड़कियां खोल देता है, भावनाओं को झकझोर देता है। महादेवी जी के शांत सुशिक्षित साध्वी मन का रेशा रेशा दया करुणा सहानुभूति और सच्चाई भरी सादगी से बुना है। एक और पशु पक्षियों के सुख दुख की जीती हैं, बोली बालिका सी उन्हें टुकुर टुकुर ताकती हैं और छोटी से छोटी बात को लिखती हैं, अमर कर देती हैं। दूसरी ओर राष्ट्र निर्माताओं पर अपनी चमत्कृत कर देने वाली शैली में लिखती हैं तो शास्त्रीय चिंतन और गहन संवेदना की झड़ी लगा देती हैं। महादेवी जी के पथ के साथी में उकेरी गई तस्वीरों ने निराला को निराला के परे जानने का अवसर दिया। फिर चाहे रविंद्रनाथ टैगोर का भव्य व्यक्तित्व हो या मैत्रीक्षण गुप्त दद्दा का, सभी एक से बढ़कर एक शब्द चित्र हैं। रेखा चित्र और संस्मरणों को इस अद्भुत हृदयगाई जीवंत शैली में रचकर महादेवी जी की लेखनी ने हमारी अनुभूतियों को शब्द तो दिए ही हैं, हमारी करुणा भरी संस्कृति और सर्वभूत हिते रता भाव को भी साकार कर दिया है। अपने मन की पवित्रता, जीवन की विशाल दृष्टि को एक एक संस्मरण में बुनकर सभी व्यक्तित्वों को अमर कर दिया है। पैनी दृष्टि और उदारता, ममता, त्याग और सेवकों की सेवा का भाव ही उनके प्रत्येक संस्मरण में जीवंत हुआ है। रेखाचित्रों और संस्मरणों की मैं सहज शब्दावली, निश्चल अनुभूतियाँ और आत्मीयता भरा चित्रण हमारे हृदय पर ऐसा प्रभाव छोड़ते हैं मानो चलचित्र देख रहे हों। संस्मरणों के संसार में पाठक की कल्पना की उंगली पकड़ कर ले जाती हुई महादेवी जी का मन एक जीवंत शरारती मगर गंभीर किशोरी सा लगता है, जो पाठक जगत को सखा बनाकर अपनी दुनिया दिखाकर आश्चर्यचकित कर देना चाहती हैं। गहन अध्ययन, एकांतवास और विशाल हृदय की स्वामिनी महादेवी जी के संस्मरण छोटे छोटे प्रकाश स्तंभ हैं जो कल्पना जगत में यथार्थ की राह दिखाते हैं, सहानुभूति की कहानी और करुणाकलित हृदय की रागनी का उजास फैलाते हैं। विश्व साहित्य में अपना अमर स्थान सुरक्षित रखते हुए महादेवी जी के संस्मरण स्मृतियों के पावन तीर्थ के समान सदैव याद किए जाएंगे।
0: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर राजरानी शर्मा से उनकी वार्ता, संस्मरणों का अनूठा संसार रचती महादेवी। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी दोस्त तुलिका।

ये जो गीत अभी आप सुन रहे थे, इसे हमने लिया था फिल्म बात एक रात की से। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, गीत मजरू सुल्तानपुरी का, संगीत सचिन देव बर्मन का था। कार्यक्रम का अगला गीत एक बार फिर आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, गीत भी मजरू सुल्तानपुरी का, संगीत है सलील चौधरी का, फिल्म का नाम माया।

आइए एक और पुराना लेकिन खूबसूरत गीत आपको सुनवाते हैं। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन। लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है फिल्म सीमा के लिए।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आशा भोसले के साथ आइए अब सुनते हैं मन्ना डे को। गीत शैलेंद्र का, संगीत शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम श्री 420।

इसी मूड का एक और गीत मुकेश की आवाज़ में, फिल्म अन्नाड़ी। गीत शैलेंद्र का, संगीत शंकर जयकिशन का।

और आइए कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया फिल्म ममता का ये गीत, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार रोशन।

0: पुराने छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहाँ पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। मौसम विभाग ने 9 जून तक केरल के उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
3: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
2: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
3: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
2: इससे पहले श्री मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट में गुजरात का योगदान 50 गीगावाट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट।
4: नई व्यवस्था के तहत जनरल रूट से निवेश करने वाले FPI को अधिक लचीलापन मिलेगा क्योंकि कुछ निवेश संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश के लिए लागू जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को मिलाकर एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा 4,62,490 करोड़ और दूसरी छमाही के लिए 4,77,006 करोड़ तय की गई है। राज्य विकास ऋणों के लिए ये सीमा पहली छमाही में 1,53,043 करोड़ और दूसरी छमाही में 1,64,242 करोड़ निर्धारित की गई है। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
2: वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
5: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7,00,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1,50,000 से अधिक प्रतिभागियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
6: With Nepal, we have an expansive agenda.
7: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
6: Partnership that we have with Nepal.
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
8: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
9: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
8: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
10: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
11: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
2: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांतिदूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे अमरीका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
12: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इजराइल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इजराइल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीणा।
2: केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोझिकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विंसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज में प्रज्ञानानंद ने विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के साथ पहला टेस्ट

मैच खेला था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट डब्ल्यू

0: बढ़त की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, संकट के बीच भारत की जीडीपी में उछाल, चौथी तिमाही में 7.8% रही। पत्र के अनुसार मजबूत मांग और उत्पादन के कारण रफ्तार तेज रही। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और आर्थिक सुधारों का नतीजा है। पत्र के अनुसार विदेशी पूंजी के लिए टैक्स फ्री राहत तैयार, आरबीआई ने बिना सीमा विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया। देशबंधु के अनुसार लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक शीर्षक से लिखा है, एआई का ग्लोबल हब बनेंगे हम। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी देश में 3 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगी। 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयरट्रंक। जनसत्ता ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, अमेरिका के 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल के उद्यमियों का योगदान, इनमें कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन परप्लेक्सिटी भी शामिल। पत्र के अनुसार नव उद्यमों में 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने की। वीर अर्जुन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा है, मेरे मोदी अच्छे मित्र हैं, व्यापार समझौता हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौता का पहला चरण जुलाई तक संभव। दैनिक जागरण लिखता है, भारत संघ SU-57 बनाने को रूस तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, लापरवाह अफसरों पर सीधे FIR। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को और प्रभावी बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। जनसत्ता ने अनदेखी की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वो गलती बनी रही तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञान आनंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi asserts Indian economy remains exceptionally strong despite global economic crisis. Reserve Bank of India eases regulatory norms for foreign portfolio investors in government securities to attract investment. More than 9.42 lakh farmers to join Khet Bachao Abhiyan for balanced fertilizer use and sustainable farming. India slams Pakistan for abusing its temporary membership of UN Security Council to peddle false narratives about Jammu and Kashmir. IMD forecasts extremely heavy rainfall in northern districts of Kerala until June 9th. And Indian Grandmaster R. Pragyanan scripts history, becomes first Indian to win Norway chess title. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a robust 7.7% growth in the fiscal year 2025-26 despite a global economic crisis. Addressing a large gathering after launching a series of developmental projects worth around 2,970 crore rupees in Daman last evening, the Prime Minister noted that India continues to be among the fastest growing economies in the world. He assured the citizens that the country will forge ahead with its reform express while prioritizing massive infrastructure development and welfare schemes for the poor.
3: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
2: Earlier, Mr. Modi launched various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat. Addressing the gathering, the Prime

0: India has said that Pakistan is abusing its temporary membership of the UN Security Council to peddle false narratives about Jammu and Kashmir, and it should be mindful of its responsibilities. India's permanent representative P. Harish said that empty rhetoric and hollow claims by Pakistan would not change this fundamental reality that Jammu and Kashmir was, is and will always remain an integral and inalienable part of India.
1: I'd like to remind Pakistan that being a member of the UN Security Council is a huge responsibility. It's not a forum for peddling biased and false narratives. I'd like to make it loud and clear. Jammu and Kashmir was, is and will always remain an integral and inalienable part of India. Any assertions to the contrary are baseless, devoid of and inconsistent with historical facts. Empty rhetoric and hollow claims by Pakistan would not change this fundamental reality. In the interest of time or the wider UN membership, I would not delve any further into this.
0: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will hold talks with Nepal Foreign Affairs Minister Shishir Khanal in New Delhi today. The Foreign Affairs Ministry of Nepal has said that during the meeting, both sides will discuss matters of mutual interest with a view to enhancing cooperation across key areas, including trade, investment, connectivity, energy and people-to-people ties. Mr. Khanal is currently on a three-day visit to India. During the weekly press briefing, spokesperson for the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said the visit will help further strengthen the special partnership between India and Nepal.
2: With Nepal, we have an expansive agenda from development cooperation to people ties to trade and investment. So all these ties together will be discussed when the two foreign ministers meet. But on our side, we are keen to further strengthen this multifaceted partnership that we have with Nepal.
0: Russia's President Vladimir Putin has turned down an offer for in-person talks with his Ukrainian counterpart Volodymyr Zelensky, saying he sees no point in such a meeting for now. Putin delivered the remarks during Russia's flagship economic forum in St. Petersburg yesterday, a day after Zelensky shared an open letter appealing for a face-to-face meeting in which the two leaders could hash out an end to the war. Zelensky responded later, saying Putin's rejection of his proposal showed that the Kremlin had no wish to end the war. U.S. forces have struck Iranian coastal surveillance radar installations near the Strait of Hormuz after shooting down four Iranian drones which targeted regional maritime traffic. The incident marks the latest flashpoint in a three-month-old conflict, further straining already deadlocked peace negotiations between Washington and Tehran. More from our correspondent from Dubai.
3: The strike came as diplomatic efforts between Washington and Tehran remain stalled, with a major sticking point of being Iran's demand for the release of $24 billion in frozen assets held overseas. Iranian officials have reportedly linked progress on any interim agreement to the unfreezing of funds, while the United States is reluctant to give up what it sees as a key source of leverage in these negotiations. Meanwhile, in Lebanon, Hezbollah has rejected a U.S.-brokered ceasefire proposal accepted by Israel and the Lebanese government, insisting that any agreement include a full Israeli withdrawal from southern Lebanon. The group has also released drone footage showing attacks on Israeli forces near the Beaufort Castle, a strategic hilltop fortress captured by Israeli forces during the recent offensive. Iran has reiterated its support for Hezbollah and maintains that Israeli pullout from Lebanon is essential for any broader regional settlement. Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
0: In Keralam, red alert indicating extremely high rainfall is declared in five districts till 9th of June. More from our correspondent.
4: Red alert indicating extremely heavy rainfall has been declared in the districts of Malappuram, Kozhikode, Wayanad, Kannur and Kasargod in Keralam. Six districts are under orange alert indicating isolated very heavy rainfall, while the remaining three districts are under yellow alert indicating isolated heavy rainfall. Intensive rainfall is expected over the next 3 days in Keralam. Places including Kannur, Kozhikode, Kochi and Alappuzha have recorded more than 15 mm of rainfall since 7 a.m. today. Smithy M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
0: Meanwhile, the weather agency predicted a thunderstorm accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Uttarakhand, East Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Jharkhand and Jammu and Kashmir today. Meanwhile, thunderstorm conditions are expected over Bihar, Chhattisgarh, Odisha and Rajasthan today. Furthermore, IMD forecast heat wave conditions over coastal Andhra Pradesh for the day. On to sports. In chess, Grandmaster R. Pragyanand has created history by becoming the first Indian to win the Norway chess title in Oslo with a final round victory over Germany's Vincent Kaimer. Pragyanand, who began the day in third place, secured a crucial classical win worth 3 points to finish with 18 points and sealed the title. The 20-year-old from Chennai achieved a feat that had eluded Indian chess legend Vishwanath Anand and reigning world champion D. Gukesh since the tournament began in 2013. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
5: Thank you, Shagun. Almost all the dailies quote the Prime Minister's statement regarding strong economic growth, with the Indian Express's headline being Financial Year 26 growth estimate raised to 7.7%. Momentum strong. The paper also adds to draw funds, prop rupee, government scraps FII capital gains withholding tax on bonds. While the Financial Express reports economy sprints to 7.8% growth in fourth quarter for 2026. The first tranche of India-US interim trade deal likely by mid-July, says Piyush Goyal, reports the Hindu Business Line. The Pioneer informs Shah vows zero tolerance on demographic shifts as he addressed BSF personnel at Lankamura border outpost. CBSE drops CoEMS portal for re-evaluation with student and examination data migrated to infrastructure under the board's direct control, cites Hindustan Times. The Asian Age headlines, Putin says Russia ready to jointly build Su-57 stealth jet with India, suggests strong strategic partnership between the two countries. And finally, wind from Milky Way's black hole called Sagittarius A has been discovered after 5 decades of trying. Its wind is like a gentle breeze, not a hurricane. The wind has carved out a huge conical cavity in space, informs the Asian Age. And with that, it's back to you, Shagun.
0: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi asserts Indian economy remains exceptionally strong despite global economic crisis. Reserve Bank of India eases regulatory norms for foreign portfolio investors in government securities to attract investment. India slams Pakistan for abusing its temporary membership of UN Security Council to peddle false narratives about Jammu and Kashmir. IMD forecasts extremely heavy rainfall in northern districts of Kerala until June 9th. And Indian Grandmaster R. Pragyanand scripts history, becomes first Indian to win Norway chess title. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
6: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने के क्रम में पॉडकास्ट, जिसका शीर्षक है पर्यावरण में बदलाव और सुझाव। निदेशक अनुसंधान सेवा राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर डॉक्टर आर ए कौशिक से बात कर रही हैं डॉक्टर विभूति सिंह।
7: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका आज हमारे पॉडकास्ट के एपिसोड में। आज के अंक में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर आर ए कौशिक, जो निदेशक अनुसंधान सेवा है राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में, और इनसे हम चर्चा करेंगे पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बारे में, पर्यावरण संरक्षण के समक्ष क्या चुनौतियां हैं इस बारे में, और भी ढेर सारी बातें करेंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
8: सभी को नमस्ते, धन्यवाद।
7: सर, सबसे शुरुआत में मैं तो ये जानना चाहूँगी आपसे कि हमारी आकाशवाणी को 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं इस बार स्थापना को, तो आकाशवाणी से जुड़ी हुई कुछ याद या कोई मेमोरी आपके पास है जो शेयर करना चाहें हमारे श्रोताओं से?
8: सबसे तो ये है कि हम जब बचपन में थे, मेरा बचपन गांव में हुआ है, तो रेडियो उस टाइम बड़ा पॉपुलर था और इस पर बहुत सारे प्रोग्राम आते थे, और इवन पशुओं के ऊपर भी एक किसान का बच्चा उस पर भैंस पर बैठा हुआ है और वो भी अपना रेडियो साथ लेके उस पर प्रोग्राम सुन रहे हैं, इतना प्रचलित था। और किसी की शादी होती थी तो रेडियो उसको दहेज में मिलता था, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती थी। देखिए
7: जी, उम्मीद करते हैं आपको मिला होगा।
8: यस,
7: थोड़ा सा अपना पृष्ठभूमि बताएं सर अपने।
8: मेरा जो है स्पेशलाइजेशन कृषि में, एक वैज्ञानिक हूँ, और मेरा जो खोज रही है वो फलों में रही है। मेरा तकरीबन 20 साल का अनुभव है, खासकर रिसर्च में, टीचिंग में और एक्सटेंशन में और बहुत सारी चीज़ें हमने किसानों को जो पहुंचाने वाली बात है, मैंने हमने बहुत सारे किसानों के लिए प्रोग्राम किए हैं खेती बाड़ी से रिलेटेड। और मैंने वहाँ पे किसानों के लिए हमारे यूनिवर्सिटी में भी ऐसी उदयपुर में महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी थी, उसमें एक हमने कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की भी स्थापना की थी, जिसके द्वारा हम किसानों से संबंधित, ग्रामीण महिलाओं से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं आज भी उनसे।
7: तो अब हमारे विषय पे लौटते हैं, पर्यावरण संरक्षण से जानने से पहले हम चाहेंगे कि आप श्रोताओं को बताएं कि पर्यावरण दरअसल क्या है।
8: आज हर जगह हम पर्यावरण की बात करते हैं, उसके प्रदूषण की बात करते हैं, लेकिन एक यदि साधारण आदमी को, यदि किसी स्कूल के बच्चे को समझाएं कि पर्यावरण से आपका क्या अभिप्राय है
7: जी,
8: तो पर्यावरण की यदि हम बात करें तो जो हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं उसमें आपके सभी प्राकृतिक चीज़ें भी आ गई, मानव निर्मित मैन मेड चीज़ें हैं वो भी आ गई, जैसे और उसमें जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, हवा है, पानी है, ये सारी चीज़ें मिलके आपका पर्यावरण की संरचना करते हैं, उसको पर्यावरण को बनाते हैं।
7: तो अब बात करें पर्यावरण संरक्षण की, तो आप बताइए कि ये संरक्षण या पर्यावरण के समस्त सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये जल की है, हवा की है, सॉइल की है, या बायोडायवर्सिटी जिसे जैव विविधता कहते हैं, किससे जुड़ी हुई समस्या मूल है और सबसे विकराल है?
8: पर्यावरण का संरक्षण बहुत जरूरी है क्योंकि ये ही जीवन का मूल आधार है। और आज के दिन हम देखें तो बहुत सारी बातें हो रही हैं पर्यावरण से संबंधित, हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, कैसे बहुत ज़्यादा कहीं अतिवृष्टि हो रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं जंगल में आग लगी हुई है, एक समय में ही इतनी बारिश हो जाती है जो साल भर में होनी चाहिए थी, फिर कई दिनों तक सूखा रह जाता है जो हमारे कृषि आधारित देश होने के नाते उसको प्रभावित करता है। लेकिन क्या है कि दुर्भाग्य इस बात का है कि मानव बड़ा लालची हो गया है और वो अब उस लालच में वो हमारे जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, चाहे वो जल है, जलवायु है, वन है, उनका अंधाधुंध उनका दुरुपयोग कर रहा है, उनका उपयोग कर रहा है, और उससे हमारे खनिज भी उसमें शामिल हैं। हमारी अब ये कर्तव्य है कि उसको अति दोहन रोका जाए, उसको सस्टेनेबल यूज़ जिसकी बात करते हैं वो रखा जाए, और हम अपनी आने वाली जनरेशन जो हमारी भावी पीढ़ी है उसके लिए भी इन संसाधनों को बचा के रखें ताकि इस पृथ्वी पर जीवन बना रहे। तो इस लिहाज से पर्यावरण जो संरक्षण की बात है वो बहुत ही उचित है और हमें इसको जन जनमानस तक इसको पहुँचाना है ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को यह संपदा अच्छी रूप से दे सकें और हम जीवन इस पृथ्वी पर अच्छा जीवन जी सकें
7: जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बात करें हमारा जो प्रदेश है यानी या ग्वालियर है जो हमारा अपना शहर है, इस पर्टिकुलर स्थान के परिप्रेक्ष्य में क्या सबसे बड़ा चैलेंज आपको लगता है?
8: यदि आप शहर में कहीं भी निकलें, आप शहर की तरफ जाके देखें तो आपको अपने आप में ही दिखाई देगा कि कितने कूड़े के ढेर लगे हैं
7: जी,
8: कितना प्लास्टिक हर जगह है, पड़ा हुआ है। और प्लास्टिक एक ऐसा है कि उसको सालों तक पड़ा रहने के बाद भी वो डिकम्पोज नहीं होता, वो गलता नहीं, तो एक भारी समस्या। यदि हम म्यूनसिपल कमेटी का भी वर्णन करें तो उनके लिए भी एक शहरों में बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। और उसके साथ साथ उसमें क्या हो रहा है कि उसका शहर के इधर उधर भी फेंक देता है एक जनमानस, तो उससे जो है, जैसे आपने देखा गायें हैं, गायें उसको खा लेती हैं, तो यहाँ तक भी है कि गायों के पेट में कई बार कई कई किलो कचरा निकलता है और कई गायों की मौत भी हो जाती है, तो वो प्लास्टिक का सबसे बड़ा। और यहाँ तक भी पाया गया है कि अभी कुछ अनुसंधान हुए हैं, माइक्रोप्लास्टिक के नाम से है वो, जो हम प्लास्टिक की चीज़ों का यूज़ करते हैं, आज के दिन हमें दिखाई नहीं देता लेकिन हमारी बॉडी में वो आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा हो रहा है, उसके बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं हमारे स्वास्थ्य के ऊपर। तो वो प्लास्टिक जो है एक बहुत बड़ी, शहर में जो औद्योगिकरण का हो, शहरीकरण का हो, उसकी वजह से पर्यावरण को, एक उसके साथ शहरीकरण में और जो दूसरा बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ रही हैं उनसे भी हमारे पर्यावरण को बहुत सारा पोल्यूशन मिल रहा है। हमारे व्हीकल बहुत बढ़ गए हैं और व्हीकल बढ़ने के बाद उसके साथ साथ हमारा जो मेंटेनेंस है उसको भी एक आम जन उसको ठीक से नहीं रख रहा, वो भी एक पोल्यूशन का कारण बन रहा है। उससे जो व्हीकल ही में जो वायु प्रदूषण की बात कर रहे हैं तो वो भी एक खतरनाक स्तर पर पहुँच चुके हैं। और अभी मैं कहीं पढ़ रहा था तो अभी हिमालय पे जो बद्रीनाथ पे यात्री गए थे तो वो 288 टन प्लास्टिक का कचरा छोड़ के आए, तो उस कचरे को जो हमारा हिमालय जो हम कहते हैं वहाँ पर बहुत शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी है, यदि हम ऐसे उस उन क्षेत्रों में भी ऐसे प्लास्टिक छोड़ के आएंगे पर्यटन के हिसाब से हम, तो वो कितनी बड़ी भारी समस्या और

0: कितना पोल्यूशन वहाँ पे पैदा करेगा, ये एक सोचने का विषय है।
1: देखिए, आपने खुद बताया कि सरकार की नीतियाँ भी काम कर रही हैं, तो उनके समक्ष सबसे बड़ी क्या दिक्कत लगती है? जो नीतियाँ हैं इनमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, क्यों नहीं असर कर रही हैं
0: नीतियाँ? निसंदेह नीतियाँ बहुत अच्छी हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं पर्यावरण से संबंधित, बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें जब तक जन सहभागिता नहीं होगी तब तक हमारे वांछित जो परिणाम हैं वो हमें नहीं मिल पाएंगे। तो जन सहभागिता का, चाहे वो, अब प्लास्टिक का हम बार बार कह रहे हैं कि भाई प्लास्टिक आप यूज ना करें, ऐसा प्लास्टिक जो एक बार प्रयोग में लाने के बाद जिसको फेंकना पड़े उसको यूज ना करने की बात कह रहे हैं, लेकिन हम बाज़ार जाते हैं तो वही हमारी सब्जियां हम उसी प्लास्टिक की थैली में लेके आ रहे हैं। यदि हम घर से ही अपने कपड़े की थैली ले जाएं और उसमें हों तो काफ़ी हद तक एक इंडिविजुअल लेवल पे भी हम उसको बचा के रख सकते हैं। तो ये है, एक हम बार बार कह रहे हैं कि भाई आपने जो भी है ऊर्जा को बचा के रखना है, तो हम यदि हमें 10 कदम भी जाना है तो भी हम गाड़ी का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो उस तरह के छोटे छोटे जो प्रयास हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, और हर नागरिक को इसमें अपनी समझदारी दिखानी होगी, अपनी भागीदारी दिखानी होगी, तभी जाके वो स्केल अप हो पाएगा। अदरवाइज इसका जो हमारा उद्देश्य है, जो गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पॉलिसीज हैं अभी, उसमें जैसे अभी है कि भाई माँ के नाम एक पेड़ लगाओ, तो वो कितना अच्छा है, कितना हमारे जंगल, हालांकि बहुत उसमें पेड़ लगे हैं, लेकिन यदि हम ये बना लें कि भाई हमें हमारे हर जन्मदिन पर एक पेड़ लगाना है, तो हम यदि 70 साल भी जिए तो ज़िंदगी में हम 70 पेड़ एक आदमी लगाएगा, तो किससे उस अपना अपना पर्यावरण उससे सुधर जाएगा। तो उस तरह के कदम उठा के हम जो हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनको हम सफल बना सकते हैं।
1: तो ये ज़मीनी स्तर पर क्या लगता है आपको कि क्या समस्या है जिस कारण जो जनमानस है गंभीरता नहीं समझ रहा या शामिल नहीं होना चाहता उन प्रयासों में?
0: अवेयरनेस, बहुत सारी अवेयरनेस के प्रोग्राम किए जा रहे हैं, जैसे अभी मैं हमारे कृषि से संबंधित बताऊं तो हमारा एक है खेत बचाओ अभियान चल रहा है, 1 जून से 30 जून तक होगा, हम हरेक ज़िले में हरेक गांव में हरेक खेत पे प्रोग्राम कर रहे हैं कि ताकि आप जो हमारी मृदा है, हमारी भूमि है, उसकी उर्वरा शक्ति बनाए रखें, उसमें बहुत सारे हम जो केमिकल फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं वो कम से कम डालें, वो भी एक प्रदूषण का कारण बन रहा है। तो उसमें हर स्तर पर गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन क्या है कि हम कुछ हद तक किसान हमारा जैसे लालची है या जो यूज कर रहा है उसका मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे तो ज़्यादा पैदावार लेंगे, वो कल के बारे में या अपने स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोच रहा। अभी जैसे मैं पंजाब की बात बता रहा हूँ तो वहाँ पे कृषि में बहुत सारे केमिकल्स यूज कर रहे हैं, हम उनको एक सेफ लिमिट बताते हैं, उसके बाद भी वो सोचते हैं कि भाई हम ज़्यादा यूज करेंगे तो हमारे कीड़े अच्छी तरह से मरेंगे और पैदावार बढ़ेगी। तो वो एक हमारे अंदर नेशनलिटी की जो भावना है वो जब तक नहीं आएगी हर कोई इसको रिस्पॉन्सिबल नहीं कह सोचेगा, और शुरू से ही यदि हम अपने स्कूल में बच्चों को सिखाना शुरू कर दें कि भाई पर्यावरण के ये होंगे, कल ने हम इस स्तर पर नहीं चाहें कि हम उस स्तर पर पहुंच जाएं कि वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाए, तो उससे बचाव के लिए जन जागरूकता अभियान और हमारी हर किसी की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने की बहुत बड़ी ज़रूरत है।
1: आपने बड़ी अच्छी बात कही कि बच्चों, बचपन से ही लोगों को शामिल कर लेना चाहिए इन प्रयासों में और उनके अंदर ये एक समझ विकसित करनी चाहिए कि ये कितना ज़रूरी कदम है। डॉक्टर कौशिक, अब हमको बताइए कि पानी बचाने की बात करते हैं, सेव वाटर, और ज़मीन में पानी लौटाना जिसको रिचार्ज कहते हैं, इसके लिए ये लोग अपने स्तर पर क्या क्या कर सकते हैं?
0: अभी ये कहने को छोटी सी बात लगती है, लेकिन हम अपने घर से ही शुरू करके बहुत सारा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। हम सुबह उठते ही ब्रश करते हैं और उसमें हमारा नल, जब तक हम ब्रश करते हैं 10 मिनट 5 मिनट तो नल चलता रहता है, उसमें तकरीबन हम 1.5 लीटर, यदि घर में 5 आदमी तो 5-7 लीटर तो हम इसी तरह बर्बाद कर सकते हैं। तो हम हमारे बच्चों को या हम खुद अपनाएं कि भाई जब हमें ज़रूरत है तभी हम नल चलाएंगे। इसी तरह ही हम दाढ़ी बनाते हैं, सेव करते हैं, तो उस तरह हम मिसयूज़ कर रहे हैं। और इसी तरह से हमारे घर में जैसे अभी बारिश का पानी आ रहा है, खूब बारिश होगी तो कितना पानी हमारे व्यर्थ बह जाता है, और यहाँ तक कि हमारा जो सीवर सिस्टम है वो भी जवाब दे जाता है, सारे शहर में पानी पानी हो जाता है, हमें कितनी परेशानी का सामना करता है,
1: सड़कों में भी।
0: और इसमें अब ये है कि अपने घर का पानी आप घर में ही रख सकते हैं, उसको रिचार्ज कर सकते हैं, ऐसा सिस्टम है कि आपका पानी आएगा, उसको नीचे आप ले जाके छत से अपने नल के और उसमें भूमि में आपने लगा दिया, तो उससे जो हमारे एक समस्या आ रही है कि हमारा जल स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। तो यदि हमारे रेन वाटर को रिचार्ज कर लें हम, तो हमारा बहुत भारी पानी की बचाव होगी और आने वाले जनरेशन के लिए भी पानी मिल सकेगा। और इसी बात को आप यदि राजस्थान में जाके देखें तो कितना वो जहाँ पानी नहीं होता, सारे बारिश से वो पूरे साल भर का पानी इकट्ठा करके रख लेते हैं एक उसमें टैंक बावड़ी बोलते हैं वहाँ पे, तो उसमें आप जैसलमेर बाड़मेर जाएं तो आज के दिन भी आप पाएंगे कि वहाँ पे सारा पानी का संरक्षण ऐसे करते हैं, वहाँ पे कोई नदी नाला ट्यूबवेल हैंडपम्प नहीं है। तो ये वहाँ से हम सीख सकते हैं कि कैसे पानी की क्या महत्ता है और कैसे उनको बावड़ी बोलते हैं, उसमें ज़मीन में अंडरग्राउंड वो सार बारिश के पानी से, बहुत कम बारिश होती है उसके बावजूद भी वो पानी को उसमें सज के रखते हैं और उसको सारे साल उसी से काम चलाते हैं।
1: तो जो रिचार्ज करने का जो ही एक तरीका होता है, ये क्या बहुत महंगा है क्या घरों में बनवाना, छोटे शहरों में क्या ये समस्या है ऐसा करने में?
0: नहीं नहीं, बहुत ही ये कोई इस पर कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता, बिल्कुल आराम से तो कुछ पैसे में ही इसको कर सकते हैं। और मेरा तो कहना यही है कि हम घर अपना घर बनाएं तो उसमें ये इनबिल्ट, जैसे एक तो आप सोलर वाला जो टॉप ऊर्जा बचाने वाला और ये रिचार्ज वाला उसी टाइम यदि हम करवा लें तो ये हमारे पर्यावरण संरक्षण के लिए, जल और ऊर्जा के बचत के लिए बहुत बड़ा कदम हो सकता है।
1: और जो पहले से बने हुए घर हैं उनमें अगर ये रिचार्ज वाली फैसिलिटी कोई करवाना चाहे
0: तो हो सकती है, बिल्कुल आराम से, इसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, 5-7 हज़ार रुपये में घर में आराम से इसका हो जाएगा।
1: और भी कुछ आप कहना चाहेंगे पानी बचाने के लिए?
0: पानी के बारे में तो आपने सुना होगा कि जल ही जीवन है, जल बिन सब सून है। थर्ड वर्ल्ड वार होगा, तीसरा विश्व युद्ध होगा, वो जल के ऊपर ही लड़ा जाएगा। तो ये और एक स्वच्छ पानी बहुत प्राइम इम्पोर्टेंस है। और आपने अभी खबरों में भी देख रहे होंगे कुछ, जैसे कल झाबुआ का अपने मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे कैसे औरतें वहाँ पे किलो में कई किलोमीटर चल के और नीचे से पानी इकट्ठा कर रही हैं। तो ये अभी भी हम कहने को बहुत प्रोग्रेस कर गए हैं लेकिन बहुत कुछ करना है। और एक जो स्वच्छ जल एक आम आदमी को उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसका करना बहुत ज़रूरी है। और उसमें हम अकेली सरकार नहीं कर सकती, उसमें हम सबको मिल के अपने एकजुटता दिखा के एक एक बूंद बचा के, हम बूंद बूंद से ही सागर बढ़ता है। तो इस तरह की यदि हमारी मानसिकता होगी तो निश्चित रूप से हमारा जल बचत होगा।
1: वाटर हार्वेस्टिंग जैसे कदम?
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जैसे अभी कैंपस की बात करें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में, तो हमारा एक भी बूंद पानी हम व्यर्थ नहीं जाने देते, सारा छत का पानी हमारा एक तालाब है उसमें इकट्ठा कर लेते हैं, उसमें ही मछली पालन कर रहे हैं। तो इस तरह का करके सारा आप कर सकते हैं। जहाँ एकदम ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे हम जो नीचे का एरिया है उसमें पानी इकट्ठा कर लेते हैं। किसानों को भी ये सलाह देते हैं कि आप ज़्यादा पानी होता है तो आप अपने खेत में एक कुंड बना लें, एक तालाब बना लें और उसमें जब ज़्यादा पानी हो जाता है उसको इकट्ठा कर रहे हैं और जब बारिश नहीं हो तब उसको अपनी खेती में या दूसरे कार्यों के लिए प्रयोग में कर सकते हैं।
1: तो अगर ये व्यवस्था आपके विश्वविद्यालय में जाके कोई देखना चाहे तो जा सकते हैं वो?
0: हाँ, हाँ।
1: तो जो श्रोता हमें सुन रहे हैं वो इस बात को नोट कर सकते हैं, अगर इस तरह की व्यवस्था उन्हें देखना है प्रैक्टिकल तो वो राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में जाके वो देख सकते हैं। अच्छा सर, अब जंगल और जंगली जानवरों के विषय में थोड़ी सी हम बात करना चाहेंगे कि इनकी जो रक्षा है या इनका संरक्षण है इसमें स्थानीय लोगों का क्या रोल हो सकता है और क्या भूमिका एक्चुअली होनी चाहिए?
0: अभी आप आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे जो मैन वर्सेस एनिमल कन्फ्लिक्ट के बारे में, मानव और जानवरों के बीच में एक युद्ध हो रहा है। और इसका जो सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि हमारे जंगल कट रहे हैं और जंगलों को काट रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, और जो पशुओं के लिए जंगली जानवरों के लिए जो आश्रय था वो कम होता जा रहा है। तो इस वजह से वो जंगली एक फूड चेन है ये, हमारे जंगल नहीं होंगे तो उसमें जो छोटे जानवर नहीं होंगे, छोटे जानवरों को खा के बड़े जानवर खाएंगे, तो एक फूड चेन का जो सिस्टम है वो बहुत ज़रूरी है जीवन चक्र को चलाने के लिए। और वो हमारे लालच की वजह से, अंधाधुंध वनों की कटाई की वजह से वनों का क्षेत्र घट रहा है। और उसी वजह से यदि हम वर्षा की बात करें तो वर्षा भी कम हो रही है, यदि पेड़ पौधे कम होते हैं तो ये जानी मानी बात है कि उससे वर्षा भी कम होगी। तो तो वो सारी चीज़ें होने से हमारे जो जंगली जानवर हैं उनका जो नेचुरल हैबिटेट है

0: उनका जो ठिकाना है वो कम हो रहा है, और वो कम होने से उनके लिए वो शहरों की तरफ आ रहे हैं, और इसी वजह से आदमी और जानवरों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है वो बढ़ रहा है। तो सबसे ज़रूरी ये है कि हम हमारा जो वन क्षेत्रफल है उसको बढ़ाएं, तो उसके बढ़ने से हमारा जो वायुमंडल में जो हमारा ऑक्सीजन का लेवल है वो बढ़ेगा।
1: जंगलों को बचाने के अलावा भी ऐसा कोई उदाहरण है आपके अनुभव में जहां पर जंगली जानवरों को बचाने के कोई प्रयास किए गए नागरिकों द्वारा और वहां पे
0: नागरिकों,
1: सफलता मिली?
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बड़ा अच्छा उदाहरण यदि मैं कहूँ तो हम हिरण का ले सकते हैं, और जो एक कम्युनिटी है राजस्थान में,
1: जी
0: वो मतलब उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए, खेजड़ी एक पेड़ होता है, आंदोलन चलाया उन्होंने, पेड़ों नहीं कटने दिए, औरतें उन पेड़ों के चिपक गई,
1: चिपको आंदोलन,
0: हाँ चिपको आंदोलन, वैसे ही राजस्थान में भी हुआ। और इसी तरह हिरन वो जो है बिश्नोई एक समाज है
1: जी
0: जो वो इसके लिए जानवरों को बचाने के लिए, पेड़ों के बचाने के लिए बहुत बड़ा उन्होंने आंदोलन किया है, और आज भी वो पूजते हैं इन दोनों चीज़ों को। खेजड़ी जैसे अपने यहाँ पे आम की लकड़ी हवन वगैरह में यूज करते होंगे, तो वहाँ पे वो खेजड़ी का प्रयोग करते हैं सारे जो जितने भी हवन वगैरह या पवित्र जो
1: पवित्र कामों में जी
0: कार्य उसके लिए है। और बहुत सारे समाज ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे मैं उदयपुर का एक उदाहरण दूँ तो वहाँ एक तालाब है, और वो तालाब में मछलियाँ हैं, तो वहाँ मछलियाँ उस तालाब में कोई भी आप मछली उससे निकाल नहीं सकते, तो पूरा गांव उसके संरक्षण उन मछलियों का कर रहा है, तो उसमें से उस तालाब से कोई भी मछली आप निकाल के उनको भोजन डाल सकते हो आप, लेकिन उसमें से मछलियाँ निकाल नहीं सकते। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, कई जगह ऐसे जंगल में वो हैं बाबा के डेरे बोलते हैं वो उस टाइप के हैं, तो वहाँ पे भी बिल्कुल इनका पशुओं का जंगली जानवरों का जो शिकार है वो वर्जित है, आप सोच भी नहीं सकते वहाँ पे आप किसी पशु को मार सकते हैं। तो ऐसे ऐसे हमारे वो धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं,
1: जी
0: हमारे समाज से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा हमारा सामाजिक जीवन का हिस्सा है कि हमारे रीति रिवाज हैं जिनसे हम पशुओं को और पेड़ों को बचा के रखते हैं। अब जैसे पेड़ों को बचाने वाली बात आए, बहुत सारे ऐसे हैं जैसे हम पीपल का हिंदू बिल्कुल भी उसका नहीं करते, इसी तरह आंवला नौमी है एक, उस दिन आंवले की पेड़ की पूजा करते हैं। तो इस तरह बहुत सारे हमारे रीति रिवाज हैं जो हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं, लेकिन अब शहरीकरण से अर्बनाइजेशन से हम उन चीज़ों को भूल रहे हैं, और उसी के नतीजे हमें भुगतने पड़ रहे हैं कि ये हमें पर्यावरण की जो इतनी भारी समस्या आ रही है और प्रदूषण की बात आ रही है, तो वो आज के समय की सबसे बड़ी समस्याएं बनती जा रही हैं।
1: जी तो ऐसी परंपराएं या रीति रिवाज जो अल्टीमेटली हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं वो अच्छी हैं और उनको
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: अपनाए रहना चाहिए। लोगों के व्यवहार की हम चर्चा कर रहे हैं तो लोगों का व्यवहार इस तरह का हो जाए कि पर्यावरण संरक्षण में सहायता करे, तो जो अभी नहीं है आमतौर पर, तो ये व्यवहार को बदलने के लिए आपको क्या लगता है सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है?
0: इसमें सबसे जो जरूरी है वो है आपका बचपन से ही हम बच्चे को सहें। अभी मैंने देखा कि मैं एक दिन रेलवे स्टेशन पे था और वहाँ पे एक छोटा बच्चा है अपने उसके साथ, तो उसने वो जो है कुछ कचरा उसने कुछ खाया, तो वो मतलब उसको बेचैनी थी कि कहाँ पे इसको मैं डालूं, तो उसने वो ढूंढा कचरे का पेटी और वहाँ पे जाके उसने डाला। तो यदि ऐसे हमारे सारे बच्चे ऐसे हो जाएं तो वो एक ये है हमारे, क्या है कि हमने देखा कि एक कोने में कूड़ा पड़ा है तो हम भी वहीं डालते जाते हैं, ढेर का ढेर वहाँ लग जाता है, ये एक हमारा सोच है। यदि हम स्कूलों में कॉलेजों में भी अभी ये अवेयर कर रहे हैं कि भी ग्रीन कैंपस प्लास्टिक फ्री कैंपस, तो इस तरह के जो स्कूल लेवल से ही और जो उस तरह के हमारा एजुकेट करने की ज़रूरत है कि आप यहाँ। अभी दूसरा ये है कि अभी जैसे कई देशों में तो आप कचरे का फेंक देते हैं इधर उधर तो आप पे बहुत भारी जुर्माना भी लगता है, तो हमारे यहाँ वैसी व्यवस्था भी नहीं है, वो डर भी नहीं है। तो एक तो अपने आपकी खुद की जिम्मेवारी हो या आपको पनिशमेंट का डर हो तभी जाके कुछ चीज़ें सुधर सकती हैं।
1: हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी एक मिशन लाइफ का मूल मंत्र हम लोगों को दिया था,
0: हाँ
1: मिशन लाइफ जिसका अर्थ है कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इसके विषय में सर एक एक्सपर्ट के तौर पर हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा बताइए।
0: हमारे प्रधानमंत्री का 2021 में ग्लेक्सो में एक COP27 सम्मेलन हुआ था और उसमें उन्होंने दुनिया के सामने एक ये एजेंडा रखा था कि कैसे हम अपने पर्यावरण को अच्छा रख सकते हैं, और उन्होंने उसमें 7 बिंदुओं का जिक्र किया है जिसमें ऊर्जा की बचत की बात कही है। तो ऊर्जा की बचत हम घर से ही शुरू कर सकते हैं, हमारे जैसे हम जब कमरे से बाहर हैं तो लाइट ना जलाएं, पंखा बंद करके जाएं, तो उस तरह के छोटी छोटी चीज़ें हैं हमारे दैनिक जीवन से ही संबंधित हैं लेकिन हम उसमें बचा सकते हैं। अभी भी उन्होंने जैसे कहा है कि भाई सौर ऊर्जा वाली बात है उससे भी हम कर सकते हैं, और अभी कहा है कि अभी जैसे ईंधन की अब कमी हो रही है तो एक दिन आप गाड़ी का प्रयोग ना करें, और ऐसा ही प्रयोग हमने हमारी यूनिवर्सिटी में शुरू किया है। फ्राइडे के बुध शुक्रवार के दिन हमारे कोई भी व्हीकल नहीं चल रहा है सारे पूरी यूनिवर्सिटी में, तो ये इस तरह का है।
1: तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब ले रहे हैं?
0: हाँ, उससे आ रहे हैं। और दूसरा उसमें है पानी की बचत, दूसरा जो बिंदु कहा था पानी, जैसे अभी हमने जिक्र कर गए बहुत ज़रूरी, हमारा जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसमें भी हम अपनी दिनचर्या से पानी की काफ़ी बचत कर सकते हैं। और जैसे आपने अभी हमने जिक्र किया कैसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं
1: जी। या
0: प्लास्टिक एक बहुत भारी समस्या, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया, तो सिंगल यूज प्लास्टिक, और इसमें मैं श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि इस पहल में आज से ही हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये इसका कहा है कि हमें सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार, लेकिन उसमें क्या है कि अभी बैन है बहुत सारी जगह, फिर भी आप कहीं भी किसी सब्जी की दुकान पे जाके देखें और दूसरी दुकान पे वो उसी में दे रहे हैं, उसी में ले रहे हैं, चोरी छिपे कर रहे हैं, बहुत सारी जगह उनको पकड़ भी रहे हैं, फाइन भी लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी हम नहीं कर पा रहे। ये हमारा सीरियसनेस नहीं है या हमारा जो प्रयोग का तरीका है वो ठीक नहीं है। फिर उन्होंने एक बात कही सशक्त खाद्य प्रणाली, सस्टेनेबल फूड, तो जैसे हमारे जो हैं जितना जो हमारे आसपास में जो चीज़ें हो रही हैं वही हम प्रयोग में करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कम होगा उससे सस्टेन। और इसके साथ साथ एक हमने भी यूनिवर्सिटी में भी कहा है, बच्चों को भी एजुकेट कर रहे हैं, थाली में लें उतना ही व्यर्थ ना जाए नाली में,
1: उतना ही हो थाली में
0: व्यर्थ ना जाए नाली में, तो उस तरह की जो है एजुकेट स्कूल में कॉलेजेस में हम करें, तो अदरवाइज आप देखें ब्याह शादियों में हमारा कितना खाना व्यर्थ चला जाता है। तो दूसरा है उन्होंने कहा कि वेस्टेज जो है उसको कम करें, और उसमें सारा जो हमारा कचरा है उसमें 3 चीज़ें हम 3 R का कॉन्सेप्ट है, कम यूज़ करें, रिड्यूस द यूज, रीयूज करें, दोबारा उसको प्रयोग में ले आए चीज़ को, जैसे कपड़े की थैली आप बार बार यूज़ कर सकते हो उस तरह का करें, और रिसाइकल, फिर वो बिल्कुल फट जाए तो उसको दोबारा ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह 3 जो आर का जो कॉन्सेप्ट है उसको यदि हम कर लें तो भी हम बहुत सारा हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पर्यावरण संरक्षण में। एक दूसरा और जो हमारा आजकल देखा जो बड़ी भारी समस्या होने जा रही है ई वेस्टेज, इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो है वो भी नहीं डिकम्पोज होता, और वो बहुत ज़्यादा कुछ नए नए मॉडल आ रहे हैं, लोगों के पास पैसा हो गया, चाहे वो मोबाइल है, टेलीफोन, आपका कंप्यूटर है, आपका प्रिंटर है, तो उसको भी हम थोड़ा सा कम यूज़ करें, और उसको ख़राब है तो रिपेयर यदि करवा लें तो भी हम इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और एक अपना जो स्वस्थ जीवन शैली, ये जैसे अभी हमने थोड़ी सी दूर जाना है तब भी हम व्हीकल का यूज़ कर रहे हैं, तो यदि हम थोड़ा सा पैदल चलेंगे तो इवन जो हमारा डॉक्टर है, यदि आपको अपने अपना हृदय स्वस्थ रखना है तो पैदल चलिए, मॉर्निंग वॉक करिए, तो उस तरह का यदि हम चीज़ें करें तो ये तो इसके साथ हैं। इसके साथ साथ फिर उन्होंने अभी 2024 में एक और बात कही, एक पेड़ माँ के नाम, तो वो भी एक बहुत बड़ा चीज़ है पर्यावरण के संरक्षण में, तो उस तरह के भी प्लांटेशन हम करके भी पर्यावरण को। 5 जून को पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो उसमें विभिन्न कार्य होते हैं और एक जन साधारण को उससे पर्यावरण के बारे में जागरूक किया जाता है, तो इस तरह के प्रोग्राम भी इस पर्यावरण संरक्षण के बचाव में हमारे लिए कारगर सिद्ध हो सकते हैं। उसी तरह से हमारा जो है कृषि में भी हम सारे जितने भी केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं उनको भी कम से कम यूज करें और निर्धारित मात्रा में यूज करें, समय पर यूज करें, तो भी हम पर्यावरण को बचा सकते हैं कृषि से होने वाले नुकसान को। और साथ साथ जो एक हमारा और नया जो आ रहा है पर्यावरण के लिहाज से बहुत अच्छा हो सकता है वो है नेचुरल फार्मिंग, जो प्राकृतिक खेती की जो बात कर रहे हैं, यदि वो करेंगे तो हमारा वो भी एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा कृषि के उसमें और पर्यावरण में भी, उसमें हमारे स्वस्थ उत्पाद मिलेंगे और हमारी मिट्टी की उर्वरता

0: आसक्ति बनी रहेगी और हमारे पर्यावरण को भी उससे कोई नुकसान नहीं होगा।
1: मैं हमारे स्टूडियो में आके इतनी अच्छी जानकारी पर्यावरण संरक्षण और इसके विभिन्न पक्षों पर दिए के लिए आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन अंत में जाने के पहले, जैसे कि हमने आपको बताया कि 90 वर्ष आकाशवाणी के पूर्ण हो रहे हैं, आप अगर चाहें कोई अपनी पसंद का गीत हमारे श्रोताओं को सुनवाना तो हमें बता सकते हैं, तो वो गीत हम श्रोताओं को सुनवाएंगे और जाहिर तौर पर आपको भी सुनवाएंगे।
0: कोई भी कृषि से संबंधित कई
1: मेरे देश की धरती
0: वही
1: आप बोल नहीं रहे हैं तो मैंने बोल दी। तो चलिए हम श्रोताओं को सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल गुजरात के सूरत में 18,800 करोड़ रूपये से अधिक की सड़क, बिजली और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल दिल्ली के शकूर बस्ती डिपो में हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना की प्रगति की समीक्षा की, आधुनिक रखरखाव सुविधाओं का निरीक्षण। इसके बाद उन्होंने गुरुग्राम रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल भोपाल में कहा कि किसान लोन डिफॉल्टर ना हो, इसके लिए सहकारी सोसाइटियों की निर्धारित अवधि 31 मार्च से बढ़ाकर 31 मई किया गया। श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क में दशकों बाद दुर्लभ जंगली बिल्ली कैराकल की मौजूदगी कैमरे में ट्रैप हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि कुनो में समृद्ध हो रही जैव विविधता और वन्य जीव संरक्षण के प्रयासों का प्रमाण है। इंदौर में आज भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश फोरम की बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इस फोरम में 15 देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। और प्रदेश में मॉनसून से पहले प्री मॉनसून जमकर बरस रहा है। बीते 24 घंटों में 20 से अधिक जिलों में तेज बारिश के साथ आंधी हुई है। आज भी मौसम ऐसा ही बना रहेगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आइए सुनते हैं सूचनाओं और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तूलिका का नमस्कार। श्रोता साथियों, आज इस कार्यक्रम में हम आपको एक पॉडकास्ट सुनवाएंगे, उसका इंतज़ार कीजिए। लेकिन फिलहाल हम आपसे शुरुआत में बात करना चाहेंगे कि हम कैसे हो गए हैं, यानी हमारा सार्वजनिक व्यवहार कैसा हो गया है। दरअसल अभी दो दिन पहले मैं एक दुकान पर गई, शाम का समय था, अभी दुकान पर भीड़ नहीं हुई थी। बाहर जो चबूतरा था उस पर तीन लड़के बैठे हुए थे, उम्र यही कोई रही होगी 20-25 साल के बीच में। तीनों दोस्त लग रहे थे, पास पास में बैठे हुए थे, लेकिन तीनों अलग अलग काम कर रहे थे, आपस में बातचीत नहीं कर रहे थे। घर से निकले होंगे साथ के लिए, लेकिन तीनों अलग अलग काम कौन कौन से कर रहे थे मैं आपको बताती हूँ।

0: एक अपने मोबाइल में घुसा हुआ था, एक सिगरेट पी रहा था और एक इसी तरह की कोई दूसरी हरकत कर रहा था। मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कि वो क्या कर रहा था। इन तीनों को देखकर मुझे गांधी जी के तीन बंदर याद आए। तीनों साथ बैठे हैं लेकिन अलग अलग काम कर रहे हैं। साथ में बात करना कितना ज़रूरी है ये हम आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं। आप पूरे दिन अपने मोबाइल में घुसे रहिए और फिर शाम को देखिए आपके ऊपर एक आलस, एक डिप्रेशन छा जाएगा, सर भारी हो जाएगा, आपको किसी काम में मन नहीं लगेगा। लेकिन आप किसी सार्वजनिक जगह पर जाकर अपने मित्रों के साथ हंसी मजाक कर कर वापस आइए, आपको एक नई ताजगी महसूस होगी। बहुत सारे प्लान्स आप अपने दिमाग में सोचने लगेंगे कि अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है। बस यही अंतर होता है मोबाइल के साथ समय बिताने में और अपने दोस्तों के साथ समय बिताने में। तो दोस्तों के साथ समय ज़रूर बिताइए। लेकिन एक चीज़ और है, यदि हम मोबाइल की बात करें, क्योंकि हमारा ज़्यादा समय आजकल वहीं बीतता है, तो ये देखने में आ रहा है कि हम में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो ट्रोलर बनते जा रहे हैं। किसी को भी ट्रोल करना हॉबी होती जा रही है हम सब की। हमारी उंगलियां दूसरों के ऊपर उठी ही रहती हैं, ये क्या कर रहा है, वो ऐसे उसने क्यों कर दिया। अभी हाल ही में एक घटना सुनने में आई थी, राजस्थान की एक इन्फ्लुएंसर ने कैमरे के सामने जहर पी लिया क्योंकि उन्हें ट्रोल किया गया था। ये सब चीज़ें हो सकता है लाइक्स और व्यूज़ के लिए की जाती हों, लेकिन ट्रोल तो उसे किया ही गया था। मैं अक्सर किसी भी पोस्ट के, कोई भी सोशल मीडिया पर पोस्ट होती है, उसके कमेंट्स को देखना ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे लोगों को पढ़ना अच्छा लगता है। ज़्यादातर लोग जजमेंटल हुए पड़े होते हैं। आप किसी हीरो हीरोइन को देख लीजिए या किसी सामाजिक दूसरे प्रतिष्ठित व्यक्ति को देख लीजिए, उसके कामों की सराहना से ज़्यादा उसे लानतें दी जाती हैं। क्या ऐसे हम हो गए हैं? दरअसल हम ऐसे हो गए हैं या हमें ऐसा मंच मिला हुआ है? दरअसल मनुष्य की प्रकृति यही होती है कि जो भी हमसे थोड़ा ऊपर उठ गया हम उसे ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। जब तक वो हमें सामान्य दिखता रहता है हम सामान्य बने रहते हैं। इसे कहते हैं टॉल पॉपी सिंड्रोम। पॉपी मतलब जो पॉपी का फूल होता है, उसमें से यदि कोई बाकी पौधों से ऊपर निकल जाता है तो उसे काट देने की परंपरा रही है कि सब पौधे एक जैसे दिखें। यानी असाधारण होना एक दुर्गुण सा मान लिया जाता है। दरअसल असाधारण होना और दूसरों से अलग दिखना लोग स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए जो असाधारण होता है, दूसरों से अलग होता है, उसकी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो विनम्रता से रहे या ऐसी कोई हरकत नहीं करे जिससे जो पब्लिक है, जो मास है, जनसाधारण है, उसे आहत भाव महसूस हो। तो ये जो कोशिशें हैं सामान्य बनने की, सहयोगी बनने की या समझदार बनने की, ये हमेशा जारी रहनी चाहिए। हम भी अब एक समझदारी करेंगे कि फ़िलहाल हम चुप हो जाएंगे और बोलने देंगे इस गीत को, क्योंकि हमें पता है आप गीत का भी इंतज़ार कर रहे होंगे। तो चलिए, सुबह का समय है, थोड़ा सा अपने मूड को फ्रेश कीजिए और सुनिए ये गीत।
1: वो नहीं आने वाली, वो बेवफा, छलावट की।

0: गुड मॉर्निंग ग्वालियर में अब समय है पोस्ट पॉडकास्ट का, प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। आज इसकी चौथी कड़ी में हम आपको सुनवा रहे हैं मनोरमा नदी की सफाई का कार्य कर रहे जिला बस्ती के निवासी आकाश गुप्ता से बातचीत का प्रसारण।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ,
2: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए उत्तर प्रदेश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं अमित कुमार सिंह।
3: बस्ती के आकाश गुप्ता आज मेरे साथ हैं। इन्होंने अपने सात साथियों के साथ जो कर दिखाया उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में इनके नाम और इनके कार्यों की चर्चा करके आज इनको पूरे विश्व के पटल पे स्थापित किया, जिसकी प्रशंसा बस्ती ही नहीं पूरे देश में की जा रही है। आकाश गुप्ता जी जो बस्ती जनपद के लजघटा गाँव के निवासी है और ये छात्र है, इनके साथ जितने भी लोग उस अभियान में लगे हुए हैं सभी किसी न किसी विद्यालय में 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं के छात्र हैं। आकाश गुप्ता जी आपका स्वागत है।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: मनोरमा नदी सफाई अभियान को कब आपने शुरू किया और कहां से प्रेरणा मिली आपको?
4: हमने अपनी मनोरमा नदी की सफाई का अभियान 67 दिन पहले शुरू किया। जब हमने ये शुरू किया तो हमारी नदी इतनी गंदी थी कि उसमें कचड़ा और उसके बाद ढेर सारी पूजा की सामग्रियां उसमें पड़ी हुई। किसी के यहाँ पे कार्यक्रम होता था तो वे लोग आकर अपना जो भी बाद का सामान होता था उसमें लाके नदी में फेंक देते थे, जिस वजह से हमारी नदी का स्थिति ऐसा हो गया था कि उसमें कोई भी जानवर पानी पीता नहीं था क्योंकि उसकी हालात ही ऐसी थी और कोई भी आदमी उस वहां पर नहाता भी नहीं था। तो हमने सोचा कि आज से 10 साल पहले जब हमारी नदी इतनी साफ थी, जहां पर सब लोग नहाते थे, जानवर पानी पीते थे, आखिर आज के टाइम पे वो हाल क्यों नहीं? तो हम लोगों ने सोचा कि अगर ये हमारी नदी है तो इसे साफ करने का कर्तव्य भी हमारा है। तो हम लोगों ने 6 से 7 लोगों की टीम बनाई और अपनी नदी सफाई का अभियान शुरू किया। पहले दिन हमें नहीं लगा था कि हम लोग इस नदी को इतना आगे साफ कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने अपनी नदी का अभियान का सफाई जारी रखा और आज हमारी नदी कुछ ऐसी दिखने लगी है जहां पर जानवर आकर इसमें पानी भी पीते हैं और यहां पर लोग आकर नहाते भी हैं और हमारी बहुत प्रशंसाएं भी करते हैं।
3: आकाश जी, यह अभियान शुरू करने से पहले बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि इतने गंदी नदी है, आप कैसे इसको साफ करोगे, या आपका मनोबल भी एक बार कमजोर हुआ होगा कि मैं जो है कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैं ऐसी प्रेरणा आपको

0: और तुम्हारी मदद करके नदी की सफाई को आगे जारी रखेंगे।
1: आप जब उस समय नदी की स्थिति, उसकी हालात देखे तो कैसा लगा?
0: पहले के टाइम पे नदी की स्थिति बहुत ही खराब थी, तो हम लोग आते थे बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे हम सभी लोग, तो हम सोचते थे कि अगर हमारी नदी इतनी गंदी, हम लोग अगर यहाँ बैठते हैं, यहाँ बदबू आ रही है, तो इसको साफ करके हम लोग यहाँ पर सुकून से बैठेंगे। तो हम लोगों ने इसकी सफाई का काम शुरू किया और इसको साफ किया।
1: करीब 2 महीने चले इस अभियान में, सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या मिली?
0: सबसे बड़ी चुनौती ये रही हमारी नदी में कि हम लोगों ने इसको साफ पूरा किया, 30 से 40 दिन तक हमने इसको लगातार साफ किया, लेकिन फिर 10 दिनों के अंदर इसके अंदर काइया जमा होने लगी और वो काइया धीरे धीरे सड़ने लगी, और जिससे बहुत ज्यादा समस्या हमें होने लगी। फिर उसको साफ किया हम लोगों ने, और उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे कि आकर वो पूजा की सामग्रियां वापस उसमें डाल रहे थे। उसके बाद इसके अंदर से बहुत सारी कांच की बोतल्स, और वो भी टूटे फूटे हालात में मिले। बहुत सारे हमारे टीम मेंबर्स का हाथ कट गया, पैर कट गया, और यही सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि लोग आते हैं, कचरा फेंक जाते हैं, उसके बाद सहयोग भी नहीं करते, उसको साफ भी नहीं करते।
1: इस अभियान में गांव के लोग और भी लोगों का क्या सहयोग रहा?
0: गांव के लोग आते थे, हमें कहते थे कि हाँ तुम अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अभी तक कोई भी गांव वाला हमारे साथ नदी में नहीं है। अब आप सोच सकते हैं, कहने की बात अलग होती है, करने की बात अलग होती है। अगर आप हमारे साथ में चलकर नदी की सफाई करते हैं, तब तो हम मानेंगे आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम साथी लोग जब से शुरू किए हैं तब से अभी तक काम कर रहे हैं।
1: क्या इस अभियान में जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का कोई सहयोग आपके साथ रहा?
0: हमने एक वीडियो बनाई थी योगी जी को लेकर कि हम लोग अपनी मनोरमा नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने इसको शेयर किया, जिस वजह से हमारी एक दिन में वीडियोस 1 करोड़ लोगों ने देख लिया, और योगी जी ने उसको वीडियो देखा भी। और योगी जी से पहले मोदी जी ने मन की बात में हमारी जिक्र किया कि मैं और मेरे 7 लोगों की टीम ने मिलकर अपनी मनोरमा नदी की सफाई का पहल किया है।
1: सफाई अभियान के बाद अब तक मनोरमा नदी को आप देखते हैं तो क्या लगता है?
0: सफाई के बाद मनोरमा नदी हमारी इतनी साफ लगती है कि ये तो एक जैसे लगता है कि चमत्कार टाइप का, लेकिन ये चमत्कार नहीं, ये हमारी इन 67 से 68 दिनों की मेहनत है जो कि हमने लगातार की है।
1: आपको अभी क्या लगता है, इसमें और कुछ करने की जरूरत है?
0: जी, अभी हमारा काम तो जारी रहेगा, जब तक कि हम लोग अपनी मनोरमा नदी का पूरा गाँव का हिस्सा जब तक साफ नहीं कर लेते, तब तक तो हमारा काम जारी रहेगा, उसके आगे भी सोचेंगे। लेकिन हम चाहेंगे इसमें हमारी सरकार भी मदद करे, क्योंकि हम कुछ युवाओं के बस का ये पूरा नदी साफ करना नहीं है।
1: जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात में आपका नाम लिए तो आपको कैसा महसूस हुआ?
0: हम लोग उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के छोटे से गांव लजघटा में रहते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक पटल पे हम लोगों की बात की, हमारे नाम का जिक्र किया, हमारी टीम का जिक्र किया, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारी सफाई का अभियान भी अब लोग देख रहे हैं।
1: इसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा सराहना मिलने के बाद आप पर, आपकी टीम पर क्या प्रभाव पड़ा? ऐसा भी आपको लगता है कि ये जिम्मेदारियां और बढ़ गई?
0: हाँ, जिम्मेदारियां अब बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि अब जो हम लोग सफाई का काम करते थे 2 से 3 घंटा, अब हम लोगों ने ट्राई किया है कि उसको और बढ़ाने का, और हम लोग अब धीरे धीरे और नदी को और आगे बढ़ते हुए साफ कर रहे हैं। और लक्ष्य तो यही है कि जितना हो सके हम लोग नदी को साफ रखे, जिससे कि जानवरों को और आम आदमी को परेशानी ना हो।
1: आज देश में पर्यावरण संरक्षण और पुनर्जीवन को लेकर काम करने वाले युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: हम यही कहना चाहेंगे, जो भी नेचर ने हमें दिया है वैसे ही हमको उसको संतुलित रखना है, कि चाहे वो नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे नहर हो, चाहे झरना हो, आप लोग उसको ऐसे सुरक्षित रखिए कि उसमें गंदगी ना फैले, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हमारे तकलीफ ना हो।
1: आकाश जी, आपने जिस तरह से साबित किया कि बदलाव के लिए बड़े पद या बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं बल्कि इरादों की जरूरत है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी यह कहानी अपने गांव, शहर, पर्यावरण के लिए कुछ सकारात्मक करने की प्रेरणा देगी।
0: अगर आपको कोई भी काम करना है, तो उसके लिए आपको बड़ी मशीन या फिर कोई बड़े यंत्र की जरूरत नहीं है। आप अपने हाथों से पहले ट्राई कीजिए उसको साफ करने का। जब आप अपने हाथों से साफ करेंगे, थोड़ा बहुत हिस्सा साफ होगा, फिर आपका मन करेगा कुछ और ट्राई किया जाए। धीरे धीरे आप लोग और आगे तक सफाई करें। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास सिर्फ हाथ और पैर थे, हम लोगों ने उसी से स्टार्ट किया है। उसके बाद हम लोगों ने ट्राई किया उसमें नाव बनाने का, जिसमें हम लोग थोड़ा नाव बना भी गए थे लेकिन बीच में टूट गया। ऐसे ऐसे हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को ट्राई किया, तब जाके हमारी नदी इतनी साफ हो पाई। क्योंकि आप लोग जब किसी चीज को स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे उसकी आगे की रास्ताएं खुलते जाएंगे।
1: क्या ये आपको उपकरण से, जिसकी चर्चा मन की बात में मोदी जी ने किया, ये युवा जो है पर्यावरण या जल संरक्षण को लेकर के जागरूक है, इनके पास फावड़ा और जाल और ये ग्लव्स लेकर के ये नदी के सफाई अभियान को कर रहे हैं, क्या इस सफाई अभियान में आपको किसी ने कोई किसी तरह का सहयोग किया उसमें?
0: हम लोग जब वीडियो डालते गए, उसके बाद लोगों ने इतना सपोर्ट किया, हमने उसमें अपना QR डाला जिसमें लोगों ने काफी सपोर्ट दिया, जिससे हम लोगों ने बूट्स मंगाए, ग्लव्स मंगाए और बहुत सारी चीजों को मंगाए, और बहुत सारे लोग हमारे एड्रेस पे कुछ सामान भी भेज देते हैं जिससे हमारी मदद हो जाती है। तो ऐसे ही हमारा काम चलता रहा।
1: आपने कहा कि जब से हमने इस अभियान को शुरू किया तब से हम लोगों ने YouTube, Instagram और Facebook के माध्यम से बहुत सारे लोगों को

0: और इस अभियान को और सफल बनाने के लिए, नदी के सफाई के लिए हमने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया और हमसे बहुत सारे लोग जुड़े। कितने लोग इससे प्रेरित हुए?
1: जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे तो जीरो फॉलोअर थे, लेकिन अभी के टाइम पे अगर बात की जाए तो हमारे इंस्टाग्राम पे 63,000 फॉलोअर हो चुके हैं, फेसबुक पे 50,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं और यूट्यूब पे 10,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों का सपोर्ट हमारे साथ रहा, लोगों ने हमें काफी ज्यादा सपोर्ट किया जिससे हम लोग आज इतना ज्यादा सफल हो पाए।
0: आप जिस तरह यह कार्य करके यह साबित किए, बदलाव के लिए बड़े इरादों की जरूरत है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। आकाश जी, इसके बाद आपका क्या मिशन होगा?
1: अभी जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो हम लोग नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में बरसात का मौसम आने वाला है तो नदी का पानी काफी ज्यादा रहेगा जिसके अंदर हल्के उसको सफाई नहीं की जा सकेगी। तो हम लोग कोशिश करेंगे नदी के किनारे का जितना भी फील्ड है उसको हम लोग वृक्षारोपण करेंगे, जितना हो सके पीपल, बरगद, पाकड़, जामुन ये सब पेड़ बैठाएंगे।
0: इंस्टाग्राम और फेसबुक के तहत लोगों को जोड़ करके क्या लगता है आपको कि क्या इससे लोग आपसे जुड़ रहे हैं? क्या इससे आगे और भी आपको काम करने के लिए और भी लोगों का साथ मिलेगा?
1: निश्चित सी बात है सब लोगों का सपोर्ट मिलेगा, और जब तक ये नदी सफाई नहीं होगी पूरी तब तक ये काम चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर वृक्षारोपण भी होगा, हमारी नदी का अभी घाट भी बनना है, हमारी नदी पर अभी जहाँ बरगद का पेड़ है वहाँ चबूतरा भी बनना है, और जब तक ये बन नहीं जाएगा तब तक ये कार्य चलता रहेगा। जब हमने इसको पहले दिन से स्टार्ट किया था तब से लेकर अभी तक हमें काफी ज्यादा लोग जानने लगे हैं, जैसे कि अभी विधायक जी ने कल परसों में आकर हमारे साथ मिलकर नदी की सफाई किया, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि अब ये अभियान जो है हमारा बहुत आगे तक जाने वाला है और साफ सफाई का काम तो चलता रहेगा।
0: समाज में कुछ नया करने का आपने एक प्रयास किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बातचीत। संवाद का संचालन कर रहे थे अमित कुमार सिंह। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: अभी आपने ये पॉडकास्ट सुना, इसमें जिला बस्ती के निवासी आकाश गुप्ता से बातचीत आपको सुनवाई गई। आपने देखा कि किस तरह से आकाश और उसके मित्रों ने मिलकर अपने क्षेत्र की एक नदी की पूरी सफाई कर दी, और बहुत ज़्यादा समय उन्हें नहीं लगा। प्रयास ज़रूर अथक रहे होंगे, अभी आगे भी वो लगातार प्रयास करते रहेंगे उस नदी को बनाए रखने की, बचाए रखने की। ये हम सब के लिए एक प्रेरणा है कि किस तरह हम अपने क्षेत्र की प्राकृतिक धरोहरों की रक्षा कर सकते हैं।

गुड मॉर्निंग ग्वालियर कार्यक्रम में तुलिका एक बार फिर आपके साथ है। श्रोता साथियों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। एक खबर आज अखबार में पढ़ने को मिली कि बलिया का प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार यानी सुरहा ताल अब वैश्विक मानचित्र पर चमकेगा। प्रवासी पक्षियों की चहचहाट और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विख्यात सुरहा ताल को देश के 100वें रामसर स्थल का दर्जा मिला है। तो ये रामसर स्थल क्या होता है? दरअसल ये वेटलैंड्स होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वे आर्द्रभूमियाँ जिन्हें वैश्विक स्तर पर संरक्षित और महत्वपूर्ण घोषित किया गया है। अब ये जो वेटलैंड्स हैं उनमें झील, दलदल, नदियाँ, मैंग्रोव ये सब आते हैं। हिंदुस्तान में सुंदरबन भी रामसर स्थल है, चिल्का झील भी, और हमारे शिवपुरी का साख्य सागर झील भी। इस तरह से कुल 99 रामसर स्थल थे हिंदुस्तान में। ये जो सुरहा ताल है ये अब 100वां रामसर स्थल बना है। प्रवासी पक्षियों के लिए ये जो जगहें हैं ये बेहद आवश्यक हैं और इन चीज़ों को संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रकृति और मनुष्य की गतिविधियों के बीच में जो संतुलन है वो ऐसे ही स्थल बनाते हैं। अभी इस गीत से पहले हमने एक पॉडकास्ट भी सुना था, आकाश गुप्ता से जो बातचीत हुई थी वो भी बहुत प्रभावी बातचीत थी। बहुत प्रेरणा मिलेगी उन चीज़ों को सुन करके हमें। श्रोता साथियों, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं। एक गीत और इंतज़ार कर रहा है आपका।

अभी आप सुन रहे थे सूचनाओं और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं अब्दुल हमीद खान का सरंगी वादन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं महेश विशोपिया। आइए सुनते हैं अब्दुल हमीद खान का सरंगी पर बजाया राग मियां की तोड़ी।

0: अभी आप सुन रहे थे अब्दुल हमीद खान का सारंगी पर बजाया राग मियां की तोड़ी। तबले पर संगत कर रहे थे महेश विशोपिया। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। 10 बजने को है। जिले की चिट्ठी अब भोपाल से होगी।
1: रहे हैं, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। यह आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है खरगोन जिले की चिट्ठी। आलेख आशुतोष पुरोहित, वाचन स्वर दीपा सिंह। खरगोन जिला इन दिनों विकास, नवाचार और जन कल्याण के कई नए आयाम स्थापित कर रहा है। इसकी झलक उस समय देखने को मिली जब जलूद में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 271 करोड़ रुपए की लागत से बने 60 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण किया। ग्रीन बॉन्ड और जन भागीदारी मॉडल से तैयार ये देश का पहला सोलर प्लांट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके बाद मुख्यमंत्री महेश्वर पहुंचे। यहाँ मुख्यमंत्री ने लोकमाता अहिल्या देवी होलकर की जन्म त्रिशताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित गोदा से नर्मदा जल यात्रा के समापन समारोह में शिरकत की। विकास योजनाओं के साथ मुख्यमंत्री ने किसानों की चिंता को भी प्राथमिकता दी। मंडलेश्वर क्षेत्र के कतर गांव में उन्होंने गेहूं उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण किया। किसानों से सीधा संवाद कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिले में विकास कार्यों की इसी गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रभारी मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक, विभिन्न विभागों की योजनाओं और परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, जनजातीय क्षेत्रों के विकास और किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। वहीं दूसरी ओर खरगोन ने जल संरक्षण के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जलगंगा संवर्धन अभियान में जिले ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। जिले में 7188 जल संरचना कार्य किए गए हैं, जिनसे लगभग 617 करोड़ लीटर वर्षा का जल संग्रहण की संभावना बनी है। कलेक्टर भव्या मित्तल ने इसे प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की साझा भागीदारी का परिणाम बताया है। जल संरक्षण के अलावा भारत सरकार के नीति आयोग के दिसंबर डेल्टा रैंकिंग में झिरन्या विकासखंड ने मध्य भारत जोन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। शिक्षा और तकनीक की बात करें तो खरगोन यहाँ भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। झिरन्या के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में स्थापित अत्याधुनिक स्पेस लैब का लोकार्पण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस स्पेस लैब से जनजातीय विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान, रोबोटिक्स और आधुनिक तकनीकों का व्यवहारिक ज्ञान मिलेगा। नवाचार की यही सोच अब पर्यावरण संरक्षण में भी दिखाई दे रही है। खरगोन नगर पालिका ने मंदिरों से निकलने वाले फूलों के कचरों से अगरबत्ती बनाने की अनूठी पहल शुरू की है। प्रतिदिन एकत्र किए जाने वाले फूलों से तैयार अगरबत्ती को कुंदा नाम दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण के इसी संकल्प के साथ विश्व पर्यावरण दिवस पर जिले भर में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मेहरजा स्थित निधिवन परिसर में पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर जिले में मनरेगा के माध्यम से 3 लाख से अधिक पौधों का हरित क्षेत्र विकसित करने का संकल्प लिया गया। आबाद खेती की आगामी खरीफ सीजन को देखते हुए जिले में कृषि रथ अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके माध्यम से किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और विभागीय योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। आगामी खरीफ सीजन को देखते हुए प्रशासन ने किसानों के लिए पर्याप्त खाद उपलब्ध कराई है। जिले में यूरिया, डीएपी, एनपीके, पोटाश और एसएसपी उर्वरकों का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित किया गया है। साथ ही ई विकास पोर्टल के माध्यम से खाद बुकिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। ग्रामीण विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कलेक्टर भव्या मित्तल लगातार समीक्षा कर रही हैं। मंत्री का प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन और पेयजल योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने समय सीमा और गुणवत्ता के साथ कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। प्रशासन की सक्रियता मत्स्य पालकों तक भी पहुंच रही है। जिले में रात्रि मछुआ चौपाल की अभिनव पहल शुरू की गई है। ग्राम दिचला में आयोजित चौपाल में मत्स्य पालकों को केज कल्चर बीमा योजना और मध्य प्रदेश एकीकृत मत्स्य उद्योग नीति की जानकारी दी गई। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज खरगोन में आयोजित युवा संगम रोजगार मेले में 174 युवाओं का प्राथमिक चयन हुआ। इस दौरान युवाओं को स्वरोजगार और प्रशिक्षण योजनाओं की जानकारी भी दी गई। वहीं जिले की सांस्कृतिक धरोहर को भी नई ऊर्जा मिल रही है। देवी अहिल्याबाई की नगरी महेश्वर में नगर गौरव दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कलेक्टर ने महेश्वर, मंडलेश्वर, कसरावद और पड़वा सहित नर्मदा नदी के घाटों पर बिना सुरक्षा मानकों के नाव संचालन और वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे खरगोन जिले की चिट्ठी, आलेख आशुतोष पुरोहित का, वाचिका दीपा सिंह। ये प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से किया जा रहा था। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।
1: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ। इस कार्यक्रम में पेट के विकार और होम्योपैथी उपचार विषय पर डॉक्टर राजेश उपाध्याय से बात कर रही हैं आभा गुप्ता।
2: श्रोताओं नमस्कार, एक बार फिर से लेकर हम हाजिर हैं साप्ताहिक कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ, और आज का हमारा विषय है पेट के विकार और होम्योपैथी उपचार। जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश उपाध्याय, होम्योपैथ। श्रोताओं, पेट से आशय हमारे पाचन संस्थान से है। अगर वो दुरुस्त है तो निश्चित रूप से हम पेट के बहुत सारे विकारों से बचे रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अमूमन किसी न किसी पेट के विकार से व्यक्ति परेशान रहता है और इस वजह से उसकी पूरी दिनचर्या जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। डॉक्टर साहब नमस्कार।
3: नमस्ते मैडम।
2: तो हम सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो सबसे कॉमन विकार है पेट का, उसमें सबसे ज्यादा लोग परेशान रहते हैं हर उम्र के, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे प्रौढ़ हो या युवा हो, वो है गैस की समस्या या एसिडिटी की समस्या।
3: सही बोला आपने। मैं यहाँ से बात चालू करूँ तो ठीक रहेगा। कोई आदमी 17 साल जीता है
2: जी,
3: तो वो अपने 17 साल की आयु में करीब करीब 100 टन भोजन कर लेता है।
2: बिल्कुल।
3: तो इस भोजन को पचाने के लिए उसको एक कुछ दिनचर्या से निकलना है चाहिए, लेकिन जब वो नहीं हो पाती तो गैस्ट्राइटिस करके एक बड़ा कॉमन डिसीज हो गई है कि हमको गैसेज बनने लगती है, पेट फूलने लगता है, डकार आ रही है, इस तरह के विकार थोड़े थोड़े से चालू हो जाते हैं। और हमारा मानव स्वभाव ऐसा है कि हम छोटी मोटी चीज़ों को एकदम गंभीरता से नहीं लेते, और इसको एक स्थिति ऐसी होने लगती है कि हम इस डिसीज को सहन करते करते करते उसमें कई बार पेप्टिक अल्सर हो जाता है, कई बार गैस्ट्राइटिस हो जाता है, कई बार गैस और जलन और उसकी वजह से हमारी पित्ताशय में भी बहुत पथरियाँ हो जाती हैं। तो निश्चित रूप से जो गैस्ट्राइटिस करके या गैसेज हम मानते हैं सामान्य भाषा में, उसको निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं को गंभीरता से लेना चाहिए और नियमित दिनचर्या रहे। अगर प्रातः उठता है आदमी, अपना एक्सरसाइज करता है, खाने के मामले में आज हम और आप सभी जानते हैं कि दूषित पानी बहुत है, दूषित सब्जियां बहुत हैं, दूषित वायु बहुत है।
2: बिल्कुल सही बात है।
3: और ऐसी स्थिति में इन तीनों चीज़ों से लड़ने के लिए कुछ हमारे नियम बताए गए हैं
2: जी। तो एक आइडियल जो दिनचर्या होती है वो प्रैक्टिकली संभव नहीं है अपनाना उसे। कई बार जो पढ़ाई करते हैं युवा, वो रात भर जागते भी हैं। कई नौकरियां ऐसी हैं जिसमें नाइट शिफ्ट में काम करना होता है, तो वो लोग खासकर ग्रस्त रहते हैं एसिडिटी से, गैस की समस्या से। अच्छा, और ये पेट के विकार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं।
3: जी सही बोला आपने।
2: तो इसके लिए आपने बताया कि आदर्श दिनचर्या होनी चाहिए, लेकिन वो दिनचर्या कैसी होना चाहिए, और यदि इससे ग्रस्त है तो होम्योपैथी में इसके लिए क्या उपचार है?
3: पहली बात तो होम्योपैथी में बहुत अच्छा उपचार है इस सब के लिए।

0: जैसे कि अगर सपोज करो कोई युवा है और अपनी पढ़ाई कर रहा है या युवा कोई नौकरी कर रहा है और ऐसी स्थिति में उसको जॉब का भी स्ट्रेस है और मानसिक अपने कष्ट अलग होते हैं
1: जी।
0: दोनों ही चीज़ों से आज गैस्ट्राइटिस बहुत तेजी में बढ़ने लगी है
1: जी।
0: और उस गैस्ट्राइटिस की वजह से फिर सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस बहुत हो जाते हैं। आपने अभी कहा कि बच्चे रात को बहुत देर तक पढ़ते हैं तो सुबह उतना जल्दी उठते नहीं है और फिर एक कॉमन है जिसको हम कब्जियत के रूप में या कॉन्स्टिपेशन के रूप में जानते हैं वो आ जाता है। जब ऐसी स्थिति डेवलप होती है तो हम निवेदन करते हैं अपने लोगों से कि पानी की मात्रा ज़्यादा पीना चाहिए और पानी अगर ज़्यादा पिएगा तो पाचन क्रिया शुद्ध होती है और संभव हो कि अगर प्रातः मतलब आदमी कोई खुली हवा में घूमने नहीं जा पा रहा तो 30 से 45 मिनट कहीं पर भी कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए।
1: यानी ऐसे कमरे में वो व्यायाम कर सकते हैं जिसमें खिड़कियाँ खुली हो, हवा का आदान प्रदान होता हो।
0: निश्चित रूप से, निश्चित रूप से वो भी करने से, कम से कम नहीं करने से तो ज़्यादा अच्छा होता है।
1: बिल्कुल, कुछ नहीं तो कुछ सही। और यदि फिर भी समस्या से ग्रस्त होते हैं तो उसके लिए क्या उपचार होम्योपैथी पद्धति में है, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब इस कार्यक्रम का नाम है सेहत की बात तरानों के साथ, तो अब तरानों का सिलसिला भी हम शुरू कर देते हैं। श्रोता उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं गीत सुनने का।
0: तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पहला गीत ए मेरी जोहरी जबी,
1: ए मेरी जोहरा जबी।
0: जी हाँ
1: जी, वक्त फिल्म का ये गीत है, सदाबहार गीत है
0: जी।
1: जी, मन्ना डे ने इसे गाया है और बलराज सहानी जी पर ये फिल्माया गया है। बहुत पॉपुलर गीत है और बहुत पसंद
0: मुझे है, बहुत ही रुचिकर लगता है
1: जी। तो आइए श्रोताओं, डॉक्टर साहब की पसंद का ये पहला गीत फिल्म वक्त से सुनते हैं।

0: तो हम बात कर रहे थे कि जो कब्ज की समस्या रहती है गैस की, एसिडिटी की, ये एक दूसरे से अमूमन जुड़े हुए हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: तो कब्ज की समस्या जो रहती है वो तो छोटे छोटे बच्चों को भी आजकल रहती है।
1: बिल्कुल सही बोला।
0: तो इसमें खान पान आहार विहार दोनों ही इसकी वजह होते हैं।
1: मैं बहुत छोटे बच्चों से चालू करूँ, अब तो 10 साल तक के बच्चों का, तो आज बच्चे उठते ही स्कूल के लिए तैयार किया जाता है और उनको स्कूल भेज दिया जाता है। अगर स्कूल की बस 7 बजे आ रही है तो वो 6:30 बजे उठते हैं, तो उस वजह से उनका जो सुबह का निवृत्त होने का कार्यक्रम होता है वो नहीं हो पाता
0: जी।
1: तो अधिकतर बच्चे इस वजह से कब्जियत में नहीं रहते कि उनको कब्ज है, वो उनके दिनचर्या डिस्टर्ब होने की वजह से आती है
0: या उनकी अपनी आदतें जिम्मेदार होती है।
1: या हम आपने अभी बताया था कि बच्चे जो रात को लेट पढ़ते हैं, सुबह लेट उठते हैं, तो वही। तो मैं ऐसे लोगों से यही कहूंगा कि उठते ही थोड़ा पानी पी लिया जाए और मिर्च मसाले का भोजन नहीं किया जाए, और निश्चित रूप से अगर उसके बावजूद भी ये बीमारी होती है तो होम्योपैथी में किसी योग चिकित्सक को दिखाकर उनका बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट हो सकता है और ना ही उसके कोई कॉम्प्लिकेशन होते, लेकिन आपको किसी पढ़े लिखे डॉक्टर से ही संपर्क करना चाहिए।
0: जी, अगर वो इस समस्या से लगातार परेशान रहते हैं और अपनी दिनचर्या बदलने से, आहार बदलने से, खान पान बदलने से भी समस्या से निजात नहीं मिल रही है,
1: जी जी,
0: तो वो होम्योपैथी की दवा ले सकते हैं। हर उम्र के व्यक्ति ये दवा ले सकते हैं,
1: कोई भी, निश्चित रूप से बच्चों से लेके बुजुर्ग तक का। अब कब्जियत की बात चल रही है तो मैं आपको बताना चाहूँ कि एक बहुत कॉमन बीमारी हो गई है जिसको कि हमें हेमोराइड या बवासीर के नाम से जानते हैं, वो एक्चुअली बीमारी नहीं है, वो कॉन्सिक्वेंसेज हैं। ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है जिन लोगों को, तो हमारा हेमोराइड वेन में प्रेशर आता है और वो उनसे ब्लीडिंग होने लगता
0: है, या फिशर की समस्या से
1: फिशर में अगर क्रैक्स आ जाते हैं तो वो। तो ये कब्जियत की वजह से दो और बीमारी हमको मिलती हैं। तो निश्चित रूप से अगर हम थोड़ा सा अपना दिनचर्या में उसमें रखते हैं ध्यान या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशन आते ही नहीं है।
0: तो किस तरह की दवा होती है जो रोगी को लेना चाहिए
1: इस सब समस्या के लिए? होम्योपैथी में बहुत सारी अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत दवाएं हैं, उपयुक्त तो डॉक्टर है, हर शहर में उपलब्ध हैं, तो निश्चित रूप से आपको इसके लिए किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से ही संपर्क करना चाहिए।
0: अच्छा, होम्योपैथी के बारे में एक बात कही जाती है कि ये दवाएँ काफ़ी लंबे समय तक लेनी पड़ती हैं, तो क्या इनके साइड इफेक्ट या पोस्ट इफेक्ट नहीं होते हैं कुछ?
1: नहीं, ऐसा है कि अधिकतर लोगों के साथ ये है, समझ, जैसे आपने बताया कि आज भौतिक युग है, बहुत है, काम का स्ट्रेस है, समय कम है, तो प्रत्येक आदमी ये सोचता है कि मैं इसको एकदम ठीक करूं, तो वो कोई होम्योपैथी के पास जाता है। लेकिन जब अधिकतर जो होम्योपैथिक पेशेंट्स आते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होके ही आते हैं, बहुत अपने डिसीज को क्रॉनिक कर लेते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि उनको दवा ज़्यादा लगती है। लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जब करीब करीब 35 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जहाँ एक्यूट केसेस होते हैं, सपोज करो एकदम किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया है, एकदम गैस्ट्राइटिस हो गई है, या एकदम पेट का कोई विकार आ गया है, तो वो निश्चित रूप से बहुत कम समय में होम्योपैथिक दवाओं से ठीक हो सकते हैं, बस अर्थे मर्ज ज़्यादा दिनों पुराना नहीं हो तो।
0: अच्छा, तो दवा जीवन काल में पूरे में लेना होगी ऐसी कोई
1: जरूरत नहीं, ऐसा थोड़ी होता है कि होम्योपैथी लिए तो हम लाइफ लॉन्ग होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे।
0: इस दवा का कुछ विपरीत प्रभाव शरीर पर पड़ता है क्या?
1: मैं मानता हूँ कि कोई भी मेडिसिन जब एक्ट करती है तो वो रिएक्ट भी कर सकती है।
0: बिल्कुल।
1: तो चिकित्सक और मरीज दोनों को ही ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको डॉक्टर की बात पूरी तरह से मानना चाहिए। एक चीज, कई बार पेशेंट बाहर के होते हैं, हम लोग दवा लिख देते हैं तो वो मेडिसिन का दुरुपयोग करते रहते हैं, जब इच्छा होती है खाते हैं, पूरे डोजेस नहीं लेते, तो निश्चित रूप से उसका जितना असर होना चाहिए वो तो नहीं होता, उसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं।
0: हालांकि बच्चे तो होम्योपैथी की दवाएं बड़े शौक से खाते हैं क्योंकि मीठी मीठी गोलियां होती हैं।
1: जी हां, जी हां, जी हां।
0: तो बच्चे भी इस दवा को ले सकते हैं,
1: 5 दिन के बच्चे से लेके हम कितने भी बुजुर्ग तक को दवा देते हैं।
0: अच्छा, होम्योपैथी पद्धति में एक बात और कही जाती है जो मैंने सुनी है कि इन दवाओं को लेते वक्त खान पान का खास ध्यान रखा जाता है, सुगंधित जो पदार्थ हैं वो नहीं खाने चाहिए, जैसे लहसुन है या हींग है, तो इनका कुछ परहेज होता
1: क्या,
0: है
1: क्या है कि हमारे इधर बहुत सारी भ्रांतियाँ हो गई हैं। जैसे कि मैं इस तरह से कहूँ कि 34 एक नाम है हमारे शहर में, जबकि वो 34 था, बात का बतंगड़ जिसको बोलते हैं वैसा। अच्छा, हो जाता है ऐसा ही होम्योपैथी के साथ,
0: राई का पहाड़ बन जाता।
1: हाँ जी, होम्योपैथी के साथ भी ऐसे ही हो गया कि बहुत सारे परहेज होते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि अगर सपोज करो कोई पेशेंट होम्योपैथी की दवा ले रहा है, या कोई मेल या फीमेल, अगर उसका पार्टनर, लाइफ पार्टनर कोई भी परफ्यूम लगा के आता है, तो क्या होम्योपैथी का असर खत्म हो जाएगा? ये भ्रांति है पहली बात तो। लेकिन कई तरह से बात बन गई है, इसलिए लोगों को मैं आपको लोगों को बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथी में हर मर्ज के लिए अपने अपने जो स्पेसिफिक परहेज हैं, सपोज करो किसी को गैस्ट्राइटिस हो गई, छाती में जलन हो रही है, इसोफेगस में जलन हो रही है, तो हम भी कहेंगे और एलोपैथिक डॉक्टर भी या कोई भी चिकित्सक ये कहेगा चाय या मिर्च मसाले का परहेज किया जाए,
0: खान पान का कुछ परहेज तो बताया जाता है।
1: लेकिन यूनिवर्सल परहेज चाय, कॉफी या लहसुन प्याज बंद करना या परफ्यूम बंद करना, ऐसा कहीं हमारी होम्योपैथी में लिखा भी नहीं है, ना साइंटिफिक फील्ड में इसको कभी दर्जा दिया गया है।

0: तो एक युवा को या एक टीनेज बच्चों को
1: जी हाँ
0: क्या खान पान लेना चाहिए, किस तरह का आहार करना चाहिए जिससे कि उन समस्याओं से आगे चलकर ग्रस्त ही ना हो।
1: जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि आजकल टॉक्सिक फूड्स बहुत आ रहे हैं।
0: जी
1: जैसे कि आज हम देखते हैं कि कहीं अगर हम मॉल में जा रहे हैं या किसी होटल में देख रहे हैं तो वो कोल्ड ड्रिंक्स के साथ
0: फास्ट फूड का चलन,
1: फास्ट फूड ले रहे हैं। दूसरी बात, कॉफ़ी चाय का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया। तीसरी बात, अल्कोहल का भी प्रचलन बहुत हो गया। इन सब चीज़ों की वजह से हमारे जो पाचन तंत्र है उनके बहुत सारे अंग इफेक्टेड हो रहे हैं। उसमें लीवर एब्सेस हो रहा है, लीवर फैटी लीवर हो रहा है, सिरोसिस ऑफ लीवर तक डिसीज जाती है। ऐसे ही गॉल ब्लैडर में भी डैमेज हो रहा है। इसलिए मैं अपने युवाओं से ये निवेदन करूँगा कि आप अपने पाचन तंत्र को और अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो इन चीज़ों से बचा जाए।
0: बिल्कुल, और रेशेदार जो
1: पदार्थ
0: हैं उनको आहार में शामिल करना चाहिए।
1: जी हाँ, कम मिर्च मसाले का भोजन करना चाहिए।
0: श्रोताओं, बात थोड़ी सी गंभीर हो चली है क्योंकि किसी बीमारी के बारे में हमें बात करनी है, उससे बचाव की बात करनी है, तो कुछ गंभीर बातें भी करनी होती हैं। ये बातें हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन अभी माहौल को थोड़ा हल्का करती हैं एक गीत के साथ। डॉक्टर साहब, अगला गीत हम आपकी पसंद का कौन सा सुनवाएं?
1: लागा चुनरी में दाग
0: छुटाऊं कैसे।
1: जी
0: बड़ा दार्शनिक गीत है फिल्म दिल ही तो का ये गीत है। लगता है मन्ना डे खास पसंद के गायक कलाकार हैं। ये भी उन्होंने ही गाया है और शास्त्रीय संगीत का टच है इस गीत में। शास्त्रीय संगीत के ऊपर आधारित है ये गीत और हमारे श्रोताओं को भी बेहद पसंद आएगा। आइए श्रोताओं, सुनते हैं ये गीत।

0: Dim tana na dir tana num tana na dere na dim tana na dir tana num tana na dere na dim tana na dir tana num tana na dere na dim tana na dir tana num tana dere na dim tana na dir tana
1: dir tana. श्रोताओं, गीत आपने सुना, आपने आनंद लिया गीत का। आइए फिर से हम आ जाते हैं अपने विषय पर। आप आकाशवाणी ग्वालियर से इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ। आज का हमारा विषय है पेट के विकार और होम्योपैथी उपचार। और जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं होम्योपैथ डॉक्टर राजेश उपाध्याय। डॉक्टर साहब से हम बात कर रहे थे पेट के विकारों की, इसमें खासकर जो बहुत कॉमन जो बीमारियाँ हैं उसमें गैस, अपच, एसिडिटी, ये सब। तो कहते हैं कि एसिडिटी यदि लंबे समय तक रहे तो अल्सर में बदल जाती है।
2: जी, पेप्टिक गैस्ट्रिक अल्सर में कन्वर्ट हो जाती है
1: जी।
2: और मैं आपको ये श्रोताओं को जानकारी देना चाहूँगा कि पेट के विकार में हमारे पेट में काफ़ी तंत्र होते हैं, जैसे इंटेस्टाइन होती हैं, गॉल ब्लैडर होता है, किडनी होता है और लीवर होता है। इन सभी को अगर हमको स्वस्थ रखना है तो हमारी एक दिनचर्या, जैसा कि हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, आज हम युवाओं में देखते हैं कि वो अपने पढ़ाई की वजह से या अपने जॉब की वजह से पानी पी ही नहीं पा रहे हैं।
1: बिल्कुल, और तो गर्मियों में पानी की जगह वो कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करेंगे,
2: तो उस वजह से किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं, इनको हम रीनल कैलकुलाई बोलते हैं। और जब रीनल कैलकुलाई होता है तो एक्यूट पेनफुल कंडीशंस होती हैं, कई बार मल्टीपल रीनल कैलकुलाई का मतलब होता है दोनों किडनियों में पथरियां हो गई। तो निश्चित रूप से इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, और बेसिकली ये सर्जिकल डिसीज है, लेकिन रीनल कैलकुलाई को हम होम्योपैथिक मेडिसिन से बहुत अच्छी तरह से निकाल भी देते हैं,
1: अगर कि बिना किसी चीर फाड़ के।
2: वह सरते हैं उनकी साइज, मतलब एक 3-5 mm तक होती है, तो बड़े होम्योपैथिक दवाओं से निकल जाती है।
1: अगर किडनी में स्टोन की समस्या से कोई परेशान है तो होम्योपैथी में बिना सर्जरी के उसका उपचार संभव है।
2: जी हाँ, जी,
1: लेकिन दवा लंबे समय तक लेनी पड़ती होगी।
2: निश्चित है, सर्जिकल प्रोसीजर 5-20 days का होता है, और होम्योपैथिक मेडिसिन से अगर आपको निकालना, और छोटी स्टोन्स को एलोपैथिक डॉक्टर या सर्जन भी ये सजेस्ट नहीं करते कि इमीडिएट उनको सर्जरी की जाए।
1: जी बिल्कुल। अच्छा, स्टोन की बात आपने की, तो आजकल जो बहुत ज़्यादा केसेस देखने में आते हैं गॉल ब्लैडर या पित्ताशय में पथरी देखने में ज़्यादा आती है, तो एलोपैथी में तो उसका उपचार एकमात्र यही है कि पूरा गॉल ब्लैडर या पित्ताशय ही रिमूव कर देते हैं, निकाल देते हैं शरीर से। तो होम्योपैथी में इसका कुछ अलग से उपचार है?
2: मैं आपको, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, बेसिकली ये हमारा जो आज का विषय है उससे जुड़ा हुआ ही है
1: जी।
2: अगर हम बहुत दिनों तक गैस्ट्राइटिस से पीड़ित रहते हैं, बहुत दिनों तक हम कब्जियत से पीड़ित रहते हैं, तो हमारा जो पित्त फॉर्मेशन है वो कम हो जाता है, और हमारे गॉल ब्लैडर को में वो पित्त जमने लगता है, क्योंकि वहां पर वो इकट्ठा हो जाता है और वो पथरी के रूप में कन्वर्ट हो। अगर स्मॉल साइज की पथरी है स्टार्टिंग में ही हमको पता पड़ जाता है, क्योंकि गॉल ब्लैडर की पथरी में कई बार ये देखने में आता है कि इनमें पेन कम होता है।
1: हाँ, पता नहीं चलता छुपी रहती
2: है। तो अधिकतर जब मरीज हमारे पास आते हैं तो वो मल्टीपल स्टोन्स के आते हैं, बहुत ज्यादा पथरी हो जाती है, तो उस स्थिति में हम उनको सजेस्ट ये करते हैं कि सर्जिकल इंटरफेरेंस कराया। लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही हमारे पास आते हैं तो हम उसको वहीं के वहीं डिजोल्व भी करने के लायक होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं।
1: अच्छा, एक बार वो डिजोल्व हो जाती है, घुल जाती है,
2: वह सरते उनकी साइज बहुत कम हो और स्टार्टिंग में ही किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास पहुंच जाए, तो
1: दोबारा होने की आशंका तो नहीं रहती?
2: दोबारा तो रीनल कैलकुलाई भी जब ऑपरेशन करते हैं तो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपको इस सब के लिए अगर कैलकुलाई हुई है तो एक नियम, जैसे गॉल ब्लैडर निकाल भी देते हैं सर्जन, उसके बावजूद भी एक नियमित संयमित भोजन लेना ही पड़ेगा।
1: यानी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, आहार विहार का ध्यान रखना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, पानी भरपूर पीना चाहिए, और खाने में संतुलित भोजन लेना चाहिए,
2: मिर्च मसाले, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स का अवॉइड करना चाहिए।
1: तो पेट के विकार की हम बात कर रहे हैं तो खान पान की बात तो होगी श्रोताओं, तो स्वाद का ध्यान रखते हैं, साथ साथ स्वास्थ्य का ध्यान यदि रखना है तो थोड़ा सा हमें उस खाने की ओर, उस भोजन की ओर भी ध्यान देना होगा जो कि जिसमें स्वाद कम है लेकिन स्वास्थ्य है।
2: जी जी जी।
1: कहते हैं कि जो कच्ची चीजें होती हैं सलाद वगैरह, उसे खाने से भी ये कुछ लोगों को समस्या ज्यादा होती है।
2: मैं आपने बहुत अच्छा प्रश्न,
1: एसिडिटी की
2: जी हाँ जी,
1: या पेट में जलन की।
2: हाँ हाँ, आज जैसे ग्वालियर शहर है या ग्वालियर जैसे अन्य शहर है लाइक दिल्ली भी है, तो जहाँ पानी होता है जिस तरह का, जिसमें सब्जियां उगाई जा रही हैं, बहुत ज़्यादा उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग खाद डाला जा रहा है, तो मैं अपने दर्शकों से निवेदन करूँगा, मैं अपने रोगियों से भी ये निवेदन करता हूँ कि सलाद को जब भी खाना है तो बॉईल करके खाया जाए।
1: जी बिल्कुल।
2: और अगर हम बॉईल करके खाते हैं तो उनका जो उसमें जो खाद डाला जाता है वो, और उनके पास जो डेवलपमेंट हो जाता है उसकी वजह से बीमारियाँ होती हैं, क्योंकि हम बाकी के जो भोजन पदार्थ हैं उसको हम कुकर में उबाल लेते हैं।
1: बिल्कुल सही।
2: और टमाटर, खीरा, मूली, इनको हम उबाल कर नहीं खाते तो ये दूषित होते हैं और इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां आ जा रही हैं। और विशेष रूप से पेट के विकार तो सलाद से बहुत आ रहे हैं। तो सबसे अच्छा एक तरीका है कि हम सलाद को उबाल लिया जाए,
1: बॉइल्ड कर सकते हैं
2: एटलीस्ट।
1: बिल्कुल।
2: और सब्जियां, गृहणियों से निवेदन करूंगा कि कोई भी सब्जी जब मार्केट से आती है तो उसको दो बार कम से कम पानी में साफ करके ही बनाया जाए।
1: बिल्कुल, अच्छी तरह उसको धोना चाहिए, छीलना चाहिए।
2: जी हाँ जी।
1: और हाफ बॉइल्ड सलाद यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो वो अच्छी बात है, सेहत के लिए ठीक रहेगा।
2: जी हाँ।
1: आपने अल्सर की बात की, किडनी में स्टोन और पित्ताशय में स्टोन या पथरी की बात की, और हम कुछ और बातें करेंगे पेट के विकारों से संबंधित, लेकिन अब हमारे श्रोताओं को सुनना है एक गीत, और वो भी आपकी पसंद का।
2: धन्यवाद। पाकीजा का एक गीत है, चलते चलते
1: कोई मिल गया था, मुझे बहुत हिट गीत और लोकप्रिय गीत है। आइए श्रोताओं, डॉक्टर साहब की पसंद का फिल्म पाकीजा का ये गीत आप सुनते हैं।

0: गीत हमारे श्रोताओं ने सुना, निश्चित रूप से उन्हें पसंद आया होगा। और ये बात भी बिल्कुल सच है डॉक्टर साहब कि यदि तनावग्रस्त व्यक्ति रहता है तो वो एसिडिटी से ज़्यादा परेशान रहता, ऐसा क्या संबंध है दिमाग और पेट में?
1: एक्चुअली जैसे कि हम हमारे इधर कहा था कि जड़ में पानी डालो तो फूल अच्छे होते हैं,
0: बिल्कुल।
1: और अगर ऊपर वाले ने पेट नहीं बनाया तो शायद मानव किसी काम का ही नहीं होता, निश्चित रूप से। तो पाचन तंत्र से हमारे पूरे शरीर का निश्चित वो है। आजकल इरिटेबल बॉबल सिंड्रोम करके एक डिसीज हुई है, वो सिर्फ इसीलिए होता है कि हम बहुत स्ट्रेस में हैं,
0: बिल्कुल।
1: स्ट्रेस किसी भी तरह का हो सकता है, हो सकता है कि छोटी सी बात से गृहिणी ने देखा कि उसकी भाई ने ढंग से काम नहीं किया और दो मिनट के लिए वो स्ट्रेस हो गई, तो ये स्ट्रेस भी आपके आंतों को, आपकी गैस्ट्राइटिस को, आपके हार्ट बर्निंग को सभी सेंटर बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले मैं ये निवेदन करूंगा कि युवा से लेके बुजुर्ग तक को उसको कुछ ना कुछ मेडिटेशन करना चाहिए जिससे कि वो स्ट्रेस लेस हो। कुछ नहीं कर पा रहे तो हम अपने ऑफिस में ही 2 से 3 मिनट के लिए बीच बीच में पॉज कर सकते हैं 1 घंटे में, और हम कुछ भी ध्यान कर सकते हैं। आपके सामने घड़ी है तो आप उसको 1-2 सेकंड तक देखेंगे, इसमें भी स्ट्रेस लेस हो जाएंगे,
0: बिल्कुल।
1: और जब हम बहुत स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारे हाइपर एसिडिटी, हमारे को सीक्रेशंस बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। जब सीक्रेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं और बाई चांस आप खाली पेट होते हैं तो हमको अल्सर के फॉर्मेशन की चांसेस बढ़ते हैं,
0: बिल्कुल। तो इसके लिए खुश रहिए श्रोताओं, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए,
1: बहुत सही बात।
0: एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आजकल जो लोग हैं बैठकर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, खासकर कंप्यूटर के सामने, चाहे ऑफिस हो चाहे घर हो, तो सिटिंग जब बहुत लंबी होती है तो उससे भी पेट की समस्याएं या पेट के विकार पैदा होते हैं?
1: सिटिंग नेचुरल है कि सेडेंटरी लाइफ हम जिसको बोलते हैं कि जब बच्चे इस तरह के या कोई भी काम इस तरह से सिटिंग लॉन्ग कर रहा है तो फूड भी हो अधिकतर उनको, जैसे मेट्रो सिटीज में है कि वो सुबह 9 बजे जाते हैं और रात को 10 बजे आते हैं,

0: तो जो भी खाना बाहर का ही खाते हैं, तो ऐसे दो चीज़ें हो जाती हैं। ऐसी कंडीशन में हम ये कहेंगे कि आप अगर छोटे छोटे से कार्यक्रम, जैसे अगर आपको पानी पीना है, आपको कहीं बाहर जाना है, तो आप बार बार घंटे में, एक घंटे में दो, कम से कम 5 मिनट के लिए जरूर वॉक करिए, ब्रेक लीजिए और थोड़ा सा मूवमेंट करिए।
1: अगर टीवी देख रहे हैं तो भी आप ब्रेक लीजिए,
0: तो पाचन तंत्र के साथ साथ आपके जो घुटने हैं, बाकी के एक्सरसाइज, उन सबकी भी हो जाएगी। तो बचना तो पड़ेगा और कुछ ना कुछ प्रयास करना चाहिए कि हमको कैसे बच सकते हैं इससे।
1: जी, होम्योपैथी की दवाओं के बारे में आपने बताया कि ये बहुत आसान है, खाना लेना बच्चे भी खा सकते हैं, बुजुर्ग भी खा सकते हैं। तो होम्योपैथी के बारे में मैंने सुना है कि कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो बीमारी से बचाव के लिए ही खाई जाती हैं, यानी कि एसिडिटी से आप ग्रस्त नहीं है लेकिन आपकी दिनचर्या ऐसी है कि आपको शंका है, तो क्या इन दवाओं को लिया जा सकता है?
0: नहीं, आपने प्रश्न सही किया, लेकिन प्रिवेंटिव मेडिसिन इस तरह की पेट के विकार के लिए किसी पैथी में उपलब्ध नहीं है, पहली बात
1: जी।
0: तो मैं श्रोताओं से यही निवेदन करूंगा कि प्रिवेंटिव जो चीज़ है वो कुछ एक्सरसाइज है, अगर आपको इनसे बचना है
1: जी।
0: और खान पान अगर आप थोड़ा सा कम मिर्च मसाले का रखते हैं तो उससे बड़ा प्रिवेंशन कोई भी नहीं है। तो इस तरह के मेडिसिन तो उपलब्ध नहीं होती कि इनसे बचने, गैस्ट्राइटिस से बचने के लिए।
1: अपनी जो दिनचर्या है उसे संभालिए, उसे दुरुस्त रखिए, उस पर ध्यान ना देते हुए दवाओं पे आश्रित ना रहिए। दवाएं आप तभी लीजिए जब आप
0: बीमार हो,
1: बिल्कुल किसी विकार से ग्रस्त हो और वो विकार आपकी दिनचर्या या आहार विहार से काबू में नहीं आ रहा हो। जी बिल्कुल, हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें जानी, दवाओं के बारे में जाना, इसके अलावा ये जाना कि दिनचर्या कैसी होना चाहिए ताकि पेट के विकारों से बचा जा सके। डॉक्टर साहब, कुछ और बातें हम आपसे आगे करेंगे, अब समय हो रहा है कि अपने श्रोताओं को हम एक और गीत सुनवाए।
0: सजन रे झूठ मत बोलो,
1: खुदा के पास जाना है। जी, तीसरी कसम फिल्म का एक गीत है, मुकेश की आवाज में है और ये गीत भी बड़ा पॉपुलर गीत है, उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भी बेहद पसंद आएगा। आइए सुनते हैं।

0: श्रोताओं, गीत आपने सुनना पसंद आया होगा उम्मीद करते हैं, और इस समय आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश उपाध्याय जो होम्योपैथ हैं, और आज का हमारा विषय है पेट के विकार और होम्योपैथी उपचार। डॉक्टर साहब, अशुद्ध पानी बहुत सारी बीमारियों की जड़ होता है, खासकर पेट की बीमारियों के लिए, तो इस बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: अशुद्ध पानी से सबसे पहले तो मैं बताऊं कि एमोवाइसिस एक बहुत कॉमन डिसीज है जो वो उससे होती है। दूसरी बात है पीलिया बहुत कॉमन हो गया है, तो अब हर घर में आरओ या इस तरह का चीज़ फिल्टर लगाना मुश्किल भी है। तो मैं ये निवेदन करूँगा कि कम से कम पानी को 10 मिनट तक उबाल कर पिए पहले।
0: अच्छा,
1: और अगर पानी के रोगों से बचना है तो सबसे पहला एक ही उपचार यही है कि हम पानी को उबाल के पिए, तो शुद्ध पानी का पीने का प्रयास करें। कहीं भी बाहर जाते हैं तो कहीं का पानी ना पिया जाए,
0: बिल्कुल अपने साथ बॉटल लेकर जाएं,
1: ऐसा करना चाहिए। और अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से एमोबाइसिस, जॉइंटिस, टाइफाइड, ये बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो दूषित पानी की वजह से होती हैं, दूषित भोजन की वजह से होती हैं, उनसे हम बच सकते हैं।
0: और स्ट्रीट फूड जो होता है गली में खोमचे वाले जो होते हैं, वो जो खाने में हालांकि बड़े स्वादिष्ट होते हैं लेकिन उससे भी कई बीमारियां होती हैं।
1: खुला भोजन कहीं का भी हो, चाहे वो स्ट्रीट का हो या मॉल का हो या होटल का हो, मैं निवेदन करूंगा आपसे कि उनसे तो बचना ही चाहिए, क्योंकि इंसेक्टिसाइड्स उन पर बैठते हैं और वो अपना दूषित करते हैं और वो हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही दुष्परिणाम करते हैं।
0: बिल्कुल, तो खुद बचिए और अपने बच्चों को भी बचाइए। बच्चों से हम तभी कह सकते हैं जब हम खुद इस बात का ध्यान रखें। एक सवाल मेरे जहन में अभी अभी आया है कि सलाद की आपने बात की कि हाफ बॉइल्ड सलाद खाना चाहिए ताकि कई सारे जो कीटनाशक उस पर छिड़के गए हों या और कोई भी कीटाणु हों तो उनसे बचा जा सके और संक्रमण से बचा जा सके। तो हरे धनिए की जो चटनी बनाई जाती है वो भी बड़े स्वाद से खाई जाती है, तो उसमें भी क्या ध्यान रखना चाहिए बनाते समय?
1: आज हमारे साथ दुर्भाग्य है कि हमारा पेट उस लायक नहीं है जो आज से हम 70 साल 80 साल पहले,
0: बिल्कुल सही।
1: तो मैं निवेदन तो यही करूंगा ऐसी चीजों से बचना चाहिए अगर आपको पेट के विकार से बचना है तो।
0: अच्छा,
1: उस सब के बावजूद भी मैं दूसरी बात ये कहूंगा कि आप कच्चा सलाद खा सकते हैं, बाड़े पर खड़े होकर आप मूली में नींबू लगाकर भी खा सकते हैं, वह सरते आपकी अगर दिनचर्या बढ़िया हो, आपको कुछ भी पचाना हो, कुछ भी खाना है, तो एक सामान्य जो दिनचर्या होती है कि प्रातः थोड़ा सा जल्दी उठा जाए, कम से कम 45 से 55 मिनट तक वॉक किया जाए, एक्सरसाइज किया जाए, योगा किया जाए, कोई गेम खेला जाए, ये अपनी चॉइस के ऊपर निर्भर करता है, और कम मिर्च मसाले का भोजन खाया जाए, फास्ट फूड नहीं खाया जाए, और मानसिक शांति के साथ जिया जाए।
0: बिल्कुल, और सप्ताह में एक आध बार आप जीव के साथ भी दोस्ताना निभा सकते हैं।
1: जी हाँ, जी हाँ, बशर्ते आप अपने को सेहतमंद रखते हैं तो।
0: बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने जो बात बताई है श्रोताओं चलते चलते वो यही बात है कि आप व्यायाम करिए, आहार का ध्यान रखिए, पूरी नींद लीजिए, खूब पानी पीजिए, और व्यस्त रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। यही कुछ पंक्तियां हैं जिसमें जीवन का सार छिपा हुआ है। और डॉक्टर साहब, क्या हमारे इस कार्यक्रम में जो भी डॉक्टर आते हैं वो यही बातें कहते हैं, बीमारी कोई भी हो उससे बचने का तरीका लपतुला है।
1: हाँ, इलाज से पहले अगर बचाव हो तो वो सबसे ज्यादा।
0: बिल्कुल सही बात है, उपचार तो बात की बात होती है। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और पेट के विकार और होम्योपैथी उपचार, इस बारे में आपने श्रोताओं को विस्तार से जानकारी दी। खास बात यह है कि ये भी बताया कि किस तरह बीमारियों से बचा जा सकता है, किस तरह की हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, और बहुत सुरीले से गीतों के साथ।
1: धन्यवाद।
0: उम्मीद है कि हमारे श्रोता ध्यान रखेंगे, गीत याद करेंगे तो उन्हें आपकी बातें भी याद आएंगी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। तो श्रोताओं, अब इसके साथ ही आज का कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ हम समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम सेहत की बात तरानो के साथ। पेट के विकार और होम्योपैथी उपचार, डॉक्टर राजेश उपाध्याय से इस विषय पर बात कर रही थी आभा गुप्ता। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। सबसे पहले मुकेश को सुनते हैं, फिल्म है जागते रहो।
1: Amazing how you see the pop just glide through, and like I said, this comes a whole lot drier. The technology that was used in making my perfume juicer, which is like

ही कहा क्या जिंदगी खाब है, खाब में झूठ क्या और भला सच है क्या।

0: सच है क्या सब सच।
1: और आइए अब आपको सुनवाते हैं मुकेश का गाया फिल्म तीसरी कसम का ये गीत।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से होगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमन में कल शाम लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की एक श्रृंखला का शुभारंभ किया। इंदौर में आज भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार निवेश फोरम 2026 की बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। प्रदेश में आज मेगा अपार आईटी दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान प्रत्येक विद्यालय में

0: सभी विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाई जा रही है। ये आईडी विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों का स्थायी डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने में सहायक होगी। सीबीएसई ने 12वीं के अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। छात्र अब रविवार मध्य रात्रि तक आवेदन कर सकेंगे। प्रदेश राज्य वित्त आयोग आज नर्मदापुरम संभाग की समीक्षा करेगा, जिसमें संबंधित जिलों के कलेक्टर्स, नगरपालिका अधिकारी और अन्य अधिकारी उपस्थित रहेंगे। भोपाल के ग्लोबल स्कूल पार्क में 3 दिवसीय साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 400 से अधिक विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। भोपाल के मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में आज शाम 6:30 बजे से महुआ महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन शुरू किया जा रहा है। महोत्सव के पहले दिन राजा लोहांगुड़ी नृत्य नाट्य का आयोजन होगा और भारत और अफगानिस्तान के बीच आज क्रिकेट टेस्ट मैच बुलंदपुर नई चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। शुभमन गिल भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। आज का कार्यक्रम सुनीता सिंह की प्रस्तुति है।
1: नमस्कार, बात आपकी गीत हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, मैं सुनीता सिंह। ये जो बरसता बादल है, ये जो हहराता सागर है, धरती है धरती है, ये जो घनी छांव है, ये जो नदी बहाव है, ये जो असीम ठहराव है, ये जो सुंदर रचाव है, धरती है धरती है। ये जो जल एक दर्पण है, ये जो हवा में सरगम है, ये जो जल में कलकल है, ये जो नभ में हलचल है, धरती है धरती है। ये जो नील गगन में लाली है, ये जो झूमते परिंदों की टोली है, ये जो बागों में कोयल सी बोली है, ये जो शरद में पावन दिवाली है, ये जो वसंत में बहुरंग होली है, धरती है धरती है। तो आज समय की इसी पुकार को सुनते हुए हमने तय किया कि बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में आप हमें बताएं कि पर्यावरण प्रदूषण को लेकर आपकी क्या चिंताएं हैं, क्या सोचते हैं आप इस विषय पर, और पर्यावरण बचाने के लिए वो एक छोटा सा संकल्प कौन सा है जिसे आप आज से अपने जीवन में अपनाने का वचन देंगे। बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, अपना परिचय दीजिए।
2: दीदी नमस्ते।
1: नमस्ते,
2: भागचंद साहू जी, राजेंद्र नगर, गंज वासुदा, जिला विदिशा।
1: भागचंद साहू जी कैसे हैं?
2: बहुत बढ़िया है दीदी, आप ठीक हैं?
1: हम भी बहुत अच्छे हैं।
2: और
1: हम...
2: मौसम कैसा है भोपाल का फिलहाल? अभी
1: मौसम भी बढ़िया है बादल छा गए हैं तो गर्मी से कुछ निजात है जी, हालांकि बहुत तूफान की वजह से, आंधी पानी की वजह से बहुत पेड़ भी गिरे और बहुत सी बातें हुई, लेकिन मौसम जरूर ठंडा हो गया है। तो भागचंद जी, हम जानना चाहते हैं कि आज के विषय पर आप क्या कहेंगे?
2: दीदी हम तो ये कहते हैं, जैसे ये प्रदूषण हो रहा है गाड़ियों की वजह से हो रहा है, बहुत हानिकारक है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बैटरी वाली गाड़ी है वो चलाएं ज्यादातर, वो जो प्रदूषण करते हैं बहुत हानिकारक है। देखो दिल्ली में क्या माहौल है, प्रदूषण के कारण बहुत हालात बहुत गड़बड़ है। हम तो ये कहना चाहते हैं श्रोताओं से कि प्रदूषण ना करें और एक संकल्प जरूर लें, हमें एक पौधा जरूर लगाना है अपने नाम से।
1: तो भागचंद जी, हमें बहुत अच्छा लगा कि पर्यावरण प्रदूषण को लेकर आपके भीतर एक चिंता है और आपने वायु प्रदूषण की बात की। आप कह रहे हैं कि
2: बहुत बीमारियां चल रही हैं
1: और ये जो वायु प्रदूषण है इससे श्वास संबंधी समस्याएं भी बहुत होती हैं।
2: होता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
1: ऑक्सीजन तो कहते ही हैं कि भाई प्राणवायु है वो, तो उसका स्वच्छ रहना साफ रहना जरूरी है। तो आपका संकल्प है कि आप एक पौधा अवश्य लगाएंगे, तो कब लगाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे या नहीं? सिर्फ पौधा लगाना दायित्व इससे पूरा नहीं होता, है ना, वो पौधा बड़ा भी हो। तो भागचंद साहू जी, हमें बहुत अच्छा लगा कि आज के विषय पर आपने एक सार्थक विचार रखा और अपना संकल्प साझा

0: किया कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आपका संकल्प है कि आप एक पेड़
1: बिल्कुल
0: जरूर लगाएंगे। तो हमारी शुभकामनाएं
1: बिल्कुल
0: आपको, आपका संकल्प जरूर पूरा हो और कुछ और लोगों को भी प्रेरित कीजिएगा।
1: बिल्कुल दीदी बिल्कुल
0: जी, तो
1: कलियों
0: बहुत बहुत धन्यवाद भागचंद साहू जी, बहुत आभार कि आपने हमें फोन किया।

0: हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार, नाम बताइए।
1: हरिशंकर धाकड़ ग्राम आकुर्सी जिला शिवपुरी।
0: हरिशंकर धाकड़ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। कितने दिन के बाद आपने फोन किया है?
1: मेरा कॉल तो पहली बार ही लगा है। 4-5 साल से ट्राई कर रहा था लेकिन अभी कॉल लगा है पहली बार मेरा।
0: अरे वाह, मतलब आप हमारे नए श्रोता हैं, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और जानना चाहते हैं कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर आपके भीतर किस तरह की चिंताएं हैं और आप कौन सा एक संकल्प आज इस मंच पर रखेंगे जिस पर आप अमल भी करेंगे।
1: पर्यावरण के लिए हमको एक तो साफ सफाई रखना चाहिए, प्लास्टिक की थैलियों का यूज नहीं करना चाहिए।
0: क्या करना चाहिए ये तो बहुत से लोगों को मालूम है ना, लेकिन आपका क्या संकल्प है? आज के दिन से आप कौन सा एक संकल्प लेंगे ये हम जानना चाह रहे थे।
1: मेरा संकल्प यही है कि हम एक हर साल नया पौधा लगाएंगे और उसकी सुरक्षा करेंगे, जो कुछ पेड़ काटता है उसे मना करेंगे।
0: बहुत अच्छी बात है जी। और प्लास्टिक की
1: हाँ,
0: थैलियों का उपयोग नहीं करेंगे आप ये कह रहे हैं, कपड़े
1: थैली
0: की
1: का भी
0: थैली का
1: उपयोग
0: प्रयोग करेंगे।
1: नहीं करेंगे।
0: जी, तो हरिशंकर धाकड़ जी, आपकी बातें हमारे दूसरे श्रोताओं तक भी पहुंची हैं और मुझे लगता है कि जो आपने महत्वपूर्ण बात कही है वो ये है कि आप स्वयं तो पौधा लगाएंगे ही, वृक्षारोपण करेंगे, उसे बड़ा करेंगे,
1: हाँ जी
0: और
1: मैडम,
0: जो पेड़ों को नुकसान पहुंचाता है उस पर भी एक निगरानी आपकी होगी। ये बहुत अच्छी बात है। और एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि आप प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करेंगे। कपड़े के थैले वैसे भी हम पहले प्रयोग में लाते थे, उन्हें दोबारा लाने की
1: हाँ
0: आवश्यकता है। मालूम सबको सब है ना, आज के समय में पर्यावरण संरक्षण को लेकर तमाम उपाय सभी लोगों को मालूम है, लेकिन हम उन्हें
1: हाँ
0: अमल में
1: सभी
0: नहीं
1: को
0: लाते
1: करना
0: हैं।
1: चाहिए।
0: जी, हम अमल में नहीं लाते, इसलिए हमने सोचा कि आज एक संकल्प हमारे श्रोताओं की तरफ से ज़रूर लिया जाए। तो हरिशंकर धाकड़ जी, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक प्यारा सा गीत आप तक भेजते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार मैडम, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, नाम बताइए।
1: जी नमस्कार बहन जी,
0: कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं सुरेश कुमार सैनी, ग्राम पोस्ट हजनर, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ।
0: सुरेश कुमार सैनी जी कैसे हैं?
1: बस एकदम अच्छे हैं।
0: अच्छा,
1: और इस समय अच्छी गर्मी भी बहुत तेज पड़ रही है।
0: बिल्कुल, इस साल तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी और
1: जी जी
0: इसी बात से जुड़ती हुई हमारी बात है आज की। हमारा विषय है पर्यावरण प्रदूषण पर हम बात कर रहे हैं जिसका
1: जी बहुत अच्छा
0: दुष्परिणाम।
1: विषय रखा आज आपने।
0: जी क्या कहना चाहेंगे आप?
1: जी मैं यही कहना चाहूंगा कि पर्यावरण जो प्रदूषण फैल रहा है वो सब अपने ही द्वारा फैल रहा है, और जो पानी है पानी की भी बहुत बचत करनी चाहिए, पेड़ भी लगाने चाहिए।
0: जी,
1: और जो जैसे अपन लोग गाड़ी चलाते हैं तो जैसे अगर बस से भी जा सकते हैं कहीं जाना है तो ऐसा नहीं अगर अपन जंगल जा रहे हैं तो गाड़ी लेकर के जा रहे हैं।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात
1: जी
0: आपने कही है कि आप सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करेंगे।
1: जी
0: ये
1: जी
0: एक बहुत अच्छा संकल्प है और ये सभी को करना चाहिए। सुरेश कुमार सैनी जी, हमें अच्छा लगा कि पानी को लेकर आपकी चिंता है और इस
1: जी
0: बार जो गर्मी पड़ी है, मुझे लगता है कि पर्यावरण प्रदूषण की बात इस गर्मी ने जन जन तक पहुंचाई है ना?
1: जी बिल्कुल। देखिए कभी बारिश हो जाती है अचानक, बेमौसम बारिश हो जाती है,
0: जी
1: ये सब पर्यावरण मतलब उसी का असर है।
0: बिल्कुल, कहीं अतिवृष्टि है, कहीं सूखा
1: जी
0: है,
1: जी
0: फिर ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, तो जाहिर सी बात
1: हाँ
0: है कि जो ग्लेशियर हैं वो पीने के पानी के प्राकृतिक स्रोत हैं, है ना? तो
1: हाँ वो भी घटते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल, वो अगर पिघल रहे हैं तो ये एक बहुत चिंता की बात है। तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हर मनुष्य को, हर इंसान को कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये हम सबके जीवन से जुड़ी बात है ना?
1: जी जी
0: और मैं ये महसूस करती हूँ कि पर्यावरण संरक्षण पर बातें बहुत होती हैं लेकिन
1: जी
0: कार्य रूप में बहुत कम लोग इसमें सक्रिय हो
1: जी
0: पाते
1: बिल्कुल,
0: हैं।
1: बातें तो बहुत होती हैं, बातें बहुत लोग करते हैं लेकिन करते नहीं हैं।
0: तो आप बताएं कि आप

0: क्या करेंगे इस दिशा में?
1: जी, हमारा तो हर वर्ष का यही संकल्प रहता है कि हम दो चार पेड़ हर वर्ष लगाते हैं।
0: तो आप
1: बारिश के महीने में अभी गड्ढे खोद कर डाल दीजिए, और
0: तो
1: जो खेतों के किनारे मेड़ और जो मलाई

0: जी बिल्कुल, कुछ लोग क्या है कि जो नल सप्लाई आती है उसमें मैंने भी देखा है अपने यहाँ, तो पानी भर जाता है, पानी भरने के बाद खुली छोड़ देते हैं
1: बिल्कुल,
0: टोटी, तो उसको बंद नहीं करते हैं
1: बंद नहीं करते हैं, जो
0: जी,
1: ब्रश करते हैं, जब तक ब्रश करते हैं तब तक नल चलता रहता है, वो भी पानी
0: चलता
1: बर्बाद
0: रहता
1: होता है ना।
0: किसी किसी की तो कहो पैडे गाड़ी धुलती है
1: और
0: उसमें भी।
1: जो घरों में हम पानी का उपयोग करते हैं सब्जियां धोने में, या जो अपने रसोई घर में जो पानी बच जाता है
0: जी,
1: उसका उपयोग
0: तो
1: हम
0: उनको
1: अपने,
0: पेड़ों में डाल देना
1: हाँ, बगीचे
0: चाहिए।
1: में कर सकते हैं, पेड़ों में डाल
0: जी जी
1: सकते
0: जी
1: हैं। तो इस तरह से बहुत से ऐसे प्रयास हैं जो किए जा सकते हैं, और
0: बिल्कुल
1: हर इंसान जब इसमें शामिल होगा तभी पर्यावरण संरक्षण की बात सार्थक हो सकेगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो सुरेश जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फ़ोन किया।
0: नमस्कार बहन।
1: नमस्कार।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने अगले श्रोता का। अपना परिचय दीजिए।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, नाम बता दीजिए।
1: विकास आर्य, प्रयागराज से।
0: विकास जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका हम। कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज के विषय पर आप क्या कहेंगे?
1: आज के विषय पर हम यही कहना चाहेंगे मैम, जो आज के प्रदूषण जो फैलते हैं, ये हम सब अनुरोध करते हैं कि कुछ जो होते हैं ये धुआं वगैरह और जो साफ सफाई प्लास्टिक, ये ना करें प्रदूषण। इससे हमारे बहुत से पर्यावरण पर ये नुकसान हो रहे हैं। और लोग कहीं भी प्लास्टिक वगैरह फेंक देते हैं, ये कभी गलता नहीं है और इससे बहुत ही हमारे शरीर को हानिकारक हो सकता है।
0: हमारी धरती के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है, जीव जंतुओं के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है, है ना, जल स्रोतों

0: लिए भी अच्छा नहीं है।
1: जी, और ये भी कहना चाहेंगे कि पानी कम से कम हो सके तो इस्तेमाल करें, क्योंकि ये कहते हैं ना कि अगर बूंद से करें तो कोई भी चीज भर सकती है,
0: बिल्कुल,
1: है ना।
0: बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो जल का
1: हाँ जी,
0: अनावश्यक जो अपव्यय है वो ना करें, है ना, उसको सदुपयोग करें पानी
1: कहीं
0: का।
1: कहीं पर हम देखते हैं कि लोग पानी बहुत ही बहुत ज्यादा मात्रा में खर्च करते हैं और उन्हें ये लगता है कि ये हमारे पास पानी है तो अब हमें कोई कमी ही नहीं है,
0: बिल्कुल
1: लेकिन
0: बिल्कुल।
1: ऐसा नहीं करना चाहिए।
0: मतलब एक कहावत है कि उन्होंने पैसा पानी की तरह बहाया, मतलब जैसे कि
1: बिल्कुल
0: पानी
1: बिल्कुल,
0: पानी एक मूल्यहीन चीज है ना, एक मूल्यहीन तत्व है, पानी की तरह
1: अगर
0: पैसा बहा
1: पानी
0: रहे हैं।
1: पानी
0: जबकि
1: नहीं होगा तो हमारा फिर ये जीवन
0: जी जी
1: बहुत ही मुश्किल से कटेगा,
0: बिल्कुल, जबकि अब समझने की
1: जल है
0: बात
1: तो
0: यह है
1: जीवन है।
0: कि जिस तरह से आप पैसे को सोच समझ कर खर्च करते हैं उससे ज्यादा कीमती अब पानी है, तो पानी की तरह बहाना ये बात ही अब बेमानी हो चुकी है। आपको बहुत सोच समझ कर पानी का उपयोग करना चाहिए।
1: इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल,
0: बिल्कुल
1: इसीलिए हम कहते हैं कि सब तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा।
0: बिल्कुल। तो विकास जी, ये बताएं कि आपका क्या संकल्प है, या कई संकल्प हो तो वो भी बताएं, कि आप पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कौन कौन से संकल्प ले रहे हैं आज?
1: बिल्कुल, हम तो यही संकल्प लेना चाहेंगे मैम कि हम खुद से भी अपने आसपास भी यही कहते हैं कि सब लोगों को कोई भी चीज हो उसे बहुत कम से कम मात्रा में लेना चाहिए।
0: तो आप
1: और
0: ये कह रहे
1: कहीं
0: हैं
1: भी
0: कि आप हर संसाधन का उपयोग सोच समझ कर करेंगे,
1: हाँ,
0: तो
1: कहीं कहीं पर हम ये भी देखते हैं कि लोग बिजली फर्जी खर्चा करते हैं, कोई भी चीज चला लेते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम अपने आसपास भी ये चीज कहते हैं कि सब लोग जितना काम है उतना ही खर्च कीजिए।
0: बिल्कुल। और अभी चूंकि देखिए गर्मियों का समय है, तो अक्सर घरों में देखने को मिलता है कि हर कमरे में पंखा, कूलर या एसी चल रहा है। ऐसा हो सकता
1: बिल्कुल
0: है कि परिवार के सदस्य एक या दो कमरे में रहें और उसमें ही एसी कूलर चलाएं, इससे आपके पैसों की भी बचत होगी और पर्यावरण का संरक्षण भी होगा।
1: जी हाँ, लोगों को ये लगता है कि अब ये हमारे पास है तो कोई कमी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत मुश्किल से ये आता है।
0: जी, तो विकास जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। हम आपका
1: जी
0: आभार
1: बहुत अच्छा,
0: करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया।

0: हेलो
1: जी नमस्ते मैम
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: जी। ग्राम बनेता तहसील बंडा जिला सागर से महेंद्र कुमार सेन बात कर रहे हैं मैम। आपके
0: महेंद्र
1: नियमित
0: सेन जी।
1: श्रोता हैं।
0: महेंद्र सेन जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हम। कितने दिन के बाद फोन किया है?
1: जी मैम, लाइफ में पहली बार लगा है, वो बड़ी खुशी हुई है हमारा ने जो आज
0: अच्छा, पहली
1: पहचान
0: बार फोन
1: फोन
0: लगा
1: लगा
0: है,
1: है।
0: बहुत अच्छी बात है। चलिए, हम आपका बहुत स्वागत करते हैं, हृदय से स्वागत करते हैं, और जानना चाहते हैं कि आज के विषय पर आप क्या कहेंगे।
1: जी मैम, हमारे कुछ भी है कि सबसे पहले तो अपने लिए बनों के लिए आग से बचाना चाहिए और हर श्रोता के लिए एक पेड़ जिंदगी में जरूर लगाना चाहिए।
0: वनों को आग से
1: और
0: बचाना चाहिए, महत्वपूर्ण बात
1: जी,
0: आपने कही है, बिल्कुल।
1: और नदी है, नाले हैं, इन गंदगी मत रखो क्योंकि ये दूसरे होंगे तो अपन बीमार पड़ेंगे।
0: बिल्कुल, क्योंकि जो जल स्रोत हैं, अगर वो गंदे हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल होती है मनुष्य के लिए और जीव जंतुओं के लिए भी, है ना।
1: जी, क्योंकि उसमें गाय वगैरह हैं, कोई भी मवेशी पानी पीता है तो सर वो खत्म हो जाते हैं, पॉलीथिन वगैरह हैं जो आती हैं बैठ के जो उसमें, तो ये सर बहुत जटिल समस्या है।
0: बिल्कुल, जो प्लास्टिक की थैलियां हैं उनका जो उपयोग हम अब भी कर रहे हैं, ये बहुत चिंता की बात है, और सारी जानकारी होने के बावजूद उसका उपयोग हो रहा है, ये बहुत खतरनाक बात है।
1: और पेड़ भी लगाना चाहिए हर इंसान के लिए।
0: जी, तो ये तो आपने बताया है कि क्या करना चाहिए, और आप चिंतित हैं जंगलों को लेकर और धरती के स्वास्थ्य को लेकर। प्लास्टिक की आपने बात की है, पानी की आपने बात की है, साफ सफाई की बात की है, तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आपके क्या क्या संकल्प होंगे, आप क्या क्या करेंगे आज से, ये बताइए।
1: क्योंकि मैम हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं और वनों की देख रेख करते रहते हैं और हम अपनी क्यारी वगैरह में हर चीज लगाए हैं, आम वगैरह इनके तो पानी आने देते हैं और साफ सफाई का फुल ध्यान रखते हैं।
0: जी,
1: जी मैम,
0: तो जाहिर सी बात है कि पेड़ लगाने का काम तो यूं ही होता है आपसे, और जो आपने बात की है जल स्रोतों की सफाई की, उसमें ज़रूर आप अपना योगदान दे सकते हैं, है ना।
1: बिल्कुल मैम, और सभी के लिए देना चाहिए।
0: जी, तो महेंद्र सेन जी, आज आपने हमें फ़ोन किया, हमसे बातचीत की, इस विषय पर अपने विचार रखे, आपका हृदय से आभार।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, नाम बताइए।
1: आदरणीय मैम जी नमस्कार।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं मैम जी। मैं जय नरसिंह दो FM रेडियो ग्रुप ग्राम करकबेल तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर से कमलेश कहार बात कर रहा हूं मैम जी।
0: कमलेश जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हम। आप हमारे नियमित श्रोता हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आज के विषय पर एक सार्थक विचार आप रखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण को देख कर आपके मन में किस प्रकार की चिंताएं हैं, क्या परिवर्तन आप देखते हैं और क्या संकल्प है आपका पर्यावरण संरक्षण को लेकर।
1: देखिए मैम जी, मैं श्रोता होने के नाते सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ और बात पर्यावरण की चल पड़ी है तो मैम जी बहुत ही अनुकूल विषय है। मैम जी मैं तो ये कहूँगा कि हमने अभी पर्यावरण दिवस मनाया तो मैं सबसे पहले आपको एक अनुकूल बात बता दूं कि मैं पीपल के वृक्ष के नीचे खड़ा हूँ मैम जी।
0: क्या बात है बहुत अच्छी बात।
1: मेरे पास वीडियो कॉल होता ना मैम जी, सचमुच में वीडियो कॉल करता और आप रेडियो में भी लोग देख पाते मुझे और आपको। तो पीपल का वृक्ष है, इसकी छांव में मैं आपसे बात कर रहा हूँ खड़े होकर के मैम जी, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है
0: जी।
1: तो मैम जी देखिए, मैं तो वृक्ष लगाता ही रहता हूँ, मैंने एक बरगद का वृक्ष लगाया था।
0: कमलेश जी हम ये जानना चाहते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए आपके मन में किस प्रकार की चिंताएं होती हैं?
1: देखिए मैम जी, आज वर्तमान में देखी जाए तो ध्वनि प्रदूषण भी बहुत ज्यादा है, तो सबसे दायित्व बनता है कि ध्वनि प्रदूषण बिल्कुल न करें।
0: बिल्कुल,
1: बहरेपन की समस्या उत्पन्न हो सकती है।
0: बिल्कुल, मनुष्य को तो समस्या होती ही है, मानसिक स्वास्थ्य उसका प्रभावित होता है, इसके साथ ही जो पशु पक्षी हैं उनका जीवन भी प्रभावित होता है, उनका भी जो प्रजनन चक्र है वो प्रभावित होता है। तो प्रदूषण कोई भी हो, पूरा जीव जगत उससे परेशान होता है और उस पर नकारात्मक प्रभाव उसका होता है।
1: देखिए मैम जी, आपने ये बात रख दी है, मैं ये बात बोलने वाला था कि मनुष्य ज्यादा हैरान मैं समझता हूँ प्रकृति से, प्रकृति को लेकर के। यदि प्रकृति अपनी पे आ जाए तो मनुष्य को तो खत्म कर देगी, तो मनुष्य का दायित्व बनता है कि प्रकृति को बचाए रखे। जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी माता।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात की है।
1: इन पांचों चीजों को बचाने का दायित्व एक मनुष्य का बनता है कि इसे बचा के रखें। जो पर्वत हैं, वृक्ष हैं, पौधे हैं, बड़े बड़े विशाल कह सकते जीव का है,
0: तो क्या है कि संपूर्ण जीव जगत जो है
1: अनुकूल है मैम जी।
0: जी, संपूर्ण जीव जगत का संरक्षित रहना, सुखी रहना आवश्यक है मनुष्य के लिए, है ना। तो कमलेश जी आपने कहा कि पर्यावरण प्रदूषण जो है चिंता का विषय है और हमें प्रकृति के हर तत्व की रक्षा करनी चाहिए, आपका क्या संकल्प है, आप क्या करेंगे?
1: तो मैम जी संकल्प के, मैं तो जल को बचाता हूँ ज्यादातर, मैं जल की तरफ ज्यादा आश्रित रहता हूँ क्योंकि जल है तो कल है।
0: क्या बात है, तो जल संरक्षण के लिए
1: मुझे कोई भी एक बूंद पानी बहाता ना तो मुझे गुस्सा आती है।
0: बिल्कुल, टोकना आवश्यक होता है क्योंकि पानी को लेकर हमारा जो व्यवहार है वो बहुत बेपरवाह रहा है शुरू से। अब लेकिन पानी अपनी कीमत बता रहा है और बता रहा है कि जल धन है, समृद्धि है, निधि है, उसे उस तरह से देखना चाहिए जैसे हम किसी खजाने को देखते हैं, संरक्षित करते हैं।
1: मैम जी मैं तो एक बात रखूंगा कि जल है तो कल है, वरना चारों तरफ हलचल है, चारों तरफ हलचल है तो वीरान आने वाला कल है। जल ही तो जीवन है, जीवन को बेकार मत बहाओ, अभी समय है मानव तुम जल के प्रति चेत जाओ। जल बिन बताओ कैसे मिलेगी 2 जून की रोटी, जल से है आपके हमारे जीवन की संगोष्ठी। खिल तो जागा यह कमलेश बिन पानी के कीचड़ में, लेकिन किंतु परंतु अगर मगर चूंकि जबकि इत्यादि के चलते कैसे बनेगी कीचड़ बिन जल में।
0: क्या बात है, तो कमलेश जी आपने बहुत सुंदर संदेश दिया एक कविता के माध्यम से, जल संरक्षण की बात की तो कुछ बारिश की फुहारें आप तक पहुंचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें फोन किया।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, अपना परिचय दीजिए।
1: हेमचंद जैन।
0: नेमचंद जैन जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: दमोह से।
0: आज हम बात कर रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण की और जानना चाहते हैं कि इस समय जो पर्यावरण की स्थिति है, तेज गर्मी, बाढ़, भूकंप, है ना, ये स्थितियाँ देखने को मिलती हैं और मिट्टी की उर्वरता भी कम हुई है, जल की कमी भी होती है, जल संकट भी बढ़ता जा रहा है, तो पर्यावरण की स्थिति देखकर आप
1: अधिक हो रही है, इसलिए तो वो जल की कमी होती है, गर्मियों में होती है और प्रायः जल की कमी थी।
0: जी, तो इस पूरे पर्यावरण प्रदूषण को लेकर आपके मन में क्या चिंता है और पर्यावरण संरक्षण के लिए आप कौन सा एक उपाय करेंगे, क्या संकल्प है आपका?
1: दिल में ये चिंता है कि जंगल कटते जा रहे हैं, जंगलों से ये सब पेड़ों से बाटा जाकर का खिंचाव होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और सरकार को इसमें थोड़ी रोक लगाना चाहिए।
0: सरकार तो रोक लगाती ही है। आपने जंगल कटने की बात की है, ये वास्तव में चिंता की बात है, क्योंकि जंगल जो हैं वो सभी जीव जंतुओं की आश्रय स्थली हैं, है ना, सारे जीव जंतु रहते हैं उसमें, पेड़ पौधे भी वहाँ हैं। आपने बताया है कि बादलों को खींच कर वो ले आते हैं पेड़, और बारिश होती है, तो बहुत आवश्यक है कि हमारे जंगल सुरक्षित रहें ताकि जैव विविधता भी हमारी बनी रहे। तो आप कौन सा एक संकल्प लेंगे नेमचंद जी?
1: यही संकल्प है हमारा कि कम से कम जंगलों की कटाई हो।
0: और पौधे लगा सकते हैं, आपने पेड़ों की बात की है, तो जाहिर सी
1: अपने खेत में आम के पेड़ लगाने के मूड में थे।
0: तो आपने बताया कि आप पेड़ लगाने के मूड में हैं, तो हम चाहते हैं कि आप जरूर बहुत से पेड़ लगाइए, उनको संरक्षित कीजिए, बड़ा कीजिए। तो नेमचंद जी, आज आपने हमें फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बात आपकी गीत हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, नाम बताएं।
1: नमस्कार, नवग्रह नगरी तिलकपत खरगोन से मैं मनीष निमाड़े।
0: तो मनीष जी, आज का विषय जो है वो पर्यावरण प्रदूषण से जुड़ा हुआ है, तो हम जानना चाहते हैं कि किस प्रकार की चिंताएं पर्यावरण को लेकर आपके भीतर हैं और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आपका क्या संकल्प है।
1: जी, पर्यावरण देखिए हम लोगों का एक कहें कि हमारे जीवन का आवश्यक अंग है। अगर ये पर्यावरण कमी हुई, नष्ट हुआ या धीरे धीरे क्षीण होते होते खत्म सा होने लगेगा, तब बहुत विपदाएं आएंगे। विपदाएं आनी शुरू हो गई, प्रकृति अपना संकेत हर समय दे रही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हम मानव प्रजाति जो है उसकी तरफ कुछ दिन मना लेते हैं या पर्यावरण दिवस मनाकर और फिर भूल जाते हैं और कोई चिंता नहीं करते हैं। हम सोचते हैं सरकार सब करेगी, लोग करेंगे, क्योंकि इसकी शुरुआत हमको खुद से करनी होगी।
0: बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये।
1: हम खुद जब से नहीं करेंगे तब तक जो है ना हमारे अड़ोसी पड़ोसी जागेंगे, ना चार घर जागेंगे, ना नगर जागेगा, ना देश जागेगा और ना ही विश्व जागेगा।
0: बिल्कुल,
1: तो शुरुआत हम अपने से करें। और मैं जो है पहले से इस विषय का चिंतित हूँ और चूंकि जागरूकता परिवार से मिली है हर विषय पर जानने की, देखने की, समझने की
0: जी।
1: तो हम लोग शुरुआत किए थे कि हम घर में मार्केट से कोई भी प्लास्टिक थैली नहीं खरीद के लाते हैं, मतलब
0: क्या
1: कोई सामान उसमें नहीं लाते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: अगर कोई दिक्कत भी है तो पुनः घर लौटते हैं और फिर झोला लेकर ही सामान लाते हैं, अवॉइड करते हैं। कोई देता है सब्जी भाजी देता है तो उसको मना करते हैं, नहीं भैया आप प्लास्टिक मत दो, हमारे पास झोला है।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: तो परिवार में ये है कि हम लोग करते हैं। दूसरा, कभी भूले भटके किसी वस्तु में लाना अनिवार्य हो गया उसमें तो हम उसको डस्टबिन में नहीं डालते, हम उसको साफ करके या धोके रीयूज के लिए रखते हैं या कहीं और काम आ जाए, ताकि वो कूड़े में ना जाकर और अपनी वो ना फैलाए।
0: बहुत अच्छी बात।
1: ये प्रयास करते हैं, पानी बचाने का प्रयास करते हैं। पानी बचाने के लिए परिवार मिलकर प्रयास करता है
0: जी,
1: कि हम नल या शावर से कभी नहीं नहाते हैं,
0: क्या बात है,
1: भर कर नहाते हैं।
0: जी जी जी।
1: कूलर का जो है हम परिवार में एक सामूहिक हमारा हॉल है, हम उसमें सभी उस एक कूलर से आनंद लेते हैं।
0: वाह।
1: तो हम इससे दोहरे लाभ कमाते हैं, बिजली बचाते हैं और पानी भी बचा लेते हैं।
0: बिजली बचाते हैं, पानी बचाते हैं और साथ का आनंद उठाते हैं।
1: साथ तो सवाल ही नहीं उठता है, वो तो अनमोल धरोहर है।
0: जी जी जी। तो मनीष जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सार्थक और बहुत अच्छे विचार रखे हैं, बहुत खुशी हुई, बहुत धन्यवाद, आपने फोन किया, हार्दिक आभार।

0: हेलो
1: हेलो।
0: नमस्कार, नाम बताइएगा।
1: नमस्कार नमस्कार। गोविंद जलोदिया खातेगांव जिला देवास।
0: गोविंद जलोदिया जी, बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में, आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप
1: बस बढ़िया है सर, गर्मी से अब ठंडी पड़ गई है। हाँ
0: जी? तो कुछ बारिश की बूंदों ने राहत तो दी है,
1: हाँ हाँ
0: लेकिन हम आज जो बात कर रहे हैं वो ये है कि पर्यावरण प्रदूषण को लेकर आपके मन में किस प्रकार की चिंताएं हैं और कोई एक सार्थक
1: पर्यावरण तो
0: पहल।
1: क्या है कि पर्यावरण से तो पूरा स्वस्थ चल रही है। पर्यावरण क्या है, जब तक तो झाड़ पेड़ पौधे पदे ये वो नहीं रहेंगे, प्रदूषण नहीं रहेगी, सफाई नहीं रहेगी, तो वातावरण शुद्धिकरण रहेगा ही। इससे
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: सबसे जरूरी तो ये है कि आदमी ने क्या, अभी जैसे अभी 5 तारीख को बना रहे हैं, तो एक संकल्प कर लेना चाहिए और वहां से चल के रोज एक कुछ ना कुछ झाड़ पेड़ पे पानी देते ही रहो।
0: तो आप पौधों को परवरिश देने की बात कर रहे हैं,
1: हाँ,
0: है ना?
1: पेड़ पौधे को पानी देते रहो, ये भी संकल्प कर लेना चाहिए। बनाना मतलब झाड़ उगाना तो अलग बात है,
0: बहुत अच्छी बात है, सिर्फ पौधारोपण से
1: ये
0: बात
1: भी
0: बनती
1: जरूरत है।
0: नहीं।
1: तो पर्यावरण से उससे ही शुद्धिकरण रहता है, आगे और पीछे जहाँ जगह मिले वहां पे ये फल फूल वगैरह टाइप यही वो तो आप कर दो, इनको रोज आप पानी दो तो भी वातावरण में शुद्धिकरण हो जाता है
0: बिल्कुल। तो आपने
1: ये
0: ये कहा कि
1: पर्यावरण।
0: पौधे लगाना तो आवश्यक है ही,
1: हाँ आवश्यक है
0: उनकी परवरिश एक बच्चे की तरह करना आवश्यक
1: ये।
0: होता है, वो पौधा बड़ा हो जाए, ये भी हमारी जिम्मेदारी होती है। बहुत अच्छी बात आपने कही
1: हाँ
0: है। तो आपका क्या संकल्प रहेगा?
1: संकल्प ये मेरा है, मैं तो डेली वैसे जल तो चढ़ाता हूँ, वैसे तुलसी का वो है जो पौधा, और दो तीन मतलब जो उसके फूल भी है, तो जब सूरज ग्रहण कर तो सूरज भगवान को जल चढ़ाने जाते हैं तो इनको भी थोड़ा थोड़ा दे देते हैं।
0: जी
1: अब और 5 तारीख से और संकल्प कर लिया कि हम डेली मतलब जो है पेड़ पौधों में पानी देंगे।
0: तो आप जहां भी देखेंगे सूखते पौधे पानी देंगे, ये एक अच्छा संकल्प है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया आपने फोन किया, बहुत बहुत
1: ठीक है।
0: धन्यवाद।

श्रोताओं, धरती केवल मिट्टी नहीं है, ये हमारी स्मृतियों का घर है। वृक्ष केवल लकड़ी नहीं है, वे हमारी सांसों के प्रहरी हैं। नदियाँ केवल जलधाराएं नहीं हैं, वो जीवन की सतत बहती हुई कथा हैं। और पर्यावरण केवल एक किताबी विषय नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व का आधार है। आज जब पर्यावरण प्रदूषण की चुनौती हमारे सामने खड़ी है, तब आवश्यकता है केवल चिंता की नहीं, बल्कि संकल्प की। एक ऐसा संकल्प जो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, निर्मल जल और हरी भरी धरती का उपहार दे सके। और आज इस कार्यक्रम में आप सबने अपने संकल्प हमसे साझा किए। हम उम्मीद करते हैं कि ये संकल्प आपको हमेशा याद रहेंगे। एक दूसरे को भी आप ये बातें याद दिलाते रहेंगे और इन संकल्पों को अवश्य पूरा करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जहां बातों से बात बनेगी नहीं। बातें अब तक खूब हुई हैं, अब बारी है कुछ कर गुजरने की। तभी धरती पर जीवन की बात हो सकेगी, हमारे अस्तित्व की बात हो सकेगी। इसी महत्वपूर्ण संदेश के साथ अब इस कार्यक्रम से इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे। आज की प्रस्तुति थी सुनीता सिंह की। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रीवा सागर नागपुर हैदराबाद के बीच नई स्थायी ट्रेन सेवा को मंजूरी दे दी है। इस सीधी ट्रेन से सागर और बुंदेलखंड के लोगों को इलाज, व्यापार और शिक्षा के लिए दक्षिण भारत जाने में बड़ी सुविधा मिलेगी। श्योपुर के कुरु नेशनल पार्क में दशकों बाद दुर्लभ जंगली बिल्ली कैराकल की मौजूदगी कैमरे में ट्रैप हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस पर प्रसन्नता जताते हुए कहा है कि कुनो में समृद्ध हो रही जैव विविधता और वन्य जीव संरक्षण के प्रयासों का प्रमाण है ये। भाजपा के दोनों प्रत्याशी तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल आज राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस ने मंदसौर की पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून है। प्रदेश में आज मेगा अपार आईडी दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान प्रत्येक विद्यालय में सभी विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाई जा रही है। ये आईडी विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों का स्थायी डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने में सहायक होगी। शिक्षण संवर्धन के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 11 विद्यार्थियों और 11 शालाओं को राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया गया। प्रदेश में मानसून से पहले ही प्री मानसून जमकर बरस रहा है। बीते 24 घंटों में 20 से अधिक जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। आज भी यही मौसम बना रहेगा। और भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप 2026 हॉकी टूर्नामेंट में फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। जापान के काकामेगाहारा में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 पर शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। सभी सुनने वालों को साधना जैन का नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? तो लीजिए, हम लेकर आ गए हैं आप सभी की पसंद पर आपकी फरमाइश कार्यक्रम। तो भारत और भारत से बाहर सुनने वाले सभी श्रोताओं को साधना जैन का नमस्कार। आपने अपनी पसंद हमें भेजी और हम आ चुके हैं आपके गाने लेकर। पहला गीत हमने लिया है काजल फिल्म से। आशा भोसले साहिर की आवाज़ है आशा भोसले की। गीत लिखा है साहिर ने और संगीत दिया है रवि ने। इस गाने को पसंद किया है नागपुर से डॉक्टर विजय जैन, लता व किशोर मोहरिल, हेमंत देश पांडे, मोहन, रमेश बल्लाल और आपके सभी साथियों ने। तो आपकी पसंद पर ये गीत हम भेज रहे हैं काजल फिल्म का।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश। अगला गीत सच्चा झूठा फिल्म से मोहम्मद रफ़ी के साथ लता मंगेशकर की आवाज़ है। गीत लिखा है इंदिवर ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। इस गीत को पसंद किया है अखिल भारतीय तीर संरक्षण महासभा मध्य प्रदेश के सभी साथियों ने, अनिल अरुणा आरबीआई, आदिश्वर प्रसाद, अल्पना जैन, संजय जैन, सीमा जैन, संध्या आज़ाद मोदी, प्रदीप जैन, राजेश ममता डालडा, संतोष किरण ट्रांसपोर्ट, वर्षा ज्योति स्वरूप जैन, सुषमा सुनील गंगवाल, जितेश आभा, ज्योतिषाचार्य और राकेश रौनक ने। तो आप सभी की पसंद पर भेज रहे हैं ये गीत।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश और मैं हूं आपके साथ साधना। अगला गीत सुजाता फिल्म से एसडी बर्मन की आवाज़ है। गीत लिखा है मजरूर सुल्तानपुरी ने, संगीत है एसडी बर्मन का। और इस गीत को पसंद किया है हमारे इन सभी साथियों ने, अमेरिका के बोस्टन से डॉक्टर विजय प्रकाश जैन और आपके परिवारजन प्रियांक, पुनीता, अंकुर, आर्जव और अनिरुद्ध। साथ ही आप हमारे देश हिंदुस्तान में रहने वाले अपने भाई, रिश्तेदारों और सभी मित्रों को भी सुनवाना चाहते हैं ये गीत। तो अमेरिका के साथ साथ भारत में भी डॉक्टर विजय प्रकाश जी और अपने साथियों के साथ सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

और लीजिए आपकी फरमाइश का अगला गीत ये रात फिर ना आएगी से महेंद्र कपूर की आवाज़ है। SH बिहारी ने इस गीत को लिखा है और ओपी नैयर ने संगीत दिया है। हमारे इन सभी श्रोताओं ने इस गीत को सुनना चाहा है। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर ने इसी गीत को सुनना चाहा है। औरंगाबाद से राजेश सावले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश ने। आप सभी की पसंद पर महेंद्र कपूर की आवाज़ में ये गीत सुनिएगा।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश। बेताब फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं शब्बीर कुमार की आवाज़ में। आनंद बख्शी ने गीत को लिखा है, राहुल देव बर्मन ने संगीत दिया है। इस गीत के फरमाइशकर्ता इस गीत के बाद हम आपको बता

बेताब फिल्म के इस गीत को पसंद किया था भोपाल गौतम नगर से पंडित ममतेश शर्मा, दीपू शर्मा, अक्षरा अनुष्का और विनायक शर्मा ने। इसी गीत को पसंद किया था गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक ने। आप सभी की पसंद पर हमने सुनवाया बेताब फिल्म का ये गाना। और लीजिए, आपकी फरमाइश का अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लोफर फिल्म से। आशा भोसले की आवाज़ है, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को पसंद किया है छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री ने। और इसी गीत को पसंद किया है बठिंडा पंजाब रेलवे कॉलोनी से जे एस नायक, शोभा नायक और जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला और समस्त डागला परिवार ने। आप सभी की पसंद पर ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत।

लोफर फिल्म के इस गीत को, जिसे आशा भोसले ने गाया था, इसके साथ ही आपकी फरमाइश यहीं संपन्न करने की आज्ञा दीजिए साधना जैन को। अगली बार नए साथियों के पत्र और नए गीतों के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आपकी फरमाइश। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:25 हुए हैं। अगला प्रसारण अंतराल के बाद।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है संग्रहालय से। आज इस कार्यक्रम में हम आपको संगवा रहे हैं जंग लगी तलवार का भाग एक।
1: प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने।

0: यशवंत, क्या बात है बेटा, तू आज इतना उदास क्यों है?
1: उदास ना हूं तो क्या करूं काका, दलित मजदूरों की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती। शंभू काका, आपने आजादी का आंदोलन तो देखा है ना?
0: देखा है बेटा, कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल हुई थी हमें आजादी। हजारों लाखों देशभक्तों ने अपना बलिदान दिया है इस आजादी को हासिल करने के लिए, मगर पर क्या हम सचमुच आजाद हो पाए हैं?
1: यही सवाल शंभू काका, ठीक यही सवाल मुझे हर पल झकझोरता रहता है। हार तोड़ मेहनत करने के बाद भी दो जून की रोटी नसीब ना हो, तन ढकने के लिए कपड़ा लत्ता तक ना हो, गोद में खेलने वाले बच्चों को दूध की एक बूंद भी ना मिले, पिचका पेट और उभरा बदन लिए घूमने वालों के लिए भला इस आजादी का क्या महत्व काका?
0: दुख तो इस बात का है बेटा कि हमारे नेता भी हमारी दशा सुधारने के लिए कुछ नहीं करते, बस जुलूस सभाओं में गाल बजाते हैं और भूखी नंगी जनता की तालियां बटोर कर खुद की पीठ थपथपाते हैं।
1: अब इस साई नदी पर चल रहे प्रोजेक्ट को ही ले लो काका, कहने को तो यहाँ पर काम करने वाले मजदूरों की यूनियन बनी हुई है, मगर आज तक यूनियन ने मजदूरों के लिए किया ही क्या है?
0: यूनियन के सारे नेता धूर्त और मक्कार हैं यशवंत।
1: हाँ काका,
0: पहले तो मजदूरों को उकसाते हैं, उनके भले की बात कहते हैं, सदियों से पिस रहे मजदूरों को सब्ज बाग दिखाते हैं, उनसे हड़तालें करवाते हैं और मौका मिलते ही कंपनी के अफसरों से मिल जाते हैं। भूख की आग में जल रहे मजदूरों की दशा पहले से ज्यादा बिगड़ जाती है बेटा।
1: लेकिन काका, ये मजदूर हड़ताल करते ही क्यों हैं?
0: हड़ताल तो यूनियन करती है, हड़ताल करना लोकतांत्रिक अधिकार जो है, मजदूरों को तो विवश होकर यूनियन का साथ देना पड़ता है, नहीं तो कंपनी के अधिकारियों के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं।
1: हाँ?
0: पूरी मजदूरी पर अंगूठा लगवाकर उन्हें आधी मजदूरी दी जाती है।
1: क्या?
0: अफसरों के घरों में बेगार भी करनी पड़ती है यहाँ के मजदूरों को। सबसे अधिक दयनीय दशा तो हम दलित मजदूरों की है, गंदगी तक साफ करवाते हैं लेकिन पहनने को जूता तक नहीं देते।
1: हे भगवान, काका क्या जमाना आ गया है, क्या हम लोगों को अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास नहीं करना चाहिए? काका, मैंने तो पढ़ा है कि मजदूरों के लिए कानून बना हुआ है और दलितों के लिए भी अलग कानून है, तो फिर हम लोग कानून से सहायता क्यों नहीं मांगते?
0: बेटा, तू पढ़ा लिखा है, हाई स्कूल पास है, लेकिन तेरे पास व्यावहारिक ज्ञान की कमी है।
1: मैं कुछ समझा नहीं काका।
0: कानून से न्याय मांगने के लिए अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं, वकील को फीस देनी पड़ती है, अरे जब खाने को नहीं है तो मुकदमा लड़ने के लिए पैसा कहाँ से आएगा?
1: लेकिन चाचा, ये यूनियन हम मजदूरों से जो चंदा इकट्ठा करती है, वो सब कहाँ जाता है? क्या उस धन का उपयोग हम मजदूरों के हित में नहीं होता?
0: अरे तू इस साइट पर नया आया है ना, इसलिए कुछ भी नहीं जानता।
1: हाँ?
0: यूनियन का पैसा यूनियन के नेताओं की मौज मस्ती के लिए होता है,

0: सारा पैसा उनकी शराबखोरी में खप जाता है।
1: ओ, मैं समझ गया काका, सब कुछ समझ गया।
0: सच? जरा बता दो क्या समझा?
1: देखो काका, मैं मानता हूँ कि कंपनी का मजदूर होने के कारण उसका अत्याचार सहना तो हम सबकी मजबूरी है। कंपनी के सामने सारे मजदूर भाई लाचार और विवश हैं, लेकिन काका यूनियन नेताओं के सामने भला कैसी विवशता? अरे यूनियन का पैसा मजदूरों के खून पसीने की कमाई है, मजदूरों का ब्लड बैंक है यूनियन का फंड।
0: बड़ी बड़ी बातें बनाना आसान है बेटा, मगर उस पर अमल करना उतना आसान नहीं है जितना तू समझ रहा है।
1: काका अगर मुझे मौका मिले ना तो मैं यूनियन की तस्वीर बदल सकता हूँ, मजदूरों का भाग्य पलट सकता हूँ मैं। लेकिन काका, क्या एक दलित मजदूर को यूनियन की नुमाइंदगी करने का मौका मिलेगा?
0: भाई आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मुझे आशा की एक किरण दिखाई दे रही है।
1: अरे आप तो बहुत सालों से यहाँ हैं काका, कंपनी की नौकरी करते हुए आपको 20 बरस हो गए हैं। अब काका आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हाँ हाँ हाँ,
0: तू नया जरूर है बेटा, है भी नई पीढ़ी का, तेरा जोश देखकर उम्मीद बंधी है कि अब हमारा उद्धार जरूर होगा। मेरी बात ध्यान से सुन।
1: हाँ काका।
0: तेरा पढ़ा लिखा होना तेरे साथ साथ हम सब के लिए वरदान बन सकता है। तुझे यूनियन में नुमाइंदगी दिलवाने के लिए मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा।
1: अब शंभू काका, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा मतलब आपकी योजना क्या है?
0: यूनियन का नेता राम बहादुर साल भर का चंदा डकार गया और किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई।
1: अच्छा,
0: अब जाकर पता चला तो उस पर अभियोग लगाया गया है। यूनियन की आम सभा में इस अभियोग का निर्णय सुनाया जाएगा।
1: तो फिर काका?
0: अरे फिर क्या, अगर राम बहादुर को यूनियन से हटाया गया तो उसकी जगह किसी दूसरे प्रतिनिधि को रखा जाएगा। अरे तू पढ़ा लिखा तो है ही, समझदार भी है। दलित मजदूरों की ओर से मैं तेरे नाम का प्रस्ताव रखूंगा।
1: सच काका, सच? लेकिन काका, क्या यूनियन इस बात के लिए सहमत होगी?
0: भाई इस विषय में अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ इतना जरूर है कि कोशिश करने पर सफलता हमारे कदम चूम सकती है। लेकिन जसवंत,
1: हाँ काका,
0: यूनियन का प्रतिनिधि बनकर अगर तू भी दूसरे नेताओं जैसा बन गया तो हमारा क्या होगा है?
1: ऐसा कभी नहीं होगा शंभू काका, ऐसा कभी नहीं होगा। आज हम अपने हालात के सामने विवश हैं, लेकिन काका कल हालात हमारे सामने विवश होंगे, ये मेरा वादा है आपसे।
0: ठीक है बेटा। अरे वाह, क्या हुस्न है, क्या खूबसूरती है, ऐसा लगता है जैसे परी आसमान से उतरकर जमीन पर आ गई। हाय हाय हाय हाय, और फिर पानी में नहाती हुई परी, हा हा हा हा। इसकी एक फोटो खींचता हूँ।
2: हाय भैया, आसमान पर बादल भी नहीं है जो बिजली चमकती, फिर ये बिजली जैसी क्या चमकी? लगता है कोई भूत प्रेत है, यहाँ से चलना चाहिए, जाने क्या अनहोनी हो जाए। हम आप कौन हो बाबू? पराई नारी को नहाते हुए छुप छुप कर देखते हो, आपको लाज नहीं आती?
0: ना ना ना ना ना ना ना, अभी पानी से बाहर ना निकलना, पानी में खड़ी हुई तो किसी परी से कम थोड़ी लग रही हो। तेरी कुछ तस्वीरें खींच लूंगा।
2: आप मेरी तस्वीरें खींचेंगे बाबू? पर मैं तो आपको जानती तक नहीं।
0: अरे मैं चौधरी हूँ, यहाँ के मैनेजर का छोटा भाई, शहर से घूमने आया हूँ।
2: मैनेजर के छोटे भाई हैं आप?
0: हाँ हाँ, क्यों मेरी बात कर

0: विश्वास नहीं।
1: लेकिन बाबू आप मेरी तस्वीरें क्यों लेना चाहते हैं?
0: वो क्या है कि मैं सुंदरता की पूजा जो करता हूँ, बस जहाँ भी सुंदरता देखी तुरंत इस कैमरे में कैद कर लेता हूँ।
1: बाबू आप मेरी तस्वीरें मुझे दिखाएंगे ना?
0: हाँ क्यों नहीं, जरूर दिखाऊंगा।
1: तो ठीक है, फिर खींचो मेरी फोटो।
0: अच्छा थोड़ा मेरी तरफ देखो,
1: ये
0: थोड़ा दूसरी तरफ घूमो,
1: ये ऐसे।
0: हाँ अब जरा मेरी तरफ देख कर मुस्कुरा। अब थोड़ा बैठ कर दोनों हाथ इधर करो।
1: ये ऐसे बाबू,
0: ऐसे। हाँ एक हाथ थोड़ा और ऊपर। बस बस बस बस बस बस, कितनी तस्वीरें बहुत हैं। जरा नदी से बाहर तो निकलो।
1: बड़ी बेशरम है आप, अपने सामने ही मुझे बाहर आने के लिए कह रहे हैं। ऐसे कैसे?
0: कमाल है। लेकिन थोड़ी देर पहले तो तू ऐसे ही बाहर निकलना चाहती थी।
1: तब की बात और थी।
0: अच्छा
1: तब मैं यहाँ से भाग जाना चाहती थी। अच्छा बाबू चलो तुम मुंह घुमा कर खड़े हो जाओ।
0: अच्छा अच्छा समझ गया। लो लो मैंने ये मुंह घुमा लिया।
1: हाँ देखो जब तक मैं ना कहूँ इस ओर मुँह ना करना।
0: जो आज्ञा देवी जी।
1: आपने आपने मुझे देवी जी कहा?
0: आपने नाम तो बताया नहीं तो देवी जी ही कहना पड़ा।
1: मेरा नाम नारायणी है बाबूजी। बाबूजी अब आप मेरी ओर घूम सकते हैं, मैं कपड़े बदल चुकी हूँ।
0: अच्छा अच्छा चलो मैं घूम गया। भाई नाम तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, नारायणी। यानी देवी, सौंदर्य की देवी यानी नारायणी। सच नारायणी तुम बहुत सुंदर हो। एक बात पूछूं नारायणी?
1: हाँ पूछिए बाबू जी।
0: तेरा ब्याह हुआ कि नहीं पता ना नारायणी, तेरा ब्याह हुआ कि नहीं?
1: क्यों पूछ रहे हैं आप?
0: पहले बताना, बता तेरा ब्याह हुआ कि नहीं?
1: हो गया।
0: क्या?
1: लेकिन अभी गौना नहीं हुआ है।
0: अच्छा नारायणी ये तो बता कि गौना कराकर तुझे ले जाने वाला तेरा मर्द क्या करता है?
1: वो भी इस दुनिया में अकेला है बाबूजी, मजदूरी करके अपना पेट भरता है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा एक बात और बता, क्या वो तुझे पसंद है?

0: बेटा यशवंत, बहुत बुरी खबर है।
1: क्या हुआ शंभू काका, आप बहुत परेशान दिखाई पड़ रहे हैं।
0: सुखदेव, अरे तू तो उसे जानता है ना, जिसे 2 महीने पहले नौकरी से निकाल दिया गया था।
1: हाँ काका।
0: उसने अपनी पत्नी और 3 साल के बेटे को मारकर खुद आत्महत्या कर ली।
1: क्या?
0: चौंकने की जरूरत नहीं है यशवंत, ये तो हम लोगों का भाग्य बन चुका है।
1: अरे कैसा भाग्य काका, आखिर यहाँ के मजदूरों में आत्महत्या की प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है?
0: भूख बेटा, भूख। भूख ही वो कारण है जो जीते जागते इंसानों को मौत को गले लगाने पर मजबूर कर देती है।
1: काका, तो क्या सुखदेव और उसके परिवार की मौत का कारण भी भूख है?
0: हाँ यशवंत, सुखदेव तो मरकर तमाम झंझटों से मुक्ति पा गया। देखना तो यह है कि अगला नंबर किसका है।
1: ऐसा ना कहो शंभू काका, ऐसा ना कहो। काका, इस साइट का अब कोई मजदूर भूख से नहीं मरेगा। ऐसा ना हो इसके लिए हमें शीघ्र ही कोई पुख्ता इंतजाम करना पड़ेगा।
0: बेटा, जब तक मजदूरों की चटनी होती रहेगी तब तक इसे किसी कीमत पर नहीं रोका जा सकता।
1: काका, एक बार, बस एक बार मैं यूनियन का प्रतिनिधि बन जाऊं, उसके बाद कंपनी के अफसरों से छटनी रोकने पर मैं खुद बात करूंगा। और काका, सभी दिहाड़ी मजदूरों को परमानेंट करने का प्रस्ताव भी रखूंगा।

तकदीर भी बदलेगी तस्वीर भी बदलेगी, हिम्मत न हार मंजिल के मुसाफिर, बस मेहनत कर एक दिन जिंदगी भी बदलेगी। मैनो इसी जोश और उमंग के साथ हम फिर हाजिर हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम महिला सभा लेकर। तो बहनों स्वीकार कीजिए अर्चना का नमस्कार। प्रकृति का पोषण करें ताकि भविष्य समृद्ध हो, वन्य जीवों की रक्षा करें, जैव विविधता को संरक्षित करें, प्रदूषण मुक्त पृथ्वी हमारा अधिकार। मैनो सतत विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को तो पूरा करे और साथ ही आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं और संसाधनों से समझौता नहीं करता। मैनो आज विश्व तेजी से औद्योगिकरण, शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि का सामना कर रहा है, जिसके कारण प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में सतत विकास की अवधारणा मानव जीवन, पर्यावरण और आर्थिक प्रगति के बीच संतुलन स्थापित करने का मार्ग प्रदान करता है। मैनो किसी भी समाज का विकास तभी संभव है जब महिलाओं और पुरुषों को समान अवसर प्राप्त हों। लंबे समय तक महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं और निर्णय लेने के अधिकारों से वंचित रखा गया। मैनो इस असमानता के कारण समाज की आधी आबादी अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं कर पाई। सतत विकास लक्ष्य 5 इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है और महिलाओं को समाज के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। मैनो जब महिलाओं को समान अधिकार मिलते हैं तो वे अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इससे आर्थिक विकास तेज होता है, गरीबी कम होती है और जीवन स्तर में सुधार आता है। यही कारण है कि लैंगिक समानता को सतत विकास की आधारशिला माना गया है। मैनो महिला सशक्तिकरण का सीधा संबंध भविष्य के निर्माण से है। पढ़ी लिखी महिला अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार प्रदान करती है। इससे एक जागरूक और जिम्मेदार पीढ़ी का निर्माण होता है जो भविष्य में देश और समाज के विकास में योगदान देती है। मैनो महिलाओं को रोजगार और उद्यमिता के अवसर मिलने से वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनती हैं। इससे परिवार की आय बढ़ती है और समाज की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। मैनो आर्थिक रूप से सशक्त महिलाएं अपने निर्णय स्वयं ले सकती हैं और समाज में आत्मविश्वास के साथ अपनी भूमिका निभा सकती हैं। बहनों हमारा आने वाला कल केवल आर्थिक विकास पर ही निर्भर नहीं है बल्कि पर्यावरण संरक्षण पर भी आधारित है। यदि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण नहीं किया जाएगा तो भविष्य की पीढ़ियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। महिलाएं पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। बहनों ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाएं जल संरक्षण, स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और वृक्षारोपण जैसे कार्यों में अपनी पूर्ण भूमिका निभाती हैं। बहनों जब महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है तो पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यक्रम अधिक प्रभावी बनते हैं। बहनों सतत विकास लक्ष्य 5 इन मूल्यों को और मजबूत करता है। जब महिलाओं को शिक्षा और अवसर मिलते हैं तो वे सांस्कृतिक परंपराओं, कला, साहित्य, संगीत और लोक परंपराओं के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मैनो महिलाएं परिवार की प्रथम शिक्षिका होती हैं। वे बच्चों को संस्कृति, नैतिकता और सामाजिक मूल्यों का ज्ञान देती हैं। इस प्रकार हमारी सांस्कृतिक विरासत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपती हैं, तो हमारी सांस्कृतिक पहचान और अधिक मजबूत होती है। आइए बहनों सुन लेते हैं लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत।

0: बहनों, भारत में महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं में से एक है महत्वपूर्ण लखपति दीदी योजना। इस योजना के अंतर्गत उन महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाता है जो स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं और अपने परिवार की आर्थिक आय 1 लाख या उससे अधिक तक पहुँचाना चाहती है। सरकार का उद्देश्य लाखों ग्रामीण महिलाओं के उद्यमिता और स्वरोजगार के माध्यम से आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। बहनों, इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जैसे कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, सिलाई कढ़ाई, डिजिटल सेवाएं तथा अन्य प्रकार के छोटे छोटे व्यवसाय। मैंने इसके अतिरिक्त महिलाओं को ऋण सुविधाएं, बाजार से जुड़ाव और तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाती है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं सामूहिक रूप से कार्य करती हैं और अपने व्यवसाय का विस्तार करती हैं। बहनों, लखपति दीदी योजना ने ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। इससे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और वे परिवार तथा समाज में अधिक सम्मान प्राप्त कर रही हैं। अनेक महिलाएं छोटे व्यवसाय स्थापित कर अपने परिवार की आय में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इस योजना ने महिलाओं को केवल आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी सशक्त बनाया है। हालांकि बहनों, यह योजना अत्यंत लाभकारी है, फिर भी कुछ चुनौतियां मौजूद हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और जागरूकता की कमी, बाजार तक सीमित पहुंच व तकनीकी ज्ञान का अभाव कई बार महिलाओं की प्रगति में बाधा बनता है। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए निरंतर प्रशिक्षण और मार्गदर्शन आवश्यक है। बहनों, यह कहा जा सकता है कि लखपति दीदी योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बहनों, इस योजना का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जाए तो लाखों महिलाएं अपने जीवन में समृद्ध और आत्मविश्वास का नया अध्याय लिख सकती हैं।
1: बहनों, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहनों, आप सभी ने अपनी दादी, नानी, मम्मी को जरूर सुनते हुए देखा होगा रेडियो, जिसको सुनने के बाद उन्हें सुकून महसूस होता था। तो आइए बहनों, हम बातचीत करते हैं अपनी दादी की नातिन श्रुति शर्मा से, दादी की याद में सुखद रेडियो के अनुभव।
2: नमस्ते, मेरा नाम श्रुति शर्मा है। आकाशवाणी का जब भी नाम सुनती हूँ तो और अपनी दादी से पूछती हूँ कि उनके क्या अनुभव रहे हैं आकाशवाणी और रेडियो के साथ खासतौर पर, तो वो बताती हैं कि रेडियो मात्र उनके लिए मनोरंजन का साधन नहीं था, रेडियो उनके लिए बाहरी दुनिया से जुड़ने का एकमात्र माध्यम था। पुराने समय में पूरे घर में एक ही रेडियो हुआ था और वो उसी को पूरा परिवार बैठकर उसके विभिन्न कार्यक्रमों को सुनता था। वो बताती हैं कि पुराने समय में विविध भारती के बहुत से ऐसे प्रोग्राम आते थे जिसमें कि फिल्मी गीत आते थे और वो कहती हैं कि वो फिल्मी गीतों का इंतज़ार उन कार्यक्रमों का इंतज़ार बहुत बेसब्री से किया करती थी जिससे वो नए फिल्मी गीत उस समय के सुन पाएँ। और वो बताती हैं कि केवल मनोरंजन ही नहीं, उसमें समाचार, खेल, स्वास्थ्य, शिक्षा और सभी जानकारियाँ भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से दी जाती थी। आकाशवाणी और रेडियो जो है उनके लिए ऐसा एक अनमोल याद है जिसका नाम लेते ही उनके चेहरे पर खुशी अलग ही दिखाई पड़ती है, जिससे उनकी सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। वो कहती हैं रेडियो हमारे लिए ऐसा है जैसे रेडियो और आज के समय में जो इंटरनेट, मोबाइल और मनोरंजन के और भी जो साधन चल रहे हैं तो उसमें फ़र्क ये बताती हैं कि रेडियो हमारे लिए ऐसा है जैसे मटके का पानी और बाकी जो अभी चल रहे हैं इंटरनेट और मोबाइल, ये साधन ऐसे हैं जैसे फ्रिज।

0: प्यार करती थी। और जब कोई और रेडियो लिया रहे तो वो उन सोचती थी कि ये कब हटे और मैं बैठूं रेडियो के सामने और अपना प्रोग्राम। बच्चे बूढ़े जवान, तो जो बूढ़े लोग हुआ करते थे बताती हैं कि वो समाचार और ये स्वास्थ्य शिक्षा की सभी जानकारियां लेते थे। और फिर जो अभी जवान लोग रहे थे, जैसे वो खेल और बाकी जो विभिन्न समाचार उनको सुना करते थे। और जो फिल्मों के शौकीन हुआ करते थे वो फिल्मी गीत और जो भी फिल्म अभिनेताओं वगैरह के जो साक्षात्कार इंटरव्यू आया करते थे उनको सुना करते थे, जिससे वो उस दुनिया से जुड़ पाएँ।
1: आपकी दादी अपने आप को कैसे अनुभव किया करती थी रेडियो के साथ?
0: मेरी दादी जो हैं वो सभी प्रोग्राम सभी तरीके के प्रोग्राम सुना करती थी। जब बच्चों का प्रोग्राम आया करता था तो वो बच्चा बन जाती थी, युवाओं में का प्रोग्राम आया करता था तो उनमें उत्साह और उमंग भर जाता था, और जब भी फिल्मी गीत आते थे तो वो उसी मतलब उस फिल्मों के प्रति इतनी उत्सुक हो जाती थी कि जैसे वो उसी सेट पर हों। तो सभी प्रोग्रामों को बड़े ही उत्साह के साथ सुना करती थी, चाहे प्रोग्राम कोई भी आए, रेडियो उनके लिए ऐसा साधन था।
1: दादी अब आपकी बोल नहीं पा रही हैं, अच्छे से बोल नहीं पा रही हैं, लेकिन आपको इतना अच्छा अनुभव करा दिया है उन्होंने रेडियो के बारे में कि आपको भी इच्छा होती होगी कि हम भी दादी के ज़माने में हुआ करते थे।
0: दादी मुझे सीख दिया करती हैं कि जो इंटरनेट और जो आजकल के साधन हैं इनको छोड़कर रेडियो भी सुना जाए। तो मैं भी कभी कभी रेडियो सुन लेती हूँ और जो उसमें गीत आते हैं वो भी मैं कभी कभी गुनगुना लेती हूँ। रेडियो ने बहुत प्रभाव डाला है, जो मतलब जेन जी जो अभी हमारी जनरेशन चल रही है उसमें वो भी कई बार सोचती है कि वो भी रेडियो सुने, मगर जो मिलेनियल्स और उससे पहले की जनरेशन है उनके जीवन का रेडियो और आकाशवाणी एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, जिसमें उन्होंने अपना पूरी युवावस्था और अपना बचपन बिताया है।
1: श्रुति जी आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हमें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बहनों अब सुन लेते हैं गीत

बहनों बाजार में पुदीना खूब आ रहा है और पुदीना तो एक सुगंधित औषधीय पौधा है जिसका उपयोग भोजन, पेय पदार्थों और आयुर्वेदिक उपचारों में किया जाता है। इसके लाभ भी बहुत हैं। यह पाचन को बेहतर बनाता है, मुख की दुर्गंध दूर करता है, सर्दी जुकाम में राहत पहुंचाता है, शरीर को ठंडक प्रदान करता है, त्वचा के लिए भी लाभकारी है पुदीना। मैंने पुदीना कम कैलोरी वाला होता है। यह भोजन का स्वाद बढ़ाने का एक अच्छा प्राकृतिक तरीका है। इसीलिए बहनों आज हम लेकर आए हैं पुदीने की चटनी बनाने की आसान विधि, जिसके लिए सामग्री इस प्रकार है। एक कप ताजे पुदीने के पत्ते, आधा कप हरा धनिया, दो से तीन हरी मिर्च, एक छोटा टुकड़ा अदरक का, एक से दो लहसुन की कलियां, एक बड़ा चम्मच नींबू का रस, आधा छोटा चम्मच भुना जीरा, स्वादानुसार नमक, दो से तीन बड़े चम्मच पानी। मैंने बनाने की विधि इस प्रकार है। पुदीने और हरी धनिया को धो लें, फिर मिक्सर में पुदीना, धनिया, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन डालें, फिर इसमें नमक, भुना जीरा और नींबू का रस मिलाएं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पीस लें, फिर एक कटोरी में निकाल लें। लीजिए तैयार हो गई आपकी पुदीने की हरी हरी चटनी, जिसका आनंद आप समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी सभी के साथ ले सकते हैं और रोज के खाने का भी स्वाद बढ़ा सकते हैं। आइए बहनों अब सुन लेते हैं नमक हलाल फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज दी है किशोर कुमार और आशा भोसले ने।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति था। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है नरेश सिंह बघेल द्वारा गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं नरेश सिंह बघेल द्वारा गाए लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नरेश सिंह बघेल द्वारा गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है डॉक्टर अंजू उपाध्याय द्वारा गाए भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अंजोपाध्याय द्वारा गाए भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति थी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी,
2: मैं डॉक्टर अजय सिंह। आकाशवाणी 9 दशकों से भारत की आवाज रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।
3: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा, स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है यार रहमान की आवाज में फिल्म तेरे इश्क में से।

इरशाद कामिल के लिखे बोल, ए आर रहमान का संगीत और उन्हीं की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म तेरे इश्क में से। कार्यक्रम का अगला गीत प्रस्तुत है आपके लिए नीति मोहन की आवाज़ में फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही से।

0: हनी बनी का संगीत सागर के लिखे बोल, नीति मोहन की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही से, और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच 2026 का आयोजन आज इंदौर में किया जा रहा है। इस मंच में 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार और निवेश के नए अवसरों की खोज करना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान विनिर्माण सत्र में फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, वस्त्र और खाद्य प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वहीं सेवा सत्र में आईटी, पर्यटन, फिनटेक और शिक्षा को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय निशुल्क कैंसर जांच एवं परामर्श शिविर का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम जल्द ही विदिशा मेडिकल कॉलेज में सभी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं।
1: हम विचार कर रहे थे कि टाटा मेमोरियल की यूनिट कैसे लाएं, तो दो चीजें आई, एक परमानेंट अस्पताल बनाना है, उसमें तो समय लगा, लेकिन जिनको आज कैंसर है उनका क्या करें, वो इंतजार नहीं कर सकते 3 साल 4 साल, कि बाकी प्रक्रियाएं पूरी होती रहेगी, सुविधाएं तत्काल।

नेपाल मेडिकल कॉलेज विदिता में हम लोग प्रारंभ करते हैं। ये स्क्रीनिंग का, जांच का और परामर्श का शिविर लगाया जाए, हम वो चीजें जो आज जरूरी कर लें। डे केयर सेंटर यहाँ टाटा मेमोरियल यहाँ शुरू करेगा, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं।

0: पिछले 24 घंटों में 20 से अधिक जिलों में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज गुना, अशोकनगर, विदिशा, सीहोर, देवास, हरदा और बैतूल जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां तेज आंधी, गरज चमक और भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर संभागों के कई जिलों में आंधी और बारिश की संभावना है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और खुले स्थानों से बचने की सलाह दी गई है। प्रदेश के मंडला जिले में आज तड़के बीजाडांडी थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर तीर्थयात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में करीब 25 यात्री घायल हो गए, जिनमें 11 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी गंभीर घायलों को बेहतर उपचार के लिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। वहीं शाजापुर जिले में कल देर रात राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर मजदूरों से भरी एक बस आगे चल रहे लकड़ी से लदे ट्रक से जा टकराई। हादसे में बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 18 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक कुशल रणनीतिकार और महायोद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संदेश में कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने साहस और शौर्य से मराठा साम्राज्य के विस्तार के साथ मुगल शासन को प्रभावहीन कर दिया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंडला जिले के ग्राम दाड़ी में आयोजित रात्रि चौपाल में कलेक्टर ने ग्रामीणों से जनसंवाद किया। जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में हरित पर्यावरण और स्वस्थ भविष्य के लिए औषधीय पौधे विषय पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीआरपीएफ नीमच के मेन्स क्लब में 25 जून को पेंशन अदालत एवं कल्याण एवं पुनर्वास बैठक का आयोजन किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नर्मदापुरम जिले की नगर पालिका परिषद को वर्ष 2024-25 का वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया। झाबुआ कलेक्टर कार्यालय परिसर एवं कार्यालयीन उद्यान में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। CBSE ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
2: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। राज्य वित्त आयोगों के लिए डाटा सेट संबंधी समिति की रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंता नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट का जारी होना राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए प्रमाण आधार को मजबूत करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मंत्रालय के अनुसार यह रिपोर्ट राज्य वित्त आयोगों के लिए आवश्यक प्रमुख डाटा सेटों का एक सुव्यवस्थित और व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
3: Partnership that we have with Nepal.
0: भारत के 3 दिन के दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE

0: सी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। सीबीएसई ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत भारत स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
1: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में निरंतर निवेश का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, होर्मुज जलटमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रेजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
2: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। मौसम

0: विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारायकाल में अगले दो दिन में तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में बिजली चमकने और तेज हवाओं का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीते दिनों की गर्मी के बाद सुहावने मौसम से जनजीवन को काफी राहत मिली है।
1: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजम दर्रों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि, वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने IPL 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति हैं और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति हैं। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने ये बात कही। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम का प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आज आयोजन किया गया। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरत ही नहीं करता, बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रक्षा तवर। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जहां आपको हम सुनाते हैं आपके पसंद के गीत और आपके पत्रों को भी हम शामिल करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के पहले गीत के साथ, जो है कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। साथ है मोहम्मद अजीज़ और फिल्म का नाम है खुदा गवाह। इस गीत की फरमाइश हमें आई है छत्तीसगढ़ से, देवरी भाटापारा से। लिखा है हमारे श्रोता गनूलाल रजक, KR साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश मिस्त्री ने। इसके अलावा एक और पत्र हमें मिला है, जो कि है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से, हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतिक बिरक और मीका बिरक की तरफ से। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये गीत।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल, मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म खुदा गवाह से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है गोरा और काला और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, कब्रुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा, सालिया, शोएब खान, पोत्रा मुस्तवा खान, रऊफ भाई और शाहिद भाई की तरफ से। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर ने भी हमें पत्र भेजा है। कोटरा नारायणपुर बाबापट्टी पलिया से हमें लिखा है ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने। दिव्या ने वादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल रॉय की भी फरमाइश आई है। और इसके अलावा पटेल नगर मलोट पंजाब से हमें लिखा है रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया और बीवी आरजू जाजौरिया ने। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म गोरा और काला से। कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुन रहे हैं आप और अगली फरमाइश हमें मिली है औरंगाबाद से। लिखने वाले श्रोता हैं राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। इसके अलावा बनिया पारा धमतरी प्रदेश छत्तीसगढ़ से रामचंद माखीजा, श्रीमती सविता माखीजा, स्वाति माखीजा, पूजा शरद और उनका पूरा परिवार। और इन्होंने फरमाइश की है जिस गीत की वो है सलमा आगा की आवाज़ में फिल्म निकाह से। तो लीजिए प्रस्तुत है ये गीत।

रवि का संगीत हसन कमाल के बोल, सलमा आगा की आवाज़ में गीत सुना अपने फिल्म निकाह से। कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है आपकी अगली फरमाइश को सुनने का, और वो है फिल्म नवरंग से आशा भोसले और मन्ना डे की आवाज़ में। और इस गीत की फरमाइश मिली है हमें जयराज प्लॉट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जास्मिन और प्रयागराज भट्ट की तरफ से। इसके अलावा एक और पत्र मिला है हमें लेवई से गुलाबदास, मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, रिंगनी से दिनेश वर्मा, भिलाई से मुकेश शर्मा और दतरेंगी से भागवत वर्मा की तरफ से। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है यह अगला गीत।

0: सी रामचंद्र का संगीत, भरत व्यास के लिखे बोल, आशा भोसले और मन्ना डे की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म नवरंग से। और इसी गीत के साथ अब वक्त हो चला है कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आपसे विदा लेने का। इसी तरह हमें अपने पत्र, अपनी फरमाइशें भेजते रहिए। हमारा पता नोट कीजिए, कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी शामला हिल्स भोपाल 462002। नमस्कार, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच 2026 का आयोजन आज इंदौर में किया जा रहा है। इस मंच में 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय निःशुल्क कैंसर जांच एवं परामर्श शिविर का शुभारंभ किया। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति हैं और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा के दोनों प्रत्याशी तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन दाखिल किया। प्रदेश में आज मेगा अपार आईडी दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान प्रत्येक विद्यालय में सभी विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाई जा रही है। यह आईडी विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों का स्थायी डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने में सहायक होगी। भोपाल की मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में आज शाम 6:30 बजे से महुआ महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन शुरू किया जा रहा है। महोत्सव के पहले दिन राजा लोहांगुड़ी नृत्यनाट्य का आयोजन होगा। मौसम विभाग ने आज गुना, अशोकनगर, विदिशा, सीहोर, देवास, हरदा और बैतूल जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां तेज आंधी, गरज चमक और भारी बारिश की संभावना है। और भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप 2026 हॉकी टूर्नामेंट में फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। जापान के काका मिगाहारा में यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब हम आपको आज की सांध्यकालीन सभा के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण दे दें। शाम 5:02 पर सुनिए युवा साथियों का विशेष कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है। आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कृषि विकास एवं यंत्रीकरण के प्रसार में आकाशवाणी का योगदान विषय पर भेंटवार्ता सुनिएगा डॉक्टर C.R. मेहता से आज शाम 6:00 बजे। शाम 6:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम PM मोदी के 12 साल, मध्य प्रदेश बना चीतों का घर। रात 7:21 पर सुन सकेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान प्रसारित होगा शाम 7:45 पर। समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष युवा शक्ति कार्यक्रम सुनिएगा रात 8:00 बजे। 9:30 पर सुन सकेंगे कार्यक्रम साहित्य भारती। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में रात 10:00 बजे सुनिएगा ऋषिकेश गंगुरडे का ख्याल गायन। इन दोनों कार्यक्रमों को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी भोपाल है। अब हमारी ये सभा मीडियम वेव पर समाप्त होती है। शाम 5 बजे से मीडियम वेव पर सभा पुनः आरंभ होगी। इस दौरान डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा। ये आकाशवाणी भोपाल है। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए नरेश सिंह बघेल द्वारा गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

अभी आप सुन रहे थे नरेश सिंह बघेल द्वारा गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति थी। ये आकाशवाणी भोपाल है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है डॉक्टर अंजू उपाध्याय द्वारा गाए भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अंजू उपाध्याय द्वारा गाए भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति थी। ये आकाशवाणी भोपाल है और लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है लकी अली की आवाज़ में। फिल्म का नाम है कहो ना प्यार है।

राजेश रोशन का संगीत, इब्राहिम अश्क के लिखे बोल, लकी अली और राम्या की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म कहूँ ना प्यार है से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म सरफरोश से।

जतन ललित का संगीत, समीर के लिखे बोल, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म सरफरोश से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है अभिजीत और नीरजा पंडित की आवाज़ में। फिल्म का नाम है खूबसूरत।

जतन ललित का संगीत, गुलजार के लिखे बोल, अभिजीत और नीरजा पंडित की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म खूबसूरत से। कार्यक्रम चित्रपट संगीत का है। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण की आवाज़ में और फिल्म का नाम है मन।

संजीव दर्शन का संगीत, समीर के लिखे बोल, मन फिल्म से अभी आपने गीत सुना उदित नारायण की आवाज़ में। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं शान की आवाज़ में, फिल्म का नाम है प्यार में कभी कभी।

0: विशाल शिराज और सम्राट का संगीत विशाल और राज कौशल के लिखे बोल, शान की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म प्यार में कभी कभी से, और इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की गई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में आयोजित दो दिवसीय निःशुल्क कैंसर जांच एवं परामर्श शिविर का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में भारत लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन व्यापार एवं निवेश फोरम 2026 का शुभारंभ किया। इस मंच में 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवार तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने आज विधानसभा पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने देश भर के हवाई यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उद्देश्य से दो निजी कैब कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को टीम का कप्तान बनाया गया है, जबकि तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। और मौसम विभाग ने आज गुना, अशोकनगर, विदिशा, सीहोर, देवास, हरदा और बैतूल जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहाँ तेज आंधी, गरज चमक और भारी बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी भोपाल है, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान लोक।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज के विज्ञान लोक कार्यक्रम में जिस विषय को लेकर हम आपके बीच हैं वो है ग्रीन बिल्डिंग तकनीक और अपशिष्ट प्रबंधन। आजकल चर्चा में है ग्रीन तकनीक हर जगह, और जब आवासों के निर्माण की बात आती है तो उसमें भी ग्रीन तकनीक का बहुतायत में उपयोग हो रहा है। साथ ही बढ़ती आबादी के साथ अपशिष्ट का प्रबंधन भी जानना जरूरी है, और इस विषय पर जानकारी लेने हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है गौरव वैद्य जी को। गौरव जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम विज्ञान लोक में बहुत बहुत स्वागत।
1: धन्यवाद।
0: बातचीत की शुरुआत करें हम, और जाने सबसे पहले तो इस बात को कि ये जो ग्रीन बिल्डिंग है ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है और क्या आशय है इसका।
1: धन्यवाद मुझे फिर से आप लोगों ने इनवाइट किया उसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रीन बिल्डिंग की अगर हम बात करते हैं कंसेप्ट की या परिकल्पना की, तो हमेशा से ये देखा गया है कि बिल्डिंग्स इट्सेल्फ, मैंने बिल्डिंग अपने आप में ही ऊर्जा का एक काफ़ी मात्रा में उपभोग करती आई हैं हमेशा से।
0: जी,
1: अगर हम विश्व स्तर पर ग्लोबल स्केल पर भी देखते हैं तो लगभग 30% ऊर्जा बिल्डिंग के निर्माण से लेके उसके रखरखाव, उसके परिचालन, ठीक है, उसी में ही उपयोग कर ली जाती है। तो हमेशा से जब ये देखा गया है कि ऊर्जा का बहुत बड़ा जो उपयोग है, उपभोग है, बिल्डिंगें कर लेती हैं, तो 1960 से 70 के दशक के बीच में विश्व स्तर पर लोगों ने सोचना शुरू किया कि इसको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए कि भाई जो ऊर्जा का इतना सारा हम खर्चा करते हैं बिल्डिंग्स के ऊपर, उसको नियंत्रित करने का, सीमित करने का कोई तरीका हो सकता है क्या। समय के साथ जब लोग उसके बारे में सोचने लगे, 1962 में एक किताब प्रकाशित हुई थी, उसका टाइटल था साइलेंट स्प्रिंग्स, जिसके लेखक थे रशेल कार्सन। यूएसए में ये किताब लिखी गई थी और पहली बार इसमें ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट के ऊपर बात की गई थी कि बिल्डिंग्स को कैसे ग्रीन बनाया जाए या बिल्डिंग्स को किस तरीके से ग्रीन तरीके से उपयोग किया जाए। यहाँ पे ग्रीन शब्द का उल्लेख था ऊर्जा संरक्षण के लिए
0: जी,
1: और वहाँ से पहली बार इस शब्द का उद्भव हुआ। और समय के साथ चलते चलते फिर वो कि कैसे लोगों के बीच में उसकी जागरूकता आई, लोगों ने उसको समझा, लोगों ने समझा तो लोगों के समझने के बाद इंडस्ट्री जो थी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, माने इस पूरी की पूरी मकान बनाने वाले, बिल्डिंग्स बनाने वाले, बिल्डिंग्स को सर्विसेज देने वाले, बिल्डिंग्स को उपयोग करने वाले लोग, ठीक है, तो तमाम लोगों को उसके बारे में समझ आई और धीरे धीरे लोगों ने इस आइडिया को, इस कंसेप्ट को स्वीकार किया।
0: बिल्कुल।
1: और धीरे धीरे ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट एक कॉमन कंसेप्ट के रूप में लोगों के बीच में आ गया।
0: जी,
1: मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट में जो एक्सपेक्टेशन है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि पहली बात वाटर एफिशिएंसी मिलनी चाहिए, माने सीमित मात्रा में पानी का उपयोग हो, ठीक है, जिससे पानी का अपव्यय कम से कम हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात एनर्जी एफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी ऊर्जा का कम से कम उपयोग हो और ऊर्जा संरक्षण मिले। तीसरी बात नेचुरल रिसोर्सेस को ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, जैसे कि सूर्य प्रकाश को या फिर ताजी हवा को इतना उपयोग करना है कि आपको सूर्य के प्रकाश के लिए या प्रकाश व्यवस्था के लिए और हवा के लिए आपको एनर्जी साधनों के ऊपर आश्रित रहना ना पड़े।
0: जी,
1: फिर उसके बाद यह है कि स्थानीय स्तर पर किस तरीके से कंस्ट्रक्शन मटेरियल को यूज कर सकते हैं जिससे हैवी मैन्युफैक्चरिंग को कम किया जाए, और जो वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण और तमाम तरीके के प्रदूषण है जो इंडस्ट्री से होते हैं वो भी कुछ हद तक कम होंगे। माने ये परकोलेशन ऑफ द आइडिया उस लेवल तक जाता है सर।
0: अच्छा, बहुत अच्छी और सुगठित प्लानिंग है। हम आगे आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ग्रीन बिल्डिंग के मानक या स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, कैसे परखा जाता है कि ये एक ग्रीन बिल्डिंग होने जा रही है।
1: तो इसमें बेसिकली अगर मानक की बात करें या इसको एवेल्युएट करने की बात करें, तो मुख्य मुद्दा यह है कि एनवायरमेंटली साउंड अप्रोच को अडॉप्ट करना रहता है, जिसमें बिल्डिंग की लाइफ साइकिल पूरी की पूरी, माने बिल्डिंग का प्लानिंग फेज, प्लानिंग के बाद उसका डिजाइनिंग, फिर कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, रिनोवेशन, डिमोलिशन, जितने भी स्टेजेस हैं, सारी स्टेजेस के ऊपर पूरी की पूरी नज़र रखी जाती है, और उन सारी की सारी स्टेजेस के अंदर किस तरीके से ऊर्जा संरक्षण किया जा सकता है, नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व किया जा सकता है, उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि हेल्थी लिविंग स्पेस और बेटर एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। भारत में मुख्य तौर पर 3 ग्रीन रेटिंग सिस्टम्स हैं। पहला कहलाता है गृह, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। गृह
0: जी,
1: जो गृह सिस्टम है ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेरी, टेरी मीन्स द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली के सहयोग से 2007 में बनाया था सर. और इसमें टोटल 34 क्राइटेरियाज हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो बिल्डिंग की प्लानिंग से लेकर डिमोलिशन तक के, तो उसमें तमाम जितने भी एस्पेक्ट हैं और 34 क्राइटेरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करके रेटिंग किया जाता है.
0: अच्छा.
1: दूसरा हमारा जो क्राइटेरिया है या रेटिंग सिस्टम है वो है IGBC, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल. तो ये जो रेटिंग व्यवस्था है ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII ने 2001 में हैदराबाद शहर में प्रस्तावित किया था, जो कि अमेरिका की लीड्स सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया जो जनरल बिल्डिंग स्टैंडर्ड काउंसिल द्वारा दिया गया था, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन, उससे प्रभावित है
0: जी.
1: और इस क्राइटेरिया के बेसिस पे ही इस पूरा का पूरा सर्टिफिकेशन को दिया जाता है, जो कि इवन US की क्राइटेरिया के हिसाब से अनुमोदित है.
0: अच्छा.
1: फिर तीसरा हमारा जो आता है क्राइटेरिया या आपका कहलाता है BEE, ब्यूरो एनर्जी इफिशियंसी का.
0: हाँ.
1: जो इंडियन ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी है उन्होंने ये 2009 में जो एनर्जी कंजर्वेशन एंड बिल्डिंग कोड के अपडेटेड वर्जन के साथ नए दिशा निर्देशों को देखते हुए 5-star रेटिंग क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस किया था
0: जी.
1: और उसके बेसिस पे पूरा रेटिंग देते हैं. मुख्य मुद्दा यही है इसमें कि ऊर्जा एवं पानी का संरक्षण, कचरा एवं प्रदूषण का प्रबंधन, निर्माण कार्यों एवं निर्माण योजना के लिए नवीन एवं कम प्रदूषण करने वाले मटेरियल का प्रयोग तथा बेहतर इन्वायरमेंटल और अच्छी सेहत वाले विषयों को प्रमुखता दी जाती है.
0: बहुत अच्छी बात है. अब बात आती है कि जब हम किसी बिल्डिंग की या भवन की रचना करते हैं तो उसकी डिज़ाइन या मटेरियल सिलेक्शन में या उसमें किस तरह से हम एक इनोवेशन या नवीकरण ला सकते हैं या उसका ध्यान रखते हैं.
1: अगर देखा जाए तो प्लानिंग स्तर से ही इसके लिए प्रयत्न शुरू हो जाते हैं. बिल्डिंग के सभी पहलुओं के ऊपर विचार किया जाता है, जैसे कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति ज़्यादा से ज़्यादा हो और जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति है तो कृत्रिम लाइट की ज़रूरत ही ना पड़े
0: जी.
1: सभी जितने भी हमारे लिविंग स्पेसेस हैं, माने रूम्स कह लें हम, वहाँ पर एयर सर्कुलेशन, हवा का प्रवाह इतना बेहतर हो कि किसी भी परिस्थिति में आपको जहाँ हवा का प्रवाह बेहतर मिलना शुरू होगा वहाँ पर आपको जो कृत्रिम हवा के इक्विपमेंट्स हैं उनको चलाने की ज़रूरत कम हो जाएगी या उसकी इफ़िशियंसी को कम करके चला सकेंगे आप.
0: बिल्कुल.
1: तो वो चीज़ें साथ ही साथ फिर दरवाजे, खिड़कियाँ, वेंटिलेशन, बरामदे कैसे हों, सोलर एनर्जी को या विंड एनर्जी को कैसे प्रयोग करें. फॉर एग्जांपल हमारे संस्थान में भी पानी को गर्म करने के लिए हम लोग सोलर वाटर हीटर यूज़ करते हैं, सोलर पैनल लगा के पार्किंग में हम लाइट जलाते हैं. तो कई सारे छोटे छोटे प्रयोग हमारे संस्थान में हम लोगों ने खुद शुरू किए हैं. भोपाल के कई सारे गवर्नमेंट संस्थाओं में भी वो प्रयोग शुरू किए गए हैं. जैसे अगर बिल्डिंग मटेरियल की बात करें हम ग्रीन बिल्डिंग को ध्यान में रखते हुए, तो ह्यूमिडिटी कंट्रोल ब्रिक्स नाम से ब्रिक्स आ रही हैं जो इस तरीके की ब्रिक्स होती हैं कि वो मॉइस्चर को इस तरीके से मैनेज करती हैं कि ठंड में थोड़ा सा गर्माहट, गर्मी में थोड़ा ठंडक का माने आपको अनुभव हो. जो सेरामिक टाइल्स वगैरह हम घर में यूज करते हैं तो मैग्नीशियम क्रोमाइट का और टाइटेनियम ऑक्साइड का एक MgCr2O4 एंड TiO2 सेरामिक टाइल्स नए इंट्रोड्यूस किए हैं. ये पोरस टाइल्स हैं, पोरस स्ट्रक्चर्ड टाइल्स हैं. इनका भी यही है कि ये कम से कम प्रदूषित करते हैं और टेम्परेचर थर्मल इफिशियंसी इनकी बहुत अच्छी है.
0: अच्छा.
1: साथ ही साथ अगर हम देखें तो एक नया माने कंसेप्ट है इसमें अर्थ टनल एयर कूलिंग सिस्टम, कि आपके कंक्रीट के या आपके सीमेंट के, आपके अलग अलग पाइप के नेटवर्क 3-4 meters आपके फ्लोर लेवल से नीचे और फिर उसके बाद अलग अलग लेयर पे अलग अलग फ्लोर्स के ऊपर बना के कुछ इस तरीके की व्यवस्था की जाती है कि AC का जो आपका बिल है वो मिनिमम से मिनिमम रहे, क्योंकि ठंडा पानी जो प्रवाहित होता है वो टेम्परेचर को वैसे ही कम कर देता है रूम के. तो इस कारण से आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है. लेकिन ये है, ये बिल्डिंग स्केल के ऊपर ज्यादा सक्सेसफुल है. हाउस होल्ड लेवल पे इसको एग्जीक्यूट करने के लिए अभी इसको और बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ विकसित करने की और जरूरत है.
0: जी जी.
1: एक लास्ट चीज मैं आपके साथ जो इसमें थोड़ा और मैंने शेयर करना चाहूंगा, एक 2010 में कंसेप्ट आया है नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग. नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग का मतलब यह है कि एनर्जी को ऑलमोस्ट ऑप्टिमम लेवल तक ऐसा कंज्यूम करें कि जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी है उसी से सब कुछ ऑपरेट हो और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है उनके ऊपर डिपेंडेंसी ऑलमोस्ट खत्म हो जाए. तो ये हमारा आगे का भविष्य है जिसकी तरफ हम बढ़ेंगे.
0: जी जी.
1: अगर भोपाल के स्तर पर मैं देखूं तो जितने भी नए संस्थान बन रहे हैं उनमें बनने वाले नए बिल्डिंग्स में ये सारे के सारे एस्पेक्ट के ऊपर प्रयत्न किया जा रहा है. अगर मैं सोचता हूँ कि इस स्तर पर प्रयत्न होता है तो आगे वाले समय में काफ़ी हद तक हम इसमें सफल हो पाएंगे.
0: जी. अब एक बात हम आपसे और जानना चाहेंगे कि जैसे जैसे आबादी बढ़ती है तो कचरे और अपशिष्ट का प्रबंधन भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है, तो इसमें क्या कुछ हो रहा है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और हमारे शहर भोपाल में?
1: वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो बहुत कुछ हो रहा है। कचरा का जनरेशन माने आपके जो जहाँ से कचरा निकलता है, चाहे हमारे घर हो, दुकानें हो, संस्थान हो, इंडस्ट्री हो, तो सोर्स सेग्रीगेशन शुरू हो चुका है
0: जी।
1: ठीक है, गीला कचरा, सूखा कचरा हम लोग सुनते हैं, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक वेस्ट, उसके बाद मेडिकल वेस्ट या आपका ई वेस्ट, सबको अलग अलग लेवल पे एकत्रित करने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। कुछ हद तक उसमें हमें कामयाबी मिल भी रही है। फिर उसके बाद ये सेग्रीगेशन होने के बाद ट्रांसफ़र करते समय भी ध्यान रखा जा रहा है कि वो अलग अलग ही जाएं
0: जी,
1: ताकि उनका रिसाइकल या रीयूज़ के लिए कहीं कोई उपयोग संभव हो सके और ट्रीटमेंट करते समय उसमें कुछ आसानी मिले। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में अगर हम बात करें तो नेशनल और स्टेट और लोकल माने शहरी स्तर पर हर स्तर पर बहुत सारे प्रयत्न चल रहे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016
0: जी
1: ठीक है प्रकाशित हो चुके हैं। कई सालों से ये हम पुराने जो रूल रेगुलेशंस फॉलो कर रहे थे लेकिन हमारी जो तकनीकी संस्थाएं हैं उन्होंने नए रूल बनाए हैं जो ज्यादा प्रासंगिक है आज की जरूरतों को देखते हुए। और उन सारे रूल्स के अंदर किस तरीके से जहां पर कचरा जनरेट हो रहा है, जहां कचरा आ

0: वहीं से, जैसे घरों से हमारे या दुकानों से, संस्थाओं से, इंडस्ट्री से, वहीं पे उसको कैसे सेग्रीगेट करें, सेग्रीगेट करके किस तरीके से उसको इकट्ठा करके हम रिसाइकलिंग, रीयूज़ के लिए हम उसको भेज सकते हैं, किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करके उसमें से कुछ डेवलप किया जा सकता है, किस तरीके से उसको साइंटिफिक डिस्पोजल के लिए भेजा जा सकता है। अगर हम बात करें भोपाल के परिप्रेक्ष्य में, तो भोपाल में सालों से भानपुर खंती के ऊपर सिर्फ डंपिंग हुआ करता था, और उस डंपिंग के कारण वायु प्रदूषण भी हुआ
1: जी।
0: वहाँ की जमीन का ग्राउंड लेवल है उसके अंदर सॉइल का कंटेमिनेशन हुआ
1: जी।
0: उसके साथ ही साथ आपका जो ग्राउंड वाटर है उसका कंटेमिनेशन हुआ, तो हर एक तरीके से वहाँ पे प्रदूषण फैला। ठीक है, तो जैसे आदमपुर छावनी में साइंटिफिक लैंडफिल साइट प्रपोज किया गया है
1: जी।
0: और ये साइंटिफिक लैंडफिल साइट के अंदर जो लैंडफिलिंग होगा वो प्रॉपर तरीके से साइंटिफिक होगा, जो कम से कम प्रदूषण करेगा और साथ ही साथ कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कचरे को डिस्पोज करने का कैपेसिटी रखेगा।
1: अच्छा, तो वैसे ये जो अपशिष्ट प्रबंधन है इसमें किस तरह की नई तकनीक और प्रयत्न आजकल आए हैं सामने?
0: अपशिष्ट प्रबंधन के अंदर बहुत सारे नए इनोवेशंस हो रहे हैं, बहुत सारे नए आइडियाज़ आ रहे हैं। अभी अगर देखा जाए तो आपका चाहे सेग्रीगेशन, स्टोरेज, रिसाइकल और रीयूज़ के आइडिया को ध्यान में रख के एक सोर्स रिडक्शन अप्रोच अडॉप्ट की गई है। सोर्स रिडक्शन अप्रोच का मतलब यह है कि सोर्स के ऊपर आपका जो जनरेशन ऑफ वेस्ट है उसको मिनिमाइज कैसे करें
1: जी।
0: ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप कंज्यूमशन लेवल पर ही उसको कम करना चाहते हैं, जहां से आपका इंडिविजुअल कंज्यूमशन होता है और फिर उस हिसाब से आपका सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है, तो उस लेवल पे उसको कैसे कम कर सकते हैं और रीयूजेबल और रिसाइकलेबल प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करें
1: जी।
0: तो जो ओवरऑल प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है वो इसमें पूरा बढ़ जाता है और ऑटोमेटिकली आपका कचरे का जो टोटल जनरेशन है वो कुछ कम हो जाता है। दूसरा, अगर कलेक्शन की बात करें तो कलेक्शन के अंदर मोशन टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स आजकल इंट्रोड्यूस हुई हैं, उसमें जीपीएस की मदद से पूरा का पूरा कलेक्शन का जो मूवमेंट है, मोशन है, उसको मैनेज किया जाता है कि भाई कौन सा रोड पे से कचरे वाला गाड़ी कितने बजे से कैसे गुजरेगा, उसको एक पर्टिकुलर लोकेशन से कचरा कलेक्ट करके दूसरी जगह जाके फिर ट्रीटमेंट प्लांट, डिस्पोजल लोकेशन, हर जगह पहुंचने में कितना समय लगेगा, कौन सा रूट के ऊपर भीड़ ज़्यादा है, कौन सा रूट उसका प्रेफर्ड रूट होगा, तो वो पूरा जीपीएस से गाइडेड रहेगा। बहुत माने बेहतर तकनीक है ये। साथ ही साथ जो रिमोट मॉनिटरिंग और कलेक्शन इफिशियंसी टेक्निक, जिसमें एक हमने छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट किया था गुजरात में, जिसमें कि हम लोगों ने हाउस होल्ड लेवल पर बारकोड्स लगाए थे लोगों के दरवाजों के ऊपर।
1: अच्छा,
0: और बारकोड्स के साथ हमारे जो वेस्ट कलेक्टर रहते थे, कचरा लेने वाले जो लोग रहते थे, वो उसका हमेशा सिग्नल माने सेंसर से, उनके पास इंस्ट्रूमेंट रहता था, तो इंस्ट्रूमेंट से सेंसर से उसका पिक लेते थे और वो पिक लेते बराबर हमारे सर्वर में मेन ऑफिस में आ जाता था कि इस घर में से कचरा उठा लिया गया है, तो हर एक घर का यूनिक बारकोड डेवलप करके उस घर के साथ एसोसिएट किया जाता था
1: जी।
0: और उसमें घर वालों के सेफ्टी सिक्योरिटी के फीचर्स भी रखे थे हमने कि हमारे कचरे वाले लोगों से कभी किसी को कोई सुरक्षा का कोई भय ना रहे
1: जी।
0: साथ ही साथ कचरा इकट्ठा हो गया है उसकी जानकारी हमारे पास तुरंत की तुरंत पहुंचे, अगर किसी घर से कचरा लेने वाला नहीं गया है तो हमारे सर्वर में तुरंत पता पड़ जाता था कि इस घर से आज कचरा नहीं लिया गया है।
1: अच्छा,
0: और फिर कचरा जब इकट्ठा कर लिया है तो नेबरहुड लेवल से लोकल एरिया लेवल तक, माने अपने नेबरहुड लेवल से वार्ड लेवल तक, वार्ड लेवल से जोन लेवल तक पूरा मॉनिटरिंग उसमें हो सकता था। तो इस तरीके के कोशिशें चल रही हैं, लेकिन बड़ी स्केल पर, सिटी स्केल पर लाने के लिए इसे हमको थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा
1: जी।
0: तो बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। तो इनको कहते हैं हम हमारी भाषा में एनवायरमेंटली साउंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट विथ हेल्प ऑफ द एनवायरमेंटली साउंड टेक्निक्स।
1: अच्छा
0: जी।
1: और आने वाले समय में जो भारत का रूप है तकनीकी रूप से और जो आपका क्षेत्र है खासतौर पर आर्किटेक्चर, कैसा पाते हैं आप?
0: मैं तो बहुत ज़्यादा माने ब्राइट देखता हूँ हमारे भविष्य को, हमारे बच्चों के भविष्य को, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है, लोगों में बेहतर होने की, आगे बढ़ने की प्रवृत्ति में भी बहुत तुलनात्मक रूप से इम्प्रूवमेंट आया है, इनोवेशंस को लोग एक्सेप्ट करना चाहते हैं। एक जो चीज़ मैं देखता हूँ हमारे लिए एक्चुअल चैलेंज है वो ये है कि हमारे लोगों की अफोर्डेबिलिटी को देखकर हम अफोर्डेबल आस्पेक्ट के ऊपर उनको कैसे संसाधन दिला सकते हैं। अगर हम अफोर्डेबिलिटी को एड्रेस कर पाए तो विश्वसनीयता, तकनीक, योग्यता, बाकी पैमानों पर हम लोग बहुत बेहतर कर पाएंगे मुझे लगता है।
1: बहुत अच्छी जानकारी आज आपके साथ हमने बांटी गौरव वैद्य साहब, ग्रीन बिल्डिंग तकनीक के बारे में और उससे जुड़ी हुई कई और बातें खासतौर पर अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में, इन सारी जानकारियों का और आज के विज्ञान लोक कार्यक्रम में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान लोक, ये आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत है आपके लिए उदित नारायण और सुजाता की आवाज़ में। फिल्म का नाम है हलचल।

नदीम श्रवण का संगीत, समीर के लिखे बोल, शान और साधना सरगम की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म हंगामा से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है। माफ कीजिएगा, गीत अभी आपने सुना उदित नारायण और सुजाता की आवाज़ में फिल्म हलचल से, जिसका संगीत दिया था विद्यासागर ने और बोल लिखे थे समीर ने। कार्यक्रम का अगला गीत जो हम आपको सुनवाएंगे उसे आवाज़ दी है शान और साधना सरगम ने। फिल्म का नाम है हंगामा।

नदीम श्रवण का संगीत समीर के लिखे बोल, शान और साधना सरगम की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म हंगामा से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है सोनू निगम की आवाज़ में, फिल्म है चुप चुप के।

0: हिमेश रेशमिया का संगीत, समीर के लिखे बोल। सोनू निगम की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म चुप चुप के, और इसी चुप चुप के से और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी भोपाल है। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत लीजिए प्रस्तुत है रेडियो धारावाहिक जंग लगी तलवार की पहली कड़ी।
1: प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने।

0: यशवंत, क्या बात है बेटा, तू आज इतना उदास क्यों है?
1: उदास ना हूं तो क्या करूं काका, दलित मजदूरों की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती। शंभू काका, आपने आजादी का आंदोलन तो देखा है ना?
0: देखा है बेटा, कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल हुई थी हमें आजादी। हजारों लाखों देशभक्तों ने अपना बलिदान दिया है इस आजादी को हासिल करने के लिए, मगर क्या हम सचमुच आजाद हो पाए हैं?
1: यही सवाल शंभू काका, ठीक यही सवाल मुझे हर पल झकझोरता रहता है। हार तोड़ मेहनत करने के बाद भी दो जून की रोटी नसीब ना हो, तन ढकने के लिए कपड़ा लत्ता तक ना हो, गोद में खेलने वाले बच्चों को दूध की एक बूंद भी ना मिले, पिचका पेट और उभरा बदन लिए घूमने वालों के लिए भला इस आजादी का क्या महत्व काका?
0: दुख तो इस बात का है बेटा कि हमारे नेता भी हमारी दशा सुधारने के लिए कुछ नहीं करते, बस जुलूस सभाओं में गाल बजाते हैं और भूखी नंगी जनता की तालियां बटोर कर खुद की पीठ थपथपाते हैं।
1: अब इस साई नदी पर चल रहे प्रोजेक्ट को ही ले लो काका, कहने को तो यहाँ पर काम करने वाले मजदूरों की यूनियन बनी हुई है, मगर आज तक यूनियन ने मजदूरों के लिए किया ही क्या है?
0: यूनियन के सारे नेता धूर्त और मक्कार हैं यशवंत।
1: हाँ काका,
0: पहले तो मजदूरों को उकसाते हैं, उनके भले की बात कहते हैं, सदियों से पिस रहे मजदूरों को सब्ज बाग दिखाते हैं, उनसे हड़तालें करवाते हैं और मौका मिलते ही कंपनी के अफसरों से मिल जाते हैं। भूख की आग में जल रहे मजदूरों की दशा पहले से ज्यादा बिगड़ जाती है बेटा।
1: लेकिन काका, ये मजदूर हड़ताल करते ही क्यों हैं?
0: हड़ताल तो यूनियन करती है, हड़ताल करना लोकतांत्रिक अधिकार जो है, मजदूरों को तो विवश होकर यूनियन का साथ देना पड़ता है, नहीं तो कंपनी के अधिकारियों के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं।
1: हाँ?
0: पूरी मजदूरी पर अंगूठा लगवाकर उन्हें आधी मजदूरी दी जाती है।
1: क्या
0: अफसरों के घरों में बेगार भी करनी पड़ती है यहाँ के मजदूरों को। सबसे अधिक दयनीय दशा तो हम दलित मजदूरों की है, गंदगी तक साफ करवाते हैं लेकिन पहनने को जूता तक नहीं देते।
1: हे भगवान, काका क्या जमाना आ गया है, क्या हम लोगों को अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास नहीं करना चाहिए? काका, मैंने तो पढ़ा है कि मजदूरों के लिए कानून बना हुआ है और दलितों के लिए भी अलग कानून है, तो फिर हम लोग कानून से सहायता क्यों नहीं मांगते?
0: बेटा, तू पढ़ा लिखा है, हाई स्कूल पास है, लेकिन तेरे पास व्यावहारिक ज्ञान की कमी है।
1: मैं कुछ समझा नहीं काका।
0: कानून से न्याय मांगने के लिए अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं, वकील को फीस देनी पड़ती है, अरे जब खाने को नहीं है तो मुकदमा लड़ने के लिए पैसा कहाँ से आएगा?
1: लेकिन चाचा, ये यूनियन हम मजदूरों से जो चंदा इकट्ठा करती है, वो सब कहाँ जाता है? क्या उस धन का उपयोग हम मजदूरों के हित में नहीं होता?
0: अरे तू इस साइट पर नया आया है ना, इसलिए कुछ भी नहीं जानता।
1: हाँ?
0: यूनियन का पैसा यूनियन के नेताओं की मौज मस्ती के लिए होता है, सारा पैसा उनकी शराबखोरी में खप जाता है।
1: ओ, मैं समझ गया काका, सब कुछ समझ गया।
0: सच? जरा बता दो क्या समझा?
1: देखो काका, मैं मानता हूँ कि कंपनी का मजदूर होने के कारण उसका अत्याचार सहना तो हम सबकी मजबूरी है, कंपनी के सामने सारे मजदूर भाई लाचार और विवश हैं, लेकिन काका यूनियन नेताओं के सामने भला कैसी विवशता? अरे यूनियन का पैसा मजदूरों के खून पसीने की कमाई है, मजदूरों का ब्लड बैंक है यूनियन का फंड।
0: बड़ी बड़ी बातें बनाना आसान है बेटा, मगर उस पर अमल करना उतना आसान नहीं है जितना तू समझ रहा है।
1: काका, अगर मुझे मौका मिले ना तो मैं यूनियन की तस्वीर बदल सकता हूँ, मजदूरों का भाग्य पलट सकता हूँ मैं। लेकिन काका, क्या एक दलित मजदूर को यूनियन की नुमाइंदगी करने का मौका मिलेगा?
0: भाई आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मुझे आशा की एक किरण दिखाई दे रही है।
1: अरे आप तो बहुत सालों से यहाँ हैं काका, कंपनी की नौकरी करते हुए आपको 20 बरस हो गए हैं, अब काका आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हाँ हाँ हाँ
0: तू नया जरूर है बेटा, है भी नई पीढ़ी का। तेरा जोश देखकर उम्मीद बंधी है कि अब हमारा उद्धार जरूर होगा। मेरी बात ध्यान से सुन।
1: हाँ काका।
0: तेरा पढ़ा लिखा होना तेरे साथ साथ हम सब के लिए वरदान बन सकता है। तुझे यूनियन में नुमाइंदगी दिलवाने के लिए मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा।
1: अब शंभू काका, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा मतलब आपकी योजना क्या है?
0: यूनियन का नेता राम बहादुर साल भर का चंदा डकार गया और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई।
1: अच्छा,
0: अब जाकर पता चला तो उस पर अभियोग लगाया गया है। यूनियन की आम सभा में इस अभियोग का निर्णय सुनाया जाएगा।
1: तो फिर काका?
0: अरे फिर क्या, अगर राम बहादुर को यूनियन से हटाया गया तो उसकी जगह किसी दूसरे प्रतिनिधि को रखा जाएगा। अरे तू पढ़ा लिखा तो है ही, समझदार भी है। दलित मजदूरों की ओर से मैं तेरे नाम का प्रस्ताव रखूंगा।
1: सच काका, सच। लेकिन काका, क्या यूनियन इस बात के लिए सहमत होगी?
0: भाई इस विषय में अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ इतना जरूर है कि कोशिश

0: करने पर सफलता हमारे कदम चूम सकती है। लेकिन यशवंत,
1: हाँ काका,
0: यूनियन का प्रतिनिधि बनकर अगर तू भी दूसरे नेताओं जैसा बन गया तो हमारा क्या होगा है?
1: ऐसा कभी नहीं होगा शंभू काका, ऐसा कभी नहीं होगा। आज हम अपने हालात के सामने विवश हैं, लेकिन काका कल हालात हमारे सामने विवश होंगे, ये मेरा वादा है आपसे।
0: ठीक है बेटा।
2: अरे वाह, क्या हुस्न है, क्या खूबसूरती है, ऐसा लगता है जैसे परी आसमान से उतरकर जमीन पर आ गई हो। हाय हाय हाय हाय, और फिर पानी में नहाती हुई परी, इसकी एक फोटो खींचता हूँ।
3: हाय भैया, आसमान पर बादल भी नहीं है जो बिजली चमकती, फिर ये बिजली जैसी क्या चमकी, लगता है कोई भूत प्रेत है, यहाँ से चलना चाहिए, जाने क्या अनहोनी हो जाए हम। आप कौन हो बाबू, पराई नारी को नहाते हुए छुप छुप कर देखते हो, आपको लाज नहीं आती?
2: अरे ना ना ना ना ना ना ना, अभी पानी से बाहर ना निकलना, पानी में खड़ी हुई तो किसी परी से कम थोड़ी लग रही हो। जरा तेरी कुछ तस्वीरें खींच लूँ।
3: आप मेरी तस्वीरें खींचेंगे बाबू? पर मैं तो आपको जानती तक नहीं।
2: अरे मैं चौधरी हूँ, यहाँ के मैनेजर का छोटा भाई, शहर से घूमने आया हूँ यहाँ।
3: मैनेजर के छोटे भाई हैं आप?
2: हाँ हाँ, क्यों मेरी बात का विश्वास नहीं?
3: लेकिन बाबू, आप मेरी तस्वीरें क्यों लेना चाहते हैं?
2: वो क्या है कि मैं सुंदरता की पूजा जो करता हूँ, बस जहाँ भी सुंदरता देखी तुरंत इस कैमरे में कैद कर लेता हूँ।
3: बाबू, आप मेरी तस्वीरें मुझे दिखाएंगे ना?
2: हाँ, क्यों नहीं, जरूर दिखाऊंगा।
3: तो ठीक है, फिर खींचो मेरी फोटो।
2: अच्छा, थोड़ा मेरी तरफ देखो।
3: ये?
2: थोड़ा दूसरी तरफ घूमो।
3: ये ऐसे?
2: हाँ। अब जरा मेरी तरफ देख कर मुस्कुराओ। अब थोड़ा बैठ कर दोनों हाथ उधर करो।
3: ऐसे बाबू?
2: ऐसे हाँ, एक हाथ थोड़ा और ऊपर। बस बस बस बस बस, कितनी तस्वीरें बहुत हैं। जरा नदी से बाहर तो निकलो।
3: बड़ी बेशरम है आप, अपने सामने ही मुझे बाहर आने के लिए कह रहे हैं, ऐसे कैसे?
2: कमाल है, लेकिन थोड़ी देर पहले तो तू ऐसे ही बाहर निकलना चाहती थी।
3: तब की बात और थी।
2: अच्छा,
3: तब मैं यहाँ से भाग जाना चाहती थी। अच्छा बाबू, चलो तुम मुंह घुमाकर खड़े हो जाओ।
2: अच्छा अच्छा, समझ गया। लो लो, मैंने ये मुंह घुमा लिया।
3: देखो, जब तक मैं ना कहूँ इस ओर मुँह ना करना।
2: जो आज्ञा देवी जी।
3: आपने आपने मुझे देवी जी कहा?
2: आपने नाम तो बताया नहीं, तो देवी जी ही कहना पड़ा।
3: मेरा नाम नारायणी है बाबूजी। बाबूजी, अब आप मेरी ओर घूम सकते हैं, मैं कपड़े बदल चुकी हूँ।
2: अच्छा अच्छा, चलो मैं घूम गया। भाई नाम तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, नारायणी। यानी देवी, सौंदर्य की देवी यानी नारायणी। सच नारायणी, तुम बहुत सुंदर हो।

0: पूछिए बाबू जी।
1: तेरा ब्याह हुआ कि नहीं? पता ना नारायणी, तेरा ब्याह हुआ कि नहीं?
0: क्यों पूछ रहे हैं आप?
1: पहले बताना, बता तेरा ब्याह हुआ कि नहीं?
0: हो गया।
1: क्या?
0: लेकिन अभी गौना नहीं हुआ है।
1: अच्छा नारायणी, ये तो बता कि गौना कराकर तुझे ले जाने वाला तेरा मर्द क्या करता है?
0: वो भी इस दुनिया में अकेला है बाबूजी, मजदूरी करके अपना पेट भरता है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा एक बात और बता, क्या वो तुझे पसंद है?

0: बेटा यशवंत, बहुत बुरी खबर है।
1: क्या हुआ शंभू काका, आप बहुत परेशान दिखाई पड़ रहे हैं।
0: सुखदेव, अरे तू तो उसे जानता है ना, जिसे 2 महीने पहले नौकरी से निकाल दिया गया था।
1: हाँ काका।
0: उसने अपनी पत्नी और 3 साल के बेटे को मारकर खुद आत्महत्या कर ली।
1: क्या?
0: चौंकने की जरूरत नहीं है यशवंत, ये तो हम लोगों का भाग्य बन चुका है।
1: अरे कैसा भाग्य काका, आखिर यहाँ के मजदूरों में आत्महत्या की प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है?
0: भूख बेटा, भूख। भूख ही वो कारण है जो जीते जागते इंसानों को मौत को गले लगाने पर मजबूर कर देती है।
1: काका तो क्या सुखदेव और उसके परिवार की मौत का कारण भी भूख है?
0: हाँ यशवंत, सुखदेव तो मरकर तमाम झंझटों से मुक्ति पा गया। देखना तो यह है कि अगला नंबर किसका है।
1: ऐसा ना कहो शंभू काका, ऐसा ना कहो। काका इस साइट का अब कोई मजदूर भूख से नहीं मरेगा। ऐसा ना हो इसके लिए हमें शीघ्र ही कोई पुख्ता इंतजाम करना पड़ेगा।
0: बेटा जब तक मजदूरों की चटनी होती रहेगी तब तक इसे किसी कीमत पर नहीं रोका जा सकता।
1: काका एक बार, बस एक बार मैं यूनियन का प्रतिनिधि बन जाऊं, उसके बाद कंपनी के अफसरों से छटनी रोकने पर मैं खुद बात करूंगा। और काका सभी दिहाड़ी मजदूरों को परमानेंट करने का प्रस्ताव भी रखूंगा।
0: अरे हाँ, यूनियन के नाम पर अच्छा याद दिलाया, अगले महीने की 10 तारीख को यूनियन की आम सभा बुलाई है। राम बहादुर की यूनियन की वर्दी उतरना निश्चित है। यूनियन में तेरा नाम शामिल करवाने का अगर ये मौका हम चूक गए तो फिर ऐसा सुनहरी अवसर फिर कभी नहीं आएगा।
1: आप बिल्कुल ठीक कहते हैं शंभू काका, हमें इस मौके को हर हाल में भुनाना है। काका जब तक यूनियन में दलित मजदूरों का प्रतिनिधि नहीं होगा तब तक उनकी दशा सुधारी नहीं जा सकती।
0: मैं तेरी बात से सहमत हूँ यशवंत।
1: काका आप एक काम कीजिए, आप सभी दलित मजदूरों को आम सभा में उपस्थित रहने के लिए कह दीजिए।
0: ठीक है।
1: यूनियन में दलित मजदूरों को आज तक जिस अधिकार से वंचित रखा गया है इस बार हम अपना वो अधिकार लेकर रहेंगे।
0: दलित मजदूर तो एक है यशवंत, इसके अलावा मैं दूसरे मजदूरों का मन भी टटोलता हूँ, शायद उनका समर्थन भी हमें मिल जाए।
1: और इस काम में मैं भी आपका साथ दूंगा काका।
0: और हाँ, लिचू भी हमारे साथ है, अब कामयाबी अधिक समय तक हमसे दूर नहीं रह सकती।
1: काका तब तो समझो कि सभी दिहाड़ी मजदूरों को साल भर काम की गारंटी और काम का पूरा भुगतान तुरंत करने का नियम भी जल्दी बन जाएगा। और काका तब कोई भूख से नहीं मरेगा, हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ेंगे, हमारे सभी मजदूर भाई खुशहाल होंगे। काका खुशहाल,
0: तेरे मुंह में घी शक्कर बेटा, भगवान करे ऐसा शुभ दिन जल्दी आए।
1: हाँ काका।
2: मेरी नारायणी, कैसी होगी मेरी नारायणी, मेरी जीवन संगिनी। सोचा था उसके माँ बाप की मौत के तुरंत बाद उसे घर ले आऊं, मगर क्या करता, क्या करता मैं, उन दिनों बेकार जो था, अपना पेट भरना ही मुश्किल था, उस बेचारी का कहां से भरता। वो सोचती तो जरूर होगी कि संकट की घड़ी में उसका मर्द भी उसके किसी काम नहीं आ सका। बेचारी मजूरी कर रही है, मजूरी करना कोई पाप नहीं है, सबसे बड़ा पाप तो गरीबी और भूख है। अगर गरीबी और भूख ना रहे तो धरती पर पाप का बोझ ही क्यों बढ़े। ठीक है, अब मैं इस बीमार गरीब ब्राह्मण की देखरेख का काम कर रहा हूं, मगर इसके पास मुझे देने के लिए है भी क्या, बेचारा आप ही कई कई दिनों तक भूखा रहता है, मैं उसे यूं भी तो छोड़कर नहीं जा सकता। इंसानियत के नाते ही सही, लेकिन उसकी सेवा करना तो मेरा फर्ज है। मगर नारायण, अगले महीने ही तो गौना करवाना है, लेकिन मेरी गांठ में तो फूटी कौड़ी तक नहीं। अरे कैसे होगा ये सब?

0: लगता है ब्राह्मण जा गया है, उसे प्यास लगी है, मैं जाकर उसे पानी पिलाता हूँ। ब्राह्मण महाराज, ब्राह्मण महाराज, महाराज लीजिए, आप पानी पीजिए, लीजिए लीजिए,
1: लाओ बेटा
0: लीजिए।
1: भगवान तुझे लंबी आयु दे बेटा।
0: महाराज,
1: बेटा तू मेरी निस्वार्थ भावना से सेवा कर रहा है, भगवान तुझे हमेशा सुखी रखे बेटा।
0: ब्राह्मण महाराज, आपके साथ मेरा भी खाली समय कट जाता है। महाराज, एक बात समझ में नहीं आता।
1: कौन सी बात बेटा?
0: महाराज, आप रहने वाले तो इलाहाबाद के हैं।
1: हाँ,
0: आपका भरा पूरा परिवार है, फिर आप यहाँ आकर अकेले क्यों रह रहे हैं?
1: यह एक दुख भरी कहानी है शिबू बेटा। जब से मुझे ये निगोड़ी टीबी की छूत की बीमारी लगी है बेटा, तब से मेरे अपने सगों ने मुझे टुकरा दिया है। सगों के सामने तिल तिल करके मरने से तो अच्छा है कि कहीं दूर एकांत में अपने अंतिम दिन व्यतीत।
0: आपको तो बहुत तेज खांसी हो रही है, आप रुकिए, मैं आपको पानी देता हूँ। ये लीजिए पानी और पीजिए, ये लीजिए
1: बेटा लाओ।
0: महाराज, आपके बलगम में तो खून भी है।
1: शायद मेरी बीमारी अंतिम चरण में है बेटा।
0: महाराज, महाराज,
1: बेटा बेटा
0: जी महाराज,
1: एक बात बताएगा?
0: जरूर जरूर पूछिए महाराज।
1: बेटा, क्या क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता?
0: महाराज, भला मैं आपसे क्यों डरने लगा?
1: बेटा, तू मेरे कपड़े धोता है, मेरी गंदगी साफ करता है, तुझे किसी टीबी हो सकती है बेटा। इस भयानक बीमारी से तू नहीं डरता क्या?
0: ब्राह्मण देवता, हम गरीबों की सबसे बड़ी बीमारी तो भूख है, फिर ये टीबी जैसी छोटी छोटी बीमारियों से क्या डरना?
1: तू ठीक कहता है शिबू बेटा। हाँ, बीमार इंसान तो फिर भी कुछ दिन जी लेता है बेटा, लेकिन लेकिन भूखा इंसान ना ना ना ना, भगवान किसी को भूख का रोग ना दे बेटा।
0: हाँ महाराज, ठीक कहते हैं आप,
1: भूख का रोग ना दे।
0: महाराज, महाराज समझिए, महाराज आपकी खांसी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। महाराज, अब आप आराम कीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। समझिए समझिए महाराज।
1: हाँ बेटा, मेरी सांस कब रुक जाए बेटा, कोई भरोसा नहीं। मैं बेटा तुझसे एक विनती करना चाहता हूँ।
0: महाराज, आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों का स्थान देवताओं के बराबर होता है। देखिए महाराज, विनती करके आप मुझे नरक में ना धकेलिए, आप मुझे आदेश दीजिए।
1: बेटा बेटा, तुझे ध्यान होगा कि जब मैं 3 दिनों से भूखा था तो तूने मुझे अपने घर से रोटी लाकर खिलाई थी।
0: हाँ महाराज, मुझे अच्छी तरह याद है।
1: मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है बेटा, तू इस बात का कभी किसी से कोई जिक्र नहीं करेगा, इस बात का भी नहीं कि मैं तेरे हाथ का पानी पीता था। हाँ बेटा।
0: ब्राह्मण महाराज, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं आपका यह विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा।
1: बेटा बेटा, ये नहीं पूछेगा कि ऐसा करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं।
0: इसमें पूछने की क्या बात है महाराज?
1: तू तो बहुत समझदार है ऋषभू।
0: महाराज, आप किसी भी तरह की चिंता न करें। अपमान का घूंट पीना तो हम दलितों के लिए रोजमर्रा की बात है। महाराज, मैं आपके सम्मान की रक्षा अपने प्राण देकर भी करूंगा, आप निश्चिंत रहें महाराज।
1: जीते रहो बेटा, जीते रहो बेटा, जीते रहो।

0: क्या बात है नारायण जी, तो रो क्यों रही है?
1: बसुमती काकी, मेरे सपनों का राजकुमार मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया।
0: कौन चला गया? वो चौधरी?
1: हाँ काकी, हाँ, उसने मुझे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया। क्या मेरे की चमक दमक में मैं इतना खो गई कि कुछ कुछ होश ही नहीं रहा। होश तो तब आया जब उसकी शादी की बात सुनी।
0: क्या?
1: कहा कि वो अपना ब्याह करने गया है। अब मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा काकी?
0: नारायणी, ना, ओ अभी रोना धोना बंद कर। मैंने तो तुझे पहले ही समझाया था कि बाबू बाबू के चक्कर में ना पड़। चल छोड़, जो हो गया सो हो गया। नारायणी, उसे भूल जाने में ही तेरी भलाई है।
1: कैसे भूल जाऊं काकी, कैसे भूल जाऊं?

संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जंग लगी तलवार का भाग एक। आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण।

दोस्तों, जंगलों में घूमना, नदी पहाड़ों की सैर करना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन कैसा लगेगा जब आपसे ये सभी चीजें और आपका अधिकार छीन लिए जाएं? जाहिर है, आप अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और उन्हें वापस पाना चाहेंगे। ऐसा हुआ भी है, कब और कहां जानते हैं आज की युवाणी में। दोस्तों, आकाशवाणी के रीवा केंद्र से मैं आपके रेडियो दोस्त मनाली शुक्ला स्वागत करती हूं आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। स्वीकारिए मेरा प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी की जिन्होंने अपनी जान देकर आदिवासी समाज को नई राह दिखाई। उनका नाम है बिरसा मुंडा। वो झारखंड के खूंटी जिले के उलिहाती गाँव में 15 नवम्बर 1875 को एक मुंडा परिवार में जन्मे थे। बिरसा बचपन से ही बहुत समझदार और साहसी थे। उन्होंने अंग्रेजों, जमींदारों और ईसाई मिशनरियों द्वारा आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को करीब से देखा। आदिवासी अपनी जमीन, जंगल और संस्कृति खोते जा रहे थे। बिरसा ने फैसला किया कि अब चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने एक महान विद्रोह उलगुलान की शुरुआत की। उन्होंने लोगों को एकजुट किया और कहा, हमारी जमीन हमारी है, हमें अपना धर्म और संस्कृति बचानी है। बिरसा ने हथियार उठाए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका नारा था अबुआ राज, मतलब हमारा राज। उन्होंने आदिवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबी बनने की प्रेरणा दी। उनके नेतृत्व में हजारों आदिवासी एक हो गए। इससे अंग्रेज बहुत घबरा गए। उन्होंने बिरसा को पकड़ने के लिए बहुत कोशिश की। वर्ष 1900 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में उन्हें क्रूर यातनाएं दी गईं और मात्र 25 साल की उम्र में 9 जून वर्ष 1900 को उन्होंने जेल में ही अपनी अंतिम सांस ली। लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनके बलिदान के बाद भी आदिवासी आंदोलन और मजबूत हुआ। बिरसा मुंडा का बलिदान हमें

0: दोस्तों, क्या आपने सीड योजना के बारे में सुना है? सीड योजना का पूरा नाम है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनपीज। ये भारत सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है जिसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने शुरू किया था। डीएनपीज का मतलब है विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियां। ये वो समुदाय हैं जो सदियों से घूम घूम कर जीवन बिता रहे हैं। अंग्रेजों के समय में उन्हें अपराधी जाति घोषित कर दिया गया था। आजादी के बाद भी ये समुदाय शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी और अच्छे घर से दूर रहे। इन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए सीड योजना बनाई गई। इस योजना के मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो इन समुदाय के छात्रों को मुफ्त कोचिंग दी जाती है ताकि वे सरकारी नौकरियों, पुलिस, सेना और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सकें। समुदाय के लोगों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। छोटे छोटे समूह बनाकर रोजगार और आजीविका शुरू करवाई जाती है, जैसे हस्तशिल्प, कृषि, पशुपालन। समुदाय को शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और आर्थिक मदद देकर उन्हें सशक्त बनाया जा रहा है। इस योजना से हजारों युवा पढ़ाई करके अच्छी नौकरी पा रहे हैं, परिवार को स्वास्थ्य सुरक्षा मिल रही है और कई लोग अपना छोटा व्यवसाय शुरू करके आत्मनिर्भर बन रहे हैं। दोस्तों, सीड योजना हमें बताती है कि सरकार हर वर्ग के बारे में सोचती है। कोई भी व्यक्ति या समुदाय पिछड़ा नहीं रहना चाहिए। जो छात्र इस समुदाय से हैं, वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और कोचिंग के लिए आवेदन करें। सीड योजना देश के हर नागरिक को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और दोस्तों, अब दीपांजलि त्रिपाठी से जानते हैं डीएनटी समुदाय के लिए सरकार द्वारा और कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं।
1: दोस्तों, हमारे देश के आदिवासी और डिनोटिफाइड ट्राइब्स यानी कि डीएनटी समुदायों के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। ये योजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास और संस्कृति को मजबूत करने के लिए बनाई गई हैं। अगर हम कुछ मुख्य योजनाओं की बात करें तो धरती आवा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान अक्टूबर 2024 में शुरू हुआ, जिसमें 79,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट है। ये अभियान करीब 63,000 आदिवासी गांवों में स्कूल, आंगनबाड़ी, सड़क, पानी, बिजली और रोजगार की सुविधाएं पहुंचा रहा है। 5 करोड़ से ज्यादा आदिवासी लोगों को इससे फायदा हुआ। अगला है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ये खास तौर पर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी कि PVTG के लिए है। इसमें घर, साफ पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क पर फोकस किया गया है। हजारों घरों में बिजली पहुंची, मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू हुई, वन धन केंद्र बने, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के जरिए दूर दराज के इलाकों में अच्छी शिक्षा पहुंचाई गई। हर स्कूल में 480 बच्चे पढ़ते हैं। इससे लड़के लड़कियों दोनों को फायदा हुआ। कई छात्रवृत्ति योजनाएं भी इसमें शामिल हैं। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, टॉप क्लास शिक्षा और विदेश पढ़ाई के लिए लाखों आदिवासी छात्र इससे पढ़ पा रहे हैं। वन धन योजना में जंगल की चीजों, महुआ, हल्दी जैसे कई

0: चीजों को बेचकर हमारे आदिवासी समुदाय के लोग अच्छी कमाई कर सकते हैं। लाखों आदिवासी परिवारों की आय इससे बढ़ी है। दोस्तों, ये योजनाएं लाखों लोगों तक पहुंची हैं। शिक्षा में नामांकन बढ़ा, लड़कियों की पढ़ाई सुधरी, कई गांवों में बिजली पानी पहुंचा, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई। मनधन से लाखों लोगों को आय का नया जरिया मिला। पीएम जनमन ने 48 लाख से ज्यादा पीवीटीजी लोगों को छुआ। फिर भी चुनौतियां हैं, जैसे जागरूकता कम होना, दूर दराज के इलाकों में पहुंच मुश्किल होना और पूरा फायदा न मिलना। सरकार बजट बढ़ा रही है, लेकिन निगरानी और स्थानीय भागीदारी जरूरी है। दोस्तों, आदिवासी हमारी संस्कृति की जड़ है। इन योजनाओं से वो मुख्य धाराएं में आएंगे तो देश मजबूत बनेगा। धन्यवाद।
1: दोस्तों, अभी आप दीपांजलि त्रिपाठी को सुन पा रहे थे और अब आपको सुनवाते हैं राहत फतेह अली खान की खूबसूरत आवाज में ये गीत।

दोस्तों, केंद्र और राज्य सरकार की कई बड़ी भर्तियां चल रही हैं, जिनमें हजारों पदों पर आवेदन का मौका है। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आज हम आपको कुछ वैकेंसीज के बारे में बताएंगे जिनके फॉर्म आप 30 जून 2026 तक भर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं रोजगार समाचार। पहली है एसएससी सीजीएल 2026। इसमें कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल पर 12,256 से भी ज्यादा पद हैं। ये ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए सबसे बड़ा अवसर है। इसमें विभिन्न विभागों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पद हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 22 जून 2026 है। आवेदन ssc.gov.in पर आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अगली है आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की। इसमें 11,127 पद हैं और ये रेलवे की बड़ी भर्ती है। आईटीआई डिप्लोमा वाले उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 14 जून 2026 है। आवेदन rrbapply.gov.in पर ऑनलाइन किया जा सकता है। एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी विभिन्न कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट, डिप्यूटेशन के आधार पर सीनियर कंसल्टेंट, डिजास्टर मैनेजर जैसे कई पद हैं। इनमें आवेदन की अंतिम तारीख 20 जून और 30 जून 2026 विभिन्न पदों के अनुसार है। आवेदन आधिकारिक एनडीएमए पोर्टल पर किया जा सकता है। अगली है नालको नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल। इसमें 268 पद ऑपरेटर, टेक्नीशियन, फोरमैन आदि के हैं। 10वीं, आईटीआई, डिप्लोमा विभिन्न पदों के अनुसार अलग अलग योग्यता है। आवेदन की अंतिम तारीख 10 जून 2026 है। nalcoindia.com पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगली है कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनी। इसमें 660 से भी ज्यादा विभिन्न डिसिप्लिन में मैनेजमेंट ट्रेनी के पद हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 11 जून 2026 है। इनके अलावा यूपीएससी में विभिन्न पद इंडियन नेवी, अग्निवीर, कोंकण रेलवे, एसबीआई अपेरेंटिस के भी बहुत सारे पदों पर भर्तियां निकली हैं। दोस्तों, एसएससी, सीजीएल, आरआरबी, एएलपी जैसी बड़ी भर्तियों में जल्दी आवेदन करें, क्योंकि बाद में सर्वर का भारी लोड होता है। डेप्यूटेशन वाली एनडीएमए भर्तियां अनुभवी उम्मीदवारों के लिए अच्छा विकल्प है। लेकिन किसी भी भर्ती में अप्लाई करने से पहले ये बात जरूर याद रखें कि फॉर्म भरने से पहले पूरा नोटिफिकेशन पीडीएफ ध्यान से पढ़ें। इनमें योग्यता, आयु सीमा, फीस, इन सभी का ध्यान रखें। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और फीस समय पर जमा करें। ये भर्तियां युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। जल्दी आवेदन करें।

और तैयारी शुरू करें। अधिक जानकारी के लिए या किसी खास भर्ती के लिए आप उनकी वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन चेक करें। तो रोजगार समाचार में आज इतना ही, और आपको अपनी तैयारियों के लिए बेस्ट ऑफ लक। और अब वक्त हो चला है हमारे आज के विशेष स्तंभ इंद्रधनुष का, तो आपको सुनाते हैं इंद्रधनुष का ये पहला गीत जावेद अहमद की आवाज में।

दोस्तों, इस गीत के साथ वक्त हो चला है हमारा आपसे विदा लेने का। तो जाने से पहले अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा ईमेल एड्रेस है yuvvaniriva@gmail.com। तो स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और निरोगी काया का ध्येय लिए विदा दीजिए अपनी रेडियो दोस्त मनाली शुक्ला को। नमस्कार, शुभ संध्या।

0: अभी आप सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
1: टूटी चिड़िया बड़ी उदास, कैसे बुझाए अपनी प्यास। बहुत कम है कुएं में पानी, तालाबों की भी यही कहानी। धरती का है सूखा पेट, हैंड पंप भी उगले रेत। चूचू रोए नदी किनारे, इसका पानी कहाँ गया रे। बादल आते खाली हाथ और कह जाते पते की बात। हरे भरे मत काटो जंगल, जंगल ही तो लाता मंगल। पेड़ लगाओ तुम सब मिलकर, बरसेगा फिर पानी जमकर। नदी ताल में होगा पानी, फुर्र होगी चूचू की परेशानी।
2: आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।

मीडियम वेव 188.2 मीटर्स पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये वक्त है छोटे से अंतराल का।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: कवि हेमंत देवलेकर,
6: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक है, समाचार है, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है। हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाजें आकाशवाणी के माध्यम से देश में, समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाए। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।
7: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
8: अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत है। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का आरंभ करते हैं ओमकारा फिल्म से। राहत फतेह अली खां की आवाज है, गुलजार की शब्द रचना, संगीत विशाल भारद्वाज का।

अगला गीत आरक्षण फिल्म से लिया है, जिसे गाया श्रेया घोषाल और मोहित चौहान ने। प्रसून जोशी ने इस गीत को लिखा है, धुन बनाई शंकर एहसान लॉय ने।

कार्यक्रम का अगला गीत अंतरा मित्रा और मोहित चौहान की आवाजों में है, इरशाद कामिल के बोल, संगीत प्रीतम का है। इस गीत को हमने लिया राजनीति फिल्म से।

0: मोहित चौहान और अंतरा मित्रा की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे राजनीति फिल्म का गीत। गीत लिखा था इरशाद कामिल ने, संगीत था प्रीतम का। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
1: पानियों पे छीटे उड़ाती हुई लड़की।
2: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
3: पानी के छींटे व्यर्थ में न उड़ाएं।
2: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
3: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
2: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
3: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
2: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
3: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
2: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
3: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
2: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
3: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
2: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
3: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
4: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे।
3: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
2: समय है पानी बचाने का,
3: पानी का मोल समझने और समझाने का।
2: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

0: है also gen old नई पुरानी best of both the worlds, best of both the worlds, best of both the worlds, best of both the worlds.
1: Download Waves OTT app now and watch for free.
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
3: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 8 जून को प्रदेश के पीथमपुर स्थित स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में भारत की पहली मैन्युफैक्चरिंग इकाई का भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच 2026 का शुभारंभ किया। इस मंच में 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने विकसित भारत के लिए युवा माय भारत यूथ कन्वेंशन को आज नई दिल्ली में संबोधित करते हुए कहा है कि भारत के युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवारों तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। मौसम विभाग ने गुना, अशोकनगर, विदिशा, सीहोर, देवास, हरदा और बैतूल जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां तेज आंधी, गरज चमक और भारी बारिश की संभावना है। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष भेंटवार्ता। विषय है कृषि विकास एवं यंत्रीकरण के प्रसार में आकाशवाणी का योगदान। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सीआर मेहता, डायरेक्टर सीआईएई। इनसे बातचीत की है चंद्रशेखर शर्मा ने।
1: श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी अपनी गौरवमय और स्वर्णिम प्रसारण यात्रा के 90 वर्ष पूर्ण कर रहा है। हमारे श्रोता जानते हैं कि 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से आकाशवाणी पर नियमित प्रसारण की शुरुआत हुई थी। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय और सूचना शिक्षा मनोरंजन, इन सब बातों को लेकर कार्यक्रमों के माध्यम से जनहित के लिए जो कार्य किए जाने हैं, आकाशवाणी उसमें अपना पूरा योगदान शिद्दत के साथ निभा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और आज़ादी के वक्त तो हमारे देश की जो सकल घरेलू उत्पाद GDP, उसका आधे से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारे कृषि क्षेत्र से ही आता था। और इस सफ़र के दौरान जब केवल आकाशवाणी अकेला सरकारी माध्यम हुआ करता था, आकाशवाणी ने किसानों तक नई तकनीक, आधुनिक उपकरण और नवीनतम वैज्ञानिक जानकारियाँ पहुँचाने के लिए एक महत्वपूर्ण सेतु का काम किया है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अपने विभिन्न कार्यक्रमों, विशेष तौर पर मैं नाम लेना चाहूँगा ग्राम सभा और कृषि चर्चा और किसानवाणी, जो LRS के लोकल रेडियो स्टेशन के माध्यम से जिसने स्थानीय स्तर पर किसानों के साथ सीधा संवाद स्थापित करके उन तक कृषि के नए नए उपादान, नई नई तकनीक पहुँचाने का और ग्रामीण विकास के लिए एक सार्थक कार्य करने की भूमिका निभाई है। आज इस प्रसारण यात्रा के संदर्भ में ही हम एक विशेष मेहमान के साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। उनसे आपका परिचय करा देते हैं। आप हैं डॉक्टर CR मेहता जी, जो डायरेक्टर हैं केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान नवीबाग भोपाल में, और कृषि विकास और यंत्रीकरण में आकाशवाणी का योगदान, इस विषय पर आज हमसे बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में।
2: धन्यवाद
1: सर। जैसे कि आज का विषय है कृषि विकास और यंत्रीकरण में आकाशवाणी का योगदान, आकाशवाणी की एक लेगेसी रही है, लंबी यात्रा रही है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप आकाशवाणी का कृषि विकास या ग्रामीण विकास के क्षेत्र में योगदान है, इसको किस प्रकार से आंकते हैं?
2: सबसे पहले तो मैं आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को बधाई देता हूँ कि आकाशवाणी ने 90 वर्ष पूरे कर लिए हैं और आप सभी आकाशवाणी के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। जहाँ तक कि कृषि विकास में आकाशवाणी का योगदान है, उसके पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जब आज से करीब 40 साल पहले या 45

0: साल 50 साल पहले
1: जी,
0: तब कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था, आकाशवाणी ही एक माध्यम था,
1: अकेला माध्यम,
0: चाहे वो कृषि से संबंधित जानकारी की जरूरत हो या आपको देश में क्या हो रहा है, राज्य में क्या हो रहा है, उसके बारे में सूचना की जानकारी का सवाल है
1: जी।
0: तो उसमें पहले एक रेडियो हुआ करते थे, और रेडियो भी इस प्रकार के होते थे कि पहले बटन ऑन करो, थोड़ी देर बाद उसमें से आवाज़ आती थी
1: जी।
0: फिर बाद में वो ट्रांजिस्टर यूज होने लगे
1: जी।
0: पहले बड़े ट्रांजिस्टर होते थे, फिर छोटे छोटे ट्रांजिस्टर आए, और अब आजकल बहुत छोटे हैं, यहाँ तक कि मोबाइल में भी आप आकाशवाणी के कार्यक्रम सुन सकते हो
1: जी।
0: शुरुआत की बात करें तो जब हम स्कूल में पढ़ते थे
1: जी,
0: तब हम कृषि की तो बात नहीं सुनते थे, लेकिन जब भी विविध भारती गीतमाला प्रोग्राम आता था
1: जी,
0: तो उसको हम अक्सर सुनते थे, और उसमें ये देखते थे कि इस बार कौन सा नंबर वन पर है, नंबर टू पर कौन सा गाना है, वो गाने की रैंकिंग वगैरह करके सभी गानों को बजाया जाता था
1: जी,
0: और वो रैंकिंग होती थी, उस प्रकार के कार्यक्रम होते थे
1: जी।
0: दूसरा मुझे अभी भी याद आ रहा है, अगर पुरानी बातें मैं सोचता हूँ तो तीसरा वर्ल्ड कप क्रिकेट का जो हुआ था
1: जी,
0: इंग्लैंड में हुआ था
1: जी, 1983
0: में
1: जी,
0: और उस समय टीवी, उस समय खास तौर से मैं जिस जगह पर था नहीं आए थे, भारत में कुछ बड़े शहरों में उस समय टीवी आ गए थे,
1: उस वक्त शुरुआत मानी जाती
0: जी जी,
1: एक व्यापक,
0: तो उस समय हमें जब पता चला कि भारत फाइनल में है, बड़ा क्रेज था, तो हमने आकाशवाणी के थ्रू ही उसकी कमेंट्री सुनी थी, और वो कमेंट्री रात को देर तक सुनी थी, और भारत जीत गया था
1: जी।
0: तो उस प्रकार से हम आकाशवाणी से शुरू से जुड़े रहे हैं
1: जी।
0: जब कृषि की बात करें तो जब से हमने कृषि अभियांत्रिकी में डिग्री की, उसके बाद केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान में एज ए वैज्ञानिक ज्वाइन किया, उसके बाद आकाशवाणी की तरफ से हमें आमंत्रण मिला कि आप कृषि अभियांत्रिकी के बारे में जानकारी दें किसानों को, तब हमें कृषि अभियांत्रिकी के बारे में जानकारी देने का अवसर मिला, और आजकल तो आकाशवाणी के साथ बहुत सारे दूसरे मीडिया भी है जिसके थ्रू किसान कृषि से संबंधित जानकारी ले सकते हैं
1: जी। जैसा कि आपने बताया कि आपने सबसे पहले रेडियो पर जो हमारा वर्ल्ड कप भारत टीम जीती थी 1983 में
0: जी,
1: कपिल देव की कप्तानी में, और बड़ी ऐतिहासिक जीत थी, और भारत में पूरा खेल सिनेरियो जो चेंज करने का है उस जीत को श्रेय जाता है।
0: जून का महीना था, शायद 21 तारीख या 23 तारीख।
1: हम सर ये जानना चाहते हैं कि जो आपने पहला प्रोग्राम दिया, आपके जहन में अभी भी ताज़ा होगा कि पहला प्रोग्राम किस विषय पर था या किस केंद्र पर आपने दिया था?
0: मैंने अपना पहला प्रोग्राम भी भोपाल में ही दिया
1: जी,
0: आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से
1: जी,
0: और वो कृषि अभियांत्रिकी में जो जो नई नई उस समय उपकरण आ रहे थे, आज जैसे नए नए स्मार्ट मशीनें आ रही है, उस समय स्मार्ट नहीं थी, लेकिन जो ट्रैक्टर से चलने वाली उस समय जो नई आ रही थी, उनके बारे में मैंने आकाशवाणी के कार्यक्रम के थ्रू जानकारी दी है
1: जी।
0: और उस जमाने में तो मेरा कहना है कि किसान भाई भी सबसे ज़्यादा आकाशवाणी से ही जुड़े हुए थे, दूरदर्शन बहुत कम
1: जी, जी।
0: या गांवों में तो उतनी अच्छे से उपलब्ध भी नहीं था, किसान अपने खेती का काम करने के साथ आकाशवाणी को सुनने की उनकी फिर भी आदत थी
1: जी। यही रेडियो की पोर्टेबिलिटी है, रेडियो के साथ किसी प्रकार के ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये सबका लोकप्रिय रहा है, विशेष तौर पर किसानों के लिए इसने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम सर अब ये बात करें कि जो आप CIA का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के नए नए इक्विपमेंट्स डेवलप हुए हैं, तो उनके डेवलपमेंट में जो कुछ ख़ास बातें रही हैं या ख़ास उपकरण रहे हैं, उनके बारे में और उनके प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की क्या कोई भूमिका रही है, इस बारे में आपके विचार जानेंगे।
0: आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। जहाँ तक कि केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल की बात करें
1: जी,
0: तो उसने भी अभी पिछले साल ही 50 वर्ष पूरे किए हैं
1: जी।
0: जब शुरू में खेती में उपकरण का हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे थे, तो मनुष्य और पशु चालित उन्नत कृषि यंत्रों के विकास पर हमारा काफ़ी जोर था
1: जी।
0: उस समय तो आकाशवाणी ही मेन मीडियम होता था जिसके थ्रू हम किसानों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करते थे
1: जी।
0: उस समय इतना इजी नहीं था कि आप कोई मोबाइल हो और मोबाइल पर आप YouTube या उसके थ्रू भी आप या WhatsApp के थ्रू किसानों तक बात पहुंचाए, तब उस समय आकाशवाणी था, उसके बाद दूरदर्शन भी एक मीडिया आया, लेकिन
1: जी,
0: उसकी
1: जी,
0: भी उतना पेनिट्रेशन नहीं था
1: जी, जी।
0: उसके बाद धीमे धीमे जैसे इम्प्रूव टूल्स एंड मशीनरी पर, जैसे ट्रैक्टर ऑपरेटेड सेल्फ प्रोपेल पर हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ, और आजकल जो हम स्मार्ट मशीनरी के डेवलपमेंट पर काफ़ी काम कर रहे हैं, तो इन सब कि वो जब तक किसानों के पहुंचाने के लिए अभी भी एक आकाशवाणी एक सशक्त मीडियम है जिसका कि हम समय समय पर उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त हम दूसरे मीडियम भी यूज करते हैं लेकिन आकाशवाणी की भी उसमें एक अहम भूमिका है
1: जी। और हमारे यहाँ से प्रसारित कार्यक्रमों में आपके संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिकों का कॉन्ट्रीब्यूशन सराहनीय रहता है और किसानों के लिए जो भी तात्कालिक महत्व के प्रश्न होते हैं विषय होते हैं उन पर बिल्कुल अपडेटेड जानकारी के साथ स्टूडियोज में हमारे साथ उपस्थित होते हैं। हम सर ये जानना चाहेंगे कि जो अभी हाल ही में 1 जून से 30 जून के मध्य केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा फ्लैगशिप कार्यक्रम खेत बचाओ अभियान के नाम से लॉन्च किया गया है
0: जी।
1: तो इसमें आप अपने संस्थान की और आकाशवाणी की भूमिका को किस प्रकार से आँकते हैं?
0: पहले तो मैं खेत बचाओ कार्यक्रम के बारे में आपको बताऊंगा
1: जी।
0: उसमें यह है कि आप सब जानते हैं कि अभी ईरान और यूएस का युद्ध चल रहा है और ख़ास तौर से उसकी वजह से जो मतलब तेल वगैरह का जो इंडिया इंपोर्ट करता है
1: जी।
0: उस पर काफ़ी फर्क पड़ा है और तेल की कीमतें बढ़ गई है तो उसकी वजह से अब ये जो हमारे खाद बनाते हैं
1: जी।
0: या खाद के लिए जो कारखाने चलते हैं वो भी सब तेल पर निर्भर है
1: जी,
0: यहाँ तक कि उसमें कुछ इंपोर्ट भी किया जाता है तो इसको बचाने के लिए खेत बचाओ अभियान में विशेष जोर है। अभी क्या होता है किसान खाद खेत में खेत की जरूरत के हिसाब से न डाल के उसको जितना मिल जाता है वो उतना डाल देता है। वो ये सोचता है कि मैं ज़्यादा खाद डालूंगा तो मेरी पैदावार ज़्यादा होगी। तो मेरा किसानों से ये आग्रह है कि खेत की मिट्टी की जाँच कराएं, उसका सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाए, उसके बाद देखें कि खेत में किस न्यूट्रिएंट की कितनी आवश्यकता है और उसी आवश्यकता के अनुसार खेत में उपयोग कराएं। और इसमें जैसे कि खेत बचाओ अभियान 1 जून से 30 जून तक आयोजित किया जा रहा है, इसका उद्घाटन अपने रायसेन डिस्ट्रिक्ट में रामसिया गांव से हमारे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने 1 तारीख को किया। उसमें हमने भी पार्टिसिपेट किया और किसानों तक इस अभियान की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया। लेकिन उसमें विशेषकर मैंने वहाँ भी देखा कि आकाशवाणी से भी भोपाल आकाशवाणी की टीम उपलब्ध थी और उन्होंने भी उस प्रोग्राम को कवर किया जिससे कि किसानों तक अधिक से अधिक जानकारी इस कार्यक्रम के बारे में मिले। और मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि इसमें वैज्ञानिक इस इन 30 दिनों में अलग अलग गाँवों में जाके किसानों को सेंसिटाइज कर रहे हैं और उसमें भी आकाशवाणी अपना योगदान दे रहा है
1: जी। हम सर बात करें ग्रामीण महिलाओं के लिए, ग्रामीण महिलाओं के विकास के लिए, उनके उन्नयन के लिए केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं और विशेष तौर पर आपके माध्यम से जो यंत्रीकरण का प्रयास किया जा रहा है तो जो महिलाओं के लिए जो ऐसे यंत्र जिनको कि महिलाएं भी अच्छी तरह से ऑपरेट कर सकें इस पर भी आपके संस्थान द्वारा कार्य किया जा रहा है। आकाशवाणी के माध्यम से हम किस प्रकार से इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं?
0: मेरा आपसे यही कहना है सभी से कि जो भी उपकरण होते हैं
1: जी
0: वो इस प्रकार के होने चाहिए कि उसको महिला या पुरुष दोनों ऑपरेट कर सकते हैं
1: जी।
0: आप ये भी जानते हैं कि दोनों की कैपेबिलिटी
1: जी
0: दोनों के स्ट्रेचर में डिफरेंस होता है, स्ट्रेंथ में डिफरेंस होता है तो अपन को उस प्रकार से उपकरण हम विकसित करते हैं कि उसमें एडजस्टमेंट देते हैं जिससे कि मेल एज वेल एज फीमेल दोनों कारक करता ढंग से उसको उपयोग कर सकते हैं
1: जी।
0: आकाशवाणी से भी मेरा यही अनुरोध है और समय समय पर हमारे साथी और हम लोग आकाशवाणी के थ्रू भी महिलाओं तक ये समाचार पहुंचाते हैं आपके लिए हमने उपकरण विकसित किए हैं या उन जो एग्जिस्टिंग उपकरण थे उसमें मॉडिफिकेशन किया है कि उनको आपके लिए सूटेबल बनाने के लिए। और उसमें हम समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी हमारे संस्थान में आयोजित करते हैं जिसमें कि आप भाग ले सकते हैं और आकाशवाणी के थ्रू भी ये हम किसानों तक और महिलाओं तक पहुंचाने का काम करते हैं
1: जी। सर यहाँ पर मैं विशेष तौर पर किसानवाणी कार्यक्रम की बात करना चाहूँगा क्योंकि किसानवाणी जिन केंद्रों के माध्यम से होता है हमारे लोकल रेडियो सेंटर्स हैं वो और उसमें स्थानीय स्तर पर किसान जो हितग्राही हैं उन तक रेडियो पहुँचता है और वहाँ पर KVK और बड़े संस्थानों के जैसे आपका संस्थान है यहाँ के वैज्ञानिकों के द्वारा उनको लाइव डेमो दिया जाता है और उस कार्यक्रम का एक रिपोर्ट के माध्यम से हमारे द्वारा प्रसारण किया जाता है। तो ये जो भूमिका रही आकाशवाणी की इसको आप किस तरह से देखते हैं?
0: इसमें आकाशवाणी की भूमिका तो बहुत अच्छी रही है
1: जी।
0: दूसरा ये है कि आकाशवाणी की एक्सेस या अवेलेबिलिटी
1: जी
0: बहुत ज़्यादा है
1: जी,
0: कहीं भी आप कहीं भी सुन सकते हैं, उसके लिए आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, आप चलते हुए भी आकाशवाणी पर जानकारी ले सकते हैं और आपके जो कार्यक्रम है वो किसानों तक अधिक से अधिक संख्या में इसके द्वारा पहुंच रहे हैं।
1: जी, आपका कोई यादगार अनुभव रेडियो के संदर्भ में, चूंकि हम रेडियो का ये 90 वर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कोई

0: आपका ऐसा यादगार अनुभव?
1: उसमें विशेष तो मैं पहले ही कुछ एग्जांपल बता चुका हूँ कि वर्ल्ड कप का फाइनल की कमेंट्री हमने रात को लेट तक जग के सुनी थी
0: जी,
1: वो भी एक बड़ा था। दूसरा है जो संगीतमाला
0: जी,
1: उस कार्यक्रम को हम करीब रेगुलर सुनते थे
0: जी,
1: और कृषि से संबंधित कार्यक्रम को तो हम उतना फिर भी अभी नहीं सुन पाते, लेकिन फिर भी मेरा यही कहना है कि एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। और मेरा ये भी कहना है कि इसको थोड़ा और इनोवेटिव करने की ज़रूरत है। जैसे आजकल आप देखते होंगे कि पॉडकास्ट आ रहे हैं
0: जी,
1: तो उसमें क्या होता है कि आप बीच बीच में फोटोग्राफ्स डालें तो कम से कम और थोड़ा सा इंटरेस्ट किसानों का बढ़ेगा कि जो भी जानकारी दे रहे हैं आप किस मशीन की बात कर रहे हैं। जैसे हम इंजीनियर हैं, हम मशीनों की बात करते हैं, अगर केवल मैं बात ही करूंगा तो समझ में नहीं आएगा जिसने वो मशीन देखी नहीं है
0: जी।
1: तो उसके साथ फोटोग्राफ भी हो तो कम से कम उसको ये पता चलेगा कि ये मशीन है जिसके बारे में कि अपन आकाशवाणी में, तो इस प्रकार का आकाशवाणी में इनोवेशन किया जा सकता है
0: जी। आपने सर उसी प्रश्न का जवाब दिया जो मैं आपसे पूछने जा रहा था कि जो वर्तमान परिदृश्य है, डिजिटल टाइम है, ये इस डिजिटल समय में हमें क्या क्या परिवर्तन लाने हैं ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र में। और जैसा आपने बताया पॉडकास्ट का, तो हमने ये सिलसिला सर शुरू भी किया है, और जो आकाशवाणी का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें पॉडकास्ट और अलग अलग माध्यमों से जो नए तरीके हैं तो उसके माध्यम से प्रसारण सुनिश्चित किया जा रहा है, और प्रसारण की गुणवत्ता अच्छी हो इसके लिए FM चैनल्स का भी विस्तार किया जा रहा है। बदलते समय के साथ जो तकनीकी आवश्यकता है उस युग में हम लोग भी साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। सर हम सभी जानते हैं कि आपदा के समय पर, विशेष तौर पर जब बाढ़ या सूखा की बात आती है, आकाशवाणी ने आपदा प्रबंधन में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अपने प्रसारण के माध्यम से लोगों को जागरूक करने और उन तक राहत और रसद पहुँचाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी एक विशेष कार्यक्रम है मन की बात, वो भी वो आकाशवाणी के माध्यम से ही शेयर करते हैं।
1: जहाँ तक आपदा प्रबंधन की बात है
0: जी,
1: एक तो क्या है कि आकाशवाणी का पहुँच बहुत ज़्यादा लोगों में है
0: जी, लगभग 100% क्षेत्रों तक कवर करते हैं, और जियोग्राफिकली 92% क्षेत्र को हम कवर करते हैं
1: जी। तो उसका मैं एक एग्जांपल बताऊंगा
0: जी,
1: 1971
0: जी,
1: जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था
0: जी,
1: मैं बहुत छोटा बच्चा था
0: जी,
1: लेकिन तब भी मुझे अच्छे से याद आ रहा है कि तब तो कुछ भी हमें पता नहीं लगता था, तो केवल आकाशवाणी पर सुनते थे कि अच्छा इधर ये हो रहा है, तो उसके हिसाब से हमें सेफ्टी लेनी पड़ती थी, विशेषकर राजस्थान में
0: जी। हाँ सर,
1: और हम छोटी ऐसी जगह रहते थे, घर की बिजली भी बंद करनी पड़ती थी रात को, तो इसमें भी आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान था। दूसरा, आजकल भी कभी भी कोई जैसे अलर्ट होती है उसका आकाशवाणी के थ्रू सभी तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है अलर्ट, और वो मैसेज क्या होता है कि कहीं आदमी चल भी रहा है तब भी उसको पता चल जाता है कि यह हुआ। उसका एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, 26 जनवरी के दिन ये भूकंप आया था गुजरात में
0: जी,
1: और उस समय मैं अहमदाबाद से भोपाल लौटा था
0: जी,
1: भोपाल में लौट के मैं रास्ते में था, आकाशवाणी को सुना तो पता चला कि भूकंप है, हल्के झटके भोपाल में भी आए, मुझे तुरंत चिंता हुई
0: जी।
1: तो इस प्रकार की है
0: जी,
1: सूचना जल्दी पहुंच जाती थी
0: जी।
1: दूसरा एक ये एग्जांपल जैसे मन की बात है
0: जी,
1: तो इस बार 134वां एपिसोड था मन की बात का, प्रधानमंत्री जी का जी। वो हमने हमारे संस्थान में उसको लाइव सुनने के लिए रखा था, विशेषकर किसान भाइयों के लिए, उसमें 200 करीब किसान भाइयों ने भाग लिया था, और उस कार्यक्रम में हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई जी पटेल साहब ने भी शिरकत की थी। उन्होंने न केवल हमारे संस्थान के जो मशीनें डेवलप हुई उसके बारे में जानकारी ली थी, बल्कि मन की बात का भी सुना था, और उसके साथ किसानों के साथ भी उसको शेयर किया था और इम्पोर्टेंस बताई थी। तो मेरा ये कहना है कि उसकी एक, जैसे आप मन की बात का सुनेंगे कि 134 एपिसोड हो गए, तो ये एक पेनिट्रेशन शो करता है। दूसरा, उसमें भी इनोवेशंस आपने देखा होगा कि शुरुआत के जो एपिसोड थे वो केवल रेडियो पर सुनाई देते थे, अब आप चाहे तो उसको टीवी पर भी दिखा सकते हैं, उसमें विजुअल्स भी ऐड किया गया, तो ये भी आकाशवाणी का एक इनोवेशंस है। तो यही मैं आपकी जानकारी में शेयर करना चाहता था, और ये भी कहना चाहता था कि आकाशवाणी की अभी भी काफ़ी रिलीवेंस है। कई बार व्यक्ति कहते हैं कि आज इतने अधिक मीडियम आ गए, मोबाइल पर वो आ गए, ऑप्शंस आ गए, लेकिन फिर भी इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है।
0: हमारे

0: श्रोताओं के लिए सर कोई संदेश आप देना चाहें?
1: श्रोताओं से मैं यही कहूँगा कि आप न केवल आकाशवाणी से जुड़े रहें, बल्कि आप अदर मीडियम्स जो भी है, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके साथ जुड़े।

0: रेडियो केवल सूचना का माध्यम नहीं बल्कि किसानों के जीवन में परिवर्तन का भी साधन रहा है। आशा है चर्चा हमारे श्रोताओं को प्रेरित करेगी और कृषि क्षेत्र में नई संभावनाओं को अपनाने के लिए उनको मार्गदर्शन मिलेगा। सर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने कार्यक्रम के लिए समय निकाला और प्रतिभागिता सुनिश्चित की।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष भेंटवार्ता, जिसका विषय था कृषि विकास एवं यंत्रीकरण के प्रसार में आकाशवाणी का योगदान। विशेषज्ञ थे डॉक्टर सीआर मेहता, डायरेक्टर CIAE। इनसे बातचीत की थी चंद्रशेखर शर्मा ने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत जयदीप साहनी का लिखा, संगीत सलीम सुलेमान का। आजा नचले फिल्म का ये गीत है जिसे आवाज़ दी सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने।

0: मोहित चौहान के आवाज में गए जब वी मेट फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, शाम के 6:30 बजे हैं। लीजिए सुनिए विशेष कार्यक्रम।
1: नमस्कार श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कटियार। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम का विषय है पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 साल, मध्य प्रदेश चीतों का नया घर। मध्य प्रदेश के कूनो का प्रोजेक्ट चीता एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर सिर्फ मध्य प्रदेश या देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हैं। वर्ष 1952 में हमारे देश से रफ्तार के बेताज बादशाह चीते को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। दशकों तक हमारे जंगल इस अनोखी दहाड़ को तरसते रहे, लेकिन फिर आया साल 2022 जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प और दूरदर्शी सोच ने इस असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। प्रधानमंत्री जी के व्यक्तिगत प्रयासों और इच्छा शक्ति का ही नतीजा है कि आज प्रोजेक्ट चीता के माध्यम से भारत की धरती पर चीतों की सफल वापसी हुई है, जिसने वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण का एक नया अध्याय लिख दिया है। इस महाअभियान को जमीन पर उतारने और आगे बढ़ाने में हमारे हार्ट ऑफ इंडिया यानी मध्य प्रदेश का योगदान अतुलनीय है। सूबे के संवेदनशील और विकास परक मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार कूनो नेशनल पार्क को न सिर्फ चीतों के लिए एक सुरक्षित आशियाना बना रही है बल्कि इस पूरे क्षेत्र में इको टूरिज्म और स्थानीय रोजगार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भी प्रयासरत है। चुनौतियां बड़ी थीं, मौसम नया था और दांव पर थी देश की साख। इस पूरे मिशन को जमीनी स्तर पर संभालने, चीतों की 24 घंटे सुरक्षा करने और कूनो के जंगलों में उनके कुनबे को बढ़ाने के पीछे वन विभाग की एक समर्पित टीम है और आज उसी टीम के कप्तान यानी प्रोजेक्ट चीता के डायरेक्टर और वरिष्ठ वन अधिकारी श्री उत्तम कुमार शर्मा जी हमारे साथ सीधे कूनो से इस रेडियो चर्चा में जुड़े हैं। उत्तम जी, रेडियो पर हमारे तमाम श्रोताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार।
1: उत्तम जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में जब कूनो में चीतों को छोड़ा था, तब से अब तक ये प्रोजेक्ट कितना आगे बढ़ा है और सबसे बड़ी सफलता क्या रही है?
2: ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, सभी देशवासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि चीता जो हम लोगों ने आज से 70 साल पहले खो दिया था, उसको 17 सितंबर 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वापस भारत देश लाया गया। भारत देश में मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाके उसको छोड़ा गया। एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन था। 8 नामीबिया से चीते माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 17 सितंबर को लाए गए थे। उसके बाद 12 और चीते साउथ अफ्रीका से 18 फरवरी 2023 को लाए गए और अभी हाल ही में 9 चीते बोत्सवाना से 28 फरवरी 2026 को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए हैं। कुल 29 चीते हम लोगों के अफ्रीका के अलग अलग 3 देशों से लाए गए हैं, उसमें से 20 आज की तारीख में सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी उपलब्धि इस प्रोजेक्ट की कही जा सकती है इस लगभग 4 साल के कार्यकाल में, वो ये कि 33 चीते भारत की धरती पर जन्म हुए हैं और यहाँ फल फूल रहे हैं। तो इस प्रकार कुल मिला के हमारे पास में आज की तारीख में भारत में 53 चीते हैं
3: जी।
2: और मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने कूनो के अतिरिक्त जो इसकी दूसरी साइट है गांधी सागर सेंचुरी, वो भी पिछले साल हमने शुरू की है और 3 चीते, 2 नर 1 मादा गांधी सागर में पिछले साल में वहां भेजी गई है। इस प्रकार 50 चीते कूनो में और 3 चीते गांधी सागर सेंचुरी में इस वक्त मौजूद है और जिन उद्देश्यों के लिए को लेकर ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, हमें लगता है कि हम उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
1: बिल्कुल ठीक है।

0: जब भी किसी जानवर को किसी दूसरे प्रवास में विस्थापित किया जाता है तो उसकी अनुकूलता पर एक सवाल उठता है। जो चीते कूनों से हमारे देश में विस्थापित किए गए थे और जिन चीतों का जन्म कूनों में ही हुआ, वे दोनों ही किस प्रकार से अब भारत की स्थितियों में, विशेषकर कूनों की परिस्थितियों में ढल चुके हैं, इस बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए।
1: ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रोजेक्ट है इस सेंस में कि ये पहला ऐसा इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन है किसी भी बड़े कार्निवोर का। इससे पहले कोई भी ऐसा प्रयोग नहीं किया गया था, तो ये पहली बार प्रयोग किया गया। दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में चीते लाए गए, जिसका मतलब ये होता है कि मौसम बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं। जब वहां गर्मी पड़ती है तो यहाँ सर्दी पड़ती है, और जब वहां सर्दी पड़ती है तो यहाँ गर्मी पड़ती है। तो चीतों के लिए अपने आप को उस प्रकार से विपरीत मौसम में ढालना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो लगभग पहले साल में इस प्रकार की चुनौतियां रही, चीतों के लिए भी चुनौतियां रही, और हम लोग भी जो इसमें नए थे मैनेजमेंट में, क्योंकि मैनेजमेंट का कोई भी ऐसा इतिहास भारत देश में मौजूद नहीं था, क्योंकि 1952 के बाद में यहाँ चीता एक्सटिंक्ट हो गए थे, तो मैनेजमेंट का कोई भी एक्सपीरियंस भी वन विभाग के पास में नहीं था। तो उस शुरुआती दौर के बाद से चीतों ने अपने आप को बहुत तेजी से यहाँ के वातावरण में ढाला है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की वेजिटेशन, यहाँ की धरती, यहाँ की टोपोग्राफी, यहाँ के कोप्रेडेटर, यहाँ के प्रे, उन सब में चीतों ने बहुत तेजी से अपने आप को यहाँ पे ढाला है। ये वाकई आश्चर्य की बात है। इन लोग इतना, हम लोग भी और जो भी चीता के विशेषज्ञ है वो भी इतना एक्सपेक्ट नहीं करते कि इतनी जल्दी ये अडेप्टेशन होगा, लेकिन हुआ। और इसकी सबसे बड़ी निशानी यही है कि चीता की ब्रीडिंग यहाँ पे बहुत सक्सेसफुली हुई। जैसे मैंने बताया कि 33 भारत में जन्मे चीता आज की तारीख में हम लोगों के पास में है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि दर्शाता है। वो इस सेंस में भी बताता है कि चीता ने इस धरती को अडेप्ट कर लिया है, इस धरती को अपना लिया है, और ब्रीडिंग उसका सबसे बड़ा इंडिकेशन है। तो वो जो शुरुआती दौर होता है 1-1.5 साल का स्ट्रगल का, उस दौर से हम लोग आगे निकल गए हैं, और मुझे लगता है कि आज की तारीख में चीतों ने अपने आप को पूनो और मध्य प्रदेश के मौसम के हिसाब से ढाल लिया है।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। कूनों की धरती पर जब पहले शावक पैदा हुए तो वो पल कैसा था और उनकी परवरिश के लिए तब से लेकर अब तक क्या-क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं?
1: कूनो में सबसे पहला शावकों का जन्म जो है 29 मार्च 2023 को हुआ था, जब ज्वाला नाम की एक फीमेल ने 4 बच्चों को जन्म दिया था। वो हमारे लिए, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि समस्त भारतीयों के लिए एक बड़ा खुशी का पल था, क्योंकि बड़ी छोटी सी अवधि में, लगभग 6 महीने के अंतराल में सक्सेसफुल ब्रीडिंग होके बच्चों का, शावकों का जन्म हुआ। जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है किसी भी प्रोजेक्ट के सफलता के लिए और चीतों के अडेप्टेशन को दिखाने के लिए। तो सभी के लिए बहुत खुशी का माहौल था। सामान्यतः जो है वो बच्चों की परवरिश माँ के ऊपर ही होती है, माँ बच्चों को संभालती है। हमारी तरफ से सिर्फ जो है वो जहाँ भी जरूरत हो, हमें लगता है कि कहीं असिस्टेंस की आवश्यकता है, चाहे वो फीडिंग के रूप में हो या किसी और रूप में, वो हमारे द्वारा प्रयास किए जाते हैं। पर ये प्राइमरीली माँ की ही जिम्मेदारी होती है, और माँ उस जिम्मेदारी को बड़ी खूबी से निभाती भी है। हम लोग विशेष रूप से जो असिस्टेंस मैंने देखा है पिछले 3-4 साल के अनुभव में अपने, मैंने जाना है कि यहाँ पे जो गर्मी का मौसम है बड़ा सीवियर होता है, 47-48 डिग्री से तापमान जाता है, लू चलती है। तो चीतों, बड़े चीतों ने तो अपने आप को ढाल लिया है, लेकिन जो अभी नए नए शावक गर्मी के मौसम में से पहली बार जब गुजरते हैं, उनको ये लू के कुछ दिन जो हैं वो देखने वाले होते हैं। मतलब वो हम मानते हैं कि उसमें कुछ घटना दुर्घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति को मैनेज करने के लिए हम लोग जहाँ भी चीता अपने बच्चों के साथ में है, वहाँ हम कोशिश करते हैं कि पानी की अवेलेबिलिटी रहे, और हम लोगों ने अपने बाड़ों के अंदर जो है वो स्प्रिंकलर सिस्टम भी लगाए हुए हैं, जिससे कि एक ठंडा इलाका थोड़ा सा हम डेवलप कर सकें, तो लू से जिससे शावक अब बच सकें और पानी का उपयोग कर पाए। ये असिस्टेंस हमारी तरफ से एक प्रयास किया गया है, और हमें लगता है कि उसके हमें सफलता भी हमें मिली है, क्योंकि शावकों द्वारा उस इलाके का जहाँ पे पानी की उपलब्धता ज्यादा है, जहाँ पे स्प्रिंकल लगे, उसका उपयोग भी ज्यादा किया जाता है। जब पहला मौका था जब बच्चे हुए थे, तो सभी के लिए बहुत खुशी का पल था, और उसी पहले ज्वाला की पहले बच्चों में से जो सबसे पहली हमारी भारतीय जन्मी फीमेल शावक जो है, वो अब लगभग 3.25 साल की हो गई है, मुखी के नाम से है। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश और विदेश में भी उसका नाम जाना जाता है कि मुखी भारत में जन्मी पहली चीता शावक।

0: बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। मेरा अगला सवाल है कि भारत में दशकों बाद चीतों की वापसी को वैश्विक संरक्षण जगत ने किस नज़रिए से देखा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रोजेक्ट की किस प्रकार से सराहना हुई है?
1: ये प्रोजेक्ट वैश्विक दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसा प्रोजेक्ट पहले कभी भी इतिहास में नहीं किया गया जब एक जगह से कार्निवोर को दूसरे कॉन्टिनेंट में लाया गया है। तो सभी की नजरें हम लोगों पर टिकी हुई हैं कि ये प्रोजेक्ट आगे कैसा चलता है, सफल होता है नहीं सफल होता है। इस प्रकार के प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होते हैं। हमारा जो एक्शन प्लान, चीता एक्शन प्लान भी बना है, वो भी इस प्रोजेक्ट की सफलता का आकलन सही मायने में कहता है कि 25 से 30 साल के बाद ही किया जा सकता है। तो लेकिन जो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म इसमें गोल हैं उसके बेसिस पे हम लोग जरूर आकलन करते हैं कि हम लोग कहाँ खड़े हैं। तो विश्व भी इसको उसी दृष्टि से देखता है कि जो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के गोल हैं क्या उस दिशा में प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अगर भारत इसमें सफलता अर्जित करता है और उन गोल को अचीव करता है तो ये टेम्पलेट होगा सभी देशों के लिए जो इस प्रकार के प्रयोग करना चाहते हैं। तो सभी की नजरें इस पे हैं और मुझे लगता है कि जो शॉर्ट टर्म के गोल इस प्रोजेक्ट के लिए रखे गए थे जिसमें मुख्यतः ये था कि अडेप्टेशन जल्दी हो जाए, ब्रीडिंग यहाँ पे हो जाए और जो मोर्टलिटी है, जो एडल्ट मोर्टलिटी होती है वो नियर नेचुरल लेवल पे पहुंच जाए, उसमें कोई अधिकता ना रहे, जो प्राकृतिक रूप से मृत्यु होती है वो मृत्यु दर प्राप्त हो। तो मुझे लगता है कि इन तीन आस्पेक्ट्स पे हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सही आगे बढ़ रहा है। वो तीनों चीजें यहाँ पे हम लोगों को लगता है कि हमने उस दिशा में सही प्रयास किए हैं, वो सफल भी रहे हैं। और उसके अलावा जो और सफलता के आकलन हम लोग करते हैं कि भाई लोगों का इन्वॉल्वमेंट कैसा रहा है, लोगों का रिस्पांस कैसा रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है नहीं बढ़ी है, यहाँ के हैबिटेट में इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इन सब चीजों में मुझे लगता है कि हम लोग आगे बढ़े हैं और सफलता भी हमने प्राप्त की है। यहाँ पर लोगों का सहयोग हमको बहुत अच्छा मिला है, लोगों ने बहुत, लोकल लोगों ने हमें बहुत सहयोग किया है जिसकी वजह से चीता आज यहाँ सुरक्षित भी है और सुरक्षित घूम भी रहा है। यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है क्योंकि टूरिस्ट यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं, अच्छी संख्या में आते हैं। तो मुझे बताते भी खुश होती कि टूरिस्टों की संख्या में लगभग चार साल पहले से 5 गुना इजाफा हुआ है
2: जी,
1: जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिला है। तो ये इन सभी पैरामीटर पे जो इसकी सफलता का आकलन करेंगे उन सभी पैरामीटर पे हम लोग सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और सभी की नजरें उस पे हैं कि क्या एक व्यापक रूप से कॉम्प्रिहेंसिव रूप से ये प्रोजेक्ट भारत में आगे बढ़ता है और सफलता प्राप्त करता है।
0: जी सर, अभी तक हमने बात की अडॉप्टेबिलिटी की, अडॉप्टेबिलिटी चीतों की कूनों के वातावरण से, कूनों के परिस्थितियों से, लेकिन एक अडॉप्टेबिलिटी की बात हम करते हैं कूनों में मौजूद जैव विविधता, यानी पहले से जो जानवर वहां मौजूद है, कूनों में पहले से तेंदुए हैं, लकड़बग्घे हैं, इन पुराने निवासियों और नए मेहमान यानी चीतों के बीच किस प्रकार से तालमेल रहा है, इस बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: यहाँ पे कूनों में तेंदुए की काफी अच्छी संख्या है, लकड़बग्घे हाइना उसकी भी संख्या अच्छी है और एक सबके मन में शुरुआत में ये डर था कि तेंदुए के साथ में चीता का इंट्रैक्शन कैसा रहेगा, क्योंकि अफ्रीका में जहाँ पे भी चीते हैं ये कहा जाता है कि लगभग 10% चीतों की मृत्यु तेंदुए की वजह से होती है, तेंदुआ चीता के बच्चों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो ये एक एप्रिहेंशन सबके मन में था, लेकिन हमारा जो पिछले सालों का अनुभव है उसमें यह है कि दोनों के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है, चीता लेपर्ड के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है, हाइना के बीच में भी इंट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन उसके कोई बहुत नेगेटिव परिणाम हमें देखने को मिल रहा है ऐसा नहीं है। चीता एक स्मार्ट एनिमल है, वो सर्वाइवल जानता है और लेपर्ड के साथ कैसे रहना है, लेपर्ड के बीच में कैसे रहना है, इसको वो पूरी भली भांति समझता है। इंट्रैक्शन हो रहे हैं, ज्यादा कदा कभी नेगेटिव इंट्रैक्शन सुनने को मिलता है, पर ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से चीता को यहाँ पर ऐसा खतरा है कि वो सर्वाइव नहीं करता। मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार की कोई भी बात है। एक हैबिटेट इम्प्रूवमेंट है हमारे, अगर हम इस कूनों की बात करें तो कूनों में मुख्यतः ग्रासलैंड का एरिया है, ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट है और हम लोगों ने पिछले 4-5 सालों में जंगल को सुरक्षित करने की काफी प्रयास किए हैं, हैबिटेट इम्प्रूवमेंट के प्रयास किए हैं, वाटर अवेलेबिलिटी बढ़ाई है, ग्रासलैंड डेवलप किए हैं। उसका फायदा ये हमको मिला है कि जो स्पीशीज यहाँ पर प्राकृतिक रूप से कभी नहीं थे या बहुत पहले कभी हुआ करते थे, उन स्पीशीज की वापसी हुई है
2: जी।
1: अभी हाल में हमको फॉरेस्ट आउलेट यहाँ देखने को मिला जो इस कूनो लैंडस्केप में कभी पहले नहीं देखा गया था। पहली बार हिस्टोरिकली वो फॉरेस्ट आउलेट जो कि बहुत ही रेयर बर्ड है और 90 के दशक में इसको एक्सटिंक्ट भी घोषित कर दिया गया था, वो कूनों में हमको मिला है। इसी प्रकार से भेड़िया इंडियन वुल्फ जो है वो कूनों में बहुत पहले कभी 20 साल पहले कभी रिपोर्ट हुई थी, जो हमें अब वापस देखने में मिल रही है। और इसी प्रकार से वाइल्ड डॉग की रिपोर्टिंग भी कूनो लैंडस्केप में कहीं नहीं थी, उसकी भी रिपोर्टिंग हमको अभी हाल ही में हुई है। इस प्रकार नए नए जानवर जो कभी यहाँ पे लोकली विलुप्त हो गए थे वो वापस इस लैंडस्केप में हमको दिखाई देने लगे हैं। तो ये सिर्फ चीतों के ही इंट्रोडक्शन की बात नहीं है, चीतों का इंट्रोडक्शन एक महत्वपूर्ण कड़ी रहा है ये जो पुराने लोकली विलुप्त जानवर थे उनके वापस लाने के लिए भी। तो इन सबके बीच में जो है अब चीता भी है, और मुझे लगता है कि चीता बहुत अच्छे से इनके साथ में एडजस्ट करेगा।
0: कुछ चीतों की मौत ने थोड़ी चिंता बढ़ाई थी, तो बीमारी और संक्रमण से बचाने के लिए मेडिकल टीम किस प्रकार से काम करती है ताकि चीतों को सुरक्षित रखा जाए?
1: इस पूरे प्रोजेक्ट में वेटरिनेरियन की भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चीता को नॉर्मली एक अंडरस्टैंडिंग है, चीता एक फ्रेजाइल एनिमल, एक नाजुक जानवर है जिसको अगर कोई बीमारी होती है तो बहुत ज्यादा समय वो नहीं देता कि हम उसे बचा सके। तो एक बहुत हमारी वेटरिनरी टीम की बहुत सजग रहने की आवश्यकता होती है। मेरे दो वेटरिनरी डॉक्टर जो हैं वो जहाँ हमारा मुख्य चीता केंद्र है पालपुर में कूनों के अंदर, वहां पर 24 घंटे उपस्थित रहते हैं, और उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस प्रोजेक्ट में पिछले 4 साल में रही है। किसी भी प्रकार की इमरजेंसी हो हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। हमारे पास एक मोबाइल हॉस्पिटल भी है, एक गाड़ी को हमने हॉस्पिटल के रूप में डेवलप किया है जो हमेशा तैयार रहती है, और बहुत शॉर्ट नोटिस में हम लोग किसी भी जगह में जहाँ कहीं इमरजेंसी हमें चीता की पता चलती है हम पहुँच सकते हैं जी। तो हमारे डॉक्टर्स जो हैं उनकी भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण रही है, 4 साल से कड़ी मेहनत उन्होंने की है, और कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ी जहाँ पे चीता को कोई बात हो और हम लोग ना पहुँच पाए हों। हम लोग सही समय पे पहुँचे हैं और हमने काफी प्रयास किए। तो हमारे पास में सभी प्रकार के मॉडर्न इक्विपमेंट जो हैं जो एक हॉस्पिटल में होने चाहिए या चीता का वेटरिनरी ट्रीटमेंट करने के लिए होने चाहिए वो हम लोगों के पास में है जी। हमको सरकार ने इसमें पूरी खुली छूट दी है कि किसी भी प्रकार की कमी इसमें नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग पूरी उस दिशा में हम लोग ध्यान देते हैं, दवाइयाँ और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो भी हम लोग को चाहिए रहती है वो हमारे पास में यहाँ पे उपलब्ध है, और हम लोग बड़े सजग हैं।
0: बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। इतने बड़े जंगल में चीतों की निगरानी के लिए कौन कौन सी आधुनिक तकनीक काम आ रही है?
1: हर एक चीता हमारे द्वारा रेडियो कम सैटेलाइट कॉलर किया गया है, मतलब एक ऐसा कॉलर पहने हुए है जिसमें रेडियो सिग्नल भी आता है, सैटेलाइट से भी उसकी लोकेशन ली जा सकती है। हम लोगों के पास में एक मोबाइल में ऐप रहता है जिससे सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन आती है, और रेडियो सिग्नल ट्रैक करने के लिए एक रेडियो एंटीना होता है जिसे हमारी मॉनिटरिंग टीम जो है वो अपने साथ में लेके चलती है जी। तो कोई भी चीता हमारे खुले जंगलों में अगर है तो उसके पीछे एक टीम सतत रहती है, 24/7 एक टीम रहती है जो उसकी स्थिति मॉनिटर करती है और उससे एक उचित दूरी पे बना के रखती है ताकि चीता को भी कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, लेकिन चीता लोकेशन में रहता है। और यदि कभी चीता का मूवमेंट ज्यादा होता है, क्योंकि रेडियो सिग्नल की एक निश्चित सीमा होती है 500-600-700 मीटर तक वो पकड़ पाता है, कई बार चीता का मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, नदी क्रॉस कर जाए, पहाड़ के दूसरी तरफ पहुंच जाए, जहाँ टीम नहीं पहुंच सकती, तो फिर हम सैटेलाइट सिग्नल के माध्यम से उसकी लोकेशन प्राप्त करते हैं। तो ये एक बहुत ही हाई एंड टेक्नोलॉजी है जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में यूज की जाती है, जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं। इसके साथ हम लोग कैमरा ट्रैप का बड़ा रेगुलरली उपयोग करते हैं, कैमरा ट्रैप हम लोग लगाते हैं पूरे अपने जंगलों में जिससे विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हमें पता चलती रहती हैं। साथ ही जो चीतों के बाड़े हैं हमारे पास में लगभग 1000 हेक्टेयर का ऐसा क्षेत्र है जिसको हमने फेंस किया हुआ है प्रेडेटर प्रूफ फेंस से, और जब हम कहते हैं कि चीते बाड़े के अंदर हैं वो इसी फेंसिंग के अंदर रहते हैं जिसे हम सॉफ्ट रिलीज बूमा भी बोलते हैं। 1000 हेक्टेयर को हमने 14 छोटे छोटे बाड़ों में बांटा गया, मतलब 70-80 हेक्टेयर का एक क्षेत्र होता है जिसमें एक चीता रहता है जी। तो इस पूरे क्षेत्र की मॉनिटरिंग के लिए हमने हाई मास्ट कैमरा लगाए हुए हैं, ये कैमरा नाइट विजन से भी वो है, रात में भी देख सकते हैं, और पूरा हमारी फेंसिंग और बाड़ों की निगरानी जो है इससे हो पाती है। जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमें लगता है कि प्रोटेक्शन में इनके मैनेजमेंट में इस्तेमाल हो सकती है उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं जी। और के रिजल्ट भी हैं कि हर चीता हमारा बेहतर मॉनिटर हो पाता है।
2: सर अभी हमारी बातचीत में आपने जिक्र किया कि गांधी सागर अभयारण्य को चीतों का दूसरा घर बनाने की तैयारी की जा रही है, और आपने बताया कि वहां शायद कुछ चीते छोड़े भी गए हैं। अभी क्या

0: कुछ उसके लिए प्लानिंग चल रही है और कितने चीते वहां पर रखे जाएंगे, इस बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए।
1: गांधी सागर जो सेकंड चीता इंफ्लेक्शन साइट है, ये लास्ट ईयर शुरू हुई है जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पे दो चीते पिछले साल 20 अप्रैल को छोड़े थे, दो मेल चीते छोड़े थे, उसके बाद 17 सितंबर को एक फीमेल चीता और गांधी सागर में छोड़ा गया। इसको वजह से तीन चीते गांधी सागर में है और वो एक फेंस्ड रिजर्व के रूप में एक प्रयोग किया जा रहा है। फेंस्ड रिजर्व मतलब आप जंगल का एरिया घेर देते हैं, वहां पर करीबन 68 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र फेंसिंग से घेरा गया है। ये कुछ अफ्रीकन विशेष रूप से साउथ अफ्रीका में इस प्रकार के फेंस रिजर्व होते हैं और चीता इन्हीं फेंस रिजर्व में साउथ अफ्रीका में स्थापित भी हुआ था प्रारंभिक दशा में। तो ये फेंस रिजर्व कॉन्सेप्ट पे गांधी सागर का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार वहाँ फेंस रिजर्व के अंदर करीबन तीन चीते हैं, दो मेल एक फीमेल, और भविष्य में भी उनकी संख्या में इजाफा हम लोग करेंगे जैसे जैसे आगे समय बढ़ता जाएगा। न सिर्फ गांधी सागर में चीतों की संख्या बढ़ेगी बल्कि और जो साइट्स हैं, हम लोगों ने देश में 10 साइट्स आइडेंटिफाई की हैं। जब शुरुआती दौर पर चीता इंट्रोडक्शन की बात होती थी तब 10 साइट्स आइडेंटिफाई की गई हैं जहां पर चीता इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जिसमें से मध्य प्रदेश में एक नौरादेही टाइगर रिजर्व है और बन्नी ग्रासलैंड गुजरात में है। तो अभी ये दो साइट भविष्य में बहुत जल्दी हम लोगों की शुरुआत करने का है कि चीतों का विस्तार इन दोनों साइट्स में भी हो और हम लोग जो है चार साइट चीता के लिए डेवलप कर सके, एक जेनेटिक डाइवर्सिटी चारों जगहों में मेंटेन रहे, इसको ध्यान में रखते हुए चीता का इंट्रोडक्शन किया जाएगा। हमारे पास में तीन अलग अलग देशों से चीते लाए गए हैं, नामीबिया, साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना से। तो तीन जो हमारी यहाँ पे भी साइट्स बनेंगी, हमारा प्रयास यही रहेगा कि तीनों देशों के जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन इन साइट्स पे हो जाए। वो कितना फिजिबल होता है, कैसे होता है, ये भविष्य में जब हम निर्णय लेंगे तभी ये डिसाइड हो पाएगा।
0: जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट चीता आज वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान बन चुका है। अगले 5 साल में ये कहाँ होगा, श्रोताओं को इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे?
1: जैसा मैंने कहा कि चीता प्रोजेक्ट एक अपने आप में एक यूनिक प्रोजेक्ट है, सारी दुनिया की निगाहें इस पे हैं। साउथ अफ्रीका में ये प्रोजेक्ट 70 के दशक में ऐसे शुरू हुए थे चीता इंट्रोडक्शन के, नामीबिया से चीता साउथ अफ्रीका लाए गए थे और लगभग 20 साल तक वो पूरा फेलियर रहा, कहीं भी चीता स्थापित नहीं हुई। 90 के दशक में फिर फेंस रिजर्व के भीतर उन्होंने प्रयोग किया, उसके बाद उन्हें तो सफलता उसमें मिली है। तो एक यूनिक प्रोजेक्ट एक की हम शुरुआत कर रहे हैं। हम एक ओपन फॉरेस्ट में चीता दूसरे कॉन्टिनेंट से लाके यहाँ एक अलग तरीके का इतिहास यहाँ पे की बात हो रही है, तो विश्व इसको बहुत पैनी नजरों से देख रहा है और जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत पहचान बनाने में ये सफल भी हुआ है कि जो भी काम कोनों में हो रहा है ये सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगले 5 सालों में हम लोगों का प्रयास यही रहेगा कि जैसा मैंने बताया कि चार साइट्स हम लोगों की डेवलप हो जाए, पूर्व गांधी सागर, बन्नी और नौरादेही, ये चार साइट्स हमारी डेवलप हो जाए और इन चार साइट्स में चीतों की संख्या जो है वो एक हेल्दी पॉपुलेशन चीता की वहां हो, उसके बाद में फिर हम और बाकी साइट्स के बारे में भी विचार करेंगे। तो अभी 5 साल में हमारा उद्देश्य यही है कि चारों साइट्स पे चीता पॉपुलेशन बने और बढ़े, ऐसा हमारा उद्देश्य है। और मेरा श्रोताओं से बस यही कहना है कि ये चीता, भारत में चीता की वापसी सिर्फ एक स्पीशीज की वापसी नहीं है, ये भारत सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को वापस लाना है। हमने आजादी के बाद से कोई भी जानवर ऐसा बड़ा मैमल, बिग मैमल हमने नहीं खोया, सिर्फ एक चीता था जो हमने 1952 में खो दिया। और एक कहते कि सबके मन में एक ऐसी बात थी, तो ये हमारा चीता हमारी एक प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा रहा है, ऐतिहासिक काल से चीता हम लोगों के रहा है। तो इस चीता को वापस लाना जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाया गया है, उनके द्वारा यहाँ वापस लाना न सिर्फ चीता को वापस लाना है बल्कि हमारी खोई हुई प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को वापस लाना है। तो इस ये सिर्फ किसी एक प्रदेश की विरासत नहीं है, किसी विभाग की नहीं है, तो पूरे जितने हमारे देशवासी हैं उन सबकी एक विरासत है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमको वापस ला के दी। तो हम सबका ये दायित्व होता है कि इस विरासत को हम दोबारा ना खोने दें, जो भी अपने स्तर से हम संभव प्रयास कर पाए, जो भी मदद कर पाए, उसकी हमें उनसे अपेक्षा रहेगी।

0: एक बहुत ही सार्थक चर्चा हुई उत्तम जी। आज आपसे बात करके न सिर्फ हमें बल्कि हमारे तमाम रेडियो श्रोताओं को प्रोजेक्ट चीता की उन बारीकियों और ज़मीनी हकीकतों को जानने का मौका मिला जो कि अक्सर अखबारों की सुर्खियों से भी पीछे छूट जाती हैं। श्रोताओं, आज की इस बातचीत से एक बात और साफ हुई कि धरती पर दौड़ते ये चीते सिर्फ एक वन्यजीव परियोजना का हिस्सा नहीं बल्कि यह नए भारत के उस ऊंचे संकल्प का प्रतीक है जिसका सपना हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, और यह हमारी आने वाली पीढ़ी के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रमाण है कि हम प्रकृति को उसका पुराना गौरव लौटा रहे हैं। मध्य प्रदेश जिस तरह से इस अभियान को आगे बढ़ा रहा है, वह दिन दूर नहीं जब हमारा चीता स्टेट पूरी दुनिया में पर्यावरण संरक्षण का सबसे बड़ा रोल मॉडल बनेगा। उत्तम कुमार शर्मा जी, आपने बेहद व्यस्त शेड्यूल में से हमारे श्रोताओं के लिए समय निकाला और इतनी महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारियां साझा की, इसके लिए हम पूरे आकाशवाणी परिवार और करोड़ों श्रोताओं की तरफ से आपका हृदय से आभार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए।
0: श्रोताओं, तो ये थे उत्तम कुमार शर्मा जी, कूनो प्रोजेक्ट के डायरेक्टर और वरिष्ठ वन अधिकारी, जिन्होंने आज हमारे साथ इस सारगर्भित चर्चा में भाग लिया। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम पीएम मोदी के 12 साल मध्य प्रदेश बना चीतों का घर, वार्ताकार अभिषेक कटियार। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। वक्त है छोटे से अंतराल का।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 7 बजने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकाल विकास प्राथमिकताओं से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया। युवा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को यह मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नवन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली है और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में आर्थिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो और 15 और 20 किलो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड़ तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368

0: रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 2 शतकीय पारी खेली। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानी पूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम विवरण। पहले आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। आकाशवाणी भोपाल से 7:21 पर ग्राम सभा होगी। 7:45 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष युवा शक्ति, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं आज रात 8:00। 8:35 पर फिल्म संगीत। 9:30 साहित्य भारती आकाशवाणी दिल्ली से और आकाशवाणी दिल्ली से ही रात 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम प्रसारित करेंगे। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब आइए डालते हैं एक नजर कल दिनभर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। पहले आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम बता दें। 7:20 पर नमस्कार भोपाल कार्यक्रम में समाचार पत्रों से ली गई मुख्य सुर्खियां, गीत संगीत और समय के साथ। सुरमई सवेरा फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा 8:30। आरती तिवारी के गए बुंदेली लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम लोक संगीत में। समय रहेगा 9:15। 9:30 सुनिएगा सिंधिया जी सुरहान, इसमें कल आप सुन सकते हैं उचित पोषण और खाद्य सुरक्षा के विषय पर डॉक्टर ज्योति केशवानी से बातचीत। 10:00 जिले की चिट्ठी। सामुदायिक गान शिक्षण पाठ में कन्नड़ गीत सुनिएगा 10:05 पर। 10:30 पॉडकास्ट सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ, इसका भाग 5 आप सुन सकते हैं। 10:45 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। कल शाम 7:21 पर ग्राम सभा में 7:30 से 8:00 के बीच सजीव फोन इन कार्यक्रम होगा हेलो ग्राम सभा, जिसमें विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर दीनानाथ घोरे। ये थे आकाशवाणी भोपाल के कल के कार्यक्रम। अब आइए जानकारी दे दें आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, इसे सुन सकते हैं आप कल 11:00। 12:00 आपकी फरमाइश संग्रहालय से, इस कार्यक्रम में दिन में 12:30 सुनिएगा जंग लगी तलवार, इसका भाग 2। 1:00 महिला कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति रहेगा, आकाशवाणी शिवपुरी से ही सुनिएगा। 1:30 लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम। फिल्म संगीत का प्रसारण किया जाएगा 2:00, 5:33 और 6:00। बच्चों का कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 2:30, ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति रहेगा। पीएम मोदी के 12 साल मध्य प्रदेश बना चीतों का घर, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 6:30।

रात 8 बजे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष वंचितों को वरीयता। 8:35 पर फिल्म संगीत रूपकों को अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 9:30 और रात 10 बजे अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा में विद्वान MSN मूर्ति का वायलिन वादन। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। ये थे आज और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 7:10 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच 2026 का शुभारंभ किया। राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवारों ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। भारत के युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति, कहा केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच 2026 का शुभारंभ किया। इस मंच में 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के बीच व्यापार और निवेश के नए अवसर सृजित होंगे।
1: ऐसे समय में जब उद्योग, कृषि, सेवा क्षेत्र और नवाचार में समान गति से जब भारत आगे बढ़ रहा है, तो आपका यहाँ आना हमारे लिए एक अलग प्रकार की छलांग लगाने का अवसर भी देने वाला है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में मध्य देश का लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों के साथ निर्यात लगभग 3,835 करोड़ तक पहुँच गया है, जो 19% की शानदार वृद्धि को बताता है और फार्मा क्षेत्र में इसमें हमारा खास योगदान है।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश LAC व्यापार एवं निवेश मंच के डिजिटल प्लेटफॉर्म व आधिकारिक वेबसाइट का लोकार्पण किया, जो वैश्विक व्यापार और निवेश के नए अवसरों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने द बिजनेस टाइकून पुस्तक का विमोचन भी किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय निशुल्क कैंसर जांच एवं परामर्श शिविर का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कैंसर के इलाज से पहले कैंसर रोकने का अभियान जरूरी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम सब मिलकर गुटखा, तंबाकू, शराब और बीड़ी सहित अन्य नशीले पदार्थों को बंद करने का अभियान चलाएं।
2: हम एक अभियान नहीं चला कैंसर हो उसके पहले कैंसर रोकने का, और वो अभियान है गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी बंद करने का अभियान, नशा मुक्ति का अभियान। आखिर कितनी दारू और काय के लिए दारू, जानबूझ के विनाश के सामान क्यों इकट्ठे कर रहे हो? कई आपने कम उम्र के बच्चे लीवर खराब हो, क्या तुम ये नहीं समझते तुम्हारा परिवार तबाह और बर्बाद हो जाता? माता पिता कहां से पैसे लाएंगे तुम्हारे लिए? क्या करेगा परिवार तुम्हारा? सारे माता पिताओं को, समाज को ये अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, पूरे प्रदेश में चलाए नशा मुक्ति का अभियान। उस दुकान के अलावा जो लाइसेंस ही है, घर घर में शराब, गाँव में शराब, दुकानों में नहीं मिलेगी।
0: प्रदेश से

0: राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवार तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने आज विधानसभा पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की रिक्त 3 सीटों के लिए आगामी 18 जून को मतदान होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की गई। वहीं जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि देश के किसान अब केवल खाद्य उत्पादक ही नहीं बल्कि ऊर्जा उत्पादक भी हैं। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने देशभर के हवाई यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उद्देश्य से 2 निजी कैब कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन समझौतों के अंतर्गत प्रमुख भारतीय हवाई अड्डों पर यात्रियों को निर्बाध, किफायती और विश्वसनीय कैब सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे उनकी यात्रा अधिक सुविधाजनक और आरामदायक बनेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 8 जून को प्रदेश के पीथमपुर स्थित स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में भारत की पहली मैन्युफैक्चरिंग इकाई का भूमि पूजन करेंगे। विश्व की अग्रणी कंज्यूमर हेल्थ केयर कंपनी हेलियन द्वारा लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाली यह अत्याधुनिक इकाई मुख्य रूप से ओरल हेल्थ उत्पादों के निर्माण पर केंद्रित होगी। यहां उत्पादित सामग्री घरेलू बाजार की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ एशिया, प्रशांत, मध्य पूर्व और अफ्रीका क्षेत्र के अनेक देशों में निर्यात भी की जाएगी। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत के युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। विकसित भारत के लिए युवा माय भारत यूथ कन्वेंशन को आज नई दिल्ली में संबोधित करते हुए श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को यह मंच प्रदान किया है।
2: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: पूरे प्रदेश में मानसून की दस्तक से पहले ही प्री मानसून गतिविधियां जोर पकड़ चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में 20 से अधिक जिलों में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने गुना, अशोकनगर सहित 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां तेज आंधी, गरज चमक और भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर संभागों के कई जिलों में आंधी और बारिश की संभावना है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को टीम का कप्तान बनाया गया है, जबकि तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छतरपुर में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार खटीक ने आज बिजावर विधानसभा क्षेत्र के सटई नगर में कई विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। खंडवा में महिला संबंधी अपराधों की विवेचना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा महिला पुलिस अधिकारी

ऑडिटोरियम में समान नागरिक संहिता के अध्ययन एवं परीक्षण के लिए गठित समिति की बैठक आयोजित की गई। शिवपुरी जिले में कलेक्टर ने एक समीक्षा बैठक के दौरान जिले में जल निगम द्वारा संचालित जल प्रदाय योजना और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के जल जीवन मिशन की समीक्षा की। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भैयारों को सुधांशु भैया की राम राम। भैयारों, अपन सभी जानते हैं कि अपना जो देश है वो आबादी के हिसाब से बहुत विशाल देश है, और जहाँ अधिकतर अपनी जो आबादी है वो गांव में रहती है, और बड़े क्षेत्र में अपना युवा वर्ग भी रहता है। और जाकेला ने सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की। अपने युवा वर्ग को रोजगार से जुड़ने के लाने सरकार द्वारा एक योजना शुरू करी गई, जाको नाम है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। जा योजना में अपने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार के योग्य बनाया जाता है। जैसे कहा है कि वो अपने खुद को व्यवसाय भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर वे किसी कंपनी में नौकरी करना चाहें तो वहाँ भी उनको रोजगार मिल सकता है। और जब अपने युवा कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करके रोजगार में जाएंगे या अपना व्यवसाय शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर वे आत्मनिर्भर बनेंगे, और बासे का जीवन स्तर भी सुधरेगा, और साथ ही साथ आय में भी वृद्धि होगी। जय योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2014 की 14 को शुरू हुई थी। जय योजना में युवाओं के अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, दिव्यांगों और अन्य जो पिछड़ा वर्ग हैं इनको भी जय योजना में प्राथमिकता दी जाती है। जय योजना का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण देने ही नहीं है, बल्कि प्रशिक्षण के बाद जो अपना युवा वर्ग है बिल्कुल रोजगार दिलाने में सहायता भी प्रदान करना है। भैया, जय योजना में आईटी, होटल प्रबंधन, इलेक्ट्रॉनिक्स, निर्माण कार्य, ऑटोमोबाइल, फैशन डिजाइनिंग, पर्यटन, कृषि आधारित उद्योग हैं, इनमें कहा है कि प्रशिक्षण दे जाते हो और प्रशिक्षण देकर उनको रोजगार के लाने तैयार करो जाते हो। भैयारों, जाके अलावा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत युवाओं को प्रशिक्षण के लाने कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ता, ये बिल्कुल निःशुल्क है। और प्रशिक्षण को जो पूरा खर्च है वो सरकार उठाती है, और प्रशिक्षण को पाठ्यक्रम जब प्रकार से तैयार करो जाते हो कि युवाओं को प्रशिक्षण के बाद रोजगार प्राप्त करने में सुविधा हुए। जय योजना में विभिन्न उद्योगों और कंपनियों को जोड़ा गया, जैसे कहा है प्रशिक्षण उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार हो सके। जय योजना को लाभ प्राप्त करने के लाने पहली तो बात यह है कि आवेदक जो है वो भारत को नागरिक हो, आवेदक ग्रामीण क्षेत्र को निवासी हुए, और साथ ही साथ आवेदक की जो आयु है वो 15 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। तो जय योजना के माध्यम से अपने ग्रामीण क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जय योजना के माध्यम से लाखों युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है तथा विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त भी हुआ है। तो ये जो योजना है वे अपने ग्रामीण युवाओं को लाने बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी योजना है। तो हम तो अपने कार्यक्रम के माध्यम से अपने ग्रामीण युवाओं को यही कहना चाहेंगे कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में

अपनों रजिस्ट्रेशन कराएं और अपने रोज़गार के प्रति जो जिस क्षेत्र में अपने को जाना है, चाहे वो होटल प्रबंधन हो, आईटी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या निर्माण कार्य हो, ऑटोमोबाइल हो, पर्यटन हो, या कृषि आधारित उद्योग हो, तो बाँ में अपनों रजिस्ट्रेशन कराएं और बाँ में प्रशिक्षण में। तो जैसे कहा है कि अपन को अच्छा रोजगार भी मिलेगा और अपन चाहें तो अपनों खुद को भी अपन व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। भैया चर्चा अपनी चलत रहेगी, अब लेते हैं तनक सो विराम और सुनते हैं जी संदेश।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: भैयरों, आपके अपने कार्यक्रम चौपाल में आपको पुनः स्वागत है। भैयरों, अपन देखते हैं ना कि कभी कभी अपन कोई सामान खरीद कर लाते हैं तो वो या तो एक्सपायरी डेट निकल जाते है या नकली सामान मिल जाते है। तो अपन को कोई भी सामान खरीदना है या कोई भी सेवाएं लेते हैं तो बाकी लाने भारत सरकार ने अपने लाने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत अपने कई अधिकार सुरक्षित करें। अपन को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपन ऐसे उत्पाद की सेवाएं पाने का अधिकार है जिससे अपने जीवन और सेहत जो है वो सुरक्षित रहे। उत्पाद की गुणवत्ता, मात्रा, कीमत, निर्माण तिथि आदि की जानकारी भी अपने को पाने का अधिकार है और अपनी पसंद का सामान चुनने की भी स्वतंत्रता है। और यदि अपन को कोई शिकायत करनी है तो उसमें अपन को कोई शिकायत करनी है तो अपनी पसंद का सामान जो उचित मंच है वहाँ पे अपन अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर अपन को कोई चीज़ खरीदने से नुकसान हुआ है तो बाको मुआवजा पाने को भी अपने को अधिकार है। तो हमें कहा है कि अपने को जो हमारे अधिकार हैं अपने कर्तव्य में इनकी जानकारी पाने को भी अधिकार है। तो अपन हमेशा जब भी कोई सामान खरीदें तो बाकी बिल और रसीद लें। जो बिल और रसीद लेने से क्या है कि अपन को ये जानकारी रहेगी कि अपन ने जो सामान खरीदो है, अपन ने अगर पंखा खरीदो तो अपन को ये मालूम रहेगा कि बाकी अगर साल भर की वारंटी है और अगर 6 महीना में वो ख़राब हो जाते हैं तो अपने पास एक जानकारी रहते हैं, अपन बाय बोल सकते हैं। जाके अलावा अपन कोई भी उत्पाद खरीदते हैं तो बाकी पीछे बाकी जानकारी रहते हैं कि ये सामान कब बना है और कब तक ये अच्छा रहेगा। और हमेशा ये ध्यान रखें, नकली या गलत विज्ञापन से सावधान रहें और कोई भी नकली सामान मिले तो बाय बिल्कुल न खरीदें। जाके अलावा अगर अपन को कोई शिकायत करनी है तो अपन उपभोक्ता फोरम में जाके अपन शिकायत कर सकते हैं और शिकायत करने पर अपन को मुआवजा भी मिलेगा और साथ ही साथ अपन को कोई परेशानी हुई है बाकी भी अपन को पैसा मिलेगा। तो अपन हमेशा ये ध्यान रखें कि कोई भी सामान खरीदें बाय देख परख के खरीदें। कभी भी ये देख लें कि बाकी एक्सपायरी डेट कब की है, बाय अगर जी साल भर की एक्सपायरी डेट है या कोई दवाई अपन लेते हैं तो बाकी एक्सपायरी डेट हमेशा ज़रूर देखें। और अगर हम इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर हम अपना जीवन सुरक्षित रख सकते हैं। भैयरों, चर्चा अपनी चलत रहेगी और अब समय हो गया है अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के कार्यक्रम फुलबगिया का, अब तक उनसे भी बतिया लें।

बच्चों आपके अपने कार्यक्रम फूल बगिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों अब गर्मियों की छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली हैं और आपके विद्यालय भी खुलने वाले हैं, तो बच्चों अच्छे से पढ़ना, सच बोलना और ईमानदारी से रहना और सही काम करना। बच्चों हमेशा कहते हैं ना कि सत्य की हमेशा जीत होती है और ये सत्य बात है। बच्चों हमारे जीवन में सत्य का बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति सत्य का साथ देता है वह लोगों का विश्वास जीतता है, सम्मान प्राप्त करता है। अपन देखते हैं ना, झूठ जो बोलता है वो थोड़े समय के लिए तो लाभ दे सकता है लेकिन अंत में जो सच है वो सामने आ ही जाता है। तो बच्चों हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, हमेशा सत्य बोलें। बच्चों चर्चा होती रहेगी, अब थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए, तो सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: बच्चों, अभी अपन ने सुना ये प्यारा सा गीत और अपन चर्चा कर रहे थे कि हमेशा सत्य बोलें। बच्चों, जीवन में सत्य का बड़ा महत्व है और अपनी जो उम्र है, बचपन है, जो समय है बचपन का, उसमें सब अच्छी आदतें सीखी जाती हैं। यदि अपन बचपन से ही सच बोलना सीख लें तो बड़े होकर अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। और सच बोलने वाला बच्चा अपने माता पिता, शिक्षकों और मित्रों का विश्वास जीत लेता है। और दूसरी ओर जो बच्चा झूठ बोलता है उस पर कोई विश्वास नहीं करता, उस पर कोई भी भरोसा करना बंद कर देते हैं। बच्चों, सत्य एक ऐसा गुण है जो हमें महान बनाता है। हर परिस्थिति में हमें सच बोलने का प्रयास करना चाहिए। कई बार लोग डर और लालच के कारण झूठ बोल देते हैं और कुछ बच्चे अपनी गलती छिपाने के लिए भी झूठ बोल देते हैं, लेकिन झूठ से क्या है, समस्या बढ़ जाती है। एक झूठ को छिपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं, इससे अपन दुखी और परेशान हो जाते हैं। बच्चों, एक छोटी सी कहानी से हम सत्य का महत्व समझ सकते हैं। एक गांव में एक लड़का रहता था, वो अक्सर झूठ बोलता था। एक दिन उसने मजाक मजाक में चिल्लाया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। उसकी आवाज़ सुनकर गांव वाले उसकी मदद के लिए दौड़े आए, लेकिन वहां पर कोई भेड़िया नहीं था। लड़का गांव वालों को देखकर हंसने लगा। उसने ऐसा कई बार किया। कुछ दिन बाद सचमुच भेड़िया आ गया। इस बार लड़का बहुत डर गया और जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगा, लेकिन गांव वालों ने सोचा कि वो मजाक कर रहा है, इसलिए उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि झूठ बोलने वाले लोगों पर कोई भी विश्वास नहीं करता। बच्चों, हमारे देश के महान नेताओं ने भी सत्य को बहुत महत्व दिया। महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। वो हमेशा सच बोलते थे और लोगों को भी सत्य का पालन करने की शिक्षा देते थे। उन्होंने अपने जीवन से सिद्ध किया कि सत्य और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है, और उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना हो, हमेशा हमें सत्य के साथ रहना चाहिए, सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चों, गर्मियों का मौसम चल रहा है और गर्मियों में अपन खेलने तो जाते ही हैं, और जब खेलने जाते हैं तो अपनी आँखों में परेशानी भी हो जाती है। तो बच्चों, गर्मियों में अपनी आँखों की सुरक्षा कैसे करें, आज जो वार्ता है इसका विषय यही है, और इसके बारे में जानकारी देंगे डॉक्टर MS सागर। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: बच्चों, आँखों में गर्मी बढ़ने से जलन होती है और उसमें लालपन भी आता है, और इसीलिए खुजली होती है। इसलिए होता है बच्चों कि अपनी आँखों में हमेशा आंसू आते रहते हैं, इसलिए आँखों में नमी का रहना जरूरी है। गर्मी में ये नमी कम हो जाती है क्योंकि आंसुओं का एवोपरेशन हो जाता है, आंसू जल्दी उड़ जाते हैं, इसलिए आँखों में सूखापन आ जाता है। इसलिए ये सारी समस्या आपको होती है, क्योंकि धूप में जाने से वातावरण में टेम्परेचर और ज़्यादा होता है, तो हमारे आँखों के अंदर मौजूद आंसू और जल्दी उड़ जाता है, तो आँखों में सूखापन और जल्दी आ जाता है, और उस सूखेपन की वजह से ही आपको खुजली ज़्यादा होती है और लालपन भी उसी की वजह से ज़्यादा होता है। गर्मी में हमारे आँखों पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है, इसलिए 2-3 बातों का मुख्य रूप से आपको ख्याल रखना चाहिए। पहली चीज़ कि ऐसी किसी भी जगह पर ज़्यादा टाइम नहीं रुकना चाहिए जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो, और यदि रुकना भी पड़े तो अपने पलकों को बार बार झपकना चाहिए जिससे हमारे आँख का टेम्परेचर मेंटेन रहे। एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है आँख के अंदर कि आँखों में आंसू हमेशा बहता रहता है, जिसके कारण हमारी आँख का टेम्परेचर समान बना रहता है। दूसरी चीज़, आँखों में नमी बनी रहती है और हमारी आँख की सफाई भी होती रहती है, परंतु गर्मी में आंसू में कमी हो जाती है। कमी इसलिए हो जाती है कि आंसू जल्दी उड़ जाता है, इसलिए अपने को गर्मियों में थोड़ा सा खुजलीपन होती है, इसलिए लालपन होता है, तो अपने को कोशिश करना चाहिए कि जो मौसम है उसमें अपने को टेम्परेचर एक समानता के रूप में रखना चाहिए। नंबर 2, जब भी कभी अपन धूप में जाते हैं या तेज हवा में जाते हैं या गाड़ी पे जाते हैं तो हमेशा चश्मे का इस्तेमाल करना चाहिए। चश्मे के विषय में मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा बच्चों कि एक बहुत विशेष बात है कि चश्मा किस तरीके का उपयोग करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक जानकारी।

0: जानकारी है। चश्मिया हमेशा रंगीन कलर का इस्तेमाल करना चाहिए, उससे जो धूप में किरणें आती हैं सूरज की, उन किरणों को चश्मा एब्जॉर्ब करता है, तो जो हानिकारक किरणें रहती है वो हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाती हैं, उसके कारण हमारे आंख के अंदर जो पर्दा रहता है जिसको रेटिना बोलते हैं उसमें कोई खराबी नहीं आती है। दूसरी चीज, आंखों में सूखापन कम होता है, उसकी वजह से जो होने वाली परेशानी है वो ऑटोमेटिक कम हो जाती है। ये अपने को बहुत खास करके ध्यान रखना चाहिए। आंखों के अंदर जैसा कि मैंने अभी बताया था कि आंखों में एक आंसू बहता रहता है, वो हमारी आंख का सुरक्षा करते हैं। सुरक्षा एक तो इन्फेक्शन नहीं होने देते हैं, जो कीटाणु रहते हैं विषाणु रहते हैं वो हमारे आंसू से एक तो बहा ले जाते हैं, दूसरा उसमें आंसुओं में एक ऐसा पदार्थ बहता है जो कीटाणुओं को और विषाणुओं को दोनों को खत्म कर देता है। तो हम जब बार बार अगर धोएंगे तो आंसू हमारी आंख से धुल जाएगा तो हमारी आंख हमेशा खतरा बना रहेगा इन्फेक्शन का। तो पहली चीज, आंख को बार बार नहीं धोना चाहिए। क्यों? क्योंकि आंख में इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन होने से आपकी आंख में छाला हो सकता है, जिसको विज्ञान की भाषा में कॉर्नियल अल्सर कहते हैं, और यदि कॉर्नियल अल्सर होता है तो उससे आपकी आंख की रोशनी जा सकती है, आंख में मवाद पड़ सकता है, और यहाँ तक कि यदि वो ठीक से सही समय पर इलाज नहीं लिया या इलाज रिस्पॉन्स नहीं किया तो आँख की रोशनी हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। इसलिए कभी भी बार बार आँख का नहीं धोना चाहिए। आँख धोना चाहिए, लेकिन कब धोना चाहिए ध्यान से सुनिए बच्चों। जब अपन बाजार में जाते हैं या धूल भरे मार्ग में कहीं जाते हैं और वहाँ तेज धूप है, तेज हवा है, धूल के कण हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारी आँखों में वो कण घुस जाते हैं, वो हमारी आँखों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो जब हम घर से वापस आएं ऐसी स्थिति में आँख अवश्य धोना चाहिए, अन्यथा आवश्यकता नहीं होती है। अक्सर मेरे को भी सुनने में आता है कि लोग गुलाब जल डाल रहे हैं साहब हम इतने दिनों से, उसके बाद हमारी आँख में जलन हो गई, लाल हो गई और छाला हो गया है। तो गुलाब जल जो मार्केट में आता है उसका एक तो मेडिकल के आधार पर कोई प्रामाणिकता नहीं रहती है कि वो कितना शुद्ध है, कितना अच्छा है और कितना मेडिकली फिट है। इसीलिए आँख में कोई भी चीज़ अगर अपन डालते हैं तो वो हमें नुकसान भी कर सकती है, क्योंकि कितना उसमें कीटाणु वगैरह हो सकते हैं, विषाणु हो सकते हैं, वो हमारी आँख को इन्फेक्शन पहुंचा सकते हैं, एक चीज़। दूसरा, गुलाब जल में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती मेडिकली के साइंस के हिसाब से, वैज्ञानिक हिसाब से या चिकित्सकीय हिसाब से कि जो आँख को कोई बहुत बड़ी सुविधा या बहुत विशेष सुविधा या विशेष सुरक्षा करते हों। इसलिए अनावश्यक कोई भी पदार्थ, गुलाब जल हो या बाजार में बहुत सारी ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स के नाम पर दवाइयाँ आती हैं, कुछ अन्य जो लोग होते हैं वो अपनी दवाइयाँ बना करके देते हैं वो हों, उनको कभी भी अपने को आँखों में नहीं डालना चाहिए। तेज धूप और तेज धुआं में आँख को नुकसान होने का और ज़्यादा खतरा रहता है। आप इसको यूँ समझिए कि आँख के सामने जो एक काला गोल स्ट्रक्चर होता है उसको साइंस की भाषा में कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया बिल्कुल कांच की तरह से होता है और ठीक ऐसे कांच पे अगर कोई कंकड़ या पत्थर रगड़ दें अपन जोर से तो उस पर स्क्रैच आ जाता है, और स्क्रैच आ जाता है तो वो परमानेंट उसमें एक डिफेक्ट जैसा हो जाता है, क्लैरिटी उसकी डिस्टर्ब होती है। इसलिए कभी भी अगर तेज धूप या धूल भरी आंधी है तो उसमें अपने को आँखों में बचाव करने के लिए दो तीन बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहली चीज, हमेशा चश्मा लगाना चाहिए। कभी भी अगर मजबूरन बस ऐसी स्थिति में अगर अपने को जाना पड़ रहा है तो बगैर चश्मे के किसी भी हालत में नहीं जाना चाहिए, और जब भी अपन वापस आते हैं उस क्षेत्र से तुरंत आकर अपनी आँख को शुद्ध पानी से धोना चाहिए। बिल्कुल जो शुद्ध पानी रहता है उस पानी से अपने आँख को धोना चाहिए। तेज धूप में मैं आपको फिर पुनः बताना चाहता हूँ कि तेज धूप के अंदर जो सूरज की किरणें रहती हैं उसमें कुछ किरणें ऐसी रहती हैं जो हमारी आँख को नुकसान पहुँचा सकती हैं। तो जिस तरीके से चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में हम लोग नेकेड आई से देखने के लिए मना करते हैं, उसी तरीके से हम तेज धूप में भी देखने के लिए मना करते हैं। उसका कारण ये रहता है कि जो किरणें रहती हैं नुकसानदायक वो सीधे आँख के अंदर चली जाती हैं, और पीछे आँख के पास जाकर के जहाँ रोशनी निकलती है, जहाँ रोशनी बनती है उसको हम रेटिना कहते हैं, और उस रेटिना को वो किरणें जला देती हैं, इसलिए आँख की रोशनी हमेशा के लिए कम हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा या तो चश्मा लगाना चाहिए या फिर अपने को उससे बचना चाहिए। इन दिनों में चूंकि गर्मी बहुत होती है इसलिए दो तीन बातों का फिर से अपने को एक बार ध्यान रखना होगा कि गर्मी में जब भी अपन कहीं धूप में जाते हैं, आप लोग बाइक से जाएं या साइकिल से जाएं या पैदल जाएं, तो बगैर चश्मे के नहीं जाना चाहिए, और चश्मा आपका रंगीन कलर का होना चाहिए। यदि चश्मा नहीं है किसी कारणवश तो कुछ ऐसा व्यवस्था करना चाहिए कि आपकी रोशनी डायरेक्ट आपकी आंखों पर न पड़े। आपने देखा होगा बच्चों कि पहले गांव के लोग सिर पर एक साफा बांधते थे और साफे से बहुत शुभदा रहती थी। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये हुआ करता था कि सिर पर साफा बांधने की वजह से आंख पर रोशनी डायरेक्ट नहीं पड़ती थी। लेकिन आजकल चूंकि नहीं है तो इसलिए हम लोगों को चश्मा लगाना चाहिए, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा अपने को आदत डालना चाहिए। और यदि गर्मियों में बहुत सारी चीज़ें ये होती है कि अपन बहुत समय पर या तो कूलर में बैठते हैं या एसी में बैठते हैं, तो इसमें भी अपने को बहुत ज़्यादा सावधानी रखना चाहिए। कूलर में अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि पानी भर देते हैं एक बार और उसको कई दिनों तक चलाते हैं, 7 दिन तक पानी अपने चेंज नहीं किया, बहुत सफाई नहीं की, तो उसके कारण उस पानी में कुछ बैक्टीरिया और वायरस और फंगस तीनों चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। और जब वो पानी के साथ साथ कूलर चलता है तो पानी के कुछ छोटे छोटे महीन महीन कण उस पंखे से हवा के सारे आपकी आंखों तक आ जाते हैं। यदि वो सीधी आंख में डायरेक्ट आती है तो वो इन्फेक्शन फैला सकती है आंख में। और जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कॉर्निया अल्सर ऐसी बीमारी है जिससे कि परमानेंट लॉस ऑफ विजन यानी कि हमेशा के लिए आंख की रोशनी जा सकती है। तो इस कूलर के सामने जब भी बैठें ध्यान रखें कि आंख के पास सीधी हवा नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, यदि आप एसी इस्तेमाल करते हैं तो एसी में भी अपने को बहुत सावधानी रखना चाहिए कि जब एसी चलता है तो कमरे में ड्राइनेस आ जाती है, आर्द्रता जिसको कहते हैं अपन एक सिंपल भाषा में, तो वो आर्द्रता कम हो जाती है और उस आर्द्रता कम होने के वजह से अपने आँख के अंदर सूखापन आ जाता है। सूखापन आने का कारण वही है जो मैंने पूर्व में बताया था कि अपनी आँख के अंदर आंसू बहता है, वो जल्दी सूख जाता है। तो सूखापन आने की वजह से आपकी आंख में जलन होगी, लालपन होगा, खुजली होगी, यहाँ तक कि सिर में दर्द भी होगा, चक्कर आने लगेंगे और आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो जब भी एसी में रहते हैं तो एसी में रहने के साथ साथ एक तो डायरेक्ट एसी की हवा आपकी आंख में नहीं आना चाहिए, और दूसरी बात कि एसी में आप उतना इस्तेमाल करें उसका ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों ही आपको बिल्कुल मेंटेन करके रखना चाहिए जिससे कि आपकी आंख में कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े। पढ़ते समय ध्यान रखना चाहिए कि हमारी आंख के एक तो सीधे रोशनी नहीं पड़ना चाहिए, कोई भी लाइट का सोर्स है वो हमारी आँख के पास सीधा नहीं होना चाहिए। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि रोशनी प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर रोशनी का मतलब ये होता है कि जैसे कोई आपका बड़ा कमरा है उसमें आपने अगर 1 CFL लगा ली है और आप किसी टेबल कुर्सी पर बैठ के पढ़ रहे हैं तो वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। इसलिए आपको हमेशा कोशिश ये करना चाहिए कि जब भी आप पढ़ते हैं टेबल कुर्सी पर तो टेबल लैंप पर पढ़ना चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़, यदि आप कंप्यूटर पर रीडिंग करते हैं, चूँकि आज कंप्यूटर का ज़माना है तो कंप्यूटर पर अगर आप लोग पढ़ते हैं तो कंप्यूटर की 2-3 चीज़ें अपने को ध्यान रखनी चाहिए। एक तो कंप्यूटर की स्क्रीन और आपकी आई का जो डिस्टेंस है वो प्रॉपर होना चाहिए, वो लगभग 1.5 फुट के आसपास होना चाहिए, उससे कम भी नहीं होना चाहिए और उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ये एक डिस्टेंस होना चाहिए। दूसरा, लेवल ऑफ द मॉनिटर, तो कंप्यूटर का जो मॉनिटर रहता है, स्क्रीन रहती है, वो आपकी आँख के लेवल में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर ऊपर होगा आपकी आँख से तो आपको ऊपर करके देखना पड़ेगा तब भी प्रॉब्लम होगी, यदि नीचे करके रखेंगे तब भी आपको प्रॉब्लम होगी।
1: बच्चों अभी अपन ने सुनी ये वार्ता जिसका विषय था गर्मी में कैसे करें आंखों की सुरक्षा, और इसके बारे में जानकारी दे रहे थे डॉक्टर M.S. सागर जी। बच्चों इस वार्ता के माध्यम से अपन ने जाना ना कि अपन को अपनी आंखें किस तरीके से सुरक्षित रखनी चाहिए, कि गुलाब जल को कभी उपयोग ना करें। इसके अलावा अपन ये देखें कि अगर अपन एसी में बैठे हैं तो उसकी सीधी हवा अपनी आँखों पर नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा कूलर की अपन नियमित सफाई करें जिससे कूलर में से जो कंकड़ अगर बन जाते हैं तो वो अपनी आंखों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बच्चों अपन चर्चा कर रहे थे सत्य की जीत होती है। बच्चों हमें अपने विद्यालय में भी सत्य बोलना चाहिए, अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो हमें अपने शिक्षक को सच सच बताना चाहिए। परीक्षा में नकल करना या झूठ बोलकर बहाना बनाना, गलत बात करना, ये सब गलत बात है। हमेशा मेहनत और ईमानदारी से प्राप्त की गई सफलता ही सच्ची सफलता होती है। यदि हम मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो हम अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो बच्चों हमेशा ये ध्यान रखें कि अपने माता पिता से भी हम सच बोलें, और सच बोलने से क्या होता है, परिवार में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। बच्चों सत्य बोलना केवल जरूरी नहीं है, ये हमारे कामों में दिखाई देना चाहिए। यदि हम किसी की वस्तु लें तो बगैर उससे पूछे ना लें, क्योंकि हमेशा हमसे हमें किसी से कोई वस्तु लेनी है तो उससे पहले पूछें, उसके बाद हम उसको रखें। बच्चों प्रकृति भी हमें सत्य का पाठ पढ़ाती है। सूरज हर दिन समय पर निकलता है और अपने नियमों का पालन करता है। पेड़ पौधे नदियाँ भी अपना कार्य नियमित रूप से करती हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में सच्चाई और अनुशासन अपनाना चाहिए। बच्चों अनुशासन से भी हम अपने जीवन को आगे लक्ष्य तक प्राप्त कर सकते हैं। अब अपने विद्यालय खुलने वाले हैं तो हमेशा ये ध्यान रखें, पढ़ाई लिखाई का जो समय है वो निर्धारित करें और खेलने का समय भी निर्धारित करें, और अपना समय सुबह सोने से उठकर, सुबह जब अपन सो के उठते हैं और रात को सोने तक अपनी दिनचर्या निर्धारित कर लें। अगर हम अपनी पढ़ाई को, अपनी खेल कूद को एक निश्चित समय और प्रतिदिन करेंगे तो निश्चित तौर पर हम परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। बच्चों चर्चा अपनी चलती रहेगी, अब थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए तो सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

बच्चों अभी अपन ने सुना ये प्यारा सा गीत, और बच्चों अपन चर्चा कर रहे थे सत्य के बारे में। बच्चों सत्य एक ऐसा दीपक है जो अंधकार को दूर करता है। झूठ कुछ समय के लिए चमक दे सकता है, लेकिन उसकी चमक अधिक समय तक नहीं रहती। अंत में सत्य की विजय होती है। इसलिए बच्चों हमेशा सत्य बोलना चाहिए और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। बच्चों सत्य मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। सत्य हमें हमेशा अच्छा इंसान बनाता है, समाज में सम्मान दिलाता है, और हमें अपने जीवन में हमेशा सत्य, ईमानदारी और अच्छे संस्कारों को अपनाना चाहिए। यदि हम सत्य का साथ देंगे तो जीवन में सफलता और खुशी अवश्य प्राप्त होगी। इसलिए सही कहा गया है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। बच्चों इसके साथ साथ अभी अपन ने चर्चा करी ना कि हमें अनुशासन का भी पालन करना चाहिए। हमें अपना समय निर्धारित कर लेना चाहिए पढ़ाई के लिए, खेल कूद के लिए, जिससे हम आगे आने वाली परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो बच्चों अपन विषयवार समय निर्धारित कर लें, अपन सुबह उठने का समय निर्धारित करें, उसके बाद विद्यालय जाएं और विद्यालय से लौटकर खाना खाकर थोड़ी देर आराम करने के बाद अपने पढ़ाई का समय निर्धारित करें और विषयवार पढ़ाई करें। जैसे एक दिन गणित, एक दिन हिंदी, एक दिन विज्ञान, एक दिन सामान्य विज्ञान, एक दिन अंग्रेजी। इससे क्या होगा कि हम अपनी पढ़ाई को अच्छे रूप से पढ़ सकते हैं, और समान रूप से जब हम पढ़ाई करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छे अंक भी हमें मिलेंगे। और जिस विषय में आपको परेशानी आए तो अपने गुरुजन शिक्षक हैं तो अपन उनसे चर्चा कर सकते हैं। अपने विद्यालय में जाकर उनसे चर्चा करें, उनसे बात करें, उनसे प्रश्न पूछ लें, तो हम अपने विषय को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों अपने विद्यालय की साफ सफाई जरूर रखें। बच्चों अब हो गया चलने का समय, तो सभी बच्चों को सुधांशु भैया का ढेर सारा प्यार।

भैयारों आपका अपने कार्यक्रम चौपाल में आपका पुनः स्वागत है। भैयारों अब हो गई चलने की बेला और चलते चलते हम अपने किसान भैयारों से यही कहेंगे कि अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें, नए नए पेड़ पौधा लगाएं, साथ में दूसरे अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें, जिससे हमारे यहाँ हरियाली बढ़े, वातावरण में ठंडक हो और साफ सफाई होने से हम बीमारियों से भी बच सकते हैं। तो भैयारों अगर इन बातों को हम ध्यान रखेंगे, जैसे अपने जो नालियां हैं, अपने कुएं हैं, इनके आसपास अपन पानी जमा ना होने दें, जिससे क्या मक्खी मच्छर नहीं पनपेंगे और हम कई प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। भैयारों अब हो गई चलवे की बेला, तो सभी किसान भैयारों को सुधांशु भैया की राम राम।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए हमारा विशेष कार्यक्रम।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज नाउ वी ब्रिंग यू अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, फ्रॉम वुमेन एम्पावरमेंट to women-led development. Participants are Professor Sushma Yadav and Aditi Tandon, Senior Journalist. Moderator is Sonu Sood. Ye Akashvani hai. Prastut hai Vishesh Shrinkla. Iske antargat aaj suniye Modi Sarkar ke 12 saal Mahila Sashaktikaran ka Parivartankari Dashak. Isme bhaag le rahi hai Professor Sushma Yadav aur varishth patrakar Aditi Tandon. Karyakram ka sanchalan kar rahi hai Sonu Sood.
2: In the 12 years of NDA government, Prime Minister Narendra Modi has consistently said women empowerment is one of the key priorities of this government and the government's dream of upgrading women's development to women-led development has turned to reality thanks to the focused efforts of the government, be it education, health, financial inclusion, livelihood avenues, security, quality of life. The targeted schemes of the government have empowered and accorded respect and dignity to women as a powerful economic force, giving them confidence and opportunities to break new frontiers. To discuss this emergence of women as an integral and crucial part of nation building, we have with us two very special guests, Professor Sushma Yadav and senior journalist Aditi Tandon. So, Professor Sushma Yadav ji, we would like to start with you. हम आपसे जो आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है पिछले 12 वर्षों में एनडीए सरकार के इस कार्यकाल में, उसके ऊपर हम आपसे डिस्कशन करना चाहेंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री जनधन योजना हो जिसमें 32 करोड़ महिलाओं से अधिक के बैंक अकाउंट खुले पहली बार, या फिर जो एक एस्पिरेशनल एंटरप्रेन्योरशिप का सपना पूरा करने वाला जो पीएम मुद्रा योजना थी, उसमें से 3 में से 2 जो लाभार्थी थी वो महिलाएं थी, और महिला एंटरप्रेन्योर्स को 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक के लोन्स प्राप्त हुए। सो ये स्कीम्स तो अच्छी थी ही, लेकिन जो इनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और जो महिलाओं के फेवर में इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, क्या इसे आप एक बड़ी उपलब्धि मानती हैं? कैसे देखती हैं आप इनके महत्व को?
3: बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए विकसित भारत महिलाओं के बिना हो ही नहीं सकता, मैं ये बात याद दिलाना चाहती हूँ यहाँ। और विकसित भारत का मतलब उनके लिए है एक सशक्त, सक्षम और स्वावलंबी नारी समूह और नारी शक्ति। उनका मानना है कि जब तक महिलाएं इस विकास की यात्रा का हिस्सा नहीं बनेंगी, तब तक भारत विकसित नहीं बन सकता। और आप जानते हैं कि उनका इस समय सबसे बड़ा ध्येय, उद्देश्य और स्वप्न वो सब विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047 है जी। उस यात्रा के लिए उन्होंने, और आप जानते हैं कि जो शक्ति है वो शक्ति मानसिक तो होती है, बौद्धिक तो होती है, पर आर्थिक सबसे अधिक होती है, जो दिखाई देती है। मानसिक और बौद्धिक शक्ति दिखाई नहीं देती है, लेकिन आर्थिक शक्ति तो स्पष्ट दिखाई देती है। इसलिए सबसे पहले वित्तीय समावेश की बात उन्होंने की है, और वित्तीय समावेश में जनधन खाते सबसे पहली योजना है, जिससे उन्होंने पूरे देश को ये अवसर दिया कि वह बैंकों के साथ जुड़ सके और बैंकों की जो वित्तीय सहायता है वो सबको उपलब्ध हो सके। और इसमें सबसे पीछे रहने वाली महिलाएं थी, इसलिए महिलाओं को उसमें शामिल किया। और ये आश्चर्य की, सुखद आश्चर्य की बात है कि अब वो 50% से अधिक खाते जो हैं वो महिलाओं के खुले हैं, क्योंकि शायद उन्हें ही बैंक तक जाने की झिझक भी थी
2: जी,
3: और बैंक तक जाने के लिए सुरक्षा चाहिए थी। तो जो लगभग 30 करोड़ से ज्यादा खाते खुले हैं उसमें अब तो 61% लेटेस्ट डाटा इज इट्स मोर देन 61% वुमेन। सो सबसे पहला जो मैं बात कर रही थी, जनधन खातों की सफलता,

0: लेकिन वो वहीं नहीं रुके, क्योंकि सिर्फ जनधन खाते खुल जाएं वही नारी को सशक्त नहीं करेंगे। लखपति दीदी का सपना दिखाया, उसको पूरा किया, क्योंकि कितनी सारी जो लखपति दीदी बनी स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से, 3 करोड़ की पहले बात की थी लेकिन 10 करोड़ महिलाएं उसमें जुड़ चुकी हैं। मात्र काशी 1.25 करोड़ महिलाएं हैं, तो सालाना 1 लाख रुपया। देखिए, पहले जमाने में हम सपना देखते थे कि लखपति बन जाएंगे तो क्या क्या करेंगे,
1: जी
0: और शहरों में चाहे वो अब उतना बड़ा सपना नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ कैश नहीं है उतना, लखपति बनना अपने आप एक बड़ी उपलब्धि है। और वो महिला बन जाए तो
1: जी
0: लखपति दीदी का जो कंसेप्ट दिया, जो योजना दी, वह महिलाओं को करने वाली योजना है। और कि ये सिर्फ लखपति दीदी नहीं है, वह कमाने वाली बनती है। हुनर हाट की बात उन्होंने की है, और मुद्रा योजना, जो पीएम मुद्रा योजना है, उससे महिला उद्यमियों को जो लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का लोन मिला है, इट्स ए ह्यूज अमाउंट। और जिन महिलाओं को ये मिला है वो धीरे धीरे एमएसएमई के माध्यम से, लघु उद्योगों के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, अपने उद्यमों के माध्यम से, सबके माध्यम से कारोबार करने लगी हैं। और उन कारोबारों से आगे चलना मात्र इतना नहीं है कि वो कारोबार प्रारंभ किया है, वो लखपति से आगे भी जाएंगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। ये प्रारंभ है लखपति योजना। नमो ड्रोन दीदी, जो ड्रोन बनाई है उन्होंने, वह भी सशक्तिकरण का एक और स्वरूप है। और इनमें जो आंकड़े हैं, विशेष तौर पर आर्थिक सशक्तिकरण के, 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लीड कर रही है उन एमएसएमई को जो इस समय देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। और महिला श्रम भागीदारी वृद्धि में भी भारत ब्रिक्स देशों में अग्रणी देश हुआ है। पहले हम बहुत पीछे थे, अभी भी देखिए बहुत आगे तो नहीं आ पाए हैं, वी हैव नॉट क्रॉस्ड 50, पर पहले हम बहुत कहीं भी नहीं थे लगभग। वो 40% है वर्ल्ड बैंक के अनुसार ही। और हम ये मानते हैं कि यदि हमारे यहाँ गणना ठीक से की, जो यह सरकार अवश्य कराएगी और प्रधानमंत्री जी का क्योंकि उस पर विशेष बल है, तो यह भागीदारी और निकल कर आएगी। क्योंकि भारत का बहुत सा श्रम हम काउंट ही नहीं करते हैं, हमारा जो माता की सेवा है, पत्नी की सेवा है, बहन की सेवा, हम उन सबको काउंट नहीं करते कभी भी, बट दे आर ऑल वर्क्स, तो वो
1: एब्सोल्युटली
0: काम भी हो रहे हैं
1: जी
0: जी।
1: जी
0: और जो लखपति दीदी के साथ किसान पीएम, जो पीएम किसान योजना है, एग्रीकल्चर फील्ड में भी मोदी जी ने दृष्टि डाली है। और जो महिलाएं कृषि कर सकती हैं, और आप जानते हो भारत बहुत वर्षों से कृषि इसका एक मेन आयाम रहा है, इसकी अर्थव्यवस्था का, तो पीएम किसान योजना जो बनाई है, और विशेष तौर पर उसमें महिलाओं को सशक्त करने के लिए, लगभग वह भी 3 करोड़ से अधिक महिलाओं तक पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, जेंडर बजटिंग तो चल ही रही थी पहले से, उसमें एलोकेशन बढ़ा है। शी मार्ट्स एक आधुनिक व्यापार और अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयास है, कि महिला उद्यमों के लिए बाजार ही मुश्किल था। महिला उद्यमी है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन वो अपना सामान लेकर कहाँ जाएं, तो शी मार्ट्स का कंसेप्ट लाए हैं। और अगर इन सबको हम जोड़ देते हैं, तो आप देखें कि महिलाओं के लिए आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक मजबूती के, आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग खुले हैं। और हम ये मानते हैं, वन हु कंट्रोल्स द पर्स कंट्रोल्स द डिसीजन मेकिंग ऑल्सो, तो
1: एब्सोल्युटली
0: ये
1: एब्सोल्युटली
0: सशक्तिकरण मात्र नहीं है
1: जी
0: जी, ये आजीविका के मामले हैं
1: यस
0: जी।
1: अदिति जी, सुषमा जी हैज सो ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड यू नो द वेरियस वेज इन विच फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हैज बीन मेड अवेलेबल फॉर वुमेन। इनफैक्ट वी वर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, एंटरप्रेन्योरियल इंक्लूजन इन विच वुमेन हैव बीन मेजर बेनिफिशियरीज, एंड इंडिया इज लीडिंग इन इंक्रीजिंग फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन अमंग ब्रिक्स कंट्रीज, 3 करोड़ प्लस वुमेन लेड MSMEs are contributing to the country's progress, and 45% of DPIIT recognized startups have female directors. How do you see this inclusion of women in a big way in the economic mainstream of the country?
2: See, I think what you just described is the result of policy framework and policy intent of the government under Prime Minister Narendra Modi, who has clearly said that women are one of the four pillars of Viksit Bharat. If the country has to attain the developed country status by 2047, it is imperative that women are given conditions and, you know, where women are handheld to achieve their true potential. So what we are seeing today is that driven by several life cycle based approaches through the policy framework of the government. We have schemes now that have targeted interventions through sectors like health, education, housing. There's digital access, sanitation. Then you have financial inclusion. What I'm basically trying to say is women are today in a position through the policy framework to lead self-help groups, launch businesses. You know, they're breaking barriers in science, defense, and sports.

0: peers, and then they help the peers understand what a particular government scheme is like. Because you see, what is the problem? The problem is lack of awareness. The problem is nothing else, that you connect the women who have to benefit from government schemes to the government system, and you decode and demystify all the complex rules of the financial inclusion schemes. So that's where the sakhis fit in. And you have sakhis in different sectors, like you said, Pashu sakhis in the agricultural sector. So these women are helping peers, their other women colleagues, understand what are the benefits available and avail them. Yeah, Sonu.
1: सुषमा जी, अदिति जी ने लाइफ साइकिल टारगेटेड स्कीम्स की बात करी, और जो डॉटर्स हैं उनके एजुकेशन उनके बर्थ से ही उनके लिए आगे की उनकी जो फ्यूचर है उसको सिक्योर करना. अगर हम पीएम सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें जिसका जिक्र अदिति कर रही थी, तो उसमें जिस तरह का विकास हुआ है, अगर हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में 4.2 लाख अकाउंट थे, और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में ये संख्या बढ़कर 4,53,00,000 अकाउंट हो गई है. टोटल डिपॉजिट्स 0.001 लाख करोड़ थे FY15 में, जो बढ़कर 3.33 लाख करोड़ रुपीज हो गए हैं FY25 में. सो ये फिगर्स मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो गर्ल चाइल्ड के लिए जो बात करी जाती है, उसको एक बहुत ही ऑन द ग्राउंड भी उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिस तरह की स्केलिंग हो रही है, ये आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है?
2: बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आदित्य जी के साथ पूरी तरह सहमत हूँ कि जो लाइफ साइकिल अप्रोच हमको चाहिए थी, ये वही है. और आपको याद दिलाना चाहती हूँ, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे उस समय महिलाओं का लिंगानुपात, द जेंडर रेशियो वुमेन वाज प्रिकेरियस, इट हैड गॉन डाउन टू बिलो 900, which has now, of course, become 929. And बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ was a product of that, or was because of that. और उससे ये लाभ हुआ, ये लिंगानुपात तो बढ़ा ही बढ़ा. आप देखेंगे कि महिला नामांकन शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वह स्कूली शिक्षा हो चाहे वह उच्च शिक्षा हो, उच्च शिक्षा में भी महिला नामांकन 9.86 लाख से 34 लाख हो गया है, which is a huge jump. और मात्र इतना ही नहीं है, मैं फिर से याद दिलाऊंगी, जैसा अभी अदिति जी ने कहा कि आप जेईई देख लीजिए, आप सीबीएसई देख लीजिए, आप नीट देख लीजिए, आप बीए एमए पीएचडी यूनिवर्सिटी कन्वोकेशन एक बार देख लीजिए, स्पेशली ऑफ मेट्रोस, यू विल फाइंड वुमेन आउट नंबरिंग मेन in almost all achievements. They've yet to outnumber them in total enrollment, but they're outnumbering in success. And the STEM special, which is a special effort from the government, that we don't limit them to arts and humanities, science, technology, engineering, mathematics, management, and women in boards, they have to be there. And for digital empowerment of women, which I think is will empower them much more in the given times, वहाँ भी सरकार ने प्रयास किया है कि digital marketing, cyber security और सुरक्षा, नव्या योजना जो चलाई है 16 से 18 वर्ष की बच्चियों के लिए कि उनको ट्रेन किया जाए फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल मार्केटिंग, दोनों उनको तैयार करती हैं आने वाले समय के लिए, और इस समय जिस प्रकार का वातावरण प्रगति के लिए आवश्यक है उसके लिए भी.
1: बिल्कुल,
2: मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगी यहाँ कि स्वास्थ्य सुरक्षा स्वच्छता ये साइकिल के पहले पहिए हैं, जहां से आरंभ किया जा रहा है. प्रधानमंत्री जी ने बार बार उज्ज्वला योजना के माध्यम से, जो अब 11 करोड़ महिलाओं तक पहुंच चुके हैं एलपीजी कनेक्शन, फिर जनौषधि केंद्रों के माध्यम से महिलाओं की बेसिक फैसिलिटीज के लिए, सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत मोर एंड मोर विमेन वर ब्रॉट टू हॉस्पिटल्स, इट्स मोर देन 7.3 करोड़ नाउ. फिर मातृवंदना योजना, जो पीएम मातृवंदना योजना है, मोर देन 20,000 करोड़ विमेन वर एक्सेस्ड. और फिर मिशन इंद्रधनुष के तहत, जिसमें बच्चे भी हैं माताएं भी हैं, वुड बी मदर्स आर देयर
1: फॉर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ऑल्सो लॉट ऑफ एफर्ट्स हैव बीन मेड, एज यू आर रेफरिंग, यू नो, टिल मार्च 2026 मोर देन 11.87 करोड़ चिल्ड्रन एंड 3.96 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन वर रजिस्टर्ड, एंड 8.73 करोड़ वुमेन वर स्क्रीन फॉर सर्विकल कैंसर. एक और जो आपने बात करी मातृत्व सपोर्ट दी जा रही है, जी, सो मेटर्नल मोर्टैलिटी रेट्स बहुत नीचे आए हैं, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट्स नीचे आए हैं, और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज 60% से बढ़कर 90% से अधिक हो गई है. जी, 98, बिल्कुल 98%. तो ये आपको लगता है कि एक तरह से एक माइंडसेट चेंज को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, कि लोगों का विश्वास बढ़ रहा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा?
2: लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ रहा है
1: जी,
2: ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं
1: जी जी।
2: क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज है, पहले तो ले जाते ही नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, असुरक्षा भी थी, फिर जो अभी शौचालय सुविधा बढ़ी है, जस्ट गॉन फ्रॉम 39% टू 100%, सो एवरी हाउस होल्ड हैज अ टॉयलेट और अ कवर्ड टॉयलेट एज वी से, सो ODF फ्री इंडिया। देन जो मातृ मृत्यु दर, मोर्टेलिटी एज यू सेड, which has really reduced from 130 to 80, which is a huge change.

0: from miles, you know, yeah, due to the Jal Jeevan Mission. You think they have more time to devote to, you know, economic activities?
1: More time to devote to economic activities, more time to devote to their capacity building, more time to devote to thinking about their future. Mm. You can see the women have dreams about their children now, and especially the daughters. Mm. I have come across, as a woman vice chancellor, literally, I met so many women who were very, very eager that their children, or especially girl children, come to higher education and go to fields which were unheard of before. So that kind of mindset, that kind of dreams, that kind of aspirations, it's aspirational India now, has come up. Aur Modi ji jo baar baar kehte hain, swasth nari hi swasth rashtra ki janmadata hai. Aur swasth rashtra hi sashakt rashtra ban sakta hai. This is the linkage between women's health and the empowered और विकसित भारत, as we say, आत्मनिर्भर भारत भी उसी में मिला हुआ है.
0: Absolutely. अदिति जी, कमिंग टू यू, अगर हम सेफ्टी की बात करें, एक डिग्निफाइड लाइफ की बात करें, तो जो मिशन शक्ति एक मिशन वो रहा है, मुहिम सरकार का, जिसके तहत उन्होंने कई ऐसे इनिशिएटिव वो लाए हैं जिससे कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, जिसमें अभी जो लेटेस्ट है शी बॉक्स पोर्टल, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट्स का वर्क प्लेस पे, उनको रजिस्टर करने का, इसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकती हैं कि इसका विस्तार 12 वर्षों में कितना हुआ है, ये सेफ्टी नेट का विमेन के लिए, और इसके कारण कितनी सशक्त महसूस कर रही हैं आज की महिलाएं?
2: देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा है सेफ्टी का, जो इशू है महिलाओं का, मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है इस वक्त वो यही है कि महिलाओं के लिए सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी जब वो अपने काम पर जाएं. जैसे हमें याद आता है आरजी कार का जो बड़ा इंसिडेंट हुआ था कलकत्ता में, उसके बाद कितना रोष था, उससे पहले निर्भया हुआ. ये बड़े बड़े इंसिडेंट्स जब हमारी सोसाइटी में हुए, उनसे क्रिमिनल लॉज को बदला गया. निर्भया के बाद आपको याद है कॉम्प्रिहेंसिव क्रिमिनल लॉज लाए गए. लेकिन आज भी दुख की बात यह है कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहे हैं, और इस मुद्दे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद 2-3 बार बोला है कि सबसे अर्जेंट क्राइसिस यही है और इसी को रिजॉल्व करने की जरूरत है. और इसी के मद्देनजर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जब एक बहुत बड़ा वक्तव्य रेड फोर्ट से अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में दिया था, जब उन्होंने कहा था पेरेंट्स को कि आप अपने बेटों को कल्चरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज समझाइए, उनको घर में ये प्रशिक्षण दीजिए, ये वैल्यू सिस्टम दीजिए, ये शिक्षा दीजिए कि महिलाओं की इज्जत करना ये जरूरी है और ये एक आम बात होनी चाहिए. मतलब ये सोसाइटी का कर्तव्य है, हर चीज सरकार नहीं कर सकती. हमने देखा है कि इस सरकार का भी एक बहुत बड़ा मुहिम रहता है जन भागीदारी का. जो बड़े बड़े चैलेंजेस सोसाइटी फेस करती है, जैसे हमने सदियों से देखा, जब कुरीतियों को हटाया गया, सती प्रथा को हटाया गया, पर्दा सिस्टम को हटाया गया, सोसाइटी ने अपने अंदर से रिफॉर्मर्स पैदा किए जिन्होंने इन कुरीतियों को हटाया. मुझे लगता है विमेन सेफ्टी को लेके वही मुहिम इस वक्त चाहिए. सोसाइटी को खुद बोलना होगा कि इनफ इज इनफ, क्योंकि ये जो बात है अपने हाथ में लोगों को लेनी होगी. एक पॉलिटिकल विल एक लीडर दिखा सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री अपनी पॉलिटिकल विल महिला सशक्तिकरण, महिला सेफ्टी के पीछे दिखा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद सरकार के भी हाथ बंधे होते हैं. उसके बाद सबसे बड़ा जो एजेंट ऑफ चेंज है सोनू, वो समाज है, वो सरकार नहीं है. समाज सबसे बड़ा एजेंट ऑफ चेंज है. और जहां तक कि आपने जेंडर बजटिंग की बात की और आपने मिशन शक्ति की बात की, उसके तहत जेंडर फोकस्ड एलोकेशंस बहुत बढ़ाई गई हैं ओवर द इयर्स. जैसे अगर आप यही बजट उठा के देख लीजिए 26-27 का, उसमें सिग्निफिकेंट राइज किया गया है जेंडर बजटिंग के लिए, जिसका बहुत सारा पोर्शन महिला सशक्तिकरण और महिला सेफ्टी की तरफ जाएगा. इस वक्त करीब 10% जो हमारे वित्त मंत्री जी ने दिया, 10% उसका जो टोटल बजट का हिस्सा है वो जेंडर बजटिंग है, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है. अगर उसको अच्छे से व्यय किया जाए तो कोई वजह नहीं है कि सिस्टम्स इन प्लेस ना हो. पर आप सीसीटीवीज लगा देंगे, आप वन स्टॉप सेंटर्स बना देंगे सोनू, लेकिन आप समाज का जो माइंडसेट है वो कैसे बदलेंगे? आप एक पुरुष का महिला की तरफ देखने का रवैया कैसे बदलेंगे? उसमें तो फैमिलीज का रोल आ जाता है ना, उसी में समाज का रोल आ जाता है.
0: बिल्कुल, पार्टिसिपेटिवली ही ये चेंज लाया जा सकता है. और जो भी व्यवस्था है, 15,000 प्लस विमेन हेल्प डेस्क है सारे जो पुलिस स्टेशन है इंडिया में उनमें, और जैसा आपने वन स्टॉप सेंटर्स का जिक्र किया, 1,000 से ज्यादा है, 24/7 विमेन हेल्पलाइंस है, और 700 प्लस फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स हैं जो विमेन को ही त्वरित जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए है, लेकिन इन सब का भी इस्तेमाल, ऑफ कोर्स प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, बट अगर कुछ होता है तो ये हिम्मत होनी चाहिए समाज

0: का सपोर्ट होना चाहिए कि आप आगे आएं और इन फैसिलिटीज का फायदा उठाएं ताकि आगे से जो है इस तरह के हादसे ना हो, मिनिमाइज हो। सो एक प्रोएक्टिव रोल सबको प्ले करना जरूरी है इन सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए भी।
1: बिल्कुल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो सिस्टम्स इन प्लेस हैं, पहली बार उसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी जरूरी है, जिसकी तरफ बहुत काम हो रहा है। दूसरी बात ये है कि जुडिशरी और पुलिस सिस्टम, देखिए आप अगर पूरे विश्व में देखेंगे और आप अगर विश्लेषण करेंगे कौन सी सोसाइटी सबसे ज्यादा सेफ मानी जाती हैं, कौन सी सोसाइटी सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री मानी जाती हैं, तो आप ये पाएंगे कि उन सोसाइटीज के लोग ये कहते हैं कि उनका विश्वास पुलिस सिस्टम में और जस्टिस सिस्टम में सबसे ज्यादा है, जजेस और कॉप्स में। तो हमारे देश के लिए ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि जब महिला अपना कोई कंप्लेंट लेकर पुलिस के स्टेशन में जाती है तो उसे ये कन्विंस्ड होनी चाहिए उस वक्त कि मेरी बात वहां बैठा हुआ पुलिस पर्सोनल सुनेगा, मेरी बात को सेंसिटिविटी से लेगा, मेरे कैरेक्टर की जजमेंट में नहीं बैठेगा। वैसे ही जो जजेस हैं उनके लिए भी बहुत सारे प्रशिक्षण हुए हैं। देखिए जब जब सेक्सुअल असॉल्ट की बात हुई है बहुत सारे पाथ ब्रेकिंग जजमेंट्स आए हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसकी वजह से लॉज बदले गए हैं। आपको पता है कि पहले जमाने में हम इसी बात से जूझते रहते थे कि जजेस भी महिलाओं के कैरेक्टर को जज करने, टू फिंगर टेस्ट बहुत आम होता था, आपका सबसे पहले आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाती थी अगर आप सेक्सुअल असॉल्ट का कोई कंप्लेन करें, लेकिन वो अब स्टैट्यूट बुक से हटा दिया गया है। अब अगर महिला कहती है उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है तो पुलिस उसको मानेगी, उसकी सुओ मोटो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी और ओनर्स टू प्रूव अदरवाइज, वो परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम पर है ना कि महिला पर है जो पीड़ित है। सो ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है जिसकी तरफ भी अब सोसाइटी जा रही है, क्योंकि अब पूरा माहौल पॉलिटिकल विल इस तरफ है कि महिलाओं के साथ सरकार भी खड़ी है, पॉलिसी भी खड़ी है और इस वक्त कुछ कुछ हद तक लगता है कि समाज भी खड़ा है।
0: सुषमा जी, आप अभी थोड़ी देर पहले डिजिटल एम्पावरमेंट की बात कर रही थी, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं या और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की गई है, शी मार्ट जो इनिशिएटिव है या गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस के अंडर जो वुमनिया इनिशिएटिव है जिसमें 200,000 से अधिक वुमेन लेड एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड है और इसमें 28,000 करोड़ से अधिक का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इन वुमेन लेड एंटरप्राइजेस को पिछले वित्त वर्ष में बिक्री हुई इस माध्यम से, जो कि 27% ग्रोथ थी FY25 के मुकाबले। सो आपको लगता है कि ये जिस तरह का सशक्तिकरण डिजिटल माध्यमों से भी हो रहा है, चाहे वो ये मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना हो या जो हेल्थ सिस्टम में हेल्थ कार्ड्स हर फील्ड में या इम्यूनाइजेशन में ट्रैकिंग डाउन की किसको कितना क्या टीकाकरण हुआ है, डिजिटाइजेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है विमेन एम्पावरमेंट में भी।
2: जी बिल्कुल, मैं मानती हूँ, क्योंकि जो डिजिटल एक्सेस है which is easier for women especially if you don't have to go anywhere and you can still access most of the facilities nothing better than that that is almost best because apne aap mein movement ya aavagaman jisko kehte hain wo mahilaon ka samay bhi leta hai shakti bhi leta hai aur kai baar kuch seemaein bhi dalta hai isliye digital empowerment digital training aur digital capacity building ye target raha hai sarkar ka इन सभी क्षेत्रों में जो अभी आपने कहे हैं, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ, लेकिन इनसे महिलाएं तैयार हुई हैं व्यापारी बनने के लिए, उद्यमी बनने के लिए और विकास के कार्यों में जुड़ने के लिए, क्योंकि सरकार का उद्देश्य था, मैं बार बार कह रही हूँ, मोदी जी कहते हैं हम क्या करेंगे, पहले उनको वित्तीय सहायता देंगे, फिर उनका कौशल विकास करेंगे और फिर उन्हें प्रशिक्षण भी देंगे। देयर कांट बी अ बेटर रेसिपी बिकॉज इफ यू गेट सम फाइनेंशियल सपोर्ट विच वीमेन नीड यूजुअली एंड मे बी आफ्टर सम टाइम दे डोंट इवन नीड, दे मे हैव देयर ओन ग्रुप्स, दे मे हैव देयर ओन फाइनेंसर्स ऑल्सो like they are coming up now but with that you also need later skills because skills keep changing and the market needs different kinds of skills at times they may be digital skills in coming time and you see women are really very good at that because this is heart and hand both going together and then if you really train them into the right kinds of skills and empowerment techniques also I would say or fields then they are ready for the world और ये सरकार चाहती है विमेन लेड डेवलपमेंट कब होगा, वो एक माध्यम तो यही है, पहला स्वास्थ्य, उसके बाद सुरक्षा, उसके बाद आर्थिक सहायता या आर्थिक स्वावलंबन, उसके बाद पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। क्योंकि मैं ये बात जरूर करना चाहती हूँ यहाँ कि जिस प्रकार से महिलाओं ने प्रधानमंत्री जी का हर स्थान पर स्वागत किया है, उनका साथ दिया है, उनको सपोर्ट किया है, उसके पीछे ये सारे तो हैं।

0: ही वो राजनीतिक सोच भी है जहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम उनकी प्रतीक्षा कर रहा है. 33% एट द लोकल रूट्स और द ग्रास रूट्स हैज कम टू 50% और मोर देन 50%. और यही 33% जब पार्लियामेंट्स और लेजिस्लेचर्स में आएगा, मुझे विश्वास है जो अभी योजनाएं चली हैं ये 10 गुनी 100 गुनी होकर आगे आएंगी. और जो माहौल अभी आप बात कर रही थी, अदिति जी कह रही थी कि लगभग समाज भी तैयार है, राष्ट्र और समाज दोनों उसके लिए तैयार हो.
1: इनफैक्ट जो आप बोल रही हैं, अगर हम पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की बात करें तो महिलाएं 48.62% है इलेक्टोरेट का, और हमारा वोटर टर्नआउट जो है, मैं हमारा इसलिए कह रही हूँ कि हम तीनों महिलाएं हैं, 65% से अधिक है, जो पुरुषों से कुछ ऊपर है. और 14.5 लाख महिलाएं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में इलेक्ट हुई हैं, जो कि 46% है टोटल वहां जितने भी अधिकारी हैं उनका. एंड ये पाया गया है कि जब से विमेन आई हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने जो रोजमर्रा की लाइफ है उसको बेहतर करने का, एमिनिटीज डेवलप करने पर फोकस किया है. सो ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड है उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन है वो भी.
0: बिल्कुल, आई विल से दैट, एंड आई हैव बीन पार्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस इन इंडिया. आई हैव सीन इट फ्रॉम वेरी क्लोज. आई कैन से विमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स, विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स, फर्स्ट टाइमर, मे बी एडमिनिस्ट्रेशन में तो फर्स्ट टाइमर सभी होते हैं, सो इट रियली डजंट मैटर. दे लर्न, एंड आई हैव मेट एडमिनिस्ट्रेटर्स हु से दैट वी क्वेश्चन्ड अवर ऑफिस व्हेन दे से दिस कांट बी डन. तो हमने उनसे पूछा क्यों नहीं हो सकता है, व्हाई आर वी हियर. तो लिखे कानून ही सिर्फ चलेंगे या नागरिक सुविधाएं बढ़ेंगी. आपको याद है अभी प्रधानमंत्री जी जब काशी में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था नागरिक देवो भव, यानी पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई उन तक पहुंचे. और जो महिला प्रशासक हैं, विमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स, स्पेशली ऑफ यंग वंस, दे हैव दिस इन देयर माइंड, तो गवर्नेंस का रूप बदलेगा. और फिर जब यही सीनियर होंगी तो नीतियों का रूप भी बदलेगा, क्योंकि नीतियां भी जब फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस से बनेगी, केवल कंसल्टेंट्स नहीं बनाएंगे, प्रशासक और नागरिक मिलकर बनाएंगे, तो वो नीतियां भी अच्छी बनेगी.
1: अदिति जी, आपको लगता है कि जैसे जैसे महिलाओं का सशक्तिकरण होता है तो अपने आप ही उनका जो सम्मान है, जो एक दर्जा है समाज में, वो बढ़ जाता है और समाज का भी जो माइंडसेट है वो जेंडर इक्वालिटी की तरफ जाता है?
2: इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसका सबसे इम्पोर्टेंट यार्डस्टिक ये होता है कि क्या कोई सिस्टम, क्या कोई सरकार इस चीज के लिए तैयार है कि एक साथ महिला और पुरुष लीडर्स एक ही टेबल पर बैठकर देश के भविष्य के लिए नीतियां बनाएं या लेजिस्लेशन बनाएं. तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पास होना या उसके पीछे पॉलिटिकल इंटेंट का होना एक बहुत बड़ा माध्यम है इस चीज को जताने का कि हाँ, सरकार पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए अब तैयार है. अभी हम बात कर रहे थे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, लोकल बॉडीज में महिलाओं का कितना बड़ा रोल अब हो चुका है. वो इसलिए संभव हुआ है सोनू, क्योंकि 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दी गई थी और 33% सीट्स आरक्षित कर दी गई थी पंचायती लेवल पर महिलाओं के लिए. वो अब आते आते तमाम प्रदेशों ने 50% कर दी है. इतने साल लग गए हैं महिला लीडरशिप को तैयार करते करते. तो अब हम जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करते हैं तो जब अब ये एक आकार लेगा, जब भी जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2029 का जो अगला इलेक्शन है वो 33% महिलाओं के साथ आरक्षण के साथ लड़ा जाएगा, अगर वो संभव हो पाया तो तब से लेकर फिर महिला सशक्तिकरण का असली दौर शुरू होगा, जब महिलाएं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में उनको अपना सही हिस्सा मिलेगा.
1: So as India moves towards the goal of Viksit Bharat by 2047, the role of women is increasingly becoming central to this journey. Across sectors, women are contributing as workers, entrepreneurs, farmers, innovators and leaders. Sushma ji, Aditi ji, thank you so much for this insightful and inspiring discussion.
0: Thank you.
3: In this special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government, from women empowerment to women-led development. Participants were Professor Sushma Yadav and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. Vishesh Shrinkhla ke antargat abhi aap sun rahe the Modi Sarkar ke 12 saal Mahila Sashaktikaran ka Parivartankari Dashak. इसमें भाग ले रही थी प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन. कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया.
4: अभी आप सुन रहे थे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष युवा शक्ति। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

आंधी फिल्म का ये गीत था लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। कार्यक्रम का अगला गीत मौसम फिल्म से लिया है, आवाज़ लता मंगेशकर की, शब्द रचना गुलजार की, संगीत मदन मोहन का।

मौसम फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश, वक्त है छोटे से अंतराल का। आपको एक सूचना दे दें, आकाशवाणी से प्रसारण हेतु कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित करने की सूचना है ये। प्रसार भारती आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग हेतु पात्र प्रोडक्शन हाउस, निर्माता, अधिकार स्वामी, एग्रीगेटर या कंटेंट क्रिएटर्स को आमंत्रित करता है। यह कार्यक्रम सोर्सिंग, राजस्व साझाकरण या रेवेन्यू शेयरिंग प्रायोजित अथवा स्पॉन्सर्ड एवं निःशुल्क या ग्रेटिस आधार पर किया जाएगा। यह सब प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए संशोधनों आदेशों के अनुरूप होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि प्रस्ताव जमा करने से पहले प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों एवं आदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। यह सभी दस्तावेज प्रसार भारती और आकाशवाणी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आकाशवाणी भोपाल से हिंदी, उर्दू अथवा सिंधी भाषा में रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग के लिए इच्छुक आवेदक ईमेल bhopal@prasarbharti.gov.in एवं hopair@gmail.com पर अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलो हर्ट्स और डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ ही देर में समाचार संध्या आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की, देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए, इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की, कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता, भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
2: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: श्री खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
2: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
1: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारकोदुरु गाँव में समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारकोदुरु एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 4th लेवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लेवेंडर गोज ग्लोबल। 2 दिन के इस महोत्सव में बैगनी क्रांति की उपलब्धियों और क्षेत्र में बढ़ते लेवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लेवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लेवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
4: खाड़ी देशों और अमरीका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमरीकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुक में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। संघर्ष विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
5: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मादक पदार्थ मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में उभरा है। किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 19 जिलों में 56 दिनों से जारी इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपनी आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गया है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपुटी ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है। गोवा में भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। भारत ने 6ठी बार ये खिताब अपने नाम किया है। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में रोहन ताइडे ने सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। पदक तालिका में भारत शीर्ष पर बरकरार है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। KL राहुल ने 100 रन और साई सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली। ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किया। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा, दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल के साथ मीटिंग की और मुल्क के मौशी कायापलट और तवील मुद्दती तरक्याती तरजीहात का जायजा लिया। मरकज ने खुर्दनी तेल के पैकेट के मियारी साइज का सिलसिला शुरू किया है ताकि शफाफियत बढ़ाई जा सके और पैक करने के तौर तरीकों में यकसानियत को फरोग दिया जा सके। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में नेपाल के अपने हम मनसब शिशिर खनाल के साथ बातचीत की और कहा कि भारत और नेपाल अपनी खुली सरहद पर सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए करीबी इश्तराक से काम करते हैं। कुवैत और बहरीन में अमेरिका के फौजी ठिकानों पर ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो गया है। और हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम ने जापान को हराकर 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप जीत लिया है, जबकि भारतीय खवातीन टीम ने कांसे का तमगा हासिल किया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल के अरकान के साथ मीटिंग की सदारत की। वज़ीर-ए-आज़म और इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल ने आलमी उथल पुथल के दौर में भारत की मुआशी तरक्की को मजीद फरोग देने की खातिर मुख्तलिफ इकदामात और तजवीज़ों पर तबादला ख्याल किया। इस मीटिंग में रहन सहन में सहूलत और कारोबार करने में सहूलत को और ज्यादा बेहतर बनाने की खातिर मुख्तलिफ असलाहत पर भी गौर किया गया। अरकान ने भारत और दुनिया पर मगरबी एशिया मुहाज़राई के असरात के ताल्लुक से अपनी अपनी राय का भी इजहार किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज की इस मीटिंग में भारत की इक्तिसादी कायापलट और तवील मुद्दती तरक्याती तरजीहात से मुतालिक मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा मीटिंग के शुरका ने इस्लाहात के सफर में और तेजी लाने, नीज रहन सहन और कारोबार करने में सहूलत को यकीनी बनाने के बारे में भी अपने अपने नुक्ते नजर पेश किए। इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल एक आजादाना इदारा है जो इक्तिसादी और मुतालिका मामलात पर भारत सरकार खास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म को सलाह देता है। आज की मीटिंग में इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल के अरकान के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म के दो प्रिंसिपल सेक्रेटरियों डॉक्टर पी के मिश्रा और शक्तिकांत दास ने भी शिरकत की। मरकज ने वजन से मुताल्लिक कानूनी फ्रेमवर्क के तहत खुर्दनी तेल के लिए पैकेट के मयारी साइज का सिलसिला शुरू किया है, जिससे मार्केट में और ज्यादा शफाफियत और यकसानियत आ सकेगी। सारिफीन के उमूर के महकमे ने मजकूरा फ्रेमवर्क के तहत खुर्दनी तेल और फैट्स के लिए मजमूई मकदार और पैकेट के मयारी साइज का तायुन करने से मुताल्लिक तरीक़ाकार में तरमीम की है। सारिफीन के उमूर खुराक और तकसीम आमा महकमे की वजारत ने कहा है कि नजरसानी शुदा जब्तों के तहत बड़े खुर्दनी तेलों के लिए पैकेट के मयारी साइज तजवीज़ किए गए हैं, जिनमें पाम ऑयल, पामोलिन, सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, चावल की भूसी का तेल, कपास के बीज का तेल और मकई का तेल शामिल है। खुर्दनी तेल के मंजूर शुदा पैकेट 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से लेकर 5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम और 20 किलोग्राम तक के होंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में एक सड़क हादसे में लोगों की मौत पर दुख का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर जमहूरिया, नायब सदर और वजीर आजम ने इस हादसे में हलाक होने वालों के कुनबों से ताजियत का इजहार किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हादसे में जख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। जनाब मोदी ने वजीर आजम के कौमी इमदादी फंड से मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 2-2 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है, जबकि जख्मियों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका रोड पर एक कुनबे के लोगों को ले जाने वाली एक गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई थी। इस हादसे में कम अज कम 9 अफराद की मौत हुई जबकि 22 जख्मी हो गए। ये लोग अपने एक रिश्तेदार की अस्थियों को दरियाए ब्यास में सुपुर्द आब करने के लिए जा रहे थे। नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने आज कहा है कि भारत के नौजवान मुल्क की सबसे बड़ी ताकत हैं और ये 2047 तक विकसित भारत के विजन की तकमील में नुमाया रोल अदा करेंगे। नई दिल्ली में यूथ फॉर विकसित भारत,
माई भारत यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए जनाब मांडविया ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने माई भारत की तश्कील के जरिए नौजवानों को अपनी उमंगों ख्यालात और मुल्क की तामीर के लिए रजाकाराना जज्बे के इजहार के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम किया है।

0: के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल अपनी तवील और मुनफरिद एतबार से खुली सरहद से मुत्तसल इलाके में सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए करीबी तालमेल कायम रखते हैं और दोनों मुल्क जरूरत के वक्त हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल के साथ मीटिंग के आगाज पर अपने इजहार ख्याल में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और नेपाल के बहुत खसूसी ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा कि ये रिश्ते अवाम से अवाम के मजबूत राब्तों, सरहद के दोनों तरफ कनेक्टिविटी और मुश्तरका सकाफती और मजहबी रिवायात की मजबूत बुनियाद पर कायम है। इस मौके पर जनाब शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे अहम साझेदार है और नेपाल भारत को अव्वलीन तरजीह देता है। उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल और भारत महज दो मुल्क नहीं बल्कि शानदार कदीम तहजीब के फरीक भी हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के दो उम्मीदवारों, पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने राज्यसभा इंतखाबात के लिए आज अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। कागजात नामजदगी भोपाल असम्बली में रिटर्निंग ऑफिसर के सामने दाखिल किए गए। कांग्रेस ने मंदसौर की साबिक पार्लिमानी रुकन मीनाक्षी नटराजन को अपने उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए नामजदगियां दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 जून है। हुनरमंदी की तरक्की और एंटरप्रेन्योरशिप के वजीर जनाब जयंत चौधरी ने आज नई दिल्ली के कौशल भवन में मुलाजमीन के बच्चों की देखभाल के लिए एक नई डे केयर सहूलत का इफ्तिताह किया। वजारत के मुताबिक ये इकदाम और ज्यादा शमूलियत वाला, हमदर्दाना और अवाम पर मरकूज काम का माहौल कायम करने के तई एक नुमाया पहल है। तकरीबन 600 मुरबा मीटर में फैले इस मरकज का मकसद एक खुशगवार, महफूज और साजगार माहौल फराहम करना है जहां बच्चे सीखें, खेलें, आराम कर सकें और बेहतर नशोनुमा हासिल कर सकें। ईरान ने आज कुवैत और बहरीन में अमेरिका के फौजी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे, जिसके बाद खलीज के मुल्कों और अमेरिकी फोर्सेस ने तालमेल के साथ फिजाई दिफाई कार्रवाई की। इस तरह मगरबी एशिया के खत्ते में कशीदगी फिर तेजी के साथ बढ़ गई है। अमेरिका की मरकजी कमान के मुताबिक आबनाए हुरमुज के नजदीक ईरान की साहली निगरानी और रडार तनसीबात पर अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने 7 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। इब्तदाई जायजे से यह इशारा मिलता है कि 6 मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया गया जबकि 7वां मिसाइल अपने निशाने पर नहीं पहुंच सका। अमरीकी फौजी एहलकारों के जानी नुकसान के ताल्लुक से कोई फौरी इत्तला नहीं मिली है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: मगरबी एशिया का तनाजा उस वक्त एक नए खतरनाक मरहले में दाखिल हो गया जब ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी तनसीबात की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे। ताहम खलीजी और अमरीकी फजाई दिफाई निजाम ने बेशतर ईरानी मिसाइलों को नाकाम बना दिया जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी ड्रोन सरगर्मियों की इतलात मौसूल होने के बाद अमरीका की जानिब से आबनाए हुरमुस के करीब कैशम जजीरे और गोरख में ईरानी राडार और निगरानी के मरकज को निशाना बनाए जाने के चंद घंटे बाद ये हमले हुए। इन वाकयात ने नाजुक सिफारती कोशिशों को मुतासिर किया है और दुनिया के अहम तरीन तवानाई की गुजरगाहों में से में बहरी हिफाजत के हवाले से खदशात में इजाफा हुआ है। इस दौरान लबनान में अमरीका की हिमायत से होने वाली जंगबंदी को एक और धचका उस वक्त लगा जब इसराइली फजाई हमले में जुनूबी लबनान में एक लबनानी फौजी गाड़ी को निशाना बनाया गया। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शबाना बेगम।
1: हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम ने 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप तीसरी बार जीत लिया है। ककामी गहारा में खेले गए फाइनल में भारत ने जापान को 1-4 गोल से शिकस्त दी। भारत की तरफ से आशीष पूर्ति ने 3 गोल किए जबकि 1 गोल कप्तान केतन कुशवाहा ने किया। इधर भारत की खवातीन टीम ने जनूबी कोरिया को 3-0 से हराकर कांसे का तमगा जीता। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप जीतने पर भारतीय मर्दों की टीम को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में गैर मामूली महारत और टीम वर्क का मुजाहरा किया और इसके नतीजे में फाइनल में यादगार जीत हासिल हुई। सदर जमहूरिया, नायब सदर और वजीर आजम ने कांसे का तमगा जीतने पर 18 साल तक की उम्र की खिलाड़ियों की भारतीय खवातीन टीम को भी मुबारकबाद दी है।

वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे शतरंज टाइटल जीतने पर आर प्रगनंदा को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि इस शानदार संगे मील से उनकी लगातार उम्दा कारकर्दगी की अक्कासी होती है। वज़ीर-ए-आज़म ने उनके मुस्तकबिल के खेल मुकाबलों के तई नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। इधर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी प्रगनंदा को मुबारकबाद दी है। 19 साल श्वेता श्री भास्कर ने मंगोलिया के शहर उलानबातर में खवातीन की एशियाई इंफरादी शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। इस कामयाबी के साथ ही श्वेता ने 2027 के फिडे खवातीन वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। फुटबॉल में भारत ने खवातीन की सैफ चैंपियनशिप 2026 का टाइटल जीत लिया है। गोवा के शहर मडगांव में खेले गए फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 1-3 से हरा दिया। इस तरह भारत ने छठी मर्तबा ये चैंपियनशिप जीती है। आज अहमदाबाद में आलमी योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में भारत के रोहन त्यादे ने सोने का तमगा जीता। उन्होंने लड़कों के सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल मुकाबले में यह कामयाबी हासिल की। आलमी दर्जे के इस योग मुकाबले में भारत अब तक सोने के 6 तमगों समेत मजमुई तौर पर 7 तमगे जीत चुका है। न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के खिलाफ वाहिद क्रिकेट टेस्ट के आज पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी पहली इनिंग्स में 3 विकेट पर 368 रन बना लिए थे। आज जब खेल खत्म हुआ तो कप्तान शुभमन गिल 103 रन पर और ऋषभ पंत 50 रन पर खेल रहे थे। केएल राहुल 100 रन बनाकर आउट हुए। साई सुदर्शन ने 81 रन स्कोर किए। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय मौसमियात महकमे ने कल साहली कर्नाटक केरलम और माही में शदीद से बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। उधर शुमाल मशरकी भारत के बेशतर हिस्सों कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों गोवा तमिलनाडु पुदुचेरी और अंडमान निकोबार जजायर में भी अगले 2 दिन के दौरान तेज बारिश होने का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने कल मशरकी राजस्थान और जनूबी कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों में कहीं कहीं गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की भी पेशगोई की है। दूसरी तरफ साहली आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में कल शदीद गर्मी के हालात रहने का इम्कान है। सिंगापुर सरकार ने सोशल मीडिया के 3 प्लेटफॉर्म्स को हुक्म दिया है कि वो उन 14 पोस्ट्स को ब्लॉक कर दें जिनके बारे में यह ख्याल है कि ये चीन से शुरू हुई हैं। इन पोस्ट में मुबैना तौर पर भारतीय बिरादरी के लोगों को निशाना बनाया गया है और कसीर सकाफती निज़ाम के सिंगापुर के मॉडल को कमजोर करने की कोशिश की गई है। पुलिस ने यूट्यूब फेसबुक और एक्स को हिदायत जारी की है कि वो सिंगापुर के लोगों को इस तरह के मवाद तक रसाई हासिल करने से रोकने के लिए तमाम जरूरी इकदाम करें। यूक्रेन के बड़े पैमाने के ड्रोन हमलों में आज सुबह रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर को निशाना बनाया गया। इसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग के बाशिंदों से घरों के अंदर रहने को कहा गया। इस हमले से ये बात उजागर हुई है कि रूस के अंदरूनी इलाके तक हमला करने की यूक्रेन की सलाहियत में इजाफा हो रहा है। इस हमले से एक दिन कबल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के अपने हम मनसब से मुलाकात की पेशकश नामंजूर कर दी थी। यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद सेंट पीटर्सबर्ग के गवर्नर ने मोबाइल इंटरनेट खदमात में मुमकिन रुकावट के सिलसिले में तंबीह भी की थी। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इकतसादी सलाहकार कौंसिल के साथ मीटिंग की और मुल्की मुआशी कायापलट और तवील मुद्दती तरक्याती तरजीहात का जायजा लिया। मरकज ने खुर्दनी तेल के पैकेट के मयारी साइज का सिलसिला शुरू किया है ताकि शफाफियत बढ़ाई जा सके और पैक करने के तौर तरीकों में इंसानियत को फरोग दिया जा सके। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में नेपाल के अपने हम मनसब शिशिर खनाल के साथ बातचीत की और कहा कि भारत और नेपाल अपनी खुली सरहद पर सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए करीबी इश्तराक से काम करते हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीका के फौजी ठिकानों पर ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो गया है। और हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम ने जापान को हराकर 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप जीत लिया है जबकि भारतीय खवातीन टीम ने कांसे का तमगा हासिल किया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। हिंदी पत्रकारिता

पत्रकारिता अपने 200 वर्ष पूरे कर रही है। उन महिला पत्रकारों को याद करना जरूरी है जिन्होंने पर्दे के पीछे नहीं बल्कि मोर्चे पर खड़े होकर कलम उठाया। रोशनी गुलाबी रोशनाई की आज का हमारा संपादकीय इसी यात्रा को सलाम करता है। आज से लगभग 200 साल पहले 30 मई 1826 को कलकत्ता की एक तंग गली में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में उदंत मार्तंड का पहला अंक प्रकाशित हुआ था। लेकिन इस सूर्योदय की कहानी तब तक अधूरी है जब तक हम उन महिलाओं के योगदान को स्वीकार नहीं करते जिन्होंने पितृसत्तात्मक समाज की बेड़ियों को तोड़कर कलम उठाया, पत्रिकाएं निकाली और हिंदी पत्रकारिता को एक नया आयाम दिया। भारत की पहली महिला पत्रकार के रूप में हेमंत कुमारी देवी चौधरानी का नाम अंकित है। 19वीं सदी के आखिर में जब भारतेंदु हरिश्चंद्र के कलम का चर्चा चारों ओर था, हेमंत कुमारी देवी उनकी समकालीन लेखिका और संपादिका के रूप में सक्रिय थी। सन 1888 में उन्होंने सुगृहिणी पत्रिका का संपादन किया। सन 1909 में प्रयाग से स्त्री दर्पण पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसकी संपादिका थी रामेश्वरी देवी नेहरू और प्रबंधक थी कमला देवी नेहरू। ये महज एक पत्रिका नहीं थी, भारतीय नारी की सामूहिक चेतना का प्रथम मुद्रित स्वर था। इस पत्रिका ने बाल विवाह, विधवाओं की दयनीय स्थिति, स्त्री शिक्षा के अभाव और पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को अपने पैने कलम का निशाना बनाया। आधुनिक हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा का नाम यदि केवल कविता तक सीमित रखा जाए तो ये उनके साथ अन्याय होगा। फ्रांसीसी लेखिका सिमोन डी बोवार की प्रसिद्ध पुस्तक द सेकंड सेक्स आने से कई वर्ष पहले ही महादेवी वर्मा ने 1930 के दशक में चांद जैसी पत्रिकाओं के लिए महिलाओं के उत्पीड़न पर शक्तिशाली निबंधों की एक श्रृंखला लिखी थी। ये निबंध केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति नहीं थे, सामाजिक पत्रकारिता के उत्कृष्ट उदाहरण भी थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौर में हिंदी पत्रकारिता ने राष्ट्रीय चेतना की मशाल थामी। इस मशाल को थामने में महिला पत्रकारों की मुट्ठियां भी लगी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी कविता झांसी की रानी आज भी रक्त में उबाल लाती है, उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में अपनी लेखनी से स्वाधीनता की अग्नि को भड़काया। इसी श्रृंखला में प्रताप, अभ्युदय और हिंदुस्तान जैसे पत्रों में महिला लेखिकाओं की सक्रिय भागीदारी रही। स्वतंत्रता के बाद हिंदी पत्रकारिता के विस्तार के साथ महिला पत्रकारों की भूमिका भी बदली। प्रभा दत्त जैसी संपादक ने ये साबित किया कि हिंदी के बड़े समाचार पत्र का नेतृत्व एक महिला भी उतनी ही सक्षमता से कर सकती है या शायद बेहतर कर सकती है। तब से लेकर आज तक प्रखर पत्रकारिता के माध्यम से बढ़कर एक महिला पत्रकार स्वयं को मुख्य धारा की पत्रकारिता में स्थापित करती आ रही हैं, जनता के हक की लड़ाई लड़ती आ रही हैं। आज के डिजिटल युग में महिला पत्रकारों की एक नई पीढ़ी सामने आई है। वेब पोर्टल, यूट्यूब पत्रकारिता, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया पर हजारों महिलाएं उन मुद्दों को उठा रही हैं जिन्हें मुख्य धारा की पत्रकारिता अनदेखा करती है। ग्रामीण महिला पत्रकारिता में खबर लहरिया जैसे प्रयोग ये सिद्ध करते हैं कि नारी का कलम अब केवल शहर के संपादकीय कक्ष तक सीमित नहीं है। लेकिन श्रोताओं, ये संपादकीय केवल उपलब्धियों का गान नहीं है, ये एक ईमानदार आत्म परीक्षण भी है। 200 सालों के उत्सव के बीच संख्याओं का उपलब्ध आंकड़ा असहज करता है। क्या ये उन महिलाओं की विरासत के साथ न्याय है जिन्होंने लगभग 200 साल पहले समाज की परवाह किए बिना कलम उठाया था? आकाशवाणी, जिसकी आवाज ने दशकों से इस देश के घर घर को जोड़ा है, गांव की चौपाल से लेकर शहर के दफ्तर तक रेडियो सिर्फ एक माध्यम नहीं, एक रिश्ता रहा है। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस अनूठी यात्रा पर आज अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार
कुर्बान।

0: अली,
1: मैं पिछले 40 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूं, ऑल इंडिया रेडियो में भी काफी आता रहा हूं। जो पिछले 90 वर्षों का ब्रॉडकास्टिंग का इतिहास है, खास करके जो हिंदी, उर्दू और इलाकाई जबानें हैं उनमें ब्रॉडकास्टिंग का, उसका बड़ा एक गौरवशाली इतिहास रहा है। और आज़ादी के वक्त से लेकर और अब तक, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत देश की आज़ादी से पहले हो गई थी, देश के नवनिर्माण से लेकर के आज तक 80 बरस हो गए हैं देश की आज़ादी को भी, तो उसमें ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही कारगर योगदान है, न सिर्फ ये कि उसने लोगों को खबरें पहुंचाने का काम किया है, बल्कि उन्हें एजुकेट करने का और उनका एंटरटेनमेंट करने का भी काम किया है। ये एक बहुत बड़ा रोल है। और चूंकि एक जमाना था कि जब सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो ही हुआ करता था, 90 तक मैं समझता हूं कि ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए रहा है और उसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।
0: वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली, उनके अनुभव, उनकी स्मृतियाँ और उनका विश्लेषण निश्चित ही हमें रेडियो की उस आत्मा तक ले जाएगा जो आज भी धड़क रही है। सच में जिस माध्यम ने आज़ादी की आवाज को सहेजा, देश की भावनाओं को बोली दी, वो आकाशवाणी कोई यंत्र नहीं, एक जीवंत परंपरा है।

0: साहित्य जब समाज से कट जाता है तो केवल शब्दों का खेल बन जाता है, लेकिन जब साहित्य की जड़ें जमीन से जुड़ी हों तो वो एक नया अर्थ पा लेता है। आज की हमारी अगली प्रस्तुति में हम एक ऐसी ही जरूरी बातचीत लेकर आए हैं वरिष्ठ साहित्यकार पंकज बिष्ट के साथ। उनसे बातचीत कर रहे हैं प्राध्यापक और साहित्यकर्मी विशाल पांडे। तो सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, साहित्य समाज और सरोकार।
1: पंकज बिष्ट अपनी कहानियों और संपादन के लिए हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं। उनकी कहानियां 15x25, बच्चे गवाह नहीं हो सकते, उपन्यास लेकिन दरवाजा, उस चिड़िया का नाम, पंख वाली नाव, गोलू और भोलू से हिंदी साहित्य हम सभी समृद्ध हुए। मैं जानना चाहूंगा पंकज जी कि लेखन की ओर आपका पहला झुकाव कब और कैसे उत्पन्न हुआ?
2: देखिए, ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है कि मैं ये नहीं मान के चलता था कि मैं कहानीकार बनूंगा या उपन्यासकार बनूंगा, लेकिन मैं ये चाहता था कि मैं लिखने पढ़ने का काम चुनूं और करूं। बहुत संभव है कि अगर मैं पत्रकारिता वगैरह में नहीं आता तो हो सकता था मैं टीचिंग के काम में चला जाता, अध्यापन में जाता, तो जो कि उतना ही बहुत बड़ा होता, क्योंकि मैं लिखने के प्रति मेरा जो अनुराग था वो ज्यादा था। तो मैंने जब लिखना शुरू किया और वो इधर उधर उसके लिए कोशिश करी तो मुझको ये रास्ते ज्यादा बेहतर दिखाई देगा। तो उसमें ये हुआ कि जैसे मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ एक जर्नलिज्म का स्कूल खुला तो उसमें एडमिशन लिया, उसमें मैंने पढ़ा। वो यहाँ के जर्नलिज्म के भारत में स्कूलों में शुरुआती था, वो बाद में खत्म हो गया। उससे मुझे मेरा एक्सपोजर हुआ और मैं दिल्ली वगैरह में जाने लगा, और जैसे मैं हिंदी में लिखना, नोवेल टाइम्स विशेषकर, उस दौरान के एडिटर उनके, इनका नाम अक्षय कुमार जैन था, वो भी जुड़े हुए थे, तो वहां मुझको एंट्री मिल गई, यानी कि मेरे लेख उन्होंने कहा, वो एडिटर वगैरह देख लेते थे। वह फिर वहां दो एडिटर रहते थे, उनमें एक महिला थी, रविवारी संस्करण देखती थी, तो वो बेचारी भली भली औरत थी, तो वो मुझसे फिर धीरे धीरे वो जब काम करवाने लगी तो मैं अभी अच्छा काम कर, रिलेटिवली उनको ठीक लगने लगा, तो उससे मैं मुझे लिखने की और चीजों को समझने की और विषय कैसे चुनना चाहिए इस बात की मेरी समझ थोड़ी बनी, तो ये मुझको फायदा हुआ कि बाद में अपने कैरियर को उसी तरफ बढ़ाने में मुझे उसका मदद मिली।
1: पंकज जी, जहां तक मुझे याद आ रहा है आपकी पहली कहानी 1967 में साप्ताहिक

0: दुस्तान में छपी। क्या आपको याद है कि पहली बार अपनी किसी रचना को प्रकाशित देखकर आपने क्या अनुभव किया था?
1: वो जो एक कहानी छपी उसका अनुभव जो है बड़ा बहुत मजेदार है। हुआ ये था कि मैंने उन दिनों एक लेखिका होती थी सची रानी गुड्डू, उन्होंने मेरे ख्याल से आर्ट वाइट पर बहुत लिखा है, उनका बेटा वो साप्ताहिक हिंदुस्तान में काम करता था, उससे कहीं मेरी मुलाकात हो गई, बातचीत। यंग था वो मेरी जैसा, तो मैं थोड़ा छोटा था, तो उसने बातचीत में कहा तुम क्या करते हो? मैंने कहा लिखने के कर। उसने कहा यार तुम लिख हमारे यहाँ दिखाओ तुम क्या कहानी लिखते हो, मैं देखूँ तुम्हारी कहानी। तो मैं डर के मारे में दिखा रही, तो बड़ा मैगजीन है कौन छापेगा क्या करेगा। तो मैंने वो लिखा हुआ था उसको देखने को दे दी। उसने जी उन्होंने कहा तुम्हारी कहानी ठीक ठाक है, तुम ऐसा करो हमारे एडिटर को दो, मैं देता हूँ। तो उन दोनों एडिटर कोई सज्जन थे, अब वो याद नहीं आ रहा, पहले भटनागर जी हुआ करते थे, उनके बाद कोई थे, तो वो उन्होंने वो देखी और उन्होंने मुझे पत्र लिखा। जिंदगी में पहली बार आप हैं और कोई संपादक आपको पत्र लिख रहा है कि आप आके मिलिए और मैं आपसे चर्चा करने। मैं बड़ा उत्साहित और रोमांचित कि भाई ये क्या कहने वाले। मैं वहां गया, उन्होंने कहानी की बड़ी तारीफ करी और उसके बाद मुझसे कहा कि देखिए आपकी कहानी इतनी अच्छी है कि हम अपने पत्र का हमें हमारे पाठकों के जिससे ऊपर की है, तो इसलिए हम नहीं छापेंगे। तो मैं खैर कहानी लेकर वापस आ गया। सौभाग्य से वो एडिटर जो है बदल गए और वहां मनोहर श्याम जोशी आए। हाँ, उसने मुझसे कहा अब दे दो, फिर से देते हैं। तो मैंने उसको दिया, वही फॉरवर्ड कर देता था। तो फिर मुझे वहां से लेटर आया मिलने आओ। यार फिर ये क्या तमाशा है, पहली बार तो मैंने सोचा कि उन्होंने मुझे बुलाया और कहानी छापी नहीं और अब ये फिर कुछ ऐसे ही होगा। फिर वो मरे मन से वहां पहुंचा, पहली बार मैं मनोहर श्याम जोशी से मिला। तो जोशी बोले तुम यार ये क्या कहानी लिखते हो, थोड़ा सा और जो जिंदगी चीजें हैं उसको देखो, ये क्या रोमांटिक कहानी वानी लिख रहे हो तुम। अब मैं समझ गया कि कहानी छापेंगे नहीं। जाते हुए बोले मैं ये तुम्हारी कहानी तो छाप रहा हूं लेकिन तुम जो है ना और फिर कुछ चीजें देखो। तो एक तरह से मेरे लिए उत्साह प्रोत्साहन भी हुआ और कहानी छप भी गई। हाँ, मतलब एक चीज ये थी उसमें एक फोटो भी छपता था, तो फोटो छपने से जो अतिरिक्त आनंद आया तो वो अतिरिक्त था।
0: मैं जानना चाहता हूँ कि आपके लिए साहित्य केवल अभिव्यक्ति है या सामाजिक हस्तक्षेप का माध्यम भी है?
1: असल में मेरे लिए वो दोनों एक से जुड़े हुए हैं, समाज और रचनात्मकता। क्योंकि मैं व्यक्ति हूँ, एक मनुष्य हूँ, एक खास समाज में रहता हूँ, उसकी संस्कृति को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं जिस तरह से उसको देखता हूँ, उसकी अच्छाइयों को बुराइयों को अपनी निकटता से, वो मेरी रचनाओं में आएंगी आएंगी, वो आती है। और अगर कोई चीज ज्यादा चुनौतीपूर्ण है जो लगता है कि समाज को पिछड़े करने में या किसी एक सेक्शन के साथ अन्याय करने में अगर वो दिखाई दे रही है, तो ऐसा है कि एक लेखक के रूप में आप उद्वेलित होते हैं, क्योंकि आप अपने लेखन से आपको चीजों को जो देखने का आपकी जो दृष्टि होती है मुझे बनती है कि वो समझे कि आखिर जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, ये खास तरह का व्यवहार कुछ से साथ हो रहा है कुछ के साथ नहीं हो रहा, तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है ये आपको लेखक के रूप में ये सब कुछ आप देखते हैं। तभी अगर आप उपन्यास लिखना चाहते हैं और समाज से जुड़ा हुआ लिखना चाहते हैं या आप वास्तविक समस्या को लेकर लिखना चाहते हैं, तो आपको समाज को समझने का दृष्टि तो होनी चाहिए, बिना उसके तो आप नहीं कभी भी ढंग के उससे नहीं लिख पाएंगे। तो अब मैं अपनी रचनाओं में जो कुछ भी वो आ रहा है तो एक तरह से वो रचनात्मकता का हिस्सा है, वो अतिरिक्त तो कुछ नहीं।
0: पंकज जी, आपकी कहानियों को पढ़ते हुए लगता है कि उसमें आम आदमी की पीड़ा और व्यवस्था के प्रति एक तीखा असंतोष है, ये दृष्टि आपके भीतर कैसे विकसित होती है?
1: देखिए कारण वही है, जब मैंने चीजों को देखने का और जो स्थितियां हैं उनको समझने का कि आखिर क्यों जो इस असमानता है, जो अन्याय है, जो कुछ लोगों के साथ जो भेदभाव है वो क्यों और है, तो वो क्यों नहीं बदल रहा है अब तक, क्यों इससे कोई प्रयत्न नहीं दिखाई दे रहा, वो सारी चीजें मुझे प्रेरित करते रहे, देखते रहे। तो मैंने कोशिश करी कि अब एक तरह से चूंकि मैं जिन स्थितियों में शुरुआत में कुछ दिनों रहने के हुआ पड़ा हमको, तो जो चीजों का ना होना, आपके पास पैसे की कमी होना, आपको एक बेहतर स्थिति में नहीं रहने देने का ना, जो अभाव जिसको कहते हैं अभाव की जो स्थिति है आपने सहा है, तो आप उससे औरों के साथ आइडेंटिफाई करने में आप मदद मिली। तो मतलब एक लेखक के रूप और एक लेखक के रूप में मेरे ख्याल से एक रचनाकार के रूप में या कलाकार के रूप में ये भी होता है कि जो उसकी संवेदनशीलता है वो उसकी अपनी जो अनुभव हैं उनके परे भी जाते हैं, औरों से भी सीखते हैं, औरों को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो जो भी मैंने जिस तरह से मैं जिंदगी को देखा है, जो अभिव्यक्त करने की कोशिश करी है, उसमें यही तरीका हो यही है। जो
0: पंकज जी आपकी रचनाओं में संवेदना और प्रतिरोध दोनों साथ साथ चलते हैं, क्या यह आपके लेखन की सचेत रणनीति है?
1: ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है कि आप चीजों को देखते हैं, जब आप किसी मान लीजिए कोई खास स्थिति को देख रहे हो, कोई अपंग है मान लीजिए, वो नहीं चल सकता है, उसको चलने में मदद नहीं मिल रही है और लोग उसकी मदद नहीं कर, ये जब आप देख रहे हैं तो इससे आप जो अर्थ निकाल रहे हैं और जो जिस तरह से उसको आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं या जिस तरह से आप उसको बदलना चाहते हैं, ये सारी प्रतिक्रियाओं को आप एक लेखक के रूप में लिखना चाहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आपकी दृष्टि संवेदनशील है, आप अगर मानवीय हैं, तो आपको जो भी तकलीफ दूसरे आदमी की होगी आप उससे जरूर अपने को आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसा नहीं होगा। वैसे मेरे ख्याल से लेखक होना एक अतिरिक्त जिम्मेदारी हो सकती है, मतलब एक आदमी होने के कारण, ह्यूमन बीइंग होने के कारण हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो भी हमसे कमजोर हो, जिसको जरूरत हो, उसकी मदद करें।
0: पंकज जी आज के समय में कहानी और उपन्यास के स्वरूप में आप क्या परिवर्तन महसूस करते हैं इस बदलते हुए समय में?
1: देखिए हो क्या रहा है कि कहानी का जो महत्व है, वो कहानी चूंकि बहुत छोटे दायरे में चीजों को देखने की कोशिश करती है, तो मेरे ख्याल से ये कहानी की जगह टेलीविजन, रेडियो, जो और जो एंटरटेनमेंट के माध्यम है, उन्होंने ले लिए है। अब जो माध्यम बचता है वो बड़े नैरेटिव में बचता है, वो उपन्यास है। अब उपन्यास इसलिए शायद मेरे ख्याल से कहानियों में अब उतना लेखन नहीं हो नजर आता है मुझको, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन एक और बात भी है, जो श्रव्य या दृश्य माध्यम है उनकी अपनी सीमा है, उनमें आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और वो जो कह रहा है वो आप पे यथावत, क्योंकि वो दृश्य आपके सामने एक तरह से साकार है, तो वो पूरी तरह आप पे छाए रहते, जो भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो भी वो बना रहा है उसको, या एक्टर मेरा मतलब जो एक्ट कर। लेकिन जो रचनात्मकता जो लिखना है उसमें यह है कि लेखक जो लेखन के साथ यह है कि आपको जो लिखने में कहा जा रहा है उसको अपने दिमाग में, अपने अपने चेतना में, अपनी संवेदना में एकाकार करना है, उससे तालमेल बैठाना है और उसको उस तरह से दुनिया को समझने की कोशिश करनी है। तो वो जो है जो इन्वॉल्वमेंट का लेवल है, सेंसिटिविटी का लेवल है, वो डिफरेंट है, तो वो ज्यादा सक्रिय है, वो एक तरफा नहीं है। ये इसका महत्व यह है।
0: बहुत सारी खट्टी मीठी यादों के साथ आकाशवाणी का आपका सफर रहा है पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आकाशवाणी का धन्यवाद।
2: पंकज बिष्ट और विशाल पांडे का ये संवाद हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, क्या वो उस जिंदगी से जुड़ा है जो हमारे आसपास सांस ले रही है? हर दौर में साहित्य को एक नई पीढ़ी, एक नई ऊर्जा की जरूरत होती है और ये काम आकाशवाणी और साहित्य अकादमी जैसे संस्थान लगातार करते चले आ रहे हैं। हमारी अगली प्रस्तुति सृजन की अगली पंक्ति में सुनते हैं विकास दवे, निदेशक मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से चंद्रशेखर शर्मा की बातचीत।
3: हमारे साथ हैं लब्ध प्रतिष्ठ बाल साहित्यकार, मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दुबे। सर
4: आज बहुत अच्छा लग रहा है और आकाशवाणी के इस पटल पर विशेष करके मुझे इस बात को लेकर के बड़ा गर्व की अनुभूति हो रही है कि चूंकि आकाशवाणी और साहित्य समाज ये एक ही परिवार के दो हिस्से हैं।
3: सर रेडियो को हम बोलते हैं एक दृष्टिहीन कला, ब्लाइंड आर्ट, और अज्ञेय जी ने कहा है कि रेडियो ने साहित्य में श्रव्य बिंबों की नई दुनिया रची है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या विचार श्रृंखला इस बारे में कहती है?
4: अज्ञेय और मुक्तिबोध दोनों को हमको स्मरण करना चाहिए।
3: बिल्कुल,
4: और लगभग दोनों ने समान धर्मी विचार व्यक्त किए थे, विशेष करके आकाशवाणी के इस माध्यम को लेकर के।
3: जी,
4: उससे पहले तक रंग कर्म और नाटक विधा ये चूंकि दृश्य विधा के अंतर्गत आया करते थे, जब आकाशवाणी का प्रणयन हुआ उसके पश्चात रेडियो रूपक जैसे शब्द समाज ने सुने।
3: जी,
4: और रेडियो रूपक ने दरअसल साहित्य क्षेत्र में इन मान्यताओं को एक प्रकार से आश्वस्ती दी कि यदि आप आंखों के सामने दृश्य उपस्थित न भी करें तो भी केवल स्वरों के उतार चढ़ाव से स्वरों का जो पूरा भाव भंगिमाएं अभिव्यक्त करने का जो सौष्ठव है उसके माध्यम से भी एक पूरे के पूरे नाट्य विधा को आप स्थापित कर सकते हैं।
3: शब्द चित्र
4: अद्भुत, वो शब्द चित्र के ही माध्यम से एक प्रकार से। और सबसे बड़ी बात यह कि आकाशवाणी ने जिस

0: ढंग से भाषा को अपने साथ सहेजने का प्रयत्न किया। भारतीय समाज में जो आक्रांताओं का जो युग था
1: जी,
0: उस औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर आने के लिए और विशेष करके हम सब पर पड़ा हुआ जो भाषाई प्रभाव था किसी शब्द की, वाक्य विन्यास की, व्याकरणगत वाक्य विन्यास की, उसमें निश्चित तौर पर एक वैक्सीन का काम किया है आकाशवाणी ने।
1: साहित्यिक शुचिता बनाए रखते हुए मर्यादित और सुगम्य भाषा के माध्यम से साहित्य को रेडियो ने जन जन तक पहुंचाया है। इस संदर्भ में सर विष्णु प्रभाकर जी को हम याद करते हुए एक बात कहना चाहेंगे कि रेडियो ने साहित्य में संवादात्मक रूप को निखारा है। हम इस संदर्भ में सर आपके विचार जानना।
0: स्वाभाविक रूप से साहित्य को जन जन तक पहुंचाने का काम आकाशवाणी ने सर्वाधिक किया ही है
1: जी।
0: और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि हमारे यहाँ पर साहित्य क्षेत्र में दो शब्द प्रचलन में आते हैं, लोक और शास्त्र
1: जी,
0: तो शास्त्रीय अवधारणाओं को लोक तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो आकाशवाणी ने किया है
1: जी।
0: और विशेष करके ये जो साहित्य की जो भिन्न भिन्न विधाएं हैं जिनसे सामान्य जन को परिचित कराने का काम किया
1: जी।
0: इसके साथ साथ मुझे लगता है कि साहित्यकारों को भी परिचय दिलाने का काम आकाशवाणी ने बड़ी मात्रा में किया है। तो ये जो साहित्य जगत को लोक से जोड़ना, लोक को साहित्य से जोड़ना और उन सब के बीच में सेतु का काम करना, और ये सब करते हुए व्याकरण भी सिखा रही है आकाशवाणी, भाव पक्ष भी समझा रही है। आप देखिए, चाहे हम लोगों को कई बार लगता होगा कि वे जब सी रामचंद्र की बात करते हैं, हमारे जो उद्घोषक होते हैं, वो जब कहते हैं कि भरत व्यास ने कैसे कैसे शब्दों का उपयोग किया है, इंदिवर ने इस गीत में ऐसा ऐसा हुआ, या किशोरदा ने गाते समय इस शब्द को इस तरह से गाने की कोशिश की, लेकिन फिर गीतकार वहां उपस्थित थे, उन्होंने कहा नहीं, इस शब्द का उच्चारण भोजपुरी में ऐसा होता है, अवधी में ऐसा होता है, इसलिए आपको इस ढंग से करना है। तो ये जो सिखाने का क्रम था, ये मुझे लगता है कि आकाशवाणी एक प्रशिक्षक की भूमिका में रही है समाज में साहित्य और व्याकरण और भाषा की दृष्टि से
1: जी। अमृतलाल नागर जी का सर एक कोटेशन है कि रेडियो जनमानस तक साहित्य की पहुंच का सबसे सशक्त माध्यम है। क्या आप मानते हैं सर कि रेडियो ने साहित्य को लोकधारा से जोड़ा?
0: तकनीकी रूप से इस बात को हम इस दृष्टि से भी स्वीकार कर सकते हैं कि रेडियो अभिजात वर्ग की पहचान तो था ही
1: जी।
0: आज यदि हम अनुभव करते हैं कि आज हमारे ड्राइंग रूम में बड़े बड़े थिएटर्स बना करके लोग बैठे हैं और एक दीवार के आकार के टेलीविजन सेट लगे हुए हैं, कमरे के चारों कोने में स्पीकर लगे हुए हैं, उस स्थिति से निकलने वाले लोगों को शायद ये कल्पना भी नहीं होगी कि आकाशवाणी या रेडियो को सुनने के लिए एक जमाने में लाइसेंस लेना पड़ता था। मैंने आकाशवाणी के 50 वर्ष जब हुए थे तब एक लेख लिखा था और उस लेख में मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि आकाशवाणी की भले ही वह यात्रा इतिहास रही हो, लेकिन आकाशवाणी का आज हमको क्या दिखाता? आज हमको दिखाता है कि खेत में हल जोतता हुआ किसान जो है, वह दोनों बेलों की घंटियों की आवाज के बीच में वो जो दोनों बेलों के कंधे पर जुआ रखा है, उस जुए के सेंटर में रस्सी से बांध करके एक रेडियो लटका करके रखता है, और खेत में अनाज बोते हुए भी, बीज बोते हुए भी वो आकाशवाणी के माध्यम से सुरीले गीत सुन रहा है, देश भर की खबरों से अपने आप को जोड़ रहा है। और इतना ही नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कृषि के क्षेत्र में जिस तरह से जानकारियों का प्रदाय का काम आकाशवाणी ने किया है, वो तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अंत्योदय की पराकाष्ठा मानता हूं मैं इसको। अब कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा इतने सारे जो शोध कार्य संपन्न होते हैं, उन्हें एक अनपढ़ किसान तक पहुंचाने का काम भी अगर कोई कर पाता है तो वो निश्चित तौर पर आकाशवाणी कर रही है।
1: हम आपसे सर जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी के मंच ने किस प्रकार से साहित्यकारों की पहचान और लोकप्रियता में श्रीवृद्धि करने में अपना योगदान दिया है।
0: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हों, महादेवी वर्मा जी हों या सुभद्रा कुमारी चौहान हों, हम देखते हैं कि इन सब रचनाकारों ने जिस ढंग से आकाशवाणी को अत्यंत श्रद्धा के साथ अपनाया और उनकी उन कालजयी रचनाओं को अगर जनसामान्य ने कंठस्थ किया, मुखाग्र किया, तो उसमें निश्चित तौर पर आकाशवाणी का एक बड़ा हाथ था। अमिताभ बच्चन जी चूंकि सदी के महानायक कहलाते हैं और उन्होंने जब पहली बार मधुशाला को अपने स्वर देकर के और एक कंपनी के माध्यम से एक एल्बम तैयार किया था, तब एक पत्रकार ने उनसे पूछा था तो उन्होंने यही कहा था कि भाई इस काम को आकाशवाणी बहुत पहले कर चुकी है और विशेष करके इसमें मैं आंचलिक साहित्यकारों को पहचान दिलाने के काम में आकाशवाणी का जो अवदान है वो तो अद्भुत है।
1: इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी ने साहित्य की नई विधाओं को भी जन्म दिया है
0: जी,
1: जैसे रेडियो रूपक हुआ, रेडियो नाटक हुआ, और आकाशवाणी का एक गर्विला सफर रहा है जिसमें भारत भूषण अग्रवाल, अमृतलाल नागर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और पीएल देशपांडे जैसे ये साहित्यकारों ने काम किया है यहाँ पर और इन नई विधाओं के उन्नयन में अपना योगदान दिया है।
0: चाहे वो कृषि जगत में नंदा जी भेरा जी के माध्यम से, कृष्णकांत जी दुबे, नरहरी पटेल जी, स्वतंत्र कुमार जी ओझा को मैं इस समय स्मरण करना चाहता हूँ। ये एक पूरी की पूरी जो पीढ़ियां थी, उन पीढ़ियों ने अपने आप को एक प्रकार से होम किया, उन्होंने अपने जीवन का कण कण और क्षण क्षण लगा करके इस आकाशवाणी की विधा को इतना उदात्त स्तर पर पहुंचाया कि

0: लगता है कि सचमुच इन लोगों ने एक तप की तरह इस काम को किया था। और जिन नई विधाओं के संदर्भ में आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि आकाशवाणी के माध्यम से नाटक से इतर भी अगर हम चलें तो जिसे कथा कथन की शैली को विकसित करना, कहानी लेखन भले ही साहित्य का विषय होगा लेकिन कथा कथन साहित्य का विषय नहीं है, वो एक प्रकार से कला का विषय है। लेकिन साहित्य और कला को सेतु बना करके उन्होंने जिस ढंग से कहानियां पढ़ना प्रारंभ की, मैं इस दिशा में कई बार इस बात का उल्लेख भी करता हूं कि सुबह का जो चिंतन आता है, चिंतन का प्रत्येक एपिसोड जो होता है वो अपने आप में ललित निबंध होता है एक प्रकार का। और इस ललित निबंध को सुनना यानी केवल वो कानों को सुख देता है, मानस को सुख देता है, ऐसा नहीं, बिल्कुल आत्मा भी उसमें तृप्त हो जाती है। मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि इसको लेकर के आकाशवाणी के इस अवदान को लेकर के जितना कहा जाए उतना कम होगा। आकाशवाणी के जो संग्रहालय है, आर्काइव्स है, उनमें इतनी अभूतपूर्व सामग्रियां हैं। अगर मैं चाहूं कि किसी युग में लता जी मुंबई के आकाशवाणी स्टूडियो में बैठ करके केवल अभ्यास कर रही थी और मशीन पर बैठे हुए उस समय के टेक्नीशियन ने रिकॉर्ड कर लिया उनको, केवल अभ्यास की वाणियों को या आपस की बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया और वो सब के सब आज, चाहे वो शुभा मुद्गल हों, चाहे हरिप्रसाद चौरसिया जी हों, चाहे छन्नू मिश्रा जी हों, उन सब की सामान्य बातचीत जो कि ऑफिशियली आकाशवाणी पर कभी प्रसारित नहीं हुई, लेकिन वो सब चीज़ें आज भी हमारे पास उस मैग्नेटिक टेप पर रिकॉर्डेड हैं। और मुझे कहते हुए गर्व है कि वर्तमान में प्रसार भारती ने अपने ऐसे सारे संग्रहालयों को एक प्रकार से, चूंकि जो क्लाउड है वो क्लाउड को मैं आधुनिक युग का कालपात्र ही मानता हूँ, वो अब अक्षय भंडार हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबके लिए जो ओपन फॉर ऑल कर दिया है, मैं तो कई बार उस आर्काइव पर जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं घंटों उससे बाहर ना आऊं। तो मुझे लगता है कि उसका लाभ हम सब लोगों को लेना चाहिए और विशेष करके साहित्य क्षेत्र के साहित्यकारों से मैं आग्रह करूंगा, केवल नवोदित पीढ़ी से नहीं, पुरानी पीढ़ी के साहित्यकारों से भी, कि वे कभी माखन दादा को, वीरेंद्र मिश्र जी को, महादेवी वर्मा जी को, इन सबको उनके मूल स्वर में सुने तो हमारे ध्यान में आता है कि उनकी सोच कितनी उदात्त थी, कितने उदार हृदय से वो साहित्य की समीक्षाएं किया करते थे। आज जिस ढंग से एक दूसरे को प्रशंसित करने का काम हम लोग कर रहे हैं, उस युग में आकाशवाणी हमारे लिए एक अच्छा प्रशिक्षक इस मामले में भी हो सकता है।
1: सृजन की अगली पंक्ति, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक विकास दवे से चंद्रशेखर शर्मा की ये बातचीत आपने अभी सुनी, सौजन्य आकाशवाणी भोपाल। और अब स्मृति नमन, वो जो चले गए लेकिन अपने शब्दों से, अपनी कृतियों से हमेशा के लिए जी गए। आज हम याद कर रहे हैं ऐसी ही तीन महान विभूतियों को, जन कवि नागार्जुन, जिनकी कविता धरती की तरह थी, ठोस, उर्वर और सच्ची, जो हाशिए के इंसान की आवाज बने। काजी नजरुल इस्लाम, जो बांग्लादेश के राष्ट्र कवि भी हैं, जिनकी विद्रोही कविता ने एक पूरी पीढ़ी को जगाया। मुद्रा राक्षस, हिंदी के वो फक्कड़ रचनाकार जिनके कलम ने कभी सत्ता से समझौता नहीं किया, नाटक, उपन्यास, आलोचना, हर विधा में उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी। नागार्जुन, काजी नजरुल इस्लाम और मुद्रा राक्षस की ये त्रयी हमें याद दिलाती है कि साहित्यकार मरता नहीं, वो अपनी रचनाओं में बार बार जन्म लेता है। इस त्रयी को साहित्य भारती का विनम्र स्मृति नमन। इसी के साथ साहित्य भारती का आज का ये अंक यही संपन्न होता है। अगली बार फिर मिलेंगे नए शब्दों के साथ, नई संवेदनाओं के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, सोचते रहिए। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज सुनते हैं ऋषिकेश गांगुड़े जी का शास्त्रीय गायन।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ वोकल रिसाइटल बाय ऋषिकेश गांगुड़े।
0: पुणे के एक संगीत प्रेमी परिवार में जन्मे ऋषिकेश जी को 5 वर्ष की अल्पायु में ही अपने पिता श्री पुरुषोत्तम गांगुड़े से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई।

0: इसके पश्चात उन्होंने डॉक्टर विकास कशालकर और पंडित यशवंत बुआ जोशी से 8 वर्षों तक ग्वालियर घराने के गायकी को बारीकियों से सीखा। इसके बाद ऋषिकेश जी ने आईटीसी संगीत रिसर्च अकादमी की प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति प्राप्त की और कलकत्ता में ग्वालियर, जयपुर, आगरा घराने के दिग्गज पंडित उल्लास कशालकर के सानिध्य में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत 6 वर्षों तक गहन प्रशिक्षण लिया। उन्हें बनारस घराने की विदुषी गिरिजा देवी जी से ठुमरी, दादरा और कजरी जैसे उपशास्त्रीय रूपों को सीखने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ।
1: बॉर्न इंटू अ म्यूजिक लविंग फैमिली इन पुणे, ऋषिकेश वॉज इनिशिएटेड इंटू वोकल म्यूजिक एट द टेंडर एज ऑफ 5 बाई हिज फादर श्री पुरुषोत्तम गांगुर्डे। He later received extensive training for 8 years from Dr. Vikas Kashalkar and Pandit Yashwant Bua Joshi, learning the intricacies of the Gwalior Gharana. Thereafter, Rishikesh received the prestigious ITC Sangeet Research Academy scholarship, coming under the tutelage of the stalwart Pandit Ullas Kashalkar. For 6 years, he underwent intense training in the pure Gharana Gayaki of the Gwalior, Jaipur and Agra traditions. He was also fortunate to learn semi-classical forms like Thumri and Dadra from the legendary Vidushi Girija Devi of the Banaras Gharana.
0: Rushikesh Gangurde Akashwani ke A shreni ke gayak kalakar hai. Unki gayaki mein sangeet ka saundarya, bhavyata aur madhurya jhalakta hai jo seedhe shrotaon ke man ko chhu leta hai aur yahi unke gayaki ki visheshta hai. गायन के साथ साथ वे एक कुशल तबला वादक भी है और उन्होंने कई कार्यक्रमों में अपने गुरु पंडित उल्लास कशालकर के साथ तबले पर संगत की है। वर्तमान में वे भारतीय विद्यापीठ पुणे के स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है।
1: ऋषिकेश गांगुर्डे इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड इज स्टेडली कार्विंग अ निश फॉर हिमसेल्फ एज अ घरानेदार वोकलिस्ट who tries to give expression to the beauty, grandeur and sweetness of music so as to touch the human heart, and this is the hallmark of his singing. Beyond his vocal prowess, he is an accomplished tabla player and has even accompanied his guru Pandit Ullas Kashalkar in various concerts. Currently, he serves as an assistant professor in the School of Performing Arts at Bharati Vidyapit Pune.
0: आज के कार्यक्रम में ऋषिकेश गांगुर्डे जी को तबले पर संगत कर रहे हैं आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं मकरंद खरवंडीकर। अपने गायन का आरंभ वे कर रहे हैं राग बिहागड़ा से। विलंबित रचना 3 ताल में निबद्ध है। बोल है प्यारी पग होले होले। इसके पश्चात वे 3 ताल में ही 2 द्रुतबंदिशें प्रस्तुत करेंगे, निरख छब देखत और रैन दिन कैसे कटेरी।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय श्री आशय कुलकर्णी एंड ऑन द हारमोनियम बाय श्री मकरंद खरवंडीकर। ऋषिकेश बिगिन्स हिज वोकल रिसाइटल विथ राग बिहागड़ा। द विलंबित कॉम्पोजिशन इज सेट टू 3 ताल। दिस विल बी फॉलोड बाय द्रुत कॉम्पोजिशन इन 3 ताल।

0: ये था राग बिहागड़ा।
1: दैट वॉज राग बिहागड़ा।
0: ऋषिकेश गांगुड़े अपने गायन का समापन राग बागेश्री से कर रहे हैं। विलंबित ख्याल तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है, जिसके बोल है लाल मनावे। गायन का समापन वे तीन ताल की द्रुत बंदिश पहरवा घर आओ से करेंगे।
1: नेक्स्ट ऋषिकेश गांगुड़े विल प्रेजेंट राग बागेश्री। द विलंबित ख्याल इज सेट टू तिलवाड़ा ताल। ही कंक्लूड्स द रागा विथ द्रुत कंपोजिशन इन तीन ताल।

0: राग बागेश्री अभी आपने सुना।
1: दैट वॉज राग बागेश्री।
0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप ऋषिकेश गांगुलडे जी का शास्त्रीय गायन सुन रहे थे। उन्हें तबले पर श्री आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर श्री मकरंद खरवंडेकर जी ने संगत की। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी पुणे केंद्र के स्टूडियो में किया गया और यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: You are listening to a classical vocal recital by Rishikesh Gangurde in the National Program of Music. He was accompanied on the tabla by Ashay Kulkarni and on the harmonium by Makaranda Kharvandikar. This program was recorded at the studios of Akashwani Pune and this program was broadcast from Akashwani Delhi.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

0: राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi today chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the Government of India, specifically to the Prime Minister, on economic and related issues. Besides the EAC members, two principal secretaries to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra and Shaktikant Das, also attended the meeting. The centre has introduced standard pack sizes for edible oils under the legal metrology framework, bringing greater transparency and uniformity to the marketplace. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that under the revised rules, standard pack sizes have been prescribed for major edible oils, including palm oil, palmolin, soybean oil, sunflower oil, mustard oil, groundnut oil, sesame oil and rice bran oil. The approved pack sizes are 200 gram, 500 gram, 1 to 5 kilograms, 15 kilograms and 20 kilograms. The ministry said this will also help consumers make more informed and transparent purchasing decisions. It added that the initiative will benefit the edible oil industry by bringing greater uniformity in packaging practices. Railway Minister Ashwini Vaishnaw has said that resolving long-pending railway projects in West Bengal will usher in a new era of railway infrastructure development in the state. Addressing a joint press conference with Chief Minister Suvendu Adhikari at Nabarna in Kolkata, Mr. Vaishnaw said that 14,205 crore rupees have been allocated to West Bengal in the railway project for 2026-27. He said 10 Amrit Bharat stations have already been completed in the state, while 9 Vande Bharat Express trains and several Amrit Bharat trains are currently in operation.
4: 60 new generation trains we are planning. In coming 4 to 5 years, these trains will be inducted and Kolkata Metro will get a totally new generation of trains. As the work gets completed on Chingrighatta area, other sections, a lot of improvement will happen in the mobility in Kolkata.
3: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said India and Nepal collaborate closely to maintain security along their long and uniquely open border, and the two countries have always stood by each other in times of need. In his opening remarks during a meeting with his Nepalese counterpart Shishir Khanal in New Delhi this evening, Dr. Jaishankar said India and Nepal share a very special relationship. The External Affairs Minister said the bilateral ties have steadily developed in areas like trade, commerce, investments, energy, development, cooperation, education, disaster response and culture. Mr. Khanal said India is Nepal's most important partner and Nepal has placed highest priority to India. He said Nepal and India are not merely two countries but stakeholders of a proud ancient civilization. He thanked India for fuel and fertilizer supply amid the West Asia crisis. Tensions across West Asia escalated sharply on Saturday after Iran launched ballistic missiles toward United States military facilities in Kuwait and Bahrain, prompting a coordinated air defense response by Gulf states and American forces. According to the U.S. Central Command, Iran fired 7 ballistic missiles following U.S. strikes on Iranian coastal surveillance and radar installations at Keshm Island and Goruk near the Strait of Hormuz. Initial assessments indicated that 6 missiles were intercepted while a 7th failed to reach its target. There were no immediate reports of casualties among US personnel. In tennis, Russian eight-seeded Mira Andreeva won her maiden Grand Slam title after getting the better of Maya Szwalanski of Poland in straight sets in the women's singles final of the French Open. And that is the end of this news bulletin.
5: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। कल सुबह 5:55 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।